0: को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है, वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है।
2: अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा, टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा।
0: एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है।

0: होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
1: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
2: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5-10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
1: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APF-SDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल, ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
0: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में हैं उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
1: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6-7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो टी

0: 72 अजय टैंक है, उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
1: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया, जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
2: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
2: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
2: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
2: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था, और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है, और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा मारमन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है, और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
3: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है। टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है। टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
3: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना हो, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
0: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: और अब खबर अमेरिका से निकलकर आ रही है, जहां पर आजादी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी यानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिली, रिपोर्ट देखिए।
6: सुहावने मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
7: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
6: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
7: We are one nation We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
6: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन

ने पूछा, ये बात और सुन, हनुमान जी लंका गए, सोने की लंका जलाई, क्या लंका जलती है, सोना जलता है? नहीं। तो फिर कथा तो कहती है कि उलट पलट लंका सब जारी, कैसे जल गया? अरे सोना, सोना नहीं जलता है, पर दरअसल ये सोने सोने की लड़ाई है। रावण राम जी से मिला, हे राम तुम्हें पता नहीं हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, सोने के मकान में रहते, सोने की थाली है, सोने की चम्मच है। राम जी बोले, तुम्हारे तो केवल नगरी सोने की है, हमारे यहाँ तो बंदर भी सोने के हैं। आओ, हाँ हमारे जो वानर हैं वो भी सोने के हैं। रावण बोला, कौन? बोले हनुमान जी को देख लो, स्वर्ण शैला विदेहम कंचन वरण विराज स्वेशा कनक भूद्राकार शरीरा। अच्छा, रावण बोला अपना असली है 24 कैरेट वाला है। राम जी बोले, सुनो, सोना 24 कैरेट का है कि 22 का है, असली है कि नकली, हम तुम दोनों ही इसका काम नहीं करते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। असली और नकली का पता तो आग में लगता है, आग में रख दो, जो जल जाए वो नकली है, जो बच जाए वो असली है। लोग कहते हैं कि सोने में आग लगती है, हमें लगता है कि बिल्कुल लगती है, नकली सोने में आग लगती है, असली सोना बच जाता है। सोने सोने की लड़ाई में नकली लंका जो सोने की थी, नकली सोने की वो जल गई, हनुमान जी खरा सोना है वो बच करके आ गए, ये कारण है। आहा, तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए,

माता जानकी जी को प्रसन्नता हुई, अब ठीक है। तब इतना भारी शरीर है, सीनियर ठीक ठाक है, अब हमें संतुष्टि है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हाँ आशीर्वाद दो। हनुमान जी को माता जानकी जी आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में देती क्या, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है, वरदान कम लगा, दूसरा ले लो। अमर हो जाओ, हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे कम लगा और ले लो, सुत आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे क्या बात है, इतने वरदान दे दिए फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, चलो एक और ले लो। क्या, माता जानकी जी ने हाथ रखा, कर ही बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बहुत प्रीति करें, ये हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी खिलखिला पड़े, जय हो जय हो जय श्री राम। जहां जय बोली, माँ आप आज से हमारी माँ बन गई, हम बेटा। और हमारी एक आदत है, क्या, हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी, आज दूसरा जन्म हुआ अब फिर भूख लग गया। हाँ, बचपन में भी भूख लगी थी जब जन्म हुआ, जन्मते जठी जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमारे मन में तब भी भूख लगी, तब हमने नभ में जाकर के सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा लिया था, सूर्य भगवान को खा गए थे, आज फिर भूख लगी। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगती है, भूखा लगता है। सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। कभी तुम सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें वर्णन आया है, स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने कहा।

0: हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ हमारी आदत है जन्म के बाद ही हमको भूख लगती है, और भूख नहीं लगती माँ, भूखा लगता है।
1: माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, आज से तुम हमारे बेटा हो, और जाओ, तुम पर राम जी बहुत प्रेम कर रहे हैं। माँ हमको भूख नहीं भूखा लगा। अच्छा फल खाओगे, पर बेटा वहां मत जाओ। क्यों?

वहाँ बड़े बड़े दैत्य दानव रहते हैं, रखवाली करते हैं, तो हाथ हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, माँ उनकी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ो, आप हमें आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, जाओ। देखे बुद्धि बल।

लेकिन एक सूत्र दिया। देखो कितनी अद्भुत है रामचरितमानस, कितना अद्भुत सुंदरकांड। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों का ध्यान करके फिर खाओ। तो किसी ने कहा क्यों ऐसा, जानकी जी ने क्यों कहा, भैया केवल ऐसे ही जाकर फल खाते तो केवल फल कहलाते, अगर राम जी का ध्यान करके फल खाओगे तो फल का परिणाम भी सफलता का पाओगे। इसलिए फल राम जी को हृदय में रख करके पाओ। हनुमान जी महाराज गए। अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस साफ पी के पड़े, एकदम टन पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़े, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख देख देख देख बंदर आया है, ऐ दूसरा बोला फल ही तो खाएगा पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा फल खाएगा पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं देख देख देख देख डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो सूखी सूखी गिर जाएंगी बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं। हमको माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी याद ध्यान आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम अपना कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को देते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों, बोले वो सरल करने का नया रास्ता खोज लेते हैं। आलसी लोग उसको सही करने का नया रास्ता खोज लेते हैं, बड़ा सरल रास्ता खोज लेते हैं। तो बोले कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को दो, और आलसी आलसी होते हैं। अब बुरा ना मानना, हमारा एक यही चेला रहता है भोरे में, चंगीलाल। दो मित्र थे चंगूलाल मंगूलाल, दोनों महा आलसी, इतने आलसी पड़े हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने आलसी हों सबको बुलवाओ, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक आलसी घर बनवाते हैं उसमें सब आलसी लोग पड़े रहेंगे, खाएंगे पड़े रहेंगे, शर्त यही है काम कुछ नहीं करना। सब आलसी आ गए, मकान भर गया। राजा बोले हमारे नगर में इतने आलसी है। मंत्री बोले चेक कर लो आलसी कितने। बोले कैसे चेक करोगे। मंत्री बोला एक काम करो, जिसमें ये लोग रुके हैं आग लगाओ। जैसे ही आग लगाई तो सब भग गए, केवल दो पड़े रहे। एक बोला देख देख देख आग है आग, दूसरा बोला कोई दिक्कत नहीं अभी ऊपर है। इतने में एक बोला अब आग जलाई गई है तो बीड़ी जला लो, बीड़ी जला लो, जब आग लगाई गई बीड़ी जला लो। तो पता है दूसरा आलसी क्या बोला, थोड़ी देर पड़े रहो यहीं आग गिरेगी यहीं जला लेंगे। पता ये आलसी है। बाद में पता लगा वो लोग दोनों कहां के थे, बोले बिहार के थे। बोले कहां के थे, बोले बिहार के थे। तो आलसी बड़े खतरनाक होते हैं, आलसियों की पूछो ही मत। आलसी तो आलसी, राक्षस भी बड़े आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। एक आया क्या, खाय सिफल अरु

हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े। राक्षस बोले फलों की तो गिनती नहीं होती है पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहाँ गए पेड़, क्या क्या बताएंगे साहब। उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे, सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ। अरे राक्षस बोले हुआ खतरनाक बंदर आया है। क्या नाम है। अब नाम तो उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया है। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी है। तो बोले एक बीच का नाम बोल दो, मरकट। तो बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। और हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। सुनी रावण पठी भटनाना, रात सी सेना आई हनुमान जी के सामने। जो पड़े सो दे तमाचा, हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। अब हनुमान जी ने एक और उपाय किया। क्या, कछु मारस कछु मरदस। कुछ को तो हनुमान जी ने मारा और अपने रोम खड़े किए। रोम, ये रोम होते ना, रोम कूप को, रोमों को खड़ा किया और रोम इतने तेज नुकीले कर लिए जैसे तुमने कभी देखा हो माताएं कपड़े पे लगे हुए दाग के लिए जिस ब्रश का उपयोग करती हैं, बड़ी छीलती हैं बार बार। हनुमान जी ने भी अपने रोम वैसे ही किए और रोम पकड़ करके एक राक्षस को पकड़े और पूरे शरीर में मल दें, छिल जाए बेचारा, हड्डी निकल आए। और फिर हनुमान जी जब मले और खाल छिल जाए, फिर दो राक्षसों को पकड़े और दोनों को ऐसे ऐसे पीटे। राक्षस बोले ये क्या है। हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की बहुत आदत है। तो कीर्तन है, कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिलिया सिधर धूर। कुछ को धूल में मिला दिया, जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है। बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है। बोले आधी मर गई आधी सामने खड़ी। रावण बोला इतना खतरनाक। अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्ख, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। रावण बोला पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे, एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है। लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे, हाउ कैन पॉसिबल। सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूंछ। रावण बोला पूंछ। अरे बोले बंदर है तो पूंछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूंछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है, बिल्कुल बटन दबाता है पूरे आदमी उसमें समेट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है 1.5 मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूछो उस एरिया में मत जाओ। बोले ये ही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए, भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फिट दूरी बहुत जरूरी। भाई जेसीबी का जो सूपा है वो 10 फिट का है, तो 10 फिट दूरी बहुत जरूरी, लेकिन पूछ का कोई एरिया थोड़ी फिक्स है, वह तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या। तब तक रावण का बेटा अक्षय, अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, तनक बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। और सुनो हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो ये दोबारा दिखेगा कि नहीं। रामर बोले चुप रहो, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता ना करो। जैसे ही अक्षय गया सामने, सामने जैसे ही आया तो हनुमान जी ने पूछा नाम। बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा सो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था। हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गया।
बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल सही सुना। बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है। बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है विद्वान है तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा। नाम है बेटे का अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। अजय तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए। इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती है। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले क्या न्यूज है, लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया है। जो गया था वो निपट गया है, बचा ही नहीं है। रावण को बड़ा गुस्सा चढ़ा। जब बहुत गुस्सा आई, अब क्या किया जाए, तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा।

0: मेघनाथ उठो। जी पिताजी, जी पिताजी, जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ।
1: मेघनाथ कौन? चला इंद्रजीत

निर्जीत है मेघनाद, जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाद चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है, तो युक्ति निकाल। और ये हनुमान जी से सीखो, क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाद जब हनुमान जी से जीत नहीं पाता

0: ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर साम भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए ये हनुमान जी सोचते हैं, कितना बारीक से सोचते हैं। अब बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए, जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है। एक बात हम अक्सर बोलते हैं, वो बात बोल के फिर विराम करेंगे। पटना रेलवे स्टेशन से 10-12 लड़के रेलगाड़ी पर चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही, 10-12 लड़के रेलगाड़ी पे चढ़े, ट्रेन का डिब्बा खाली था, एक केवल बूढ़ा आदमी बैठा था। एक लड़का बोला, देख देख देख देख, लिखा है सामने जंजीर है, चैन, अगर ये खींच देंगे तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। दूसरा लड़का बोला, चुप, खींच मत देना, सामने लिखा हुआ है बिना वजह चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो लड़के बोले, हम इतने लोग हैं 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, मजा ले लो। बोले चलो निकालो, लड़कों ने रुपया निकाले, किसी ने 100, किसी ने 200, टोटल 1200 रुपया हुए। एक लड़के से कहा, तुम धर लो, इसको रख लो जेब में, 500 दे देना, बाकी सबके वापस कर देना। तब तक एक लड़का बोला, 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाएगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़े दादाजी बैठे ना, जैसे ही टीसी आवे, अधिकारी आवे, इनका नाम बता देंगे सब, और एक दूसरे को गवाही दे देना। बोले हाँ, ये बहुत बढ़िया। अब बूढ़े दादाजी ने तो सुन लिया, हाथ जोड़ के बोले, भैया काहे को हैरान कर रहे हो, काहे को ऐसा कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, सामने वाला अगर गिड़गिड़ावे, रोए, तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, बहुत से लोगों को मजा आता है गिड़गिड़ाने वाले को देखकर, हाथ जोड़े कोई और ज्यादा रोवे तो फिर और मजा, अंदर से बाहर से तो बोला नहीं, अंदर से तो हाँ ठीक है ठीक है, तो कुछ लोगों को मजा आता है। अब लड़कों को और मजा आया, एक लड़के ने चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए, है चैन किसने खींची? लड़के बोले वो बूढ़े दादाजी है, बूढ़े दादाजी, उन्होंने खींची।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: एंटी टाइम टेक्नोलॉजी वाला, ना सीलन के धब्बे ना निशान, बजट में बढ़ाए घर की शान।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं? कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं? कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान, जुटे लाखों भक्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी के प्रथम पूजा 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी यात्रा, 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। सशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ आयोजित, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि, भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी किया कदम ताल। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद, लाहौल घाटी में सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं सैलानी, होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भरे। दिल्ली NCR के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मुंबई में बीती रात मेहरबान हुआ मॉनसून, झमाझम बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार होने वाला है खत्म, अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले आज है प्रथम पूजा का आयोजन। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। इस बार अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल से होती है शुरू, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड अनिवार्य। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की, यात्रा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का आयोजन किया गया, महोत्सव में शामिल होने के लिए भारी तादाद में पहुंचे हैं श्रद्धालु। पुरी में स्नान को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। यात्रा को लेकर रथ निर्माण का काम लगभग पूरा, अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ निर्माण। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में स्नान यात्रा उत्सव की रौनक। आस्था और भक्ति में सराबोर प्रभु जगन्नाथ के भक्त, लगाए भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जयकारे। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की लंबी कतार, गर्मी के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के पुरी के तट पर भी उत्सव के रंग देखने को मिले, रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृति। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दिव्य दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। कलाकृति में पारंपरिक स्नान अनुष्ठान के लिए 108 कलश भी स्थापित किए गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, दान और पूजा का है विशेष महत्व। इस बार बन रहा सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और मूल नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से मिलता है वरदान। मंदिरों में पूजा के लिए बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। विधि विधान से पूजा करने पर मनोकामना पूरी होती है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में आज रखा जाता है वट पूर्णिमा व्रत। सुहागन महिलाएं बरगद की पूजा कर करती हैं पति की लंबी उम्र की कामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहने की मान्यता है। सासाराम में आद्रा नक्षत्र में ताराचंडी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। नवविवाहित जोड़े विशेष पूजा के लिए पहुंचे। आद्रा नक्षत्र के साथ वर्षा ऋतु की मानी जाती है शुरुआत। किसानों के लिए बेहद अहम माना जाता है आद्रा नक्षत्र। भगवान शिव के रुद्र रूप की हो रही है विशेष पूजा। वहीं नव दंपति सुखी दाम्पत्य जीवन की कर रहे हैं कामना। माता तारा चंडी के दरबार में गूंज जयकारे। पूरी हलवा का लगाया जा रहा विशेष भोग। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। माता के आशीर्वाद के लिए लगी लंबी कतारें। आद्र नक्षत्र में भक्ति भाव से सराबोर हुआ तारा चंडी मंदिर। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि। सेशल्स के रोश कैमन स्थित स्टेड लिनिटे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परेड में सुरक्षा बलों ने सलामी दी। समारोह में भारत और सेशल्स के बीच गहरे रक्षा संबंधों की भी दिखी झलक। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी किया कदमदार। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में जाबाजों ने दिखाई करतब। पैराशूट के जरिए आसमान से लगाई छलांग। नेशनल डे समारोह में सैन्य बैंड की धुनों ने भरा जोश। भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचे लोग। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का लेमि भव्य स्वागत किया गया। खाता यानी सफेद स्कार्फ भेंट कर सम्मान व्यक्त किया गया। आध्यात्मिक माहौल में हुआ भव्य अभिनंदन। दलाई लामा का लद्दाख में 2 महीने का प्रवास। बौद्ध अनुयायी और श्रद्धालु भी पहुंचे। गांधीनगर में बस में सफर करने वालों को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तोहफा। पीएम ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने बच्चों को दी हेल्थ की सौगात। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट किया लॉन्च। एमपी के गुना में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों को पिलाया पोलियो ड्रॉप। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद। लाहौल घाटी में होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भरे। लाहौल घाटी के सुंदर नजारे देखकर खिले पर्यटकों के चेहरे। खूबसूरत वादियों में वाटरफॉल और झील ने बढ़ाया उत्साह। पहाड़ों में बहती नदियों पर रोमांचक जिपलाइन का भी आनंद ले रहे हैं सैलानी। लाहौल घाटी में ट्रैकिंग के लिए भी पहुंचते हैं टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश, शिमला कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवा के साथ बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर चलने का अनुमान। 2 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर। उत्तर प्रदेश में 6 दिनों में खत्म हो सकता है मॉनसून का इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। जम्मू के मैदानी इलाकों में आज बारिश का अलर्ट, कुछ जगहों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में आज गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश का अनुमान। राजस्थान में कई इलाकों में उमस भरा मौसम, झुंझुनू समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई।

0: लिटिल वंडर तक्ष्वी वघानी ने जमीन से महज 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 25 मीटर के ट्रैक को सफलतापूर्वक किया पार, कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ा। 4 साल की उम्र में तक्ष्वी वघानी ने शुरू की थी स्केटिंग, इससे पहले 10 मीटर की दूरी के लिए इसी ऊंचाई का बनाया था रिकॉर्ड। पंजाब के युवाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की बड़ी सौगात, राज्य भर में एक साथ 500 आधुनिक जिमों का उद्घाटन। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किया ऐलान, राज्य के जिमों की संख्या 3000 तक करेगी सरकार, 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में 3100 खेल मैदान भी जनता को समर्पित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में प्रस्तावित एयरपोर्ट की साइट का जायजा लिया। असम में कृषि मंत्री पीयूष हजारिका का खेतों में किसानों के बीच दिखा अनोखा अंदाज, धान रोपाई में शामिल होकर किसानों को आधुनिक खेती की पद्धति के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं को बढ़ा रही है सरकार, मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में शारदा नदी घाट बाईपास का निरीक्षण किया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कौन से ग्रह जीवन में नाम और यश देते हैं, कौन से ग्रह आपको बदनामी का शिकार बना देते हैं, कौन से उपायों से बढ़ेगा यश और कैसे मिलेगी अपयश से सुरक्षा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की, यश और अपयश के प्रभावों की। हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक क्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है और हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो या सूर्य रेखा कटी फटी हो या वहां पर तिल हो तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी, नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो, तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है, तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में, बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है, तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा लगातार एक सप्ताह तक, और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे, उतने दिन तक मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करना उत्तम होगा। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो, वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे, उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान, जुटे लाखों भक्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी यात्रा। 28 अगस्त तक देश दुनिया के तमाम भक्त करेंगे दर्शन। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी दिखाया कदम ताल। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद। लाहौल घाटी में सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं सैलानी। होटल और होमस्टे लगभग पूरी तरह भरे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मुंबई में बीती रात मेहरबान हुआ मॉनसून झमाझम बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: नमस्कार।
6: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। हम पंडित जी से जानने वाले हैं यश और अपयश के बारे में। ज्योतिषीय नजरिए के हिसाब से यश किन ग्रहों की वजह से आपको मिलता है और किन ग्रहों की वजह से अपयश की प्राप्ति आपको जीवन में होती है, और अगर किसी कारणवश अपयश की प्राप्ति आपको हो रही है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, इनका किस्मत कनेक्शन क्या है, ये विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे, आपके सवाल भी हम लेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय दोपहर के समय करना उत्तम होगा।
6: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 29 जून 2026 सोमवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
6: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी कि यश और अपयश के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहला प्रश्न जो पंडित जी से बनता है वो यही है कि ज्योतिष में यश और कीर्ति के योग क्या हैं, ग्रहों की इसमें खास भूमिका पंडित जी क्या होती है, किस वजह से यश की प्राप्ति होती है।
0: जी, हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक क्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है। और हस्त रेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं।
6: चलिए, यश और अपयश के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी आपको जानकारी भी देंगे। अब आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है पहली तीन राशियों की, मेष, वृष और मिथुन।
0: मेष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए, नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: चलिए यश के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया कि किन ग्रहों की वजह से यश की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं, अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं कि कब व्यक्ति को अपयश मिलता है या किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता।
0: अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा, तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा।
6: चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से पूछने हैं, आपके सवाल भी आगे जाकर लेंगे, लेकिन वापस आते हैं राशिफल पर। और बारी है कर्क सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
6: चलिए इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको सूचित कर देते हैं कि आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप अपने सवाल इस शो में बेझिझक भेज सकते हैं। आपके तमाम सवालों के लिए हमने एक ईमेल आईडी बनाई है, इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं इस शो में। तो पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस दर्शक का है आपके पास पहला सवाल।
0: जी, आज का पहला प्रश्न सलोनी जी ने हमें लिखा है और सलोनी जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1992, शाम के 5:30, जन्म स्थान है वाराणसी। सलोनी कह रही हैं कि अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सलोनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में होने की संभावना बनती है, अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच वाले समय में। आपका विवाह किसी जाने पहचाने बालक से स्वयं की इच्छा से होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। जब भी विवाह करें, अगर कुंडली मिला करके विवाह करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक पीला पुखराज, लगभग 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
6: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि आज का दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न हमें जया जी ने लिखा है और जया जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 20 नवंबर 2004, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:50, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, क्या मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जया जी, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से अगर वो मैनेजमेंट के, अकाउंट्स के, फाइनेंस के, इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी और इनका आने वाला समय करियर के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैनेजमेंट करना इनके लिए कुल मिला जुला के बेहतर होगा। दो उपाय करवाइए, एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
6: चलिए सवाल जवाब लगातार हम पंडित जी से कह ही रहे हैं। एक और सवाल है पंडित जी आपसे, वो ये कि कौन से ऐसे हालात होते हैं या कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को अपार नाम, यश और कीर्ति मिलती है।
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव, चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी, नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे।
6: चलिए अब वापस आते हैं राशिफल पर और बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: चलिए पंडित जी, आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि अगर कुंडली में आप यश के योग बन रहे हो तो क्या करना चाहिए, बचने के उपाय क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से यश और कीर्ति आप हासिल कर सकते हैं?
0: अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है, तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु विद्या यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी।
6: चलिए अंतिम तीन राशियों के बारे भी आ गई है, मकर कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय एक दो दिन के लिए टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

सुधार होगा, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौट रहे हैं और आपका अगला प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है सवाल। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आपकी आती हैं। आप कोई भी सवाल इस शो में भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, अगला सवाल कौन सा है?
0: जी, अगला प्रश्न धीरज ने हमें लिखा है और धीरज जी हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 19 जनवरी 1982 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8:30। जन्म स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। धीरज जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना बेहतर होगा और भविष्य कैसा रहेगा? धीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार वाली है। और मैं कहूंगा कि साल 2026 के अंत से आप व्यापार की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा और एक साथ बहुत सारा पैसा व्यापार में मत लगाइएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अकेले व्यापार करें, आप उसमें सफल होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है दर्शकों का अंतिम प्रश्न इस शो में लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है और कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी शर्मा ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1990। जन्म का समय 1:05। जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मुझे लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? देखिए, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। आपकी ज्यादातर समस्या तनाव की है और थोड़ी बहुत समस्या आपके डाइजेशन की है। तो अपने तनाव का और अपने डाइजेशन का अगर आप ध्यान रखें तो बाकी मामले आपके लिए बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें, रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुनें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। यश और अपयश के बारे में लगातार जानकारी आपको पंडित जी दे ही रहे हैं। पंडित जी सवाल यह है कि किसी कारणवश अगर किसी शख्स के जीवन में अपयश मिल गया है, अपयश उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे वो बचाव चाहता है, तो कैसे कर सकता है ये उपाय?
0: जी देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो, अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है, तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा लगातार एक सप्ताह तक, और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जितने दिनों बाण का पाठ करना शुरू करिएगा लगातार एक सप्ताह तक और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे उतने दिन तक मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 जून को उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 29 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में समस्या हो सकती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की

0: पंडित जी से जान लेते हैं 29 जून सोमवार के सुपहर के बारे में।
1: दिनांक 29 जून दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है। रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक इस समय में 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 जून सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में।
0: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में किस चीज से समस्या होती है, किससे बचना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। इनको हमेशा जिद से और क्रोध से बचना चाहिए और बेवजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं।
0: चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने इस शो से जुड़े हुए आप तक पहुंचा दी हैं। बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है। पंडित
1: जी, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
0: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: गजब का इत्तेफाक ये है कि ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा बनारस, अब आधुनिकता का मॉडल शहर बनता जा रहा है। इसी साल काशी को एक और अनोखी सौगात मिलने वाली है। काशी में बन रहे पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि अगले साल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का आयोजन कराया जाएगा। कमाल तो ये है कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे स्टेडियम का कलेवर शिव गंगा और काशी की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है, यानी दर्शकों के लिए यहां मैच के रोमांच के साथ आध्यात्मिकता का स्पर्श भी प्राप्त होगा।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान माने जाने वाली दुनिया की प्राचीनतम काशी नगरी अब आधुनिकता की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी है। काशी के निरंतर विकास की अद्भुत कड़ी है गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया था और अब इसका 90-95% काम पूरा हो चुका है। वाराणसी के गंजारी में बनकर तैयार हो रहा यह स्टेडियम कई महीनों में दुनिया का सबसे अनूठा क्रिकेट स्टेडियम है, क्योंकि इसे शिवगंगा और काशी की संस्कृति की थीम के साथ तैयार किया गया है।
1: पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग 90% तक बनकर तैयार हो गया है और खास बात यह है कि ये BCCI का देश का पहला अपना क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है और इस समय हम उसी क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर की ओर खड़े हैं और शिव और गंगा और काशी की थीम पर ये क्रिकेट स्टेडियम लगभग 31 एकड़ में 451 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो जिस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ की त्रिशूल के आकृति के रूप में इसके फ्लडलाइट को रूप दिया जा रहा है, तो वहीं इसकी छत अर्धचंद्राकार बनाई गई है। तो ठीक सामने जो लॉन्च दिख रहा है वे डमरू की आकृति का है और जो सीढ़ियां हैं जिसमें ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 30,000 लोग बैठेंगे वे पूरी तरह से गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा उकेरा जा रहा है। तो वहीं एंट्री पॉइंट पे जो प्रवेश द्वार है वो बिल्वपत्र यानी बेलपत्र की आकृति में देखने को मिलेगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही इसकी शुरुआत इसका शिलान्यास अब से लगभग सितंबर 2023 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द 2027 के पहले इसका लोकार्पण भी होगा।
0: शिव गंगा और काशी की थीम पर तैयार हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अनेक अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेडियम को सेंसर बेस्ड तकनीक पर तैयार किया जा रहा है जिसका फायदा ये है कि लगातार 3 घंटे भी मूसलाधार बारिश होगी तो मात्र 20 से 25 मिनट में सेंसर बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम से पानी को निकालकर आधे घंटे में मैच दोबारा शुरू कराया जा सकेगा।
2: ये ICC स्टैंडर्ड पे टोटल डिजाइंड है ग्राउंड और नॉर्मल स्टैंडर्ड 65 मीटर का होता है, 76 मीटर है रेडियस जिसका ड्रेनेज इस तरह से डिजाइंड है कि अगर एक घंटे भी बारिश तेज हो जाएगी ना तो आधे घंटे के अंदर इसका सारा ड्रेन आउट हो जाएगा पानी। इस तरह से ग्रेविटी सिस्टम और पाइपिंग किया हुआ है जो भी अंडरग्राउंड है सारा। सबसे बड़ा चैलेंज त्रिशूल, त्रिशूल का डिजाइन इंटेंट और एक्चुअल डिजाइन ड्राइंग देख के और उसको फिर मूर्त रूप देना वाकई में किस ढंग से आ रहा है क्या। एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको मतलब उस टाइप से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था।
0: सेंसर बेस्ड तकनीक के अलावा प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला ड्रेसिंग रूम बनाया गया, साथ ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच के आधार पर इसकी पिच को तैयार किया गया है। इस स्टेडियम की पिच में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मिट्टी की जगह रेत और कंकड़ का प्रयोग किया गया है। पिच पर केमिकल के इस्तेमाल से विशेष तरीके से घास को उगाया गया है। जाहिर है इस स्टेडियम का निर्माण देखकर काशी के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
3: बहुत बड़ी सौगात है बनारस के लिए और हम लोगों के लिए भी, हमारे बनारस में लोग अब मैच देखने आएंगे जो बनारस वाले दूसरे जगह देखने जा रहे थे आज लोग बनारस में देखने आएंगे। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे यहाँ स्टेडियम बन गया और हम लोग दूसरे शहर जा रहे थे, दूसरे प्रदेश जा रहे थे, अब दूसरे प्रदेश के क्या विदेश के भी लोग हमारे यहाँ आएंगे। अब बहुत जल्दी आप लोगों का ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें मैच भी होगा बहुत जल्दी।
0: अध्यात्म और अत्याधुनिकता के अनोखे संगम के साथ तैयार हो रहे इस स्टेडियम में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। STP के माध्यम से यहां प्रयोग होने वाला जो सीवरेज का पानी है उसे ट्रीट करके दूसरे कामों में लाया जाएगा। ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल कार वॉशिंग, प्लांटेशन और सफाई वगैरह कामों में किया जा सकेगा। संभावना है कि करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम में इस वर्ष के अंत तक ट्रायल मैच खेले जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि साल 2027 में बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्रिकेट का पहला मैच खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चालू होने के बाद यह स्टेडियम काशी वासियों के लिए नए सिरे से रोजगार का भी सृजन करेगा।
4: बहुत गर्व है और हमारे बनारस में जो स्टेडियम बना है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि हमारा आप नाम आगे होगा और थोड़ा रोजगार भी मिलेगा और कुछ नाम भी होगा।
0: दरअसल वाराणसी के लोगों को पिछले 12 सालों से एक ऐसा सांसद मिला जो संयोग से देश का प्रधानमंत्री भी है। ये हकीकत है कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसका असर यहाँ के लोग अब शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Right field, and it will...
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
16: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।

0: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ, भक्तों के लिए बालटाल कैंप पूरी तरह तैयार।
1: स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान।
0: मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, तो मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग।
1: दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगा उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश।
0: मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोग, कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद, लाहौल घाटी में भी होमस्टे और होटल फुल बुक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराश, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: जय जगन्नाथ, आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का शंखनाद हो रहा है, आज स्नान उत्सव की परंपरा निभाई जा रही है, जिसके बाद भगवान बीमार पड़ जाएंगे, फिर 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ये उत्सव सिर्फ एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी है, और इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे।
1: वहीं एक तरफ जगन्नाथ का स्नान होगा तो दूसरी तरफ बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा होगी, और ये प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की गुफा में होगी। इसी पूजा के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा का धार्मिक शुभारंभ माना जाता है, तो आज होने वाली पूजा के लिए क्या क्या है तैयारी जानेंगे आगे।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब एक नए किरदार में नजर आएंगे, दादा बिग बॉस बांग्ला के नए सीजन को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। मिड जुलाई से दादा को आप बिग बॉस की पिच पर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए देखेंगे, और क्या होने वाला है खास इस पर भी करेंगे बात।
1: तो एक तरफ देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाके अब भी तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं। ऐसे में दिल्ली समेत उत्तर भारत को मॉनसून का इंतजार है। इस बीच राहत की खबर ये है कि इसी हफ्ते मॉनसून दस्तक दे सकता है, कौन सी तारीख को दिल्ली में मॉनसून देगा दस्तक बताएंगे आगे।
0: देश में आम का मौसम चल रहा है, 7 समंदर पार अमेरिका में भी आम को लेकर दीवानगी नजर आ रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है, जिसमें लोगों को भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मैंगो फेस्टिवल का हर रंग होगा आपके सामने, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
1: अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं। आज इस यात्रा का बेहद ही शुभ दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज श्री अमरनाथ धाम की पहली पूजा का आयोजन किया जाएगा। अमरनाथ धाम में विराजमान पवित्र हिमलिंग की प्रथम पूजा के साथ साथ आज पहली बार दर्शन होंगे। इस पूजा में खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर इस यात्रा का समापन होगा।
0: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज देव स्नान पूर्णिमा पर प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 घड़ों के पवित्र जल से महास्नान कराया जाने वाला है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, और इस भव्य आयोजन के साथ ही विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के मुख्य अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। प्रातः 5 बजे से 7 बजे के बीच देवताओं को पारंपरिक पहांडी यानी कि शोभा यात्रा के जरिए स्नान मंडप तक लाया गया, जहां पुजारियों द्वारा 108 घड़े के सुगंधित और शुद्ध जल से महास्नान कराएंगे।
1: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर देशभर की नदियों में एक बार फिर से आस्था से सराबोर नजर आया। सुबह से श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर घाट पर पूजा अर्चना के साथ ही मां गंगा का विशेष पूजा पाठ किया। वहीं पुरोहितों ने मंत्रोच्चार किया, और इस बीच श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के जयकारे भी लगाए।
0: नवरात्र में कैमूर की तलहटी पर स्थित मां तारा चंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सप्तमी के दिन मंदिर परिसर में भक्तों को भारी भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में लोग मां की आराधना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हुए दिखाई दिए। वहीं नवविवाहित जोड़े पूजा के लिए पहुंच रहे हैं।
1: तो तिब्बतन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को लेह में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। उनके स्वागत के लिए लेह को विशेष रूप से सजाया गया। पूरे लेह में उत्सव जैसा माहौल था। करीब तीन साल बाद तिब्बतन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को लेह में पहुंचे। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। उनके स्वागत के लिए लेह को विशेष रूप से सजाया गया। पूरे लेह में उत्सव जैसा माहौल था। करीब तीन साल बाद लेह यात्रा पर आए दलाई लामा की एक झलक पाने के लिए उनको मानने वालों में होड़ सी लगी हुई थी। जिस रास्ते से दलाई लामा गुजरे उसके दोनों ओर लोग कतारों में खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे।
0: मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ने के साथ हिमाचल के पर्यटन स्थल टूरिस्ट से गुलजार नजर आ रहे हैं। तीन दिनों की छुट्टी का फायदा उठाने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और दो दिन में करीब 25,000 टूरिस्ट की गाड़ियां हिमाचल में आई। रविवार को मनाली में 2,500 से ज्यादा टूरिस्ट गाड़ियां पहुंची। 2,000 पर्यटक वाहन दूसरे राज्यों से और 500 से ज्यादा हिमाचल के अलग अलग जिलों से मनाली आए। शिमला आने वाली सभी रेलगाड़ियां भी 10 जून तक बुक हो चुकी हैं।
1: तो वही अहमदाबाद की तक्षुभी वगानी ने 6 वर्ष की उम्र में ऐसा कारनामा कर डाला है जिससे कि उनकी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने छोटी सी आयु में कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। तक्षुभी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से अधिक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसी के साथ उन्होंने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित भी किया।
0: बीजिंग को सबसे ऊंचा फेरिस व्हील मिला है। 99 मीटर ऊंचाई फेरिस व्हील शुरू हो गया और 99 मीटर की ऊंचाई से पूरा बीजिंग नजर आएगा। फेरिस व्हील में 46 आधुनिक केबिन लगाए गए हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक राइड की अवधि 22 मिनट में पूरी होगी।
1: तो वहीं अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड फैंस को एंटरटेन करने के लिए आ रही है। ये जोड़ी अब डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म हैवान के साथ आने वाली है। पिछले साल ये फिल्म अनाउंस हुई थी और अक्षय सैफ ने इसका शूट भी शुरू कर दिया था। फिल्म 11 सितंबर 2026 को रिलीज की जाएगी।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत पुरी में जगन्नाथ स्नान उत्सव की तस्वीरों के साथ करते हैं। पुरी में आज जगन्नाथ स्नान उत्सव मनाया जा रहा है और ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी है। आपको बता दें, इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान विधि पर विराजमान किया जाता है।
1: इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। महाप्रभु गजानन रूप के दर्शन देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है, भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।
0: तो वहीं सुबह से ही शुरू हुआ ये उत्सव देर शाम तक चलता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों का किस तरह यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ से पर खुशी से आस्था में लीन नजर आ रहे हैं और झूमते गाते हुए यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। चार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा।
1: चलिए अब पुरी से आई सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा को पुरी में स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा सनातन धर्म का एक अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध उत्सव है जो कि हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होता है। इस साल ये 9 दिन की यात्रा 16 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।
0: तो वहीं आपको बता दें, इसकी पहली परंपरा की आज शुरुआत हो चुकी है और इस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं।

0: रथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह रहता है। इस शुभ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग पुरी पहुंचते हैं। यात्रा में करीब लाखों श्रद्धालु हर दिन हिस्सा लेते हैं।
1: और देखिए, आज रथ यात्रा की पहली परंपरा है, ऐसे में भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको ये दिखा भी रहे हैं। पुरी में आज स्नान यात्रा उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया गया।
2: बहुत ही खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे हैं, तो ये भगवान की महिमा है। पर्व आरंभ होता है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मतलब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना खुश हैं।
3: मैं हमेशा न्यूज़ में और चैनल्स में देखती थी उड़ीसा का ये महापर्व। आज पहली बार सौभाग्य मिला है मुझे यहाँ पे आने का। बहुत ही खुशी हो रही है, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग यहाँ पे परसों से ही लाइन लगा रहे हैं, तो ये अलग ही दृश्य है। और अभी हम दर्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं भगवान जी के।
4: हम जगन्नाथ जी के दर्शन को हर साल आते हैं और स्नान यात्रा में हमें आने की हमेशा खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको लगता है भगवान साक्षात ही आ गए हैं।
0: तो वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह से ही गंगा समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जहां तक बात भगवान जगन्नाथ की नगर पुरी की है, तो यहां एक दिन पहले से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है।
5: भगवान जगन्नाथ की नगरी का कण कण आज आस्था और भक्ति के रस में सराबोर है। हर श्रद्धालु के हृदय में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर है, तो जुबां पर जय जगन्नाथ, जिसका उद्घोष पूरी पुरी में गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले आज का दिन बेहद खास है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे जगन्नाथ स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल की तरह इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही पुरी पहुंच चुके हैं। भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तड़के से ही यहां उत्सव और उल्लास का माहौल है। उत्सव की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पाहांडी विधि से हुई, जिसमें भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से भव्य जुलूस के साथ बाहर लाकर मंदिर परिसर के खुले स्नान मंडप पर प्रतिष्ठित किया जाता है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे यानी 2 घंटे तक जलाभिषेक की परंपरा निभाई जाएगी। इस परंपरा के तहत स्नान मंडप पर 108 पवित्र और सुगंधित कलशों के जल से महाप्रभु का महाभिषेक किया जाएगा। इसे जललागी रीति कहा जाता है। ये कोई साधारण जल नहीं होता, बल्कि मंदिर परिसर के सुना कुएं यानी कि पवित्र कुएं से निकाला जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक महाप्रभु को गजानन के दिव्य रूप में सजाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपने एक गणेश भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये रूप धारण किया था। साल में सिर्फ आज ही के दिन भक्त भगवान का ये अनोखा रूप देख पाते हैं। देर शाम तक प्रभु अपने भक्तों को इसी हाथी या गजवेश के रूप में दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इस रूप के दर्शन पाकर हर भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के स्नान उत्सव के बाद एक और दिलचस्प परंपरा निभाई जाएगी। 16 जुलाई को शुरू होने जा रही रथ यात्रा से पहले भगवान पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक परंपरा के मुताबिक महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इस वजह से उन्हें 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। 30 जून से 14 जुलाई तक मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान अनासर घर यानी विश्राम कक्ष में एकांतवास करेंगे, जहां जड़ी बूटियों और विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से उनका उपचार किया जाएगा। 15 जुलाई को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके अगले दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई को होगा। इस बीच जगन्नाथ मंदिर के रथखला में रथ निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 14 से 15 जुलाई तक रथ निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 16 जुलाई को मुख्य अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ इन तैयार रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। भक्तों की मौजूदगी में पुजारियों ने महाकाल का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल, दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, पुणे के भागी बने।

वहीं धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का महापर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बेहद अशुद्ध और शुभ संयोग बन रहा है। आपको बता दें जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना बढ़ा सकता है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तु, अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: आज 29 जून यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन पर्व पर पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में पारंपरिक प्रथम पूजा संपन्न होगी। इसी पूजा के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा का धार्मिक शुभारंभ माना जाता है। आज यानी प्रथम पूजा के दिन हिमलिंग स्वरूप भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान भैरव का भी स्मरण और पूजन होता है।
1: तो वही आपको बता दें, इस यात्रा की निर्विघ्न, सुरक्षित और सफल पूर्णता के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। प्रथम पूजा के बाद ये माना जाता है कि बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ हो चुका है।

0: हिमालय की शांत बर्फीली वादियाँ, कल कल बहती नदी का किनारा और हर हर महादेव का जयकारा। अमरनाथ यात्रा महज एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस आस्था के उल्लास के बीच बालटाल बेस कैंप पर महारुद्राभिषेक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ और श्री बर्फानी बाबा जुगनिया माता भंडार समिति अमृतसर ने संयुक्त रूप से नदी किनारे महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान को दूध, दही, शहद और पंचामृत के साथ महाभिषेक किया गया। इसके बाद महामृत्युंजय जाप और महाआरती से पूरा बेस कैंप गूंज उठा।
1: हर हर महादेव।
0: एक तरफ पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में है तो दूसरी तरफ भोले के भक्तों के लिए विशेष भंडारों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ भले ही 3 जुलाई से हो रहा है लेकिन यात्रियों की सेवा के लिए भंडारे 2 जुलाई से ही शुरू कर दिए जाएंगे जो यात्रा के आखिरी दिन तक लगातार चलेंगे। इन भंडारों के लिए तमाम साजो सामान बालटाल पहुँच चुका है और सेवादार दिन रात तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
2: मौका मिला है इस अमरावती नदी के तट पर महारुद्राभिषेक करने का। धन्यवाद देता हूँ पवन जी साहबू को। मैं अमृतसर से हैं, जोगणिया माता के नाम से इनका पवित्र गुफा पर भंडारा लगाते हैं। वह पूरे शास्त्री बंधुओं की टीम्स के साथ महारुद्राभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे।
0: कहते हैं कि जो पुण्य और आनंद 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही पुण्य महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हर साल तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले ही सेवा भाव में लीन ये सेवादार पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पीना और विश्राम की व्यवस्था करते हैं।
3: श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ राजस्थान का भंडारा पवित्र स्थान बालटाल पर पहुंच चुका है और सभी सेवादारों द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं भवन जहां पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं वो यहां पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में वहां पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं। साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे। और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग है भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है।
0: 57 दिनों की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सौरभ गांगुली बनेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया के बिग बॉस।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
7: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
6: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
8: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
15: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ, भक्तों के लिए बालटाल कैंप पूरी तरह तैयार।
16: स्लॉट स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान।
15: मुंबई में जमकर बरस रहे हैं मानसूनी बादल, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, तो मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग।
16: दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बूंदाबांदी।
15: मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने, पहाड़ों में पहुंच रहे हैं लोग, कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद, लाहौल घाटी में भी होमस्टे और होटल फुल बुक।
16: हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में 3 दिवसीय नागली मेले की धूम, मानसून के आगमन और उसकी कामना और देव आस्था का प्रतीक है ये पर्व।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
17: मैदान सिंह के खजाने काट रहे, जरा जोर से बोले बे। किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए,
18: ये हो क्या रहा है मुझे,
19: पहचाना मुझे स्पाइडी।
20: हाय बॉयज,
21: अल्फा अल्फा प्रोग्राम्स।

0: एक और बार आपका स्वागत है शुभ समाचार में। देखिए, जुलाई आने में सिर्फ एक दिन बाकी है और ये जुलाई सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली, क्योंकि जुलाई में बड़े पर्दे पर एक के बाद एक धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है।
1: आपको बता दें, आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा कॉमेडी का डबल धमाका देखने को मिल रहा है। धमाल 4 और हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे समेत कई बड़ी फिल्में जुलाई को सुपरहिट बनाने के लिए तैयार हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करती है
0: और कौन बॉक्स ऑफिस का नया बादशाह बनकर उभरती है। तो अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस जुलाई हर हफ्ते सिनेमाघरों में मनोरंजन का महाधमाका होने वाला है।
2: जो बना रहा हूं वो इतिहास है।
1: देखिए, जुलाई में सबसे पहले शुरुआत होगी अल्फा मूवी से, जो इस फ्राइडे यानी कि 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जिसके लिए आलिया भट्ट समेत पूरी टीम ने प्रमोशन करना शुरू कर दिया।
3: शस्त्र था
0: अल्फा यशराज फिल्म की चर्चित स्पाई यूनिवर्स की एक पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दो महिला जासूस मुख्य भूमिका में है। इससे पहले इसी यूनिवर्स में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं।
1: आपको बता दें, इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में बॉबी देओल विलेन की भूमिका में दिखाई देंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी अपनी मूवी अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंच रही हैं। इस दौरान दोनों दिन भर आयोजित कई प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सिनेमा घर से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक

0: क्रिकेट के पिच पर छक्के चौकों से हुकूमत करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब एंटरटेनमेंट के पिच के बिग बॉस बनेंगे। क्रिकेट की दुनिया के दादा का नया अवतार होगा, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड के हीरो सलमान खान का बिग बॉस में होता है। मतलब ये कि जो काम बिग बॉस में सलमान खान करते हैं, ठीक वही काम अब सौरव गांगुली करेंगे बिग बॉस के बांग्ला वर्जन में। रियलिटी शो बिग बॉस बांग्ला की कमान सौरव गांगुली को सौंपी गई है और इसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में सौरव गांगुली को उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर छक्का मारते हुए दिखाया गया है। प्रोमो के आखिर में सौरव गांगुली कहते हैं कि मैं इसे बेस्ट बनाने के लिए जान लगा दूंगा। करीब तीन हफ्ते पहले बिग बॉस बांग्ला का पहला प्रोमो रिलीज किया गया था, जिसमें प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरव गांगुली की तुलना टाइगर से की गई थी, जो कि वो कहे भी जाते हैं। टाइगर को दिखाया गया था, उन्हें बैट बॉल खेलते हुए भी दिखाया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। तब सौरव गांगुली के शो को होस्ट करने को लेकर किसी को संशय भी था, तो वो अब बिग बॉस बांग्ला के लेटेस्ट प्रोमो ने दूर कर दिया है। बिग बॉस बांग्ला का ये तीसरा सीजन होगा। करीब 10 साल पहले बिग बॉस बांग्ला का दूसरा सीजन टेलीकास्ट हुआ था। बिग बॉस बांग्ला का दूसरा सीजन 2016 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे बंगाली एक्टर और प्रोड्यूसर जीत ने होस्ट किया था। बिग बॉस बांग्ला का पहला सीजन 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे मिथुन चक्रवर्ती ने होस्ट किया था। अब पूरे 10 साल बाद गांगुली के साथ बिग बॉस बांग्ला वापस लौट रहा है। इस शो का प्रसारण स्टार जलसा पर किया जाएगा। तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के मध्य से इसे ऑन एयर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्रिकेट के दादा के बाद अब बात हरियाणा के एक दादाजी की कर लेते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा के ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ स्काई डाइविंग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अंकित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि हम अपने बाबा जी को ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कराने लाए हैं। पिछली बार 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार 18,000 फीट से करवा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोग हरियाणा के इस बुजुर्ग के जज्बे और दादागिरी की खूब तारीफ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं डरता कौन है।

0: एक तरफ पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाके अब तेज गर्मी और लू की चपेट में है। मॉनसून की देरी से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। तेज धूप और धीमी हवा की वजह से उमस बढ़ गई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है।
1: तो वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इसी हफ्ते मॉनसून दस्तक दे सकता है। 4 जुलाई से मॉनसून के आने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दी है।

0: रविवार शाम को आसमान में घने काले बादल छाए तो लगा भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं भी चली। तेज हवाओं से धूल और आंधी का माहौल रहा, लेकिन जिस बारिश का दिल्ली वासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी, शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, यानी गर्मी और उमस से आज भी राहत की उम्मीद नहीं है।
1: दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीटवेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडवाइनिंग एरिया बिहार का नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले एक से दो दिनों के दौरान जो है हीटवेव कंडीशंस देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीटवेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी।
0: सामान्य तौर पर मॉनसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मौसम की मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो राजधानी दिल्ली में जल्द मॉनसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मॉनसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के

0: और इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम की परिस्थितियां अगर इसी तरह अनुकूल रहीं, तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून दस्तक दे सकता है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकेगी। 2 से 4 जुलाई के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हवा की गति तेज होने का अनुमान है। साथ ही मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के टकराव के कारण मानसून की रफ्तार धीमी हुई है। इसी वजह से तापमान और उमस तो बढ़ी, लेकिन अच्छी तरह बारिश नहीं हो सकी। अब बारिश क्यों नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली के ऊपर शुष्क और नम हवाओं के मिलने से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो पा रही। बादल दोपहर में तब बनते हैं जब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है। इसलिए वास्तविक और फील्ड्स लाइक तापमान दोनों असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं। तो मानसून की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बेशक कुछ दिनों की देरी से हो रही है, लेकिन 4 जुलाई से मानसून के आने की पूरी संभावना है। और उससे पहले 1 जुलाई से कमोबेश हर रोज दिल्ली में न केवल बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, बल्कि तेज हवाओं या धूल भरी आंधी के साथ बारिश के भी पूरे आसार हैं। यानी मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश राहत का पैगाम ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रांस की राजधानी पेरिस में तेज तूफान के दौरान आइफिल टावर पर बिजली गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में काले बादलों के बीच अचानक तेज चमक दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड्स में बिजली सीधे 330 मीटर ऊंचे टावर से टकराती हुई नजर आती है। जाहिर है इस नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आइफिल टावर को ऐसी बिजली झेलने के लिए ही बनाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आइफिल टावर पर हर साल 5 से 10 बार बिजली गिरती है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी ऊंचाई है। बिजली अक्सर सबसे ऊंची धातु की संरचना पर गिरती है, क्योंकि उसे वहीं से जमीन तक सबसे आसान रास्ता मिलता है।
2: अब खबर फुटबॉल से जुड़ी। दरअसल अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में फुटबॉल के जोश और दीवानगी को बयां करती एक तस्वीर आप ये देखें, जहां पर ब्राजील के फैंस ने मशहूर वाटरफॉल पार्क में जमकर जश्न मनाया। ड्रम की आवाज के बीच ब्राजील के खास तेज संगीत के साथ लैटिन अमेरिकी देश के फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा है। वो चिल्ला रहे थे, कूदो जमीन छोड़ो, वही कूदो जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बार में जापानी फैंस जमा हुए थे। जाहिर है फुटबॉल का रोमांच सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं है, मैदान के बाहर फैंस के बीच भी जबरदस्त होड़ मची हुई है और फीफा वर्ल्ड कप का उत्सव अब पूरे शबाब पर है। ओडिशा के मयूरभंज में एक कलाकार की प्रदर्शनी चर्चा में है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस कलाकार का नाम कुमार मिसाल है और इनकी खासियत ये है कि ये जिस पेपर पर अपना आर्टवर्क तैयार करते हैं वो पेपर भी खुद बनाते हैं और वो भी खेती के कचरों से, और इनकी कलाकृतियों में खास तौर पर कृषि जीवन की झलकियां भी मिलती हैं।
0: अगर आपसे कहा जाए कि ये चित्रकारी वेस्ट टू वंडर का सबसे अनूठा और नायाब उदाहरण है, तो आप शायद यकीन न कर पाए, लेकिन ये सच है और इस सच को जी रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के कलाकार कुमार मिसाल, जो एक खास तरह के चित्रकारी के लिए मशहूर है। ये खेती के कचरों से पहले पेपर तैयार करते हैं और फिर उसी पेपर पर चित्रकारी करते हैं। अपनी भावनाओं, सोच और उम्मीद को बड़ी बारीकी से इन्हीं कागजों पर उतार देते हैं।
3: कि मैंने बचपन में देखा है कि वेस्टेज फार्मिंग सोसाइटी में या फिर मेरे घर में कोई चीज़ें होती नहीं थी, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रक्रिया करके नई चीज़ बनाई जाती थी। तो यही चीज़ मेरे काम में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी। मेरे फार्म में जो भी वेस्टेज फाइबर्स है या फिर चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसके कागज़ बनाना और कागज़ और कलाकृति बनाना मैंने शुरुआत किया।
0: खास बात तो ये है कि ये ना सिर्फ पेपर बनाने में खेती के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कागज पर जो कुछ उकेरते हैं उनमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है।
4: खेती में जो कुछ भी यूज होता है, छोटी भी चीज वेस्ट ना हो, वो माइंडसेट को लेके वो कॉर्न हस्क, बनाना फाइबर, राइस हस्क जैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेके उनके साथ उन्होंने मास्टरी बनाई है, एक्सपर्टीज बनाई है पेपर बनाने में, और उसके ऊपर वो चित्रकार करते हैं।
0: कुमार की इन कलाकृतियों में कृषक जीवन की चुनौतियां, उनके संघर्ष हैं, उनकी जीवटता है। वुडकट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे किसानों के परिवारों पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज भी करते हैं और उनके प्रवासन और विस्थापन के मुद्दों को उजागर भी करते हैं, और इस तरह वो प्राकृतिक कृषि सामग्री और खेती के कचरों से कथाएं रचते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं।
3: वो जो कलाकृति है उसके ऊपर या जो कागज है उसके ऊपर जो सोसाइटी में फार्मर के इश्यूज है, जो उनका संघर्ष है, वो पेंट करने का काम मैं करता हूँ सर। और मैं जो कागज बनाता हूँ और जो फाइबर बनाता हूँ वो एसिड फ्री और अल्कोहल फ्री होते हैं, तो उसके वजह से होता ये है कि उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि उससे दीमक या कीटक लगने से थोड़ा बचता है वो। तो ये इंस्पिरेशन और ये जो प्रभाव है वो मुझे फार्मर के रूटीन से आया हुआ है।
0: ओडिशा के मयूरभंज में कुमार विशाल के चित्रों की ये प्रदर्शनी न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है, बल्कि हैंडमेड इको पेपर क्रिएशन के जरिए ग्रीन आर्ट को बढ़ावा भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का, अब आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए क्यूकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: बादशाह से बादशाह के घर का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर तुम्हें खुद ब खुद बादशाह के घर ले आए।
6: पार्सल वापस लेकर चला जाऊंगा, ज्यादा बकवास किया तो। बिल्डिंग के नीचे हूँ, एड्रेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?
5: अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ।
7: क्या गुंडा बनेगा रे तू?
6: सर ये रही आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफी।
5: पर ये आधी क्यों है?
6: मेरी भी यही फेवरेट है सर।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
1: देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ, भक्तों के लिए बालटाल कैंप पूरी तरह तैयार। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, तो मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की, यश और अपयश के प्रभावों की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक क्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी आप जीवन में नाम और यश पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है और हस्तरेखा विज्ञान में हाथों की रेखाओं में ये बात सूर्य से देखी जाती है। यानी इनको देख करके आप किसी भी व्यक्ति के नाम और यश के बारे में जान सकते हैं। मेष राशि, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए, नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है, तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं मिलता। यानी अगर शुक्र चंद्रमा खराब होंगे, गड़बड़ होंगे, तो आपको अपयश मिलेगा। अगर शुक्र चंद्रमा और हाथ में सूर्य कमजोर होगा तो आप बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश जीवन में प्राप्त नहीं होगा। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है, तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी, नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय एक दो दिन के लिए टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपकी बदनामी हो रही हो, आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आप बदनाम हो रहे हो, अपने ऑफिस पे, अपने घर में, समाज में बिना वजह के बदनामी मिल रही हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, सूर्य का प्रकाश हर मामले में आदमी को बचाता है, तो सूर्य देव की उपासना करना शुरू करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव को नमस्कार करके प्रार्थना करिए कि आपको अपयश से मुक्ति मिले। अगर अपयश बहुत ज्यादा बड़ा है, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप सुबह शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिएगा, लगातार एक सप्ताह तक। और लगातार एक सप्ताह तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जितने दिनों बजरंग बाण का पाठ करके प्रार्थना करेंगे उतने दिन तक मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करना शुरू करें, कितनी भी बड़ी बदनामी रही हो, कितना भी बड़ा अपयश रहा हो, आप उससे मुक्त होंगे और मुक्त होकर अपयश से बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं पहली बार, तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। और अगर नई जमीन पर नींव पूजा कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो भूमि पूजन हमेशा मध्याह्न के समय, दोपहर के समय करना उत्तम होगा। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या बहुत सारे काम करने जा रहे हैं या करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? घर से निकलते समय देखिए कि किस तरफ की सांस चल रही है, बाईं वाली या दाहिनी वाली। एक तरफ की सांस ज्यादा तेज चल रही होगी। जिस तरफ की सांस तेज चल रही हो, वही पैर बाहर निकालकर घर से निकलिएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

पूछा, ये बात और सुन, हनुमान जी लंका गए, सोने की लंका जलाई, क्या लंका जलती है, सोना जलता है? नहीं। तो फिर कथा तो कहती है कि उलट पलट लंका सब जारी, कैसे जल गया? अरे सोना, सोना नहीं जलता है, पर दरअसल ये सोने सोने की लड़ाई है। रावण राम जी से मिला, हे राम तुम्हें पता नहीं हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, सोने के मकान में रहते, सोने की थाली है, सोने की चम्मच है। राम जी बोले, तुम्हारे तो केवल नगरी सोने की है, हमारे यहां तो बंदर भी सोने के हैं। आओ, हाँ, हमारे जो वानर हैं वो भी सोने के हैं। रावण बोला, कौन? बोले, हनुमान जी को देख लो, स्वर्ण शैला विदे हम कंचन वरण विराज सुवेशा कनक भूद्राकार शरीरा। अच्छा, रावण बोला, अपना असली है 24 कैरेट वाला है। राम जी बोले, सुनो, सोना 24 कैरेट का है कि 22 का है, असली है कि नकली, हम तुम दोनों ही इसका काम नहीं करते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। असली और नकली का पता तो आग में लगता है, आग में रख दो, जो जल जाए वो नकली है, जो बच जाए वो असली है। लोग कहते हैं कि सोने में आग लगती है, हमें लगता है कि बिल्कुल लगती है, नकली सोने में आग लगती है, असली सोना बच जाता है। सोने सोने की लड़ाई में नकली लंका जो सोने की थी, नकली सोने की वो जल गई, हनुमान जी खरा सोना है वो बच करके आ गए, ये कारण है। आहा, तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए,

माता जानकी जी को प्रसन्नता हुई, अब ठीक है। तब इतना भारी शरीर है, सीनियर ठीक ठाक है, अब हमें संतुष्टि है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हाँ आशीर्वाद दो हनुमान जी को। माता जानकी जी आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में देती क्या, आजार अमार गुण निधि सुत हो, आजार हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है, वरदान कम लगा, दूसरा ले लो। अमर हो जाओ, हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे कम लगा और ले लो, सुत आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे क्या बात है, इतने वरदान दे दिए फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, चलो एक और ले लो। क्या माता जानकी जी ने हाथ रखा, कर ही बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बहुत प्रीति करें, ये हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी खिलखिला पड़े, जय हो जय हो जय श्री राम। जहां जय बोली, माँ आप आज से हमारी माँ बन गई, हम बेटा। और हमारी एक आदत है, क्या, हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी, आज दूसरा जन्म हुआ अब फिर भूख लग गया। हाँ बचपन में भी भूख लगी थी जब जन्म हुआ, जन्मते जठी जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमारे मन में तब भी भूख लगी, तब हमने नब में जाकर के सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा लिया था, सूर्य भगवान को खा गए थे, आज फिर भूख लगी। अच्छा हनुमान जी को भूख नहीं लगती है, भूखा लगता है। सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। कभी तुम सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें वर्णन आया है, स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने कहा, सुना

कहते माँ हमारी आदत है जन्म के बाद ही हमको भूख लगती है, और भूख नहीं लगती माँ भूखा लगता है। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, आज से तुम हमारे बेटा हो, और जाओ तुम पर राम जी बहुत प्रेम कर रहे हैं। माँ हमको भूख नहीं भूखा लगा। अच्छा फल खाओगे, पर बेटा वहां मत जाओ। क्यों?

वहां बड़े बड़े दैत्य दानव रहते हैं, रखवाली करते हैं। तो हाथ हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, माँ उनकी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ो, आप हमें आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो ठीक है जाओ। देखे बुद्धि बल।

राजा, लेकिन एक सूत्र दिया। देखो कितनी अद्भुत है रामचरितमानस, कितना अद्भुत सुंदरकांड। माने कहा बेटा जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों का ध्यान करके फिर खाओ। तो किसी ने कहा क्यों ऐसा, जानकी जी ने क्यों कहा, भैया केवल ऐसे ही जाकर फल खाते तो केवल फल कहलाते, अगर राम जी का ध्यान करके फल खाओगे तो फल का परिणाम भी सफलता का पाओगे। इसलिए फल राम जी को हृदय में रख करके पाओ। हनुमान जी महाराज गए। अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस, सांप पी के पड़े एकदम टन पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़े, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख देख देख देख बंदर आया है, ऐ दूसरा बोला फल ही तो खाएगा पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा फल खाएगा पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं देख देख देख देख डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो सूखी सूखी गिर जाएंगी बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं। हमको माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी याद ध्यान आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम अपना कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को देते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों, बोले वो सरल करने का नया रास्ता खोज लेते हैं। आलसी लोग उसको सही करने का नया रास्ता खोज लेते हैं, बड़ा सरल रास्ता खोज लेते हैं। तो बोले कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को दो, और आलसी आलसी ही होते हैं। अब बुरा ना मानना, हमारा एक यही चेला रहता है भोरे में, चंगीलाल। दो मित्र थे चंगूलाल मंगूलाल, दोनों महा आलसी, इतने आलसी पड़े हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने आलसी हों सबको बुलवाओ, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक आलसी घर बनवाते हैं उसमें सब आलसी लोग पड़े रहेंगे, खाएंगे पड़े रहेंगे, शर्त यही है काम कुछ नहीं करना। सब आलसी आ गए, मकान भर गया। राजा बोले हमारे नगर में इतने आलसी है। मंत्री बोले चेक कर लो आलसी कितने हैं। तो बोले कैसे चेक करोगे। मंत्री बोला एक काम करो, जिसमें ये लोग रुके हैं आग लगाओ। जैसे ही आग लगाई तो सब भग गए, केवल दो पड़े रहे। एक बोला देख देख देख आग है आग, दूसरा बोला कोई दिक्कत नहीं अभी ऊपर है। इतने में एक बोला अब आग जलाई गई है तो बीड़ी जला लो, बीड़ी जला लो, जब आग लगाई गई बीड़ी जला लो। तो पता है दूसरा आलसी क्या बोला, थोड़ी देर पड़े रहो यहीं आग गिरेगी यहीं जला लेंगे। पता ये आलसी है। बाद में पता लगा वो लोग दोनों कहां के थे, बोले बिहार के थे। बोले कहां के थे, बोले बिहार के थे। तो आलसी बड़े खतरनाक होते हैं, आलसियों की पूछो ही मत। आलसी तो आलसी, राक्षस भी बड़े आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। एक आया क्या, खाय सिफल अरु

हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े। राक्षस बोले फलों की तो गिनती नहीं होती है पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहाँ गए पेड़, क्या क्या बताएंगे साहब। उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे, सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ। अरे राक्षस बोले हुआ खतरनाक बंदर आया है। क्या नाम है। अब नाम तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया है। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी है, मारता भी है और काटता भी है। तो बोले एक बीच का नाम बोल दो, मरकट। तो बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। और हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। सुनी रावण पठी भटनाना, बात सी सेना आई। हनुमान जी के सामने जो पड़े सो दे तमाचा, हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। अब हनुमान जी ने एक और उपाय किया। क्या, कछु मारस कछु मरदसी। कुछ को तो हनुमान जी ने मारा और अपने रोम खड़े किए। रोम, ये रोम होते ना, रोम कूप को, रोमों को खड़ा किया और रोम इतने तेज नुकीले कर लिए जैसे तुमने कभी देखा हो माताएं कपड़े पे लगे हुए दाग के लिए, दाग के लिए जिस ब्रश का उपयोग करती हैं, बड़ी छीलती हैं बार बार। हनुमान जी ने भी अपने रोम वैसे ही किए और रोम पकड़ करके एक राक्षस को पकड़े और पूरे शरीर में मल दे, छिल जाए बेचारा, हड्डी निकल आए। और फिर हनुमान जी जब मले और खाल छिल जाए, फिर दो राक्षसों को पकड़े और दोनों को ऐसे ऐसे पीटे। राक्षस बोले ये क्या है। हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की बहुत आदत है। तो कीर्तन है, कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिलिया सिधर धूर, कुछ को धूल में मिला दिया। जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है। बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है। बोले आधी मर गई आधी सामने खड़ी। रावण बोला इतना खतरनाक। अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्ख, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। रावण बोला पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे, एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है। लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे, हाउ कैन पॉसिबल। सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूंछ। रावण बोला पूंछ। अरे बोले बंदर है तो पूंछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूंछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है, बिल्कुल बटन दबाता है पूरे आदमी उसमें समेट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है डेढ़ मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूंछ उस एरिया में मत जाओ। बोले ये ही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए, भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। भाई जेसीबी का जो सूपा है वो 10 फीट का है, तो 10 फीट दूरी बहुत जरूरी, लेकिन पूंछ का कोई एरिया थोड़ी फिक्स है, वह तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या। तब तक रावण का बेटा अक्षय, अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, तनक बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। और सुना हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो ये दोबारा दिखेगा कि नहीं। रामर बोले चुप रहो, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता न करो। जैसे ही अक्षय गया सामने, सामने जैसे ही आया तो हनुमान जी ने पूछा नाम। बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा सो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था। हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गया।
बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है, बोले बिल्कुल सही सुना, बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है, बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है विद्वान है तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा, और नाम है इस बेटे का अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए। इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती है। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार, रावण बोले क्या न्यूज है लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया है, जो गया था वो निपट गया है, बचा ही नहीं है। रावण को बड़ा गुस्सा चढ़ा। जब बहुत गुस्सा आई, अब क्या किया जाए, तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा,

0: मेघनाथ। उठो जी पिताजी, जी पिताजी जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ। मेघनाथ कौन?
1: चला इंद्रजी।

मेघनाथ। जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाथ चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है, तो युक्ति निकाली। और ये हनुमान जी से सीखो, क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाद जब हनुमान जी से जीत नहीं पाते

ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर शाम भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए ये हनुमान जी सोचते हैं, कितना बारीक से सोचते हैं। अब बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए, जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत होता, अनुभव बहुत होता। एक बात हम अक्सर बोलते हैं, वो बात बोल के फिर विराम करेंगे। पटना रेलवे स्टेशन से 10-12 लड़के रेलगाड़ी पर चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही, 10-12 लड़के रेलगाड़ी पे चढ़े, ट्रेन का डिब्बा खाली था, एक केवल बूढ़ा आदमी बैठा था। एक लड़का बोला, देख देख देख देख, लिखा है सामने जंजीर है चैन, अगर ये खींच देंगे तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। दूसरा लड़का बोला, चुप, खींच मत देना, सामने लिखा हुआ है बिना वजह चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो लड़के बोले, हम इतने लोग हैं 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, मजा ले लो। बोले चलो निकालो, लड़कों ने रुपया निकाले, किसी ने 100, किसी ने 200, टोटल 1200 रुपया हुए। एक लड़के से कहा, तुम धर लो, इसको रख लो जेब में, 500

0: चैन क्यों खींची है? अब बूढ़े दादाजी तो बूढ़े दादाजी हाथ जोड़ के बोले, साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, हम लुट गए। अधिकारी बोले, क्या हुआ? अब लड़के भी सोच में पड़ गए। अरे बोले, लुट गए, 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने लूट लिए। भरोसा ना हो तो सामने वाले की जेब में चेक करो, 1200 मिलेंगे। अब वो तो इन्हीं के सामने डाले थे। जैसे ही अधिकारियों ने लड़कों को पकड़ा, जेब चेक किया, 1200 रुपया पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए तो दादाजी को 1200 रुपया दे दिए गए। लड़कों को जो है पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तो लड़के बोले, दादा तुम बहुत विचित्र हो। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोले, बेटा ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए।
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने,

0: कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
2: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
11: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
12: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
15: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
1: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
16: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
17: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
0: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं है और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
2: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
18: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
19: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
20: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
25: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
26: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ। भक्तों के लिए बालटाल कैंप पूरी तरह तैयार। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक। 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, तो मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोग। कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद। लाहौल घाटी में भी होम स्टे और होटल फुल बुक। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में 3 दिवसीय नागली मेले की धूम। मानसून के आगमन और कामना और देव आस्था का प्रतीक है ये पर्व।
23: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
26: पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी। आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में टेका मथा, भगवान का लिया आशीर्वाद। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर। विधि विधान से पूजा अर्चना की। संबित पात्रा भी रहे मौजूद। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी में स्नान यात्रा उत्सव की रौनक। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की लंबी कतारें। गर्मी के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के पुरी तट पर भी उत्सव के रंग देखने को मिले। रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृति। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दिव्य दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। कलाकृति में पारंपरिक स्नान अनुष्ठान के लिए 108 कलश भी स्थापित किए गए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की हुई प्रथम पूजा। तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक की अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। इस बार अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल से होती है शुरू। रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, आरएफआईडी कार्ड अनिवार्य। बालटाल के बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक की। यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अमरनाथ बेस स्टेशन के पास सीआरपीएफ तैनात। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर जवानों ने कई जगहों पर चलाया वाहन जांच अभियान। यात्रा मार्ग पर पुलिस कर रही है गश्त। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने नेशनल हाईवे 44 पर सड़क खोलने का ऑपरेशन तेज किया। जल्द सड़क से होगी यातायात शुरू। अमरनाथ यात्रा काफिले का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे क्रॉसिंग उधमपुर पर ड्राई रन चलाया गया। बड़ी संख्या में जवान हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान और पूजा का है विशेष महत्व। इस बार बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और मूल नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से मिलता है वरदान। मंदिरों में पूजा के लिए बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। विधि विधान से पूजा करने पर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में आज रखा जाता है वट पूर्णिमा व्रत। सुहागन महिलाएं बरगद की पूजा कर करती हैं पति की लंबी उम्र की मनोकामना। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा, घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहने की मान्यता। उज्जैन में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक के बाद चंदन और रजत आभूषणों से किया गया दिव्य श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। अमृतसर में राज्य स्तरीय एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम मान और केजरीवाल हुए शामिल। सशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ आयोजित, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि। सशल्स के रोश कैमन स्थित स्टैड लिनिटे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, परेड में सुरक्षा बलों ने सलामी दी। समारोह में भारत और सेशल्स के बीच गहरे रक्षा संबंधों की भी दिखी झलक, भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी दिखाया कदम ताल, भारतीय नौसेना के दो जहाज भी हुए शामिल। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में जाबाजों ने दिखाई करतब, पैराशूट के जरिए आसमान से लगाई छलांग। नेशनल डे समारोह में सैन्य बैंड की धुनों ने भरा जोश, भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचे लोग। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद, लाहौल घाटी में होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भरे। लाहौल घाटी के सुंदर नजारे देखकर खिले पर्यटकों के चेहरे, खूबसूरत वादियों में वाटरफॉल और झील ने बढ़ाया उत्साह। पहाड़ों में बहती नदियों पर रोमांचक जिपलाइन का भी आनंद ले रहे हैं सैलानी, लाहौल घाटी में ट्रैकिंग के लिए भी पहुंचते हैं टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश, शिमला कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवा के साथ बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर चलने का अनुमान, 2 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर। मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में कठुआ पहुंचे पर्यटक। सरथल में सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों का आनंद लिया, तो वहीं अब तक लाखों पर्यटकों ने सुंदरता का दीदार किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, शिकारा राइड का ले रहे हैं लुत्फ। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कोटा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण किया, लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। जम्मू में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भुवनेश्वर में राज्य पुरातत्व विभाग ने आधुनिकीकरण, दस्तावेजीकरण और विकास योजना के लिए लिंगराज मंदिर और लगभग 40 अन्य मंदिरों का सर्वेक्षण किया।
23: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
18: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Tune in Town 2. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
10: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, LG मनोज सिन्हा ने पूजा की 3 जुलाई को विधिवत यात्रा का शुभारंभ। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। मुंबई में जमकर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते हुए दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोग। कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद। लाहौल घाटी में भी होम स्टे और होटल फुल बुक। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में 3 दिवसीय नागली मेले की धूम। मानसून के आगमन और की कामना की गई और देव आस्था का प्रतीक है ये पर्व।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बात करेंगे बाबा अमरनाथ की। आपको बता दें, आज जिनके धाम की वार्षिक पावन तीर्थ यात्रा ठीक चौथे दिन शुरू होने जा रही है। तीर्थ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उससे पहले आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पवित्र तिथि आई है, तो वहीं इस खास अवसर पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की गई है। ये पहली पूजा हर साल पवित्र तीर्थ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को की जाती है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के औपचारिक शुभारंभ से पहले की जाने वाली पहली पूजा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह पवित्र अनुष्ठान बाबा बर्फानी की पूरी यात्रा के निर्विघ्न और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि औपचारिक रूप से बाबा के दर्शन के लिए इस जत्थे इसके बाद रवाना होते हैं। हर साल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल होते हैं। पहली पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेना है, ताकि सभी तीर्थयात्री बिना किसी बाधा या विघ्न के कठिन मार्ग को पार कर सकें। बाबा बर्फानी के धाम पर पहली पूजा और तीर्थ यात्रा की तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफानी, सुने।
1: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहाँ एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से।
0: तो वही हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जम्मू में मौजूद हैं। वो बता रहे हैं जम्मू से पवित्र गुफा के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कितना उत्साह है। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं?
2: जी जी जी जी, बताइए बताइए।
0: क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, पवित्र गुफा के लिए लोग रवाना होने वाले हैं, क्या कुछ इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है?
2: जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर, और जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था है वो यहां से बृहस्पतिवार को रवाना किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, वही जो है यात्रियों के

0: की बात करें, देखिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, वो यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर एक्सरे स्कैनिंग मशीन्स भी हैं और साथ ही में यहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स भी हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से, देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए कतारें बनाई गई है यहाँ पर टीन शेड के जरिए, तो श्रद्धालु जो है एक एक करके इन्हीं कतारों में आएंगे, फिर यहाँ जो है यात्री निवास भवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने से पहले उनको सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा, उनके तमाम सामान की यहाँ पर जाँच होती है, तलाशी होती है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, मेटल डिटेक्टर्स हैं, तो तमाम कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उनको कोई यहाँ पर समस्या ना उठानी पड़े, चाहे वो इंतजामों की दृष्टि से हो या सुरक्षा की दृष्टि से हो। देखिए सुरक्षा की अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा है, कुछ दिन पहले हम यहाँ थोड़े आगे से तस्वीरें दिखा रहे थे लेकिन आज फिलहाल इसको यहाँ सील कर लिया गया है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बंकर लगे हैं और सुरक्षा बल जो है यहाँ भारी संख्या में तैनात है। तो अब अशंखनाद हो चुका है, प्रथम पूजन भी हो चुका है और अब बस जो श्रद्धालु हैं वो व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे बृहस्पतिवार का, क्योंकि बृहस्पतिवार सुबह को श्रद्धालुओं का पहला जत्था यहां से रवाना होगा और शुक्रवार को यानी कि 3 जुलाई को ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से भी और साथ ही में बालटल मार्ग से भी।
1: जी सुनील, यहाँ पर कितने लोगों ने, कितने यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं?
0: देखिए अगर हम देखें जहां तक पंजीकरण की बात है तो कुछ दिन पहले हमने सूत्रों से बात की थी तो 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है पंजीकरण कराया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर ये यात्रा होती है और इस वर्ष जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है और श्रद्धालुओं का आना भी यहाँ जो है शुरू हो चुका है और इसीलिए तमाम यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। समय समय पर यहाँ पर जो अगर हम देखें तो जम्मू नगर निगम की गाड़ियाँ भी आ रही है, पानी जो है साफ पानी पहुँचाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चाक चौबंद सुरक्षा है, CRPF के जवानों ने इस पूरे इलाके को सील कर लिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और साथ ही में अगर मैं आपको बता दूँ कि जो यात्री निवास भवन है वहाँ पर रंग रोगन का कार्य हुआ है, कमरे अच्छे से सजाए गए हैं, वहां पर AC चल रहे हैं, पंखे लगाए गए हैं।
1: अगर आपके आसपास कोई श्रद्धालु हो तो जरा उनसे भी बात कीजिए, अगर कोई श्रद्धालु वहां पर मौजूद हो जरा उनसे बात कीजिए और उनके मन में कितना उत्साह है इस यात्रा को लेकर जरा बताइए।
0: जी फिलहाल अभी जो है कुछ देर पहले यहाँ पर एक श्रद्धालुओं का समूह आया था, हमने उनसे बातचीत की थी, काफी उत्साह उनमें देखा गया था, मैंने वो रिपोर्ट भी भेजी है तो अगर वो रिपोर्ट चलाई जा सके तो आप देख सकते हैं उसमें कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। फिलहाल यहाँ पर श्रद्धालु तो नहीं है लेकिन कुछ देर पहले श्रद्धालुओं का एक समूह आया था यहाँ पर, हमने उनसे बातचीत भी की थी, बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा था। लेकिन मैं आपको यहाँ की व्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए यात्री निवास भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, ये सड़क का इलाका है, सड़क का क्षेत्र और यहाँ पर देखिए टीन शेड बनाए गए हैं, ये कतारें बनाई गई है और इन्हीं कतारों से जो है एक एक करके श्रद्धालु पहुंचेंगे। जगह जगह जो है जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग विभागों ने इस प्रकार के बैनर पोस्टर लगाए हैं जिनमें श्रद्धालुओं को जो स्वागत के लिए ये जो बैनर लगाए गए हैं और साथ ही में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन यानी कि यहां पर ड्रोन नहीं उड़ सकते हैं और यहां पर
1: बिल्कुल सुनील सुरक्षा के तो चाक चौबंद इंतजाम है ही, लेकिन वहां के मौसम का क्या हाल है ये जानना भी बहुत जरूरी है। वहां पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं वैसे तो उनके मन में इतना उत्साह होता है कि मौसम कोई बड़ा बैरियर होता ही नहीं है, लेकिन मौसम के बारे में जरा बताइए।
0: जी मैं आपको बता दूं कि अगर मौसम की बात करें तो जम्मू शहर में इस समय उमस भरी गर्मी है, जिस प्रकार की गर्मी दिल्ली में है उसी प्रकार की गर्मी जम्मू शहर में है, लेकिन कश्मीर घाटी में मौसम सुहावना है, तो इसीलिए जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे यात्री निवास भवन में या दूसरे भवनों में, दूसरे इमारतों में जहाँ पर व्यवस्था रखी गई है श्रद्धालुओं के ठहरने की, रुकने की, वहाँ पर AC लगाए गए हैं, वहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, ठंडा पानी है पीने का है, फ्रिज लगाए गए हैं, तो इसी दृष्टि से ये कदम उठाए गए हैं, ये सुविधाएं दी गई है क्योंकि इस समय जम्मू शहर में उमस भरी गर्मी है और साथ ही में अलग अलग स्थानों पर जो श्रद्धालु अब रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था रखी गई है, कई काउंटर्स बनाए गए हैं यात्री निवास भवन में भी और जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में भी। और अगर हम देखें जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है लखनपुर, जो कि कठुआ जिले में लगातार वहीं से अगर हम देखें तो तमाम जो हैं प्रबंध किए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं, जगह जगह लंगर लगाए गए हैं, जगह जगह जो है पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, और श्रद्धालु यहां आना भी शुरू हो गए हैं। और जो पंजीकृत यात्री हैं जिनका कि पहले जत्थे में नाम है, वो अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
1: बहुत शुक्रिया आपका तमाम।

तमाम जानकारी हमें देने के लिए, तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। बाबा बर्फानी का दर्शन बेहद कठिन माना जाता है। आपको बता दें, भोले के भक्तों को कश्मीर की पहाड़ियों के बीच दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाना होता है। आमतौर पर ये रास्ते वीरान होते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इन रास्तों पर रौनक ही रौनक नजर आती है। दरअसल श्रद्धालुओं के आने से पहले ही देश भर के सेवादार यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे, लंगर और विश्राम की व्यवस्था कर देते हैं। सेवादारों का धर्म तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये तो यात्रा शुरू होने से पहले यहां पहुंच जाते हैं, यात्रा खत्म होने तक यही रहते हैं। इतना कठिन कार्य करने के बाद भी इनके चेहरों पर थकान और तनाव नहीं होता, बल्कि मानव सेवा का सुकून होता है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। ये जय घोष है अनादिकाल से चले आ रहे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगाज का। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्राणित सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी ही है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी झेलनी न पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति भक्ति का आवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
1: यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है, 3 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होने वाली है, लेकिन करने के लिए बहुत काम है, इसलिए हम लोगों को 20-25 दिन पहले ही काम स्टार्ट करना पड़ता है। रेलपत्री पर भंडारा लगता है, उसके लिए नया टीन शेड इस बार तैयार करके वहां से लाए हैं, और इस बार 2 लाख पानी की बोतल रेलपत्री पे बांटने की इच्छा है, और उसके लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा, गोडाउन एक ऊपर भी बनाना पड़ेगा। सुविधा 3 इंच लोग बाग रह भी सकते हैं, उसके बाद लाइट की प्रिपरेशन है, फिर LG साहब के आदेश पे इस बार म्यूजिक सिस्टम पोलो पे लगाने की भी तैयारी है, पूरी कोशिश करी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक लगाओ तो मेल से बराली की तरफ, तो वो कोशिश भी इस बार जारी रहेगी।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सबाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल रास्ते से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 2-3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पानी और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
2: भंडारे में सुविधा खाने की, रहने की, सोने की, और लैट्रिन बाथरूम साफ शुद्ध खाना, और आपके बिस्कुट टॉफी हर चीज से हम संतुष्टि करना चाहते हैं यात्री की। मान लो अगर तबीयत खराब है तो मेडिसिन भी देते हैं, और समय समय पे जैसे यात्री कहीं रास्ते में फंसा हुआ है तो हमारे सेवादार उसको भी सहायता करने जाते हैं।
0: सेवा का सबाब इतना बड़ा होता है कि मुश्किल भरी तैयारियों के बीच इनके चेहरों पर अलौकिक चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ झलकता है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर 28 अगस्त को खत्म होगी। 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा कहती है कि पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी में स्थित बाबा बर्फानी की अनादिकालीन गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक खाइयों के ऊपर से गुजरता है संकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुँच ही जाते हैं।
3: और इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. from breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: और अब खबर आईफिल टावर से जुड़ी हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तेज तूफान के दौरान आईफिल टावर पर बिजली गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काले बादलों के बीच अचानक तेज चमक दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड्स में बिजली सीधे 330 मीटर ऊंचे टावर से टकराती हुई नजर आती है। जाहिर है इस नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आईफिल टावर को ऐसी बिजली झेलने के लिए ही बनाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक आईफिल टावर पर हर साल 5 से 10 बार बिजली गिरती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी ऊंचाई है। बिजली अक्सर सबसे ऊंची धातु की संरचना पर गिरती है क्योंकि उसे वहीं से जमीन तक सबसे आसान रास्ता मिलता है।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip. The next home renovation. Or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
1: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, तो वहीं LG मनोज सिन्हा ने पूजा की 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ. अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम परखने का काम जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने किया मॉक ड्रिल, मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी, कुलगाम हाईवे फिलहाल बंद. स्नान पूर्णिमा पर राजपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान. मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, तो मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग.
13: मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों में पहुंच रहे हैं लोग. कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद, लाहौल घाटी में भी होम स्टे और होटल फुल बुक.
12: हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में 3 दिवसीय नागली मेले की धूम, मानसून के आगमन की कामना और देव आस्था का प्रतीक ये पर्व.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
12: सच कहिए, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिंह. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिले।
13: पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां हुई पूरी। आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में टेका मथा, भगवान का लिया आशीर्वाद।
12: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की हुई प्रथम पूजा। एलजी मनोज सिन्हा ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने NH-44 पर सड़क खोलने का ऑपरेशन तेज किया। जल्द सड़क से शुरू होगी यातायात। उज्जैन में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।

0: अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन।
1: मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में कठुआ पहुंचे पर्यटक। सरथल में सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों का आनंद लिया, तो वहीं अब तक लाखों पर्यटकों ने सुंदरता का दीदार किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कोटा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया पौधारोपण, लोगों से की पेड़ लगाने की अपील।
0: जम्मू में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई, मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। भुवनेश्वर में राज्य पुरातत्व विभाग ने आधुनिकीकरण, दस्तावेजीकरण और विकास योजना के लिए लिंगराज मंदिर और लगभग 40 अन्य मंदिरों का किया सर्वेक्षण। श्रीनगर में पहली पीटीएफ इंडिया ओपन इंटरनेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, देशभर के हजारों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो शिविर का आयोजन हुआ, डीएम ने बच्चों को पिलाया पोलियो की दवा।
1: श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर हुआ रिलीज, 28 अगस्त को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, 3 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। तीन जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे शर्वरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट, कहा दर्शकों ने फिल्म को अपनाया। एक्टर जैकी श्रॉफ ने खाने के लिए पान के पत्ते पर कथा लगाते आए नजर, तो वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज व बर्फानी की प्रथम पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने की पूजा अर्चना, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ।
1: स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान।
0: मुंबई में जमकर बरस रहे हैं मानसूनी बादल, बारिश के वजह से मरीन ड्राइव पर मौसम का मजा लेते दिखे लोग, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब भी मानसून का जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज आंधी के साथ हो सकती है हल्की बारिश।
1: मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोग, तो वहीं कश्मीर घाटी में सैलानियों से गुलजार हुई घाटी।
0: वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में 3 दिवसीय नागली मेले की धूम, मानसून के आगमन की वजह से कामना और देव आस्था का प्रतीक ये पर्व।
1: जुलाई आने में 1 दिन बाकी है और ये जुलाई सिनेमा लवर्स के लिए किसी खास ट्रीट से कम नहीं होने वाला है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं।
0: दरअसल जुलाई में बड़े पर्दे पर एक के बाद एक धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आलिया भट्ट की अल्फा, कॉमेडी का डबल धमाका धमाल 4 और हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे समेत कई बड़ी फिल्में जुलाई को सुपरहिट बनाने के लिए तैयार।
1: तो वहीं देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करती है और कौन बॉक्स ऑफिस का नया बादशाह बनकर उभरता है। तो अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 21 जुलाई हर हफ्ते सिनेमा घरों में मनोरंजन का महाधमाका होने वाला है।
3: तुम्हें इस काम में डर का सामना करना पड़ेगा।
4: ये ना मुनी कौन है?
5: अबे तू कौन है?
6: फ्रैंक प्लीज, मैं कहीं और नहीं जा सकता।
3: पर लोगों का प्यार नहीं।
0: तो देखिए, जुलाई का महीना आपके लिए एंटरटेनमेंट की एक शानदार और फील गुड डोज लेकर आ रहा है। अगर आप भी वीकेंड पर परिवार या दोस्तों के साथ सिनेमा घरों का रुख करना पसंद करते हैं तो तैयार हो जाइए।
1: एक्शन, कॉमेडी और हॉलीवुड के एडवेंचर से सजी कई बड़ी फिल्में इस महीने बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं। आलिया भट्ट के एक्शन अवतार से लेकर अजय देवगन की कॉमेडी तक जुलाई में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है।
7: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे। किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए।
8: ये हो क्या रहा है मुझे?
9: बस जाना मुझे स्पाइडी।
10: Hi boys.
11: What's up, Alpha. Alpha program uska junoon hai aur jo bhi uske raaste mein aata hai wo use maar deta hai.
12: बड़े पर्दे पर जून के जानदार सफर के बाद अब बारी है जुलाई में फिल्मों के मॉनसून की, जिसमें दर्शकों को एक से एक शानदार फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। जुलाई में फिल्मों की बरसात के साथ बड़े सितारों, बड़े बजट के बीच बड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। जुलाई में जहां अल्फा का दमदार एक्शन होगा,
3: एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था,
12: तो वहीं धमाल 4 में कॉमेडी और रोमांच का मजेदार तड़का भी होगा। कहीं रोमांस का रंग तो कहीं नए अंदाज में दिखेगा हॉरर। तो अब सबको इंतजार है जुलाई के धमाल का, और बॉक्स ऑफिस की धड़कन 3 जुलाई से होगी तेज। जुलाई को आलिया भट्ट की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा दुनिया भर के सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। यशराज फिल्म की इस फिल्म का दर्शकों को कई दिनों से इंतजार है। जासूसी की दुनिया के रहस्य और रोमांच की चाशनी में लिपटी इस मूवी में सबकी नजरें आलिया के दमदार किरदार पर है। अल्फा इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
12: वही अगर आप बारिश में मस्ती का मजा लेना चाहते हैं, तो सिनेमा हॉल में कमाल दिखाने आ रही है फिल्म धमाल। अपने चौथे सीजन में फिल्म पुराने चटकारों के साथ एक नई कहानी के स्वाद का मजा देगी। फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। फिल्म में कुछ नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। हॉलीवुड के दीवानों को भी जुलाई मनोरंजन से भिगोने को तैयार है। स्पाइडरमैन के दीवानों के लिए ये खुशखबरी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जुलाई के अंतिम हफ्ते में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में नई चुनौतियों से जूझते नजर आएंगे पीटर पार्कर।
13: और तुमसे वो छिप नहीं सकता।
12: OTT के दस्तरखान पर भी आपको कॉमेडी और थ्रिलर का तड़का मिलेगा। OTT पर प्रीतम और पेट्रो हॉट स्टार पर 3 जुलाई को रिलीज होंगी। राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों वाला फ्लेवर लेकर अब OTT पर आने वाले हैं। उनकी नई वेब सीरीज प्रीतम और पेट्रो आ रही है, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना डेब्यू करने वाले हैं। वीर के अलावा अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कलाकार शामिल है।
14: ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती।
12: तो अब अभी हो जाइए तैयार जुलाई में फिल्मों का जलवा देखने के लिए। फिल्मों का रोमांच, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और ड्रामा, आपको बड़े पर्दे पर सब कुछ नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: ये हमें बचाएगा।
1: जुलाई का महीना यानी एंटरटेनमेंट का महामुकाबला। इस महीने बड़े पर्दे पर एक के बाद एक कई बिग बजट फिल्म्स रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन इस रेस की शुरुआत जिस फिल्म से होने जा रही है उसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अल्फा की, जो कि 3 जुलाई को रिलीज होगी, जिसमें पहली बार दो लेडी सुपरस्टार्स जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। मूवी के प्रमोशन के लिए आलिया समेत पूरी टीम लगातार एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रही है। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी अपनी मूवी अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर भी पहुंच रही हैं।
1: तो वहीं इस दौरान दोनों दिन भर आयोजित कई प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सिनेमा घर से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक फिल्म की टीम दर्शकों और युवाओं से रूबरू होंगी। इससे पहले आलिया और शर्वरी दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने फैंस के साथ खास बातचीत की और मूवी को लेकर फैंस में खास उत्साह भी देखने को मिला।

0: तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो।
1: अल्फा अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है, मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे? सीधा अपने जंगल का शेर है वो।
0: शुरू करो अग्नि परीक्षा।

0: आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म अल्फा जुलाई के पहले ही शुक्रवार यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। जिसे लेकर फैंस में भारी उत्साह है। फिल्म के ट्रेलर से लेकर गानों तक हर अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब पूरी स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में जुट चुकी है। हाल ही में फिल्म के लीड स्टार आलिया भट्ट और शर्वरी समेत पूरी टीम देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, जहां फैंस का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही सितारों ने एंट्री ली, फैंस की भीड़ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्टार कास्ट ने थिएटर में फैंस के साथ मूवी का ट्रेलर देखा और फिर फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैंस के बीच अल्फा का अच्छा खासा क्रेज है और फिल्म की रिलीज से पहले प्रमोशन के सिलसिले ने भी रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म के लीड स्टार आलिया भट्ट और शर्वरी अपनी फिल्म के प्रचार के लिए जयपुर पहुंच रही हैं और दिन भर कई खास प्रमोशन इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। फिल्म की टीम ने प्रमोशन को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। सिर्फ सिनेमा घरों तक ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आलिया और शर्वरी युवाओं से सीधे रूबरू होंगी। फैंस के साथ बातचीत, सेल्फी, फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा करेंगी। अल्फा यशराज फिल्म की चर्चित स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दो महिला जासूस लीड रोल में है। इससे पहले इसी यूनिवर्स में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में बॉबी देओल विलन की भूमिका में नजर आएंगे। वैसे आलिया और शर्वरी ने इस फिल्म में दमदार रोल के लिए महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेनिंग वीडियो में दोनों बॉक्सिंग, पुशअप, केटबेल स्कीइंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। फिल्म में दमदार और एक्शन से भरपूर किरदार निभाने के लिए दोनों ने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, एक तरफ फिल्म अल्फा का जोरदार प्रमोशन हो रहा है तो दूसरी तरफ धमाल 4 के प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट मोर्चा संभाले हुए है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस रितेश देशमुख और अंजलि दिनेश आनंद एक मॉल में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे।
2: आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने अपने गुलाबी साड़ी गाने पर जमकर डांस भी किया। इस मेगा इवेंट में तमाम फैंस भी मौजूद रहे जिन्होंने स्टार कास्ट के साथ फुल मस्ती की है।
1: तो ये तस्वीरें देखिए आप, धमाल 4 के प्रमोशन के लिए धमाल 4 की टीम से रितेश देशमुख एक मेगा इवेंट शो में पहुंचे अपनी लीड एक्ट्रेस के साथ। वहां पर गुलाबी साड़ी में उन्होंने डांस भी किया।

0: और चलिए अब बात करेंगे सलमान खान की। आखिर अपने घर से बेघर क्यों हो रहे हैं सलमान खान, इसके बारे में आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
1: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का नाम लेते ही जहन में सबसे पहले बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर उभरती है। पिछले 50 सालों से ये अपार्टमेंट सलमान खान की पहचान और उनके करोड़ों फैंस के लिए सुपरस्टार की एक झलक पाने का एक ठिकाना रहा है। हर ईद पर इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से भाईजान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। अपनी बर्थडे के मौके पर सलमान इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर कभी केक कट करते हैं तो कभी फैंस को हाथ हिलाकर शुक्रिया कहते हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इसी अपार्टमेंट में सालों से रह रहा है। सलमान के भाई अरबाज और सुहेल हों या फिर उनके माता पिता, गैलेक्सी मतलब बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान का घर। लेकिन अब बहुत जल्द भाईजान का पता बदलने वाला है क्योंकि चर्चा है कि सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने एक नए और आलीशान बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। समंदर किनारे बन रहे इस 6 मंजिला आशियाने में सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। जानकारी के मुताबिक सलमान खान का ये नया घर बांद्रा के ही चिंबई इलाके में बनेगा जो गैलेक्सी अपार्टमेंट से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इसके निर्माण के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 16 जून को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो समंदर की लहरों को निहारता ये नया आशियाना सलमान की माँ सलमा खान के नाम वाली जमीन पर आकार लेगा। इस प्लॉट पर 1956 से पहले की एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी जिसे जर्जर हालत के चलते गिरा दिया गया है। अब इसकी जगह पर एक शानदार 6 मंजिला इमारत खड़ी की जाएगी। इस नए घर में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग समेत 6 मंजिले होंगी। हालांकि इस नए आशियाने को लेकर अभी तक सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड के बाजार में चर्चाएं आम हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की वो बालकनी भले ही अब सूनी हो जाए लेकिन भाईजान का जलवा इस नए 6 मंजिला महल में और भी 2 गुना होने वाला है। घर बदल रहा है लेकिन सलमान का स्वैग और उनके चाहने वालों का प्यार बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखना ये है कि आने वाली ईद पर फैंस अपने सिकंदर की एक झलक पाने के लिए समंदर किनारे वाले इस नए आशियाने के बाहर कैसे जुटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना माना जाता है। पहले क्रिकेट फील्ड में अपनी दादागिरी दिखाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टीवी की दुनिया में दादागिरी करते नजर आएंगे। दरअसल सौरव गांगुली अब एक नए किरदार और नए प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रहे हैं। ये किरदार है बिग बॉस का और प्लेटफॉर्म है स्टार जलसा। दरअसल सौरव गांगुली को बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 के होस्ट की कमान दी गई है। तो अब मिड जुलाई से दादा को आप बिग बॉस की पिच पर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए देखेंगे। 10 साल पहले बिग बॉस सीजन 2 टेलीकास्ट किया गया था और अब 10 साल बाद बिग बॉस बांग्ला की वापसी हो रही है।
2: क्रिकेट के पिच पर छक्के चौकों से हुकूमत करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब एंटरटेनमेंट की पिच के बिग बॉस बनेंगे। क्रिकेट की दुनिया के दादा का नया अवतार होगा, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड के हीरो सलमान खान का बिग बॉस में होता है। मतलब ये कि जो काम बिग बॉस में सलमान खान करते हैं ठीक वही काम अब सौरव गांगुली करेंगे बिग बॉस के बांग्ला वर्जन में। रियलिटी शो बिग बॉस बांग्ला की कमान सौरव गांगुली को सौंपी गई है और इसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में सौरव गांगुली को उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर छक्का मारते हुए दिखाया गया है। प्रोमो के आखिर में सौरव गांगुली कहते हैं कि मैं इसे बेस्ट बनाने के लिए जान लगा दूंगा। करीब 3 हफ्ते पहले बिग बॉस बांग्ला का पहला प्रोमो रिलीज किया गया था जिसमें प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरव गांगुली की तुलना टाइगर से की गई थी, जो कि वो कहे भी जाते हैं। टाइगर को दिखाया गया था, उन्हें बैट बॉल खेलते हुए भी दिखाया गया था लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। तब सौरव गांगुली के शो को होस्ट करने को लेकर किसी को संशय भी था तो वो अब बिग बॉस बांग्ला के लेटेस्ट प्रोमो ने दूर कर दिया है। बिग बॉस बांग्ला का ये 3रा सीजन होगा। करीब 10 साल पहले बिग बॉस बांग्ला का 2रा सीजन टेलीकास्ट हुआ था। बिग बॉस बांग्ला का 2रा सीजन 2016 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे बंगाली एक्टर और प्रोड्यूसर जीत ने होस्ट किया था। बिग बॉस बांग्ला का पहला सीजन 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे मिथुन चक्रवर्ती ने होस्ट किया था। अब पूरे 10 साल बाद गांगुली के साथ बिग बॉस बांग्ला वापस लौट रहा है। इस शो का प्रसारण स्टार जलसा पर किया जाएगा। तारीख का ऐलान तो भी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के मध्य से इसे ऑन एयर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब बात मॉनसून की कर लेते हैं। एक तरफ पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाके अब भी तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं। मॉनसून की देरी से दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। तेज धूप और धीमी हवा की वजह से उमस बढ़ गई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इसी हफ्ते मॉनसून दस्तक दे सकता है। 4 जुलाई से मॉनसून के आने की पूरी संभावना है।

0: रविवार शाम को आसमान में घने काले बादल छाए तो लगा भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं भी चली। तेज हवाओं से धूल और आंधी का माहौल रहा, लेकिन जिस बारिश का दिल्ली वासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी, शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, यानी गर्मी और उमस से आज भी राहत की उम्मीद नहीं है।
1: दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीटवेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडवाइनिंग एरिया बिहार का नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले एक से दो दिनों के दौरान जो है हीटवेव कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीटवेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी।
0: सामान्य तौर पर मॉनसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मौसम की मौजूदा परिस्थितियां बनी रहीं, तो राजधानी दिल्ली में जल्द मॉनसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मॉनसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम की परिस्थितियां अगर इसी तरह अनुकूल रहीं, तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकेगी। 2 से 4 जुलाई के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हवा की गति तेज होने का अनुमान है। साथ ही मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के टकराव के कारण मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है। इसी वजह से तापमान और उमस तो बढ़ी, लेकिन अच्छी तरह बारिश नहीं हो सकी। अब बारिश क्यों नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली के ऊपर शुष्क और नम हवाओं के मिलने से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो पा रही। बादल दोपहर में तब बनते हैं जब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है। इसलिए वास्तविक और फील्ड्स लाइक तापमान दोनों असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं। तो मॉनसून की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बेशक कुछ दिनों की देरी से हो रही है, लेकिन 4 जुलाई से मॉनसून के आने की पूरी संभावना है। और उससे पहले 1 जुलाई से कमोबेश हर रोज दिल्ली में न केवल बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, बल्कि तेज हवाओं या धूल भरी आंधी के साथ बारिश के भी पूरे आसार हैं। यानी मॉनसून से पहले प्री मॉनसून की बारिश राहत का पैगाम ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ओडिशा के मयूरभंज में एक कलाकार की प्रदर्शनी चर्चा में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस कलाकार का नाम है कुमार मिसाल, और इनकी खासियत यह है कि जिस पेपर पर अपना आर्टवर्क ये तैयार करते हैं वो पेपर भी खुद बनाते हैं, वो भी खेती के कचरों से। और इनकी कलाकृतियों में खास तौर पर कृषि जीवन की झलकियां भी मिलती हैं।
0: अगर आपसे कहा जाए कि यह चित्रकारी वेस्ट टू वंडर का सबसे अनूठा और नायाब उदाहरण है, तो आप शायद यकीन न कर पाए, लेकिन ये सच है और इस सच को जी रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के कलाकार कुमार मिसाल, जो एक खास तरह के चित्रकारी के लिए मशहूर हैं। ये खेती के कचरों से पहले पेपर तैयार करते हैं और फिर उसी पेपर पर चित्रकारी करते हैं। अपनी भावनाओं, सोच और उम्मीद को बड़ी बारीकी से इन्हीं कागजों पर उतार देते हैं।
3: कि मैंने बचपन में देखा है कि वेस्टेज फार्मिंग सोसाइटी में या फिर मेरे घर में कोई चीज़ें होती नहीं थी, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रक्रिया करके नई चीज़ बनाई जाती थी। तो यही चीज़ मेरे काम में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी। मेरे फार्म में जो भी वेस्टेज फाइबर्स है या फिर चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसके कागज़ बनाना और कागज़ और कलाकृति बनाना मैंने शुरुआत किया।
0: खास बात तो यह है कि ये न सिर्फ पेपर बनाने में खेती के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कागज पर जो कुछ उकेरते हैं उनमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है।
4: खेती में जो कुछ भी यूज होता है, छोटी भी चीज वेस्ट ना हो, वो माइंडसेट को लेके वो कॉर्न हस्क, बनाना फाइबर, राइस हस्क, जैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेके उनके साथ उन्होंने मास्टरी बनाई है, एक्सपर्टीज बनाई है पेपर बनाने में, और उसके ऊपर वो चित्रकार करते हैं।
0: कुमार की इन कलाकृतियों में कृषक जीवन की चुनौतियां, उनके संघर्ष हैं, उनकी जीवटता है। वुडकट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे किसानों के परिवारों पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज भी करते हैं और उनके प्रवासन और विस्थापन के मुद्दों को उजागर भी करते हैं, और इस तरह वो प्राकृतिक कृषि सामग्री और खेती के कचरों से कथाएं रचते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं।
3: वो जो कलाकृति है उसके ऊपर या जो कागज है उसके ऊपर जो सोसाइटी में फार्मर के इश्यूज है, जो उनका संघर्ष है, वो पेंट करने का काम मैं करता हूँ सर। और मैं जो कागज़ बनाता हूँ और जो फाइबर बनाता हूँ वो एसिड फ्री और अल्कोहल फ्री होता है, तो उसके वजह से होता ये है कि उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि उससे दिमाग या कीटक लगने से थोड़ा बचता है वो। तो ये इंस्पिरेशन और ये जो प्रभाव है वो मुझे फार्मर के रूटीन से आया हुआ है।
0: ओडिशा के मयूरभंज में कुमार विशाल के चित्रों की ये प्रदर्शनी न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है बल्कि हैंडमेड इको पेपर क्रिएशन के जरिए ग्रीन आर्ट को बढ़ावा भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करते हैं हरियाणा के एक दादाजी की। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ स्काई डाइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अंकित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम अपने बाबा जी को ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कराने के लिए लाए हैं। पिछली बार 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार 18,000 फीट से करवा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोग हरियाणा के इस बुजुर्ग के जज्बे और दादागिरी की खूब तारीफ कर रहे हैं।

0: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए बाबा बर्फानी की पहली पूजा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip. The next home renovation. Or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: सेशल्स में नवशक्ति विनायकर मंदिर में पीएम ने किए दर्शन, भारतीय समुदाय से मुलाकात की, महात्मा गांधी को भी किया नमन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, LG मनोज सिन्हा ने की पूजा अर्चना, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम पर रखने का काम जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल, मुस्तैद दिखे सुरक्षा कर्मी, कुलगाम हाईवे फिलहाल बंद।

0: बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान।
1: मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं लोग। कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद। लाहौल घाटी में भी होमस्टे और होटल फुल बुक।
0: प्रचंड गर्मी की चपेट में यूरोपीय देश। पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा असर। फ्रांस के 54 इलाकों में भीषण गर्मी का आलम।

0: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां पर आज जगन्नाथ स्नान उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव केवल एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशेष स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है।
1: इसके बाद वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधि विधान के साथ उनका पवित्र अभिषेक किया जाता है। महाप्रभु गजानन रूप में दर्शन देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह से शुरू हुआ ये उत्सव देर शाम तक चलता है
0: और हर साल इसी तरह लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
2: भगवान जगन्नाथ की नगरी का कण कण आज आस्था और भक्ति के रस में सराबोर है। हर श्रद्धालु के हृदय में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर है तो जुबां पर जय जगन्नाथ, जिसका उद्घोष पूरी पुरी में गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले आज का दिन बेहद खास है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे जगन्नाथ स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल की तरह इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही पुरी पहुँच चुके हैं। भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तड़के से ही यहां उत्सव और उल्लास का माहौल है। उत्सव की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पाहांडी विधि से हुई, जिसमें भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से भव्य जुलूस के साथ बाहर लाकर मंदिर परिसर के खुले स्नान मंडप पर प्रतिष्ठित किया जाता है।

0: सुबह 9:30 से 11:30 बजे यानी 2 घंटे तक जलाभिषेक की परंपरा निभाई जाएगी। इस परंपरा के तहत स्नान मंडप पर 108 पवित्र और सुगंधित कलशों के जल से महाप्रभु का महाभिषेक किया जाएगा। इसे जललागी रीति कहा जाता है। ये कोई साधारण जल नहीं होता, बल्कि मंदिर परिसर के सुना कुएं यानी कि पवित्र कुएं से निकाला जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक महाप्रभु को गजानन के दिव्य रूप में सजाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपने एक गणेश भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये रूप धारण किया था। साल में सिर्फ आज ही के दिन भक्त भगवान का ये अनोखा रूप देख पाते हैं। देर शाम तक प्रभु अपने भक्तों को इसी हाथी या गजवेश के रूप में दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इस रूप के दर्शन पाकर हर भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के स्नान उत्सव के बाद एक और दिलचस्प परंपरा निभाई जाएगी। 16 जुलाई को शुरू होने जा रही रथ यात्रा से पहले भगवान पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक परंपरा के मुताबिक महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इस वजह से उन्हें 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। 30 जून से 14 जुलाई तक मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान अनासर घर यानी विश्राम कक्ष में एकांतवास करेंगे, जहां जड़ी बूटियों और विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से उनका उपचार किया जाएगा। 15 जुलाई को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके अगले दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 24 जुलाई को होगा। इस बीच जगन्नाथ मंदिर के रथखला में रथ निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 14 से 15 जुलाई तक रथ निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 16 जुलाई को मुख्य अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ इन तैयार रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो धार्मिक मान्यताओं में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की हो तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पवित्र नदियों में स्नान और दान का दिन नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि, विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का भी महापर्व है।
2: तो वहीं आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों का बेहद अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन के पुण्य फल को कई गुना बढ़ा रहा है।

ईश्वर की आराधना का कोई एक रूप नहीं होता, लेकिन जब भक्ति का जुड़ाव प्रकृति से हो जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। धार्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि हमेशा से चंद्रमा की पूर्णता और मन की शांति का प्रतीक रही है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर जल का महत्व सबसे अधिक होता है। भीषण गर्मी के इस महीने में जब भक्त पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समस्पदक होते हैं। चंद्रमा इस तिथि में स्वामी है, इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना

प्रार्थना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है। लेकिन इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा महामुहूर्त है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को लंबे अरसे से था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर सिद्धि योग, साध्य योग और त्रिघरी योग जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोग के बीच किया गया कोई भी दान, चाहे जल से भरे कलश, सत्तू, अन्य या वस्तु हो, उसका पुण्य काफी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। भक्तों की मौजूदगी में पुजारियों ने महाकाल का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया।
1: देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया और पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और पुण्य के भागे बने।

0: चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की, जिनके धाम की वार्षिक पावन तीर्थ यात्रा आज से ठीक चौथे दिन शुरू होने जा रही है। तीर्थ यात्रा की तैयारियां अब फिलहाल पूरी हो चुकी है।
1: तो वहीं उससे पहले आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पवित्र तिथि आई है और इस खास अवसर पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में पहली पूजा की गई। ये पहली पूजा हर साल पवित्र तीर्थ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को की जाती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के औपचारिक शुभारंभ से पहले की जाने वाली प्रथम पूजा का बहुत गहरा और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है।
0: ये पवित्र अनुष्ठान बाबा बर्फानी से पूरी यात्रा के निर्विघ्न और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि औपचारिक रूप से बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद रवाना होते हैं। हर साल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल होते हैं। प्रथम पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि सभी तीर्थयात्री बिना किसी बाधा या अनहोनी के कठिन मार्ग को पार कर सके।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
3: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माए, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
2: बुलावा आ गया,
4: हाथ पकड़ के बुला लिया।
2: बोले ना, हमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
3: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है।
1: और यहाँ लंच टाइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लंच टाइम में। बात फुटबॉल की कर लेते हैं। अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में फुटबॉल के जोश और दीवानगी को बयां करती एक तस्वीर दिखाई थी। यहां ब्राजील के फैंस ने मशहूर वाटरफॉल पार्क में जमकर जश्न मनाया। ड्रम की आवाज के बीच ब्राजील के खास तेज संगीत के साथ लैटिन अमेरिकी देश के फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था।
2: वो चिल्ला रहे थे, कूदो जमीन छोड़ो, वही कूदे जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बार में जापानी फैंस जमा हो गए थे। जाहिर है फुटबॉल का रोमांच सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं है, मैदान के बाहर फैंस के बीच भी जबरदस्त होड़ मची हुई है और फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह पूरे शबाब पर है।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
2: देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
4: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: सेशल्स में नवशक्ति विनायकर मंदिर में पीएम ने किया दर्शन, तो वहीं भारतीय समुदाय से मुलाकात की महात्मा गांधी को भी नमन किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा की, 3 जुलाई से विधिवत यात्रा का शुभारंभ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम पर रखने का काम जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल, मुस्तैद दिखे सुरक्षा कर्मी कुलगाम, हाईवे फिलहाल बंद। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। मैदानों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों में पहुंच रहे हैं लोग। कश्मीर के कठुआ में बानी घाटी में बनी सैलानियों की पहली पसंद, लाहौल घाटी में भी होम स्टे और होटल फुल बुक।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की प्रथम पूजा हुई, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा भोलेनाथ की पूजा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने की मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ बेस स्टेशन के पास सीआरपीएफ तैनात, चप्पे चप्पे पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर जवानों ने कई जगहों पर चलाया वाहन जांच अभियान, यात्रा मार्ग पर पुलिस कर रही है लगातार गश्त। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने नेशनल हाईवे 44 पर सड़क खोलने का ऑपरेशन तेज किया, जल्द सड़क से शुरू होगा यातायात। अमरनाथ यात्रा काफिले का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे क्रॉसिंग उधमपुर पर ड्राई रन चलाया गया, बड़ी संख्या में जवान हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां हुई पूरी, आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टेका मत्था, भगवान का लिया आशीर्वाद। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, विधि विधान से पूजा की, संबित पात्रा भी मौजूद रहे। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में स्नान यात्रा उत्सव की रौनक। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की लंबी कतारें, गर्मी के बावजूद भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के पुरी तट पर भी उत्सव के रंग देखने को मिले, रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृति। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दिव्य दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, कलाकृति में पारंपरिक स्नान अनुष्ठान के लिए 108 कलश भी स्थापित किए गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान और पूजा का है विशेष महत्व, इस बार बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और मूल नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से मिलता है वरदान, मंदिरों में पूजा के लिए बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व, विधि विधान से पूजा करने पर मनोकामना पूरी होती है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में आज रखा जाता है वट पूर्णिमा व्रत, सुहागन महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं, पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा, घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहने की मान्यता। उज्जैन में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म, आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

0: अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। अमृतसर में राज्य स्तरीय एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मान और केजरीवाल हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भव्य आरती तो वहीं शालिनी की डोली निकाली गई। लोगों ने भव्य स्वागत किया। शूलिनी मेला दिखा तो वहीं आस्था परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। मस्जिद के बाहर से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की फूलों की वर्षा। धार्मिक परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। लोगों ने की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। हिमाचल प्रदेश शिमला में सांसद अनुराग ठाकुर ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। लोगों से पौधे लगाने की अपील की। सशस्त्र की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में पीएम मोदी बने मुख्य अतिथि। सशस्त्र के रॉश कैमन में स्थित स्टैड लिनिटे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। परेड में सुरक्षा बलों ने सलामी दी। समारोह में भारत और सशस्त्र के बीच गहरे रक्षा संबंधों की दिखी झलक। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी किया कदम तार। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में जाबाजों ने दिखाए करतब। पैराशूट के जरिए आसमान से लगाई छलांग। नेशनल डे समारोह में सैन्य बैंड की धुनों ने भरा जोश। भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचे लोग। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद। लाहौल घाटी में होटल और होमस्टे लगभग पूरी तरह भरे। लाहौल घाटी के सुंदर नजारे देखकर खिले पर्यटकों के चेहरे। खूबसूरत वादियों में वाटरफॉल और झील ने बढ़ाया उत्साह। पहाड़ों में बहती नदियों पर रोमांचक जिपलाइन का भी आनंद ले रहे हैं सैलानी। लाहौल घाटी में ट्रैकिंग के लिए भी पहुंचते हैं टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश। शिमला कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवा के साथ बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर चलने का अनुमान। 2 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर। मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। बड़ी संख्या में कठुआ पहुंचे पर्यटक। सरथल में सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों का आनंद लिया। अब तक लाखों पर्यटकों ने सुंदरता का दीदार किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कोटा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया पौधारोपण। लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। जम्मू में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भुवनेश्वर में राज्य पुरातत्व विभाग ने आधुनिकीकरण दस्तावेजीकरण और विकास योजना के लिए लिंगराज मंदिर और लगभग 40 अन्य मंदिरों का सर्वेक्षण किया। श्रीनगर में पहली पीटीएफ इंडिया ओपन इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के लिए दिए निर्देश। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो शिविर का आयोजन किया गया, डीएम ने बच्चों को पिलाया पोलियो की दवा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए शानदार पहल की गई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दी जा रही है फ्री कोचिंग। फ्री कोचिंग से छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में रहने वाले छात्रों के सपनों को मिले पंख, हाईटेक सुविधाओं के साथ करवाई जा रही है इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत कई परीक्षाओं की तैयारी। अहमदाबाद की 8 साल की तक्ष्वी वघानी ने स्केटिंग में रचा इतिहास, सबसे कम ऊंचाई पर लिम्बो स्केटिंग में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिटिल वंडर तक्ष्वी वघानी ने जमीन से महज 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 25 मीटर के ट्रैक को सफलतापूर्वक किया पार, कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ा। चार साल की उम्र में तक्ष्वी वघानी ने शुरू की थी स्केटिंग, इससे पहले 10 मीटर की दूरी के लिए इसी ऊंचाई का बनाया था रिकॉर्ड। पंजाब के युवाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की बड़ी सौगात, राज्यभर के एक साथ 500 आधुनिक जिमों का उद्घाटन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान, राज्य में जिमों की संख्या 3000 तक की जाएगी, 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में 3100 खेल मैदान भी जनता को समर्पित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में प्रस्तावित एयरपोर्ट की साइट का जायजा लिया। असम में कृषि मंत्री पीयूष हजारिका का खेतों में किसानों के बीच दिखा अनोखा अंदाज, धान रोपाई में शामिल होकर किसानों को आधुनिक खेती की पद्धति के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की बढ़ रही है सरकार, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में शारदा नदी घाट बाईपास का निरीक्षण किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 6 दिनों में खत्म हो सकता है मॉनसून का इंतजार, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। जम्मू के मैदानी इलाकों में आज बारिश का अलर्ट, कुछ जगहों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में आज गर्मी से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश का अनुमान। राजस्थान में कई इलाकों में उमस से भरा मौसम, झुंझुनू समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। 2 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश होने के आसार, कोटा और उदयपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम रोमांस का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Order for Jennifer C.
4: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
3: Yeah. Can you handle that much caffeine?
4: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Oh, really? That's great.
4: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Yeah, you just said that.
4: Did you say I just said that?
3: Yeah, I'm cutting you off.
4: I can't have any more? Why not?
5: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। तीर्थ यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 41 लाख को पार कर चुका है। तो वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है।

0: इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चाहे भगवान बद्री विशाल का धाम हो या फिर बाबा केदारनाथ का दरबार, भक्तों की भारी भीड़ है। यात्रा मार्ग जय बद्री विशाल, जय केदार के जय घोष से गूंज रहे हैं। करीब दो महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में अब तक 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है। अब तक 13,45,160 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, तो वहीं 13,42,609 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 6,63,778 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं 6,19,210 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,51,687 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: सेशल्स में नवशक्ति विनायकर मंदिर में पीएम ने किए दर्शन, भारतीय समुदाय से मुलाकात की, महात्मा गांधी को किया नमन, दिल्ली के लिए रवाना। सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने किया अपनी ऑपरेशनल तैयारी और खेल भावना का प्रदर्शन। मंगोलिया के उलान बटार में फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहा है युद्धाभ्यास। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, LG मनोज सिन्हा ने पूजा की 3 जुलाई को विधिवत यात्रा का शुभारंभ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पर रखने का काम जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की मुस्तैद, दिखे सुरक्षा कर्मी, कुलगाम हाईवे फिलहाल बंद। स्नान पूर्णिमा पर राजपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का मां अभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से कराया जाएगा स्नान। प्रचंड गर्मी की चपेट में यूरोपीय देश, पश्चिम यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा असर, फ्रांस के 54 इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल कैमरा डे। अब ये जो कैमरा है ना, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता बल्कि हमारे लिए उन लम्हों को हमेशा के लिए संजो के रखता है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। और आपके फेवरेट टीवी वाले सितारे जितनी मेहनत कैमरा के सामने करते हैं ना, उतनी ही मस्ती होती है कैमरा के पीछे। तो आज तो कैमरे के नजरिए से ही हम दिखाएंगे आपको आपके पसंदीदा सितारे और उसके साथ साथ आपके पसंदीदा शोज का हर अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
12: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, शुरू होंगी अरमान और अभीरा की शादी की रस्में, मेहंदी में लगेगा नच का तड़का।
13: हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां चिटुर गईयां।
12: खतरे में पड़ेगी रूहानी, गुरु बनेगा रूहानी का रक्षक। जगधात्री और शिवाय के रोमांस पर लगेगा बंदूक ड्रामे के ट्विस्ट का ब्रेक।
5: मैंने तेरे लिए ही सात रंग।
12: सीरम मन अति सुंदर में शुरू होगी अंताक्षरी, घर में छाएगा खुशी का माहौल।

0: की
1: घर वाले करेंगे रूही की याददाश्त वापस लाने की कोशिशें। क्या मिलेगी उन्हें सफलता? खतरे में विक्रांत की जान, होते होते रह जाएगा मन्नत और विक्रांत का आमना सामना। और सीरियल सैराब की रुषा यानी कि रुचि संग करेंगे डांसिंग डे आउट। देखेंगे उनका अनोखा अंदाज सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: इश्क के जुनून की ये कहानी, इश्क जुनूनी, जहाँ है गुरु और रूहानी की लव स्टोरी। लेकिन अब तो आ गई है वहां पे तेजू बन के इनकी सौतन। क्या तेजू लेकर आएंगी इस कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट? वेल, ट्विस्ट की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो मुझे लग रहा है रूहानी की आंखों में आएंगे ढेर सारे आंसू। लेकिन हमें है रूहानी पर पूरा विश्वास, वो कर ही लेंगी इस सौतन का सामना। लेकर चलते हैं हम सबको इस चुनूनी के सेट पर।
1: कमरे में बंद रूहानी और सुशील। रक्षक बनकर पहुंचा गुरु। घर में शुरू हुआ सच का खेल।
2: ड्रामा कंपनी का एक्टर है, इस नर्स ने इसे 5,000 रुपए दिए अपने मंगेतर का नाटक करने।
1: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में तेजू ने सुशील को अपनी तरफ कर लिया है और उसे इस कमरे में बंद कर दिया है। ऐसे में रूहानी भी नशे की हालत में इसी कमरे में पहुंच जाती है और देखिए कैसे रूहानी और सुशील एक ही कमरे में है। हालांकि रूहानी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट चुका है और इसी के साथ सुशील ने भी कर दिया है रूहानी पर हमला। और इसी हमले के बीच देखिए कैसे रूहानी पर पर्दे की रॉड गिर जाती है और वो हो जाती है बेहोश। हालांकि इससे पहले कि सुशील कुछ करता, सही समय पर वहां गुरु पहुंच जाता है जो सुशील की जमकर धुनाई करता है और बेहोश रूहानी को ले जाता है।
3: हम कहे थे तुमसे अगली बार हमारी कंपाउंडर को हाथ लगाया ना तो जान से मार देंगे तुम्हें। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी असली हरकत करते हुए?
1: वैसे ये सारा षड्यंत्र किसी और ने नहीं बल्कि तेजू और मामी ने रचा था, जिन्होंने रूहानी और सुशील को इस कमरे में लॉक कर दिया था। अगर सही समय पर गुरु नहीं आता तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता। खैर अब गुरु बेहोश रूहानी को सबके बीच ले आया है। ऐसे में रूहानी को होश भी आ जाता है और रूहानी का भाई देखिए कैसे जमकर सुशील की धुनाई कर रहा है।
3: बहुत जल्दी क्यों नहीं हो रोहानी?

0: मतलब एक ट्विस्ट है अंदर कि वो बहुत ज्यादा नशे में हैं, क्योंकि जब उसको उनको पैसे ऑफर किए गए थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा उनको ड्रिंक कराया गया था, तेजस्वी एंड मामी ने ये प्लान किया था। एंड वो उनको अंदर जाते हैं, उतने में ही रूहानी वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा नशे के हालत में, तो वो उसे छोड़ने जाते हैं रूम में।
1: इन सब के बीच तेजू सबके सामने ये खुलासा करती है कि सुशील एक एक्टर है और मंगेतर होने का ड्रामा कर रहा था, जिसे रूहानी कुछ पैसे देकर लाई थी गुरु को जलाने के लिए। ये सच सुनकर देखिए कैसे बवाल शुरू हो गया है।
2: ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे साथ ड्रामा कंपनी का एक्टर है, इस नर्स ने इसे 5,000 रुपए दिए अपने मंगेतर का नाटक करने के, और मैंने उसी नाटक का पर्दाफाश करने के लिए इसे 50,000 दिए। हाँ नाटक था, जयश्री कराना चाहती थी अपने, मुझसे तू नहीं कराना चाहता, इसे मैंने बात ही उलट दी। वो क्या है कि तुम तेजस्वी सिंह के लिए बेटा हो, तेजस्वी उसे उसी गड्ढे में गिरा।
0: हाँ सो ऐसा होता है क्योंकि वो स्पेड एक्टर ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की है रूहानी के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है कि गुरु चौधरी जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो अच्छी तरीके से अपना गुस्सा दिखाएंगे एंड वो याद दिलाएंगे सबको कि बाहुबली कौन है। सो बस वही होने वाला है। एंड बीच में फिर ऐसा भी है कि जब पर्दाफाश होने वाला रहता है कुछ, तो तेजस्वी अपने फिर से एक चाल चलती है कि वो सबके सामने खुद ही बता देती है कि ये जो एक्टर है, मतलब ये जो मंगेतर है, वो एक्चुअली एक पेड एक्टर है। अभी तक फैमिली में किसी को नहीं पता था, तो अभी उस चीज का खुलासा होता है तो गुरु को और गुस्सा आता है। फिर भी वो अपना कंट्रोल करके बोलते हैं कि इस बात पे बाद में बात करते हैं, अभी तो मतलब उनका जो करना है वो देखते हैं।
1: इन सब के बीच देखिए कैसे आज रूहानी खुद ही ये कबूल रही है कि उसने ये सारा तमाशा किया था, लेकिन साथ ही गुरु को ये भी कहती है कि वो अब सच में मंगेतर लाएगी और सच की शादी करेगी, जिस बात पर गुरु भड़क जाता है। भाई दोनों एक दूसरे से नफरत भले ही कर रहे हों, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अब भी बहुत ज्यादा है। जल्द ही इसका इजहार भी होगा, क्योंकि जब रूहानी यहाँ से जाने लगती है तो गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, यानी कि तेजू और मामी की प्लानिंग फेल हो चुकी है।
3: कैसे बंद? इसे छोड़ कर जब मैं दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे का हैंडल कैसे टूटा? मुझे क्या बताऊं, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुशील कुमार नशे में, उसी को कमरे में छोड़ने गई थी और ये सब हो गया।
4: तुम अकेले उसे छोड़ने गई थी?
3: ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने सारी मर्यादा खोला, पर मैं नहीं पूछूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, प्यार करके भी हो या नहीं, कि जो इंसान प्यार ही नहीं करना चाहता वो सांस लेने वाला है। और ये सुशील कुमार, ये तो तुम्हारे का एक्टर है, लेकिन नर्सिंग मंगे चल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पिता होता हूँ, अपनी जिंदगी निभाऊ, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
4: फर्क पड़ना चाहिए और हमें फर्क पड़ता है,
3: मैं अपने पति के साथ खुश रहूंगी, सिंपल काम करते हैं।

0: तुमने कहा था जब से तुमने उठता है
1: तो ये है कि सारे किए कराए पे पानी फिर गया है। हमने सोचा था कि इतने सारे प्लान में कम से कम ये प्लान तो वर्क करेगा, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि इस बार गुरु रूहानी ने जो पासा फेंका है गुरु के आगे उससे जलाने के लिए, वो हम उल्टी चाल उसके ऊपर चलेंगे और वो ऐसा होगा कि उन्होंने रिवर्स हो जाएगा और गुरु दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि अब दोनों आमने सामने हैं, दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और मैं और तो तेजू एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अब क्या है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, अभी क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट। रूहानी इस बात को मान रही है तो हमारा खुलासा, एक्चुअली वो खुलासा हो नहीं पाया क्योंकि रूहानी ने बोला कि मैं लेकर आई थी क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि क्या है, और वो आगे इस चीज़ को भी क्लियर कर रही है कि वो आगे दूसरे लाइफ पार्टनर के लिए भी इंटरेस्टेड है। तो एक ग्राउंड, एक पिच है जो उसने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि हाँ वो ये सोचती है, लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था कि यहाँ से एक नई गलत फहमी पैदा होगी जहाँ से गुरु और रूहानी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, मुड़ जाएंगे, तेजू और गुरु शादी कर लेंगे, लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है।
2: तो भाई प्यार के इजहार के बाद अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: इस कहानी में तो रिश्तों की मिठास और भावनाएं कैमरे में बिल्कुल साफ सटीक दिखाई देती हैं। हाँ देखिए ये जो कैमरा है ना, इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, एक छोटा सा छोटा इमोशन भी यहाँ कैद हो जाता है। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल कैमरा डे, उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपकी फेवरेट कहानी का ये क्विक अपडेट। लेकर चलते हैं आपको राधे और प्रथम के पास, उनके शो मनाती सुंदर के सेट पर।
4: मैंने

0: में खुशी का माहौल।
1: सात रंग के सपने चुने, सपने
0: शुरू हुई अंताक्षरी।
1: ये शाम मस्तानी,
0: नाच गाने के साथ आई खुशियाँ।
1: मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज आ गया है खुशियों भरा मौसम, जहाँ पूरा परिवार एकजुट हो गया है और यहाँ पर खेली जाएगी अंताक्षरी। भाई गर्ल्स वर्सेस बॉयज जो है, एक तरफ घर के सारे जेंट्स तो दूसरी तरफ घर की सारी लेडीज, और शुरू हो चुकी है गानों की ये जंग। भाई इस अंताक्षरी में जहां दादी मजे ले रही है, तो वही राधा भी हो गई है इस खेल में शामिल। तो भाई अंताक्षरी का ये खेल शुरू हो

0: लेकिन इन सब के बीच टेंशन का माहौल भी है, क्योंकि बीच अंताक्षरी से प्रथम फोन पर बात करने चला जाता है और उसे परेशान देख राध्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। असल में प्रथम को कर्जदारों का फोन आ रहा है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गया है। अब ऐसे में राध्या प्रथम का सहारा बनेगी। खैर, इस बात से घर वाले तो अनजान है, लेकिन राध्या की नजर बराबर प्रथम पर है। तो भाई अब देखना होगा कि प्रथम की इस मुश्किल घड़ी में राध्या कैसे हल निकालती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मन सुंदर की इस कहानी में हर छोटी खुशी और बड़ा फैसला खूबसूरती से कैमरे में कैद होते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है नाहर और रूही की इस कहानी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई ऐसा ट्विस्ट जो बदल रहा है कहानी का मोड, या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा जो लेकर आएगा हमारे लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट, या फिर चल रही है कहानी में कोई नई टेंशन? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
0: वालों की कोशिश। धीरे धीरे लौटती रूही की याददाश्त।
2: आप कभी कभी अपनी सरप्राइज

रूही को मिला खाटू श्याम जी का आशीर्वाद। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में देखिए आज कैसे रूही का घर में फूलों की बरसात से स्वागत हो रहा है। उसके लिए बिछाए गए हैं ये ढेर सारे फूल जिस पर चल रही है रूही। असल में घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि रूही को सब कुछ याद आ जाए और उसकी याददाश्त लौट आए, इसीलिए वो वही सारी चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी और जो रूही ने पहले जी हुई है, ताकि उन यादों के जरिए रूही की याददाश्त लौट आए। और लगता है हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। भाई देखिए कैसे फूलों की वर्षा कर रूही का स्वागत किया गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले किया गया था। और रूही इन फूलों पर चल चल कर पहुँच गई है अपने ही कमरे में। और यहाँ पहुँचते ही जब वो नाहर को परेशान देखती है तो खुद भी परेशान हो जाती है। असल में नाहर यहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी खोई हुई फाइल। ऐसे में रूही तुरंत कह देती है कि फाइल गद्दे के नीचे होगी, जिससे नाहर को लगता है कि उसकी रूही लौट आई है। लेकिन फिर अगले ही पल रूही का बर्ताव बदल जाता है। भाई रह रहकर ही सही, लेकिन रूही को कुछ कुछ यादें वापस जरूर आ रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही क्योंकि पूरी याददाश्त जो नहीं लौटी है

ऐसे में इस पेंटिंग को देखकर भी रूही को कुछ याद आने लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है और देखिए नाहर को उनकी फाइल भी मिल जाती है जहाँ रूही ने बताई थी।

0: इतना ही नहीं, आज तो रूही खुद चलकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंची उनकी पूजा करने के लिए। और रूही की सास रूही को यहाँ देखकर हो गई हैरान। कहीं ना कहीं घर वालों को पूरा यकीन है कि जल्द ही रूही को सब कुछ याद आ जाएगा। तो भाई अब देखना होगा कि कब और कैसे रूही की याददाश्त लौटती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब तो वक्त आ गया है अलग अलग शोज की कुछ खास झलकियों का। हमारे एंटरटेनमेंट के कैमरे ने कैद किए हैं आपके लिए आपके फेवरेट शोज के कुछ बेहतरीन पल। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये रंग बिरंगा मिक्स, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहु अर्पेटिया के एयरलाइन। और यहाँ तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप कर लीजिए इसे बोर्ड। गेट सेट गो।
0: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में घायल हो गया है विक्रांत, और देखिए कैसे वो पहुंच गया है अस्पताल में जख्मी हालत में। ऐसे में वहां पर मन्नत भी मौजूद है, जो विक्रांत को देखकर बहुत चक्का रह जाती है। भाई उसे जोर का झटका लगा है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चल चुका है कि विक्रांत जिंदा है।
2: पापा ने मुझे बचाया मम्मा,
3: मेरे पापा जिंदा है।
4: तो आने का कि क्या आपने उसकी जान बचाई है, तो क्यों नहीं रहे? प्लीज भगवान जी प्लीज, अब इम्तिहान मत लीजिए, कोई रास्ता दिखाई विक्रांत।
0: लेकिन जैसे ही वो उसे मिलने जाने वाली होती है कि वहाँ पर पहले से ही मान्यता और उसकी बहन मौजूद है। ऐसे में विक्रांत को होश आ जाता है, और देखिए कैसे मान्यता और उसकी बहन यहाँ से चलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पुलिस आ गई है। लेकिन विक्रांत उर्फ आदि तो जिद पर अड़ा है कि उसे पुलिस को बयान देना है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग लगे हैं विक्रांत को यहाँ से ले जाने में, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं गए तो पुलिस के सामने इनकी पोल खुल जाएगी, जिस बात से विक्रांत अनजान है।
5: तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं बताऊं हुआ क्या।
6: प्लीज अपनी तहकीकात कर लीजिए, इस सब से हमारा क्या मतलब है? इस फूड फेस्टिवल की जिम्मेदारी मेजबानी की, तो जवाबदारी भी उनकी ही बनती है ना। हमें क्या करना है, हम चलते हैं, चल।
5: नहीं नहीं नहीं दी, हम नहीं जा सकते। अरे उन्होंने अनाथ मासूम बच्चों को अगवा करने की कोशिश की, वो भी एक नहीं पूरी की पूरी बस। ये कोई छोटी सी बात नहीं है जी, फिर होते में ना एक बच्चे को अगवा करते गुंडे। यहाँ इतने सारे बच्चे थे, मैं आपसे कहना यहाँ ना कोई बड़ा सियापा चल रहा है।
6: तुम बात समझने की कोशिश करो, वो ये शहर हमारे लिए नया है, हम यहाँ के लोगों को जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें इस झमेले में नहीं आना चाहिए। चलो
5: सही बंदी बंदी, बस मैंने एक सवाल, उन मासूम बच्चों का क्या, उनका क्या दी? अभी मेरे पुलिस वहाँ आई थी, हमने अपना बयान दे दिया है, जो कुछ भी वहाँ हुआ उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने कहा है कि हम जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है?
0: ऐसे में अब देखना होगा कि कब सच का खुलासा होगा और मन्नत विक्रांत से सारा सच बयां करेगी। स्टॉपलेस के सीरियल उड़ने की आशा में तेजस किसी और से शादी करने जा रहा है। ऐसे में उसका सामना रोशनी से होता है। ऐसे में रोशनी तेजस के हाथ में देख लेती है शादी का कार्ड, जिस पर लिखा है कि तेजस की शादी हरिणी से होने वाली है। ऐसे में उसका दिल ही टूट जाता है। देखिए कैसे वो गुहार लगा रही है तेजस से कि वो उसे थोड़ा टाइम दे, लेकिन तेजस ने फैसला कर लिया है कि वो मूव ऑन करेगा।
7: मुझे नहीं चाहिए 6 महीने। जिस दिन से मुझे तुम्हारा सच पता चला है उस दिन से मैंने तुमसे नफरत की है। नफरत करता हूँ उसके साथ शिशत कम नहीं है। तुम्हारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लाओ अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ और आगे बढ़ो, तो मुझे भी बढ़ने दो।
4: मैं जानती हूँ तुम तो मुझे बहुत नफरत करते हो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज कुछ ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी मामू ना, मैं तुम्हारी मामू, जैसे हमारी शादी इसे खत्म नहीं कर सकते तेजस, मैं क्या करूँ।
0: ऐसे में वहाँ पर रेणुका भी है, लेकिन वो इन दोनों के बीच कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी तो रोशनी से नफरत करती है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या तेजस और हरिणी की शादी हो जाएगी या फिर इस शादी में रोशनी लाएगी कोई नया ट्विस्ट।

0: तुम हो ना, यहां पर तो आम लोगों की हर कहानी कैमरे के सामने खुलकर आ जाती है। हंसी, भावनाओं और एंटरटेनमेंट के पल यहाँ पर कैमरा कैद कर लेता है और हमारे लिए लेकर आता है भरपूर मनोरंजन। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस शो के मंच पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हुआ है इस वीकेंड यहाँ पर। वेल, इस शो में भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और ढेर सारी मस्ती एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
1: अपने मायके में बड़ी बहन की जिम्मेदारियां निभाती रही, उसके बाद शादी हुई, फिर ये ससुराल गई, अब ससुराल में बड़ी बहू की जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
2: Yes.
1: ये इतनी मशरूफ है अपनी जिंदगी में कि कभी खुद के लिए समय नहीं बचा पाए।
2: Yes, sir.
1: लेकिन आज एक घंटा चुरा कर हमारे साथ इस मंच पर आई हैं। जोरदार तालियां उड़ीसा से आई कल्पना पात्रो जी के लिए। कितनी बहन भाई थे आप मायके में?
2: हम तीन बहन है, मैं बड़ी हूँ।
1: नहीं, लेकिन जब तीन होते हैं तो हमेशा जो बड़ा होता है ना उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा होती है।
2: सर, मेरे पापा का ईंट का बिजनेस था, ईंट का फैक्ट्री था। 1999 में ओडिशा में बहुत बड़ा साइक्लोन आया, उसमें ना मेरे पापा का पूरा ईंट का फैक्ट्री ना पूरा का पानी में डूब गया। मेरे पापा पूरा अकेले हो गए और तीन बेटियां घर पे छोटे छोटे, तब मेरा उम्र कुछ 10 साल की थी। ऐसा बीच में एक वक्त आया था मेरी, मतलब हमारे घर में दाल चावल और सब्जी तो सोचो ही मत। मैंने रात भर देखा, पापा रोते हुए देखा है, मम्मी को रोते हुए देखा है। तो ऐसे बहुत मुश्किल से वो वक्त बहुत मुश्किल से कटा। शादी के बाद मैंने कुछ तीन साल ऐसा था, फिर उसके बाद इनके थोड़ा बीच में जॉब चला गया। बोलते हैं ना, जब मुसीबत आता है ना सर, वो एक दरवाजे से नहीं आता है, हर तरफ से पाट पाट करके आता है। ये इतने टेंशन में आते थे ना, मैं ना जानबूझ के अपने टेंशन को ना साइड में रखती थी। पता है ये बहुत टेंशन से घर आ रहे हैं, पर घर में भी माहौल वैसा बना के रखूंगी तो मैं बीवी होने का क्या फायदा सर?
1: इतनी समझ आई थिंक आप लोगों में हो सकती है, क्योंकि दिन भर आपने स्ट्रगल किया पहले घर में, उसके बाद कोई आया तो माहौल भी बदलो। आई थिंक ये काबिलियत सिर्फ आप लोगों में है। आप क्या करती है लक्ष्मी जी?
3: मैं टेलरिंग करती हूँ सर, मेहंदी डिजाइनिंग भी करती हूँ सर मैं।
1: और आपके हस्बैंड?
3: मेरे हस्बैंड भी थोड़ा, उनका सैलरी कम है सर, तो थोड़ा उनका तबीयत भी, डायबिटीज है उनको, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पाती हूँ। ठीक है, जितना करते हमारे लिए करते हैं सर, जो भी करते हमें देखते तो बहुत अच्छे से है, बस और क्या चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इन लोग के लिए मैंने बहुत किया है और करूँगी, बस ये लोग मेरे जैसे ना हो, वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो, जॉब करे, अच्छे से सेटल हो जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, बस वो लोग को सेटल करना ही मेरी जिंदगी।
1: आज अगर आप यहाँ से 1,00,000 रुपए जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे?
3: 1,00,000 रुपए मामूली चीज नहीं है सर मेरे लिए, तो अगर मैं जीती कंपल्सरी वो लोग के एजुकेशन के ऊपर ही रखूंगी सर।
1: आप जानती हैं आपके दिल से जो आवाज निकल रही है ना, वो सीधा पहुंची सोनी टीवी तक। सोनी टीवी ने डिसाइड किया है कि लक्ष्मी जी की बेटी की 1 साल की एजुकेशन, इसकी जिम्मेदारी सोनी टेलीविजन लेगा।

0: मेरी मम्मी को एक मतलब रिच लाइफ दिखाने का है उनको. रात 1 बजे 2 बजे तक मेहनत करती है और सुबह जल्दी उठ के हमको खाना बना के स्कूल भेजती है. इतना मेहनत करती है तो मेरे से देखा नहीं जाता है, इसीलिए मुझे उनको एक अच्छा लाइफ दिखाना है.
1: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल कैमरा डे, उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट को. और अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज तो जुड़ी हुई है रुचि सुवर्णा से. जी हाँ, सैराब में नौनक्का की भाभी रुषा बासु, उन्हीं के पास लेकर चल रहे हैं हम आपको. आज तो हमारी टीम संग ये कर रही है मॉनसून डे आउट, पहुंची है मरीन ड्राइव पर और यहाँ हुई है ढेर सारी मस्ती. तो चलिए फिर करते हैं इनसे ढेर सारी बातें.

0: मिली है रुचि सवर्ण से, जो है सीरियल शराब की रुषा बासु। ये कभी कुमकुम भाग्य की दिशा हुआ करती थी, लेकिन अब लंबे गैप के बाद इन्होंने कमबैक किया है सीरियल शराब के साथ। पर सीरियल में तो कमबैक हो गया, लेकिन लाइफ में भी एक लंबे मैटरनिटी ब्रेक के बाद अब ये कमबैक कर रही हैं। तो पेश है रुचि का एक नया 2026 वाला अंदाज, जहां वो डांस कर रही हैं, रील बना रही हैं, और भी आज के ट्रेंडिंग गानों में। तो आज हम रुचि सवन के साथ करेंगे एक डांस और रील वाला डे आउट। जी हां, मिलेंगे उनके डांस पार्टनर से, जो उनको ट्रेन करके आज के गानों पर रील बनाएगा। पर रुचि एक अच्छी सिंगर है और साथ साथ डांसर भी। आज उनका सिंगिंग और डांसिंग टैलेंट हम देखेंगे, क्योंकि हमें वो लेकर चलने वाली है उस डांसिंग वाली दुनिया में, जहां पर ट्रेंडिंग गालों पे वो जम कर डांस करेंगी। वो दो दो अलग लुक्स लेकर दो अलग अलग रील बनाएंगी, एक रेट्रो गाना और एक आज का गाना। मैटरनिटी ब्रेक के बाद अब सीरियल की दुनिया में तो उनका कमबैक हो गया है, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया की दुनिया में भी अब उनकी रील्स और मजेदार होने वाली है, जिसकी वो खास प्रैक्टिस कर रही है अपने कोरियोग्राफर दोस्त के साथ। तो आज हम रुचि के साथ उनकी डांसिंग वाली दुनिया में जाएंगे। तो बिना वक्त कमाए सीधा चलते हैं रुचि के साथ, क्योंकि अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर वो आज शेयर कर रही है सास बहू और बेटिया साथ।
1: आज सास बहू बेटिया मेरे साथ है और मैं उनको अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ एक बहुत ही फन एक्टिविटी के लिए। बहुत दिनों बाद मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
0: अपने नए सीरियल शराब की शूटिंग के बीच वक्त निकालकर रुचि अपने सीरियल के किरदार के उस पार आज अपने रियल सेल्फ में है। इस लाल ड्रेस में आज वो सास बहू और बेटिया संग हमें लेकर चलेंगी एक नई डांसिंग दुनिया में। तो सीधा सवार हो जाते हैं रुचि के साथ उनकी गाड़ी में और निकल पड़ते हैं एक नए सफर में।
1: मैं आज आपको जहाँ पर लेकर जा रही हूँ वो मेरे लिए भी बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मेरा बीच में एक फेज था जहाँ पे मेरा शोल्डर का थोड़ा इश्यूज चल रहे थे एंड आई हैड टू गो थ्रू अ प्रोसीजर, और उसके बाद में अब मैं ये जो चीज़ अटेम्प्ट करने वाली हूँ ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद डांस करने वाली हूँ। सो मेरे लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग है। मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत लिमिटेशंस है। मैं अपने शोल्डर के इशू के बाद में कुछ अटेम्प्ट करने वाली हूँ, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
0: वैसे एक अभिनेत्री और एक एनिमल एक्टिविस्ट, एक माँ होने के साथ साथ रुचि को गाने का बहुत शौक है, खासकर 80s के गाने। तो उन्होंने सुनाया अपना ये फेवरेट गाना।

0: मैं गाना अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं गाना शौकिया गाती हूँ. तो ये आपको इन्फॉर्मेशन किसी ने दी होगी कि मैं शौकिया गाती हूँ. ओके.
1: नागपुर की रहने वाली रुचि सवर्ण आखिर अभिनेत्री कैसे बनी? यूँ तो उन्होंने हिंदी और मराठी में कई शोज किए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कुमकुम भाग्य से. आज सास बहू और बेटिया संग वो शेयर कर रही हैं अपना पहला ब्रेक, कैसे वो मुंबई आई और कैसे कुछ हिंदी सीरियल के बाद मराठी सीरियल्स करते हुए वो हिंदी सीरियल्स का हिस्सा बनी और अब सैराब के साथ की है उन्होंने वापसी.
0: बेसिकली मैं नागपुर से हूँ. मेरी पढ़ाई नागपुर में टिल 8th स्टैंडर्ड मैंने की है. उसके बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली क्योंकि मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइंटिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट है वो. और खैर अब तो वो नागपुर वापस शिफ्ट हो गए बिकॉज ही इज़ रिटायर्ड ना. तो दिल्ली में काफ़ी साल मैं रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड, 10 साल तो मैं दिल्ली में रही हूँ. तो मेरी बाकी सारी पढ़ाई वहाँ से हुई थी. उसके बाद मैं मुंबई आई. मुंबई ऑफकोर्स सब लोग कुछ करने के लिए ही आते हैं, इट्स अ करियर हब. इतने सालों में जो कुछ भी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा परसेवरेंस रहा है या मैंने गिव अप नहीं किया, इसलिए मैं आज भी इस सिटी में हूँ. बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि इतने कम ड्यूरेशन में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, पर वो सोचते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू स्टिक अराउंड टू विन समथिंग. फर्स्ट तो मैंने दूरदर्शन से शुरुआत की थी और फिर बालाजी के शोज करती गई मैं. और मैंने मराठी में 2 डेली सोप्स एज लीड किए हुए हैं. तो ऑल इन ऑल मेरे लिए मराठी, सिंस मैं दिल्ली में बहुत साल रही थी तो, और नागपुर में भी ऐसे बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मराठी नहीं बोली जाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी. बट नाउ आई एम वेरी फ्लुएंट विद मराठी. और अभी रिसेंटली मैंने एक मराठी फिल्म भी की थी विच सेल्ड रियली वेल. और उसके बाद में ऑफकोर्स लोग ज़्यादातर मुझे दिशा से ही पहचानते हैं, कुमकुम भाग्य से पहचानते हैं. सो कुमकुम भाग्य ऑफकोर्स बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहा है मेरे लिए. मुझे मेरे लाइफ में कुमकुम भाग्य आए ताकि मैं स्वाति दी से मिल पाऊँ और एक अलग सोल जुड़ी हुई है हम लोगों की. अब तो हमारे पास दोनों के पास पेट्स भी है. सो हम लोग मतलब वो पेट्स एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो दे हैव टू मीट, तो हमें मिलना ही पड़ता है. सो मैं वॉक करते हुए उनके पास चली जाती हूँ. अगर मुझे जिम भी बंक करना होता है तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट आई वॉक टू हर प्लेस सो दैट आई मीट हर. अभी तो बहुत बिजी हो गई पर हम स्टिल टाइम निकालते हैं. शी कॉल्स मी अप एंड सेज कि अरे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, तो मैं गाँव हो तो. और मेरा भी वही सेम हाल होता है. सो या इट्स म्यूचुअल.
1: बातें करते करते हम पहुंच गए रुचि सवान के डेस्टिनेशन पे, यानी वो स्टूडियो जहां वो ये डांसिंग और रील सेशन करने वाली हैं. तो आइए चलते हैं उनकी इस नई डांस वाली दुनिया में.
0: तो हम अभी आए हैं एक डांस स्टूडियो और मैं आज अपनी डांस प्रैक्टिस करने वाली हूँ. थोड़ा सा हम लोग शूट भी करेंगे जस्ट टू सी कितने पानी में है.
1: रुचि को डांस करना सिखा रहे उनके फ्रेंड जो खुद एक कोरियोग्राफर है. वो एक बचाता डांसर है और रुचि को आज बचाता के साथ साथ वो ढेर सारे और डांस फॉर्म्स कराने वाले हैं.
0: हाय, ये मेरा कोरियोग्राफर है राघव. सो ये मुझे बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है डांस. सो लेट्स सी.
1: राघव और रुचि रेडी है अपनी पहली रील बनाने के लिए, लेकिन किसी भी डांस की शुरुआत वार्म अप एक्सरसाइज के साथ होती है. तो भाई राघव और रुचि ने शुरुआत किया अपना ये डांसिंग सेशन, लेकिन सबसे पहले वार्म अप्स यानी कुछ एक मेडिटेशन एक्सरसाइज, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी फिट हो जाए डांसिंग के लिए.

0: मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा शूट करने वाले हैं, पर डांस से पहले क्या होता है? वार्म अप. तो वार्म अप के बिना तो मैं कुछ भी करूँगी तो मैं और इंजर हो जाऊँगी. सो मुझे राघव कराने वाला है वार्म अप. उसके बाद में हम लोग एक्चुअल डांस शुरू करेंगे, पर वार्म अप इज वेरी नेसेसरी. सो चलो राघव,
1: लेट्स डू दिस.
0: या
2: ती पर हूँ लिखती इश्का इश्का.
3: और अब वक्त है पहली रील का. तो रील नंबर वन का थीम इन्होंने रखा है रेट्रो, और इसके लिए उन्होंने गाना चुना है फिल्म भाग मिल्खा भाग का स्लो मोशन अंग्रेजा. भाई इस गाने की वाइब्स अलग है. तो इस गाने को थोड़ा स्लो मोशन के साथ, पुराने गाने की फील के साथ ये दोनों शूट करेंगे. तो आइए देखते हैं कैसी इनकी प्रैक्टिस और कैसे हुआ ये गाना.

0: पसीना पसीना हो गए हम लोग, वार्म सेशन हो गया हमारा. तो वार्म अप सेशन हमारा ज़्यादा धमाल था. इनफैक्ट इन्होंने एक्चुअल रूटीन मेरे लिए थोड़ा सिंपलिस्टिक रखा है, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. राघव तुम्हें क्या कहना है?
1: सो जो हमारा रूटीन है बहुत फन है, इसमें थोड़ा लिफ्ट एंड ड्रॉप्स भी लगाए हमने. सो शी इज अमेजिंग, उन्होंने बहुत फास्ट पिकअप किया, हमने लिटरली लाइक दो या तीन बार रिहर्सल किया होगा, दैट्स ऑल. उसके शी इज एन अमेजिंग डांसर.
0: नथिंग, शौकिया शौकिया गायक, शौकिया डांसर. और आपको आइडियाज आते हैं कि आपको ये कुछ करना चाहिए, ट्राई आउट करना चाहिए, सो उसके लिए टीचिंग ऑफ एब्सोल्यूट नॉन डांसर वॉज एन न्यू वर्ड चैलेंज. एंड मी लर्निंग डांस आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब आफ्टर वॉट एवर आई टोल्ड यू अबाउट माई इशूज, शोल्डर इशूज इन ऑल दैट. उसके बाद में ये ट्राई आउट करने के लिए बिगेस्ट सपोर्ट वॉज हिम, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी वेरी अकोमोडेटिव. मुझे मैं अगर बोलती थी कि मेरा शोल्डर नहीं जा रहा है ऊपर, सो ही यूज टू मोल्ड इट दैट वे. सो हाँ, बहुत समय बाद ये मौका मिला है और वो हम लोग बहुत स्वीटली अपनी तरह से मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं.
1: इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्लो मोशन अंग्रेजा है भाग मिल्खा भाग का. सो उन्होंने पहला यही सजेस्ट किया और हमने फर्स्ट गो में हमने ओके किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें गाना. एंड बहुत पेपी नंबर भी है, बहुत फन सॉन्ग है वो, सो इसलिए हमने वो गाने पर डाला.
0: और वो थोड़ी सी विंटेज फील है उसे, तो मैं मुझे तो ऐसा लगता है मैं ओल्ड सोल हूँ. तो वो गाना अपने आप ही बहुत, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग. सो उसमें परफॉर्म करने में मज़ा है. ही इज़ एक्सपर्ट इन बचाटा एंड ही ऑल्सो टीचेस अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, बट इसमें उसने सॉन्ग के मूड के हिसाब से सब कुछ मॉडिफाई करते हुए ही इज लाइक नाइसली ब्लेंडेड इन विद द सॉन्ग. सो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक्चुअल मुद्दे पे जाते हैं. हम डांस कवर अप शूट करना शुरू करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड.

0: अब बारी है रील नंबर टू की और इसके लिए दोनों ने व्हाइट व्हाइट कपड़े पहने हैं। जी हाँ, राघव ने भी व्हाइट पहना है और रुचि ने भी व्हाइट पहना है और इस व्हाइट ड्रेस में वो एक रेट्रो रील बनाने वाले हैं और गाना भी अलग है, इनका स्टाइल भी अलग है। वैसे मिलते हैं इनकी पूरी टीम से जो इस व्हाइट लुक को क्रिएट करने वाली है।
1: राघव और मैं चेंज कर चुके हैं एंड वी आर इन जीतू जी थीम राइट नाउ, ऑल वाइट बिकॉज वी लव हिम, वी आर फैंस ऑफ हिम। और मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड अनी अनिमा एंड शी इज़ माई बिगेस्ट मॉरल सपोर्ट एंड वी हैव नईम विद अस हु इज़ गोइंग टू शूट आर एंटायर डांस परफॉर्मेंस। सो ये एक मिली जुली भगत होने वाली है और ये सब मेरी अपनी कोर टीम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।

0: फालिन की रील तो पूरी हो गई और आखिर में देखिए दोनों ने किया एक फ्री स्टाइल डांस। फ्री स्टाइल डांस यानी कोई कोरियोग्राफी नहीं, बस ये दोनों डांस किए जा रहे हैं और कुछ इस अंदाज में रुचि ने अपना ये डांसिंग डे आउट सास बहू पेटिया के साथ एंड किया।
1: अरे

0: भाई उन्हें शूटिंग पर जाना है और इसके बाद वो निकल गई अपने शो शराब के सेट पर। तो ये थी रुचि सवन जो अब नए अंदाज में एक नए शो के साथ आ गई है सबका दिल चुराने। तो उम्मीद है आज रुचि सवन का एक अनोखा डांस वाला अंदाज हमने सास बहू और बेटियां में दिखाया जो आपको पसंद आए। मुंबई से रूपम मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कहानी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट और कैमरे की तरह हमारी नजर भी हर छोटी बड़ी हलचल पर बनी हुई है। तो चलिए फिर देखते हैं आज किसकी जिंदगी में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है जब आते हैं कहानियों में ट्विस्ट। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला वो भी एक साथ। लेट्स ट्विस्ट।
2: दो दुनिया एक दिल।

0: टीवी के सीरियल दो दुनिया एक दिल में शिवाय और आध्या की शादी में कई परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में जैसे तैसे पुलिस से भागकर शिवाय आ गया है और देखिए कैसे आध्या उसका साथ दे रही है सच का पता लगाने में। ऐसे में शिवाय ने भेस बदल कर ओढ़ ली है साड़ी और ये दोनों निकल पड़े हैं सच का पता लगाने के लिए। और देखिए कैसे ये पहुंच गए हैं इस गोडाउन में जहां सच का खुलासा हुआ और सही समय पर आध्या पुलिस को भी ले आई। इसी के साथ साथ यशवर्धन ने आध्या के पिता का भी खुलासा कर दिया।
1: जैसा आपने कहा वैसे ही किया। अब आगे क्या करना है?
2: आगे मरना है तुम्हें।
1: हाँ?
2: बस जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करो।
1: ठीक है बेटी जी।
2: गुड बॉय।
0: यानी कि अब सारा सच सामने है और शिवाय भी बेकसूर साबित हो चुका है।

0: भई इसके बाद शुरू हो गई शादी की रस्में, जहां आते और शिवाय शादी के बंधन में बंध रहे हैं। वैसे शादी तो संपन्न हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ एक और ट्विस्ट भी आएगा। लेकिन इससे पहले कि शिवाय आध्या की मांग भरता, कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया।
1: हेलो, कहाँ हो तुम? यहाँ फेरे शुरू होने वाले हैं, कितना लेट करोगे?
2: कन्या की मांग में सिंदूर भरी।
3: आगरा शहर में वायरल हो रहा है एक नया नाम, आद्या सिंह चौहान, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट को मिले हैं पिछले एक महीने में 1.5 करोड़ फॉलोअर्स, जो कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए इस बार उन्हें क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है।
4: जो ही मुई।
5: सर, सर, सर। आप पेड़ नहीं काट सकते।
6: क्यों? क्यों नहीं काट सकते? ऑर्डर है मैडम।
5: ऑर्डर? आप अपनी मर्जी से या शौक से पेड़ नहीं काट सकते, कोई रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं पेड़ काट सकते, सब ऐसे पेड़ काटते रहेंगे और डेरी का IQ और बढ़ेगा, फिर सांस कैसे लेंगे, कैसे लेंगे सांस?
6: अरे मैडम, मर्जी नहीं है, ऑर्डर है। नेताजी की गाड़ी टूटी है इस पेड़ की टहनी से, उनका ऑर्डर कैसे रोकोगी? हाँ,
5: केस करूंगी, कोर्ट जाऊंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है।
6: केस करेगी? किस बात का केस?
5: ये पार्किंग लॉट उनका नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है।
6: अरे मैडम, समझिए बात को, नीचे आ जाइए।
5: नहीं,
7: आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा
1: जी।
0: कलर्स टीवी के सीरियल जूही मूही की शुरुआत हो चुकी है और आ गई है जूही, जो देखिए कैसे मुश्किलों में फंसती रहती है। ऐसे में उनके पिताजी हर कदम पर उसका साथ देते हैं, लेकिन अब जूही के पिता ने ठान लिया है कि इस दुनिया का सामना जूही को अकेले ही करना होगा।
6: सर, उत्तम सर, उत्तम सर।
5: बड़े पापा,
6: बड़े पापा,
8: बड़े पापा,
6: बड़े पापा।
9: सर, एक बार राजेंद्र सर से मीटिंग करवा दीजिए।
6: अरे जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं तो काटूंगा।
9: सर प्लीज सर,
7: क्या?
9: दो
7: मिनट बेटा, तुम नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ।
9: सर सर सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर सर सर सर, आप जो भी पैसा बोलेंगे ना, मैं आप गिरवी घर रख के आपको सब पैसा दे दूंगा सर।
7: तू एक मिनट चुप रहेगा?
6: भाई भाई भाई, बोला ना, रुक जाता है एक मिनट। सर आप जानो, नेताजी जाने, मेरे को ऑर्डर है, मैं काट के रहूंगा।
7: अरे बेटा तुम तो,
9: सर सर सर, आप ये फाइल देख लीजिए।
7: रुक जाए एक मिनट
9: सर। यात्री ट्रांसपोर्ट ना एक नई कंपनी है सर, सर मैंने उनपे भरोसा किया था और उन्हें कंसाइनमेंट दे दिया था सर।
7: अरे तू जाना यार, किसी और वकील को पकड़, उसे बात कर। अरे तू रुक जा बेटा, नीचे आ जाओ।

0: सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन बर्थडे कल का है।
1: यहाँ है
2: तो आइए देखते हैं कैसी रही ये पहली झलक, जहाँ जूही कैसे मुश्किलों से निकलेगी।
3: मैं ये सोचकर जूही को बाहर की दुनिया से दूर रखता है कि जूही बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं।
4: जूही पगलेट, पगलेट जूही, जूही पगलेट, मैं बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं हूँ पापा?
3: वो तैयार तो तब होगी जब मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर की दुनिया में ले जाऊंगा। जूही को लड़ना सीखना होगा ताकि वो खुल के जी सके, खेल के जी सके। और वैसे भी तो मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता ना।
4: अब उन्हें नहीं ढूंढ पाए, कोई बात नहीं, हम ढूंढ के लाएंगे हमारी अम्मी को।
5: कोई दवा हमें ठीक नहीं कर सकती।
4: जब तक हमें हमारी अम्मी की सलामती नहीं मिल जाती, ये बात आपके दिमाग में जितनी जल्दी बैठेगी उतना अच्छा है आपके लिए। इससे चले जाइए यहाँ से, जाइए ढूंढ कर आइए ना उसे। हमारी उसके पास जिंदगी में हमसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, हमें हमारी अम्मी चाहिए।
2: कलर्स टीवी के सीरियल शहर में फिर एक बार आमने सामने शहर और माहिद आ गए हैं। ऐसे में शहर ने तो जिद ठान रखी है कि वो अपनी माँ को ढूंढेगी और माहिद शहर का साथ देना चाहते हैं।
4: अमाल, हमें मलियाबाद के लिए निकलना होगा फौरन।
6: ये तुम क्या कर रही हो शहर?
4: हुसैन किस तरह से छिपा हुआ है मलियाबाद में। हमें यकीन है कि वो जानता होगा कि अम्मी के साथ क्या हुआ है और कहाँ है अम्मी।

0: भाई अब देखना होगा कि इनकी जोड़ी फिर से बन पाती है या नहीं।
1: शुक्रिया बेसन निकालने के लिए, हम चलते हैं, माल भूखी होगी, भिंडी तल।
2: हम भी साथ चल रहे हैं।
1: क्यों? मैं अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप माए? हमें अम्मी को ढूंढना है।
2: हम आपका साथ दे रहे हैं ना सर।
1: नहीं चाहिए हमें आपका साथ।
2: शायद आप जानती नहीं है सर, लेकिन हमारी जिंदगी भी बिगड़ रही है। दादा सुर के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे पीठ पीछे लोग बगावत में उतर है। हो सकता है आने वाले वक्त में मास्टर अपना नया मुफ्ती शहर चुन ले हैदर भाई को।
3: यहाँ तो रिश्तों के हर खूबसूरत पल को कैमरा और भी यादगार बना रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज? मैं तो बात कर रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अभीरा और अरमान के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। वेल, कहानी में आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो लेकर आते हैं इस कहानी में हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। लेट्स चेक इट आउट।
4: देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे।
0: होगा अरमान और अभीरा का पुनर्विवाह।
4: दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया।
0: पुनर्विवाह में शामिल होंगे सभी घर वाले।

गम के बादलों में छाएंगे खुशियों के रंग। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की ब्रेन सर्जरी होने से पहले पूरा परिवार मिलकर अरमान और अभीरा का पुनर्विवाह करवाना चाहता है। ऐसे में देखिए घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। घर वाले खुद घर को सजा रहे हैं। सभी के चेहरे पर मायूसी तो है लेकिन सभी खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। जरा देखिए दादी सा विद्या, काजल, संजय, कृष, तान्या, दिशा और अयान सभी जुटे हुए हैं घर को सजाने में, लेकिन सभी के दिल का दर्द चेहरे पर साफ नजर आ रहा है।

0: हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि आज रात को पापा की सर्जरी, आज शाम को एंड आज सुबह शादी हो रही है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है एंड पूरी फैमिली आ चुकी है मसूरी, सबने माफ़ी मांग ली है एंड हम बस चाहते हैं कि जितना भी शादी जैसी मर्जी हो जल्दी हो बट अच्छे से हो, तो हम मेहंदी और संगीत साथ में कर रहे हैं आज एंड बहुत ही कम टाइम है, सुबह शादी होगी और रात को पापा की सर्जरी होगी, तो सबको टेंशन तो है सर्जरी की बट सब कोशिश कर रहे हैं कि शादी का मोमेंट इन्जॉय करें एंड हम बहुत अच्छे से फुल सब लोग रेडी हुए हैं, सब सेटअप करते हैं, सब मम्मा पापा के लिए डांसेस करते हैं, यही सब चल रहा है। आज का तो पिंक ही थीम है, पिंक, सब पिंक है पूरे, जैसे कि मैं पूरी पिंक गुलाबो लग रही हूँ, मैं गुलाबो।
1: भाई अरमान और अभीरा की मेहंदी और संगीत की तैयारी तो हो गई, ऐसे में मायरा ने अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया। तैयारियां देखकर अरमान अभीरा दोनों ही हैरान हैं। परिवार ने केवल रस्मों की तैयारी नहीं की है बल्कि डांस धमाल की भी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। ऐसे में मेहंदी और संगीत के फंक्शन को शुरू किया गया। बॉयज गैंग ने आकर चश्मा लगाकर अपने डांस का दम दिखाया।

तो वहीं लेडीज गैंग भी पीछे नहीं हटी। पहुंच गई दिल में मायूसी, लेकिन चेहरे पर खुशियों के रंग देकर अरमान अभिरा के संग ढेर सारी खुशियां बांट

0: मम्मा पापा के तो सारे मोमेंट्स क्यूट ही होते हैं, बट अब वो ये कोई दिखा नहीं रहा है कि कितनी बड़ी बात है, बट सबके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सीन्स जो भी आ रहे हैं ना, सब सीन्स में बहुत लेयरिंग है, सब ऐसा फेक स्माइल कर रहे हैं, आंखें पूरी नम है सबकी, बट सब फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मम्मा पापा को होप, वो 0.1% की होप पे मम्मा तो है कि होंगे ठीक, और वो पापा को भी वही बता रही हैं कि हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे। पापा धीरे धीरे चीज़ें भूल रहे हैं, वो हमें गाड़ी में ही भूल गए थे, फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट भूल जाते हैं, मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं पापा। अरमान सर के लिए तो बहुत ही मेरे को तो उन्हें स्क्रीन पे देख के सच में रोना आ जाता है, ऐसा पता नहीं क्या, ऐसा वो पता नहीं क्यों ऐसा देख के ऐसा लगता है कि यार गॉड क्या हो रहा है अरमान के साथ। मेरे को तो बहुत बार मेरी आंखों से आंसू बहे भी हैं उन्हें देखते देखते, तो एक्टिंग की क्या ही बात करूं, दोनों समृद्धि दीदी और रोहित सर फैबुलस।
1: खैर पछतावा तो सभी को हो रहा है, लेकिन सभी खुश नजर आ रहे हैं, ताकि अरमान के चेहरे पर खुशी बरकरार रहे। ऐसे में मायरा ने अपने मम्मी पापा को भी मंच पर बुला लिया। बस फिर क्या, अब हीरा को मिल गया मौका अपने अरमान से प्यार जताने का। जरा देखिए कैसे वो झूम झूम कर अपने पति के इर्द गिर्द नाच रही है और अपने प्यार को बयां कर रही है।

भाई ये रिश्ता तो वाकई पवित्र कहलाता है, लेकिन इस रिश्ते में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक अरमान अभीरा के लिए गुनगुनाना शुरू तो करता है लेकिन गाने के बोल भूल जाता है। ये देख अभीरा भी हैरान है और अरमान उसे दुख हो रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि अभीरा हमेशा उसके साथ है, इसीलिए तो अरमान के अधूरे बोल को अभीरा ने पूरा कर दिया।

0: क्या क्या सवाल पूछा?
1: भूल गए सवाल, भूल गए, कान भी खराब हो गए, ब्रेन ट्यूमर।
0: एक्चुअली ये मुक्ति का बर्थडे है ना, क्या है आज? आज अरमान और अबीरा का हल्दी और
2: मेहंदी
0: और संगीत, मेहंदी मेहंदी और मेहंदी और संगीत को है, मेहंदी और संगीत है, तो उसमें सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, बट अबीरा अरमान को डांस नहीं करने देती क्योंकि एक दिन के बाद सर्जरी है, और इसलिए अरमान डांस नहीं करता, वो गाना गाता है, और गाना गाते गाते भी लिरिक्स बीच में भूल जाता है, और फिर अबीरा उसको कंप्लीट करती है, एंड देन एक पॉइंट आता है सीन में जहाँ पे वो उसको आई लव यू बोल रहा है बट अबीरा का ही नाम भूल जाता है वो, तो बहुत बार ट्राई करता है बट फिर अबीरा किसी तरह से उसको याद दिलाती है कि चलो अपनी अबीरा को फटाफट बोलो, एंड तब उसकी बत्ती जलती है कि ओ शी इज अबीरा, हर नेम इज अबीरा, तो ये होता है उसमें यार।
2: ये हमने पुकी लुक क्रिएट किया है पूरी फैमिली के साथ, मैचिंग
0: मैचिंग।
2: सब लोग गुलाब लग रहे हैं आज, यस सब पिंक है,
0: सब पिंक है,
2: सब पिंक है।
3: अब अभीरा तो हर पल अरमान का साथ देती है और अरमान इसी बात पर बेहद खुश है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी डर है कि कहीं वो अपनी अभीरा को भूल ना जाए, और ये डर साकार भी हो जाता है जब अरमान सभी के सामने अभीरा से अपने दिल की बात कहने ही जाता है कि वो अभीरा का नाम भूल जाता है। ये देखकर सभी घर वाले बेहद दुखी हो रहे हैं और अभीरा पलटकर अपने आंसुओं को संभाल रही है, लेकिन संभाल कर अरमान का हौसला भी बढ़ा रही है। भाई अभीरा के दिल की बात सुनकर तो अरमान ने अभीरा को गले लगा लिया, क्योंकि उसे इतना प्यारा हमसफर जो मिला है, और तो और अब अरमान अभीरा के साथ उनका पूरा परिवार भी साथ में आ गया है, तो जाहिर सी बात है अभीरा और अरमान दोनों ही ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा के दिल में डर अब भी घर कर रहा है। जरा देखिए कैसे अभीरा जब अपने कमरे में हल्दी की रस्म के लिए तैयार होती है और अपनी शादी की साड़ी देखकर अपने आप को उड़ाने की कोशिश करती है, साड़ी का रंग बदल जाता है जिसे देख अभीरा डर जाती है।
4: नहीं, नहीं, अरमान को कुछ नहीं हो सकता, अरमान को कुछ नहीं हो सकता,
3: एक पल के लिए अभीरा डर तो जाती है, लेकिन जब आंखें खुलकर देखती है उसके सामने उसकी शादी की साड़ी होती है जिसे लेकर वो होने लगती है इमोशनल, और तो और उसका डर और भी बढ़ रहा है, इसलिए देखिए कैसे वो साड़ी अपने गले लगाकर अपनी माँ को भी याद कर रही है। बेचारी अभीरा सभी के सामने तो हिम्मत दिखा रही है, लेकिन अकेले में उसकी हिम्मत टूटती जा रही है। वैसे उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसकी माँ उसके पास जरूर आएगी, तो देखना होगा कि अब अभीरा ये जंग कैसे जीतेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: जगतांत्री की इस कहानी में तो एक्शन और इमोशंस दोनों कैमरे में कैद हो जाते हैं और लेकर आते हैं हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। तो क्या कुछ हो रहा है जगदात्री और शिवाय की जिंदगी में आज? क्या फिर से आएगी इनके सामने कोई नई सिचुएशन? क्या पुराना ट्विस्ट हो गया है कहानी से दूर, या फिर से लेकर आया है कहानी में ढेर सारी टेंशन? लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर, क्योंकि कहानी का लेखक लेकर आया है इसमें भी इंटरेस्टिंग मोड़।

0: दूसरे के गले लग इमोशनल हुए जगधात्री और शिवाय।
1: नहीं हूँ मैं तेरा भाई, नहीं हूँ मैं तेरा छोटा भाई, और नहीं है मेरा बाप तेरा बाबा।
0: भाइयों के बीच दिखी टशनेबाजी।
2: तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों बाली चमके है रे।
0: शुरू हुई जगधात्री और शिवाय की मेहंदी की रस्म। गहरा

जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जल्दी ही जगधात्री और शिवाय शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में आ गया है कहानी में ट्विस्ट, जहां कुछ घर वाले नहीं चाहते कि इस घर में जगधात्री और शिवाय की शादी हो।

ऐसे में दोनों ही देखिए कैसे हताश हो चुके हैं और इस दुख में एक दूसरे का सहारा ये दोनों बन चुके हैं। जहाँ जगदात्री शिवाय को समझाने की कोशिश कर रही है और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी इमोशनल हो रहे हैं।

0: चाहे भले ही दोनों एक मिशन पर हो, लेकिन इस बात से ये अनजान है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं।
1: तालाब है मेरा जहां, तेरी बाहों में।
0: लेकिन जल्दी ही इनके रोमांस पर ब्रेक लग जाता है। असल में शिवाय को इस कमरे में अकेला छोड़ जगधात्री चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर वहां पहुंच जाता है रुद्र, जो शिवाय पर बंदूक तान देता है। असल में रुद्र के दिल में अब भी शिवाय के लिए काफी नफरत है और वो उसे अपना बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं। इसी बात को लेकर देखिए कैसे उसने बंदूक तान रखी है और वो शिवाय को खरी खोटी सुना रहा है।
2: बाप का नाम मुझसे ले लेगा। इतना इजी नहीं होगा शिवाय मेरे घर में घुस के मेरा नाम, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बाप का नाम मुझसे छीन लेगा, मुझे ले जाएगा। तू क्या सोचा था तूने?
3: मुझे कुछ पता नहीं।
2: लो प्राइस तुझे दे दूंगा। नहीं हूँ मैं तेरा छोटा भाई और नहीं है मेरा बाप तेरा बाबा, समझा? तेरी गलती कि तूने ये सोचा कि तू इस घर का मेंबर बन सकता है। तू होता कौन है?
0: भाई यहाँ तक कि रुद्र ने शिवाय का कॉलर तक पकड़ लिया।
2: होता कौन है ये करने वाला? हाँ?
0: और बंदूक से उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सही समय पर वहाँ जगधात्री पहुँच जाती है। और देखिए कैसे, पहले तो जगधात्री ने रुद्र का हाथ मोड़ा और फिर उसे सबक सिखाया, यानी कि हर मुश्किल घड़ी में शिवाय की ढाल बनकर जगधात्री खड़ी है।
4: शिवाय देशमुख, शिवाय महेश देशमुख, तुम्हारा बड़ा भाई है, तो अगली बार जब शिवाय से बात करो तो इज्जत से ना बोलना।
2: नहीं है वो मेरा बड़ा भाई। मेरा बड़ा भाई है ना वो देशमुख, जिसको और मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
4: तुम्हारे मानने

0: बता देती हूँ, जिस दिन तुमने शिवाय पर अटैक किया हॉस्पिटल में, जब ये बेड रिडन था, अनआर्म था, रिश्ता था, इसीलिए तुम्हारे पिता के कहने पर सच जानते हुए भी शिवाय ने झूठ बोला तुम्हें बचाने के लिए, और आज भी ये यही कर रहा है, वरना तुम्हारा वही हाल होता तो तुम्हारे पास होता है, समझे?
1: खैर, ये ड्रामा तो खत्म हुआ। इसी के चलते अगले ही दिन शुरू हो चुकी है मेहंदी की रस्म, जहां ग्रीन कलर के आउटफिट में सज धज कर जगधात्री तैयार है अपने हाथों में शिवाय के नाम की मेहंदी लगाने को। और देखिए कैसे वो सज संवर रही है शिवाय के लिए।

वैसे ग्रीन कलर के ही आउटफिट में है शिवाय, जो जगधात्री को कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। और देखिए कैसे ये दोनों खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। भाई इन्हें देखकर तो साफ जाहिर है कि रब ने बना दी जोड़ी।

0: उसी के साथ सभी घर वाले भी ग्रीन कलर के रंग में रंगे हुए हैं। भाई मेहंदी का फंक्शन जो है, ऐसे में देखिए कैसे माया जगदात्री के हाथों में लगा रही है शिवाय के नाम की मेहंदी। इसी के साथ मेहंदी की रस्म में पहुंच गई है जगदात्री की मम्मी भी, जो देखिए अपने हाथों से जगदात्री को मेहंदी लगा रही है।
1: जगदात्री भाभी, हाउ एक्साइटेड आर यू? आज आपको शिवाय भैया के नाम की मेहंदी लगने वाली है। हां की मेहंदी लगा दीजिए ना, माया की मेहंदी लगा लेगी तो ऐसा चल।
0: जहाँ एक तरफ मेहंदी की रस्म हो रही है, सभी नाच गा रहे हैं और मना रहे हैं ढेर सारी खुशियाँ, तो वहीं अपने पति रुद्र को ढूंढते हुए कमरे में पहुँच गई है तपस्या। और देखिए कैसे रुद्र चाकू हाथ में लिए डरा सहमा इस कबर्ड में बंद है। ऐसे में तपस्या उसे समझाती है और मेहंदी के फंक्शन में चलने के लिए कहती है।
2: अब तक पुलिस ने मूसा के सारे ससुराल रेड कर चुके हैं, पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल है, सबकी जुबान पे ऐसी सवाल, आखिर कौन है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिसने मूसा की जानकारी पुलिस को देकर, कौन है वो साहसी इंसान?
1: ओके, तो वो वेजिटेबल्स नाइफ प्लेट सब कहाँ है? जगह है क्या सारे बनाने की? सारे कपड़े खराब हो जाएंगे ना, मेरे गिफ्ट खराब हो जाएंगे, बाहर कर दियो, बाहर निकल।
3: तुम्हें अपने गिफ्ट और कपड़ों की पड़ी है, हाँ? ना मेरी लाइफ खराब हो रही है उसका क्या?
1: बहुत गुस्सा आ रहा हूँ तुम्हें, आई एम टू डन, ठीक है? नीचे ना सब लोग वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, पहले तुम ऐसे विंडोज बंद कर देते हो, फिर ऐसे बेड पे तुमने पिलोज रख दिया, वैसे अंदर बैठे हो, यू नो व्हाट, नीचे सब वेट करें, रेडी हो जाओ जल्दी से और नीचे आ जाओ।
0: तो भाई शिवाय और जगदात्री की इस शादी में ट्विस्ट है अनलिमिटेड। अब देखना होगा कि इनकी शादी बिना ट्विस्ट के सफल हो पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब हमारी जिंदगी की तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया भी नहीं होती है एक जैसी, तो आज तो हमारे एंटरटेनमेंट के कैमरे ने कैद किए हैं कुछ ऐसे पल जो हैं रॉकिंग एंड शॉकिंग, जो आपको हैरान कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या लेकर हाजिर हैं हम इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें बात करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की जहां शूट हुआ ये क्लाइमैक्स सीन, जहां नंदिनी ने पार्थ को मारी गोली और दूर खड़ी ये सब देख रही थी तुलसी। वैसे बिहाइंड द सीन देख लीजिए, जहां चल रही है इनकी बंदूक लीला और बंदूक के साथ फोटो सेशन।

0: का गुप्ता, राजेंद्र चावला और बाकी के सितारे। भाई इस डिनर पार्टी में सभी ने खूब एंजॉय किया और खींची ढेर सारी तस्वीरें।
1: I never thought that it will come out like this, but I would like to...
0: Director's Cut Production के YouTube show में actress Debatma Saha और actor Tushar ने ये announcement की है कि ये दोनों relationship में हैं और एक दूसरे को date कर रहे हैं। भाई ये दोनों साथ साथ काम भी कर रहे हैं। ये शर्मा गई में, ऐसे में देखिए कैसे Debatma कर रही है announcement कि कैसे वो Tushar को date कर रही है। और इन दोनों की केमिस्ट्री आज देखने लायक है।
1: I never thought that it will come out like this, but I would like to announce something which I have never done in my life. I always keep my private life private, but I'd like to let you guys know that we both are dating each other.
2: इतना कंफर्टेबल, इतना जल्दी किसी के साथ हो जाओ यार, यू जस्ट गेट दैट वाइब कि भाई यू नो वी कैन।
3: मुझे क्या नहीं पसंद है?
2: सब पसंद है, वो ना
3: बहुत अच्छी आई। तू सही पसंद है यार, कम ऑन। Never have I ever enjoyed a romantic scene a little too much. हाँ यार, come on. वो क्या होता है जब एटमॉस्फेयर ऐसा होता है ना, तो वाइब जब मैच कर जाती है तो रोमांस ना जो अंदर थोड़ा बहुत होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा निकल के आ ही जाता है। देख जितना मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें जो मैं तुझे इस इंटरव्यू के बाद बताऊंगा।
2: नहीं नहीं अभी बोल, आई वांट यू गाइस आल्सो टू नो, गो अहेड।
3: इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की। यू नो व्हाट, स्क्रिप्ट रीडिंग से लेके मेकअप रूम तक, मेकअप रूम से लेके यहाँ तक मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार हुआ है।
4: प्यार सिर्फ दिल लगी है, प्यार तो दिल की लगी है।
0: दंगल टीवी लेकर आ रहा है नया सीरियल जिसका नाम है कैसी तेरी दिल लगी। देख लीजिए इस सीरियल की पहली झलक।
4: प्यार सिर्फ दिल लगी है, प्यार तो दिल की लगी है।
2: और यहाँ तो प्यार में दिल की लग गई है।
5: देखिए कैसी तेरी दिल लगी,
0: का रंजन जल्द ही मम्मी बनने वाली है। ऐसे में हुई उनकी बेबी शावर की रस्म जिसमें शामिल हुआ पूरा परिवार। देख लीजिए गोद भराई की ये तस्वीरें।

जैस्मिन भसीन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अस्पताल में। असल में वो हॉस्पिटलाइज है और ऐसे में उनके घर वाले पहुँचे उन्हें ये बर्थडे सरप्राइज देने के लिए।

0: हमारा नाम बनारस बाब।
1: एक इवेंट पर पहुंचे जैकी श्रॉफ, जहां वो पान बनाते नजर आए। देख लीजिए इनका ये फन बैंड वाला वीडियो।
0: हमारा नाम बनारस बाबू, हम है बनारस बाबू।
2: कलकत्ता पान है मगर गाना बनारस है।
3: और पहना साउथ इंडिया
2: है। गुजराती बाबा तो पहना साउथ इंडिया है। हाउ लवली, इसको कहते हैं इंडिया यूनिटी।
1: दिल में से सामने आए हैं ये बीटीएस नजारे, जहां साइकिल चलाती नजर आ रही है वृंदा, साथ ही साथ हो रही है शूटिंग भी।
4: हाय गाइस, अस बिफोर वाचिंग मैं वापस आऊंगा।
1: शर्वरी वाघ और वेदांग रैना ने शेयर किया है ये वीडियो, जहां वो बता रहे हैं कि फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के बाद क्या है उनका रिएक्शन। देख लीजिए इनका ये वीडियो।

0: बीती शाम हुआ एक खास इवेंट जो कि था जया किशोरी कॉन्सर्ट, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे जैसे कि सचेत परंपरा और कई और सितारे जो इस कॉन्सर्ट में हुए शामिल।
1: हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और ये पंकज शर्मा जी हैं। हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अनिवेश द्विवेदी, हेमंत पांडे सर और कौन थे भैया?
2: दोस्तों, बड़ा मुश्किल सफर रहा लेकिन हम लोग इस वक्त मुंबई आ चुके हैं।
0: एक्टर सत्येंद्र सोनी जो नजर आ चुके हैं मिर्जापुर लापता लेडीज में, उन्होंने ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है मदद मांगते हुए। असल में उन्होंने बताया है कि कैसे डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने उनके काम के पैसे उन्हें नहीं दिए हैं और कई और खुलासे उन्होंने अपने इस वीडियो में किए हैं। आप भी डाल लीजिए इस वीडियो पर एक नज़र,
2: ताकि एमपी में जो लोग हों, जो एमपी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो बता पाएं कि हम वहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, उसमें ये तो समझ में आ रहा था कि उन्हें सिनेमा नहीं बनाना, वो शायद किसी और मकसद से थे और उनका मकसद जो भी था, हमने वहाँ एकता दिखाई और हम कलाकार एक रहे और हम किसी तरह वहाँ से आ गए हैं और
3: हम सुरक्षित हैं।
1: हम सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच भैया पुलिस।
4: अब लाफ्टर शेफ के सेट पे कैमरा सिर्फ खाना नहीं बल्कि मस्ती और हंसी के पल को भी कैद कर लेता है। स्वाद के साथ साथ यहाँ तो हर पल बन जाती है यादगार। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको लाफ्टर शेफ के इस मंच पर और देखते हैं एंटरटेनमेंट के कैमरा में आज कौन कौन कैद हुआ और कौन लेकर आ रहा है हमारे लिए लाफ्टर की नॉनस्टॉप थेरेपी। लेट्स चेक इट आउट।
5: बेबी कुछ नहीं, अपन को वही बनाना है जो उन्होंने कहा है।
6: हाँ,
5: अपना मेरा हार्ट टूटा,
6: क्या बनाऊं, सो क्रिएटिव
5: बबुल, छोटी ड्रेस बना, ज्यादा स्टाइल मत मार, जो इजी बन सके वो हो। तुम जीरो ना,
6: इंस्पेक्शन पे निकली हूँ मैं।
7: हाँ, अभी मुझे को बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये जो ये करता है ना, ये कैसे लाओ इसे? क्या
6: अब अपन ऐसे लुक भी कैसे दे यार, स्केच आर्टिस्ट थोड़ी रहा है।
7: हाँ चलो यार, कुछ करे, हटाओ
5: बाबू, आप वो बना लो।
7: मैं टेबल बना रही हूँ, पेन दिखाऊ? बता
5: पेन, सिर्फ मैं खड़ा हूँ कड़छी पकड़ के, आप हो ड्रेस पहन के माइक हाथ में लेके, इतना ही बना पाओगे? टेबल कुर्सी ये वो नहीं बन पाएगा, चुपचाप जो बन पा रहा है वो बनाओ।
8: दोस्तों जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अभी विक्की भैया अंकिता की क्लास ले रहे थे वो बेचारा अकेला कितनी मेहनत से लगा हुआ है। ये क्या कर रही है, इधर इधर से उधर, आ, आ, आ, आ, बस।
6: That's my job. आप क्या करते हो?
8: ये आपका जॉब है? आ, ये
6: क्या जॉब है कि मैं क्या कर रही हूँ वो देखते रहना, या अपनी बीवी की मदद करना, बस आपको देखते रहना।
8: मेरा जॉब है कि आपको अपनी जॉब पर भेजना, ताकि हम लोग टाइम से जॉब खत्म करके अपने घर जा सकें, है ना?
6: ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छा मैं चलती हूँ।
8: फिर मत आना।
9: ये कैसे बनेगा भाई आटा?
10: बना दूंगा,
9: सोते हुए बंदा बना।
10: सूट पैंट में मैं दोनों को सूट पैंट बना देता हूँ, एक को गजर खिला देता हूँ और एक को वो कर देता हूँ।
9: आपकी ड्राइंग तगड़ी है क्या?
10: हाँ हाँ, माइंड ब्लोइंग
9: है। बना दो भाई, मुझे ऐसा बनाना, देखो मैं खड़ा हो जाऊंगा। okay.
10: इसको बेल के पतला करके दे मेरे को, तीन चार
11: इसको ऐसे करके, ऐसे स्लाइस करके काटना है ना?
6: किसको
11: स्लाइस करके?
9: भाई कोई काट काट मार,
11: किसी के ऊपर बनाना है
6: इसको? इसको ढकना है तुम्हें?
11: क्यों क्यों? ताकि ताकि खराब ना हो
6: जाए।
10: जन्नत बता रही है।
11: अबे वो स्टार जी दीदी,
10: जन्नत बता रही है, सुन ले ढंग से।
11: सो वी हैव कलर्स, लॉट ऑफ कलर्स, वी हैव सम व्हाइट स्टिकी थिंग, ओ इट्स क्ले,
10: बना के दिखा दो।
12: आओ मैं।
11: अरे नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं बनाएंगे, नहीं आप नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं
12: नहीं, अच्छा
11: नहीं, नो, आज पूरा मैं बनाऊंगा सर। नहीं
12: आप ही बनाओ।
11: ओ तू मेरे को बना, मैं तेरे को बनाता हूँ,
12: बस दोनों यही तो करते रहे हो तुम लोग,
13: यही तो करते रहे हो तुम लोग।
5: अभी अच्छा बनाना है आपको, प्लीज अच्छा बना लेना, आज इज्जत रख लेना बेटा, कुछ अच्छा काम कर लेना।
6: कभी ड्रॉइंग बनाई है?
5: आपने हमेशा अपनी जीभ की कला चिल्ला चिल्ला के दिखाई, आज हाथों की कला भी दिखाई।
6: वाओ यार, डायलॉग्स,
14: प्लीज बेबी प्लीज,
15: कलरफुल बनाना
16: कपड़े।
4: तो आज के लिए बस इतना ही, मुस्कुराइए क्योंकि जिंदगी का हर खूबसूरत पल कैमरा में कैद करने लायक है। अब लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
9: त्रिभाषा नीति पर CBSE का नया फैसला, साल 10वीं के छात्रों को छूट, नए नियम केवल आने वाले बैच के लिए प्रभावी, CBSE ने जारी की गाइडलाइंस। सेशल्स में नवशक्ति विनायक मंदिर में प्रधानमंत्री ने किया दर्शन, भारतीय समुदाय से मुलाकात की, महात्मा गांधी को किया नमन, दिल्ली के लिए रवाना। सेना अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने किया अपनी ऑपरेशनल तैयारियां और खेल भावना का प्रदर्शन। मंगोलिया के उलान बटार में फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहा युद्ध अभ्यास। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा को लेकर एजेंसियां ने की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी यात्री निवास का भी किया निरीक्षण। आज हुई बाबा अमरनाथ की पहली पूजा, 3 जुलाई से यात्रा। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से स्नान। बहुत तेज गर्मी की चपेट में यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री के पार, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा असर, फ्रांस के 54 इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की उनकी प्रथम पूजा की गई। LG मनोज सिन्हा ने बाबा भोलेनाथ की पूजा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने मॉक ड्रिल की, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईटी विस्फोट, गोलीबारी, आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। अमरनाथ बेस स्टेशन के पास सीआरपीएफ तैनात, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर जवानों ने कई जगहों पर चला वाहन जांच अभियान, यात्रा मार्ग पर पुलिस कर रही है लगातार गश्त। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने NH-44 पर सड़क खोलने का ऑपरेशन तेज किया। अमरनाथ यात्रा काफिले का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे क्रॉसिंग उधमपुर पर ड्राई रन चलाया गया, बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां तेज, आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टेका गया मत्था, भगवान का आशीर्वाद। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, संबित पात्रा भी मौजूद रहे। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में स्नान यात्रा उत्सव की रौनक। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रही है भक्तों की लंबी कतारें, गर्मी के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर उड़ीसा के पुरी तट पर भी उत्सव के रंग रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृतियां। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दिव्य दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, कलाकृति में पारंपरिक स्नान अनुष्ठान के 108 कलश भी स्थापित किए गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान और पूजा का विशेष महत्व इस बार बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और मूल नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से मिलता है वरदान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रात तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व, विधि विधान से पूजा करने पर मनोकामना पूरी होने की मान्यता। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में आज रखा जाता है वट पूर्णिमा का व्रत, सुहागिन महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं, पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा, घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहने की मान्यता। उज्जैन में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक के बाद भांग, चंदन और रजत आभूषणों से किया गया दिव्य श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों ने जमकर लगाया हर हर महादेव के जयकारे। अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा, रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमृतसर में राज्य स्तरीय एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भव्य निकाली गई माता शूलिनी की डोली, लोगों ने भव्य स्वागत किया। शूलिनी मेला में देखिए जबरदस्त आस्था परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम, मस्जिद के बाहर से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूलों की वर्षा की। धार्मिक परंपरा को लेकर श्रद्धालु में देखा जबरदस्त उत्साह, लोगों ने सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हिमाचल के शिमला में सांसद अनुराग ठाकुर ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण, लोगों से पौधा लगाने की अपील की। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर शानदार समारोह किया गया, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने मुख्य अतिथि। सेशल्स के रॉस कैमन स्थित स्टैट लिनिटे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने नवशक्ति विनायगर मंदिर में पूजा पाठ की, भगवान का आशीर्वाद लिया। विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, बापू को नमन किया। हरदोई में बीजेपी नेता ने पिता बनकर रा निभाया फर्ज। बीजेपी नेता ने बिजली मिस्त्री की बिटिया सानवी का कन्यादान किया। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के लिए हिल स्टेशन पर बड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। लाहौल घाटी में होटल्स और होम स्टे लगभग पूरी तरीके से फुल। लाहौल घाटी के सुंदर नजारे देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। खूबसूरत वादियों का ले रहे हैं लुत्फ। पहाड़ों में बहती नदियों पर रोमांचक जिप लाइन का भी आनंद ले रहे हैं। लाहौल घाटी में ट्रैकिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवा के साथ बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर लग चलने का अनुमान। मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर लगातार रुक कर रहे हैं सैलानी। बड़ी संख्या में कठुआ पहुंचे पर्यटक। सरथल में सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों को आंखों में कैद किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। शिकारा राइड का भी ले रहे हैं लुत्फ। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। कोटा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण किया। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्म मिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: त्रिभाषा नीति पर CBSE का नया फैसला, इस साल 10वीं के छात्रों को छूट, नए नियम के बल आने वाले बैच के लिए प्रभावी, CBSE ने जारी की गाइडलाइंस। सेशंस में नवशक्ति विनायक मंदिर में प्रधानमंत्री ने किया दर्शन, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, महात्मा गांधी को नमन किया, दिल्ली के लिए रवाना। सेना अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने किया अपनी ऑपरेशनल तैयारी और खेल भावना का प्रदर्शन, मंगोलिया के उलान बटार में 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहा है युद्ध अभ्यास। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा को लेकर एजेंसियों का मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी यात्री निवास का निरीक्षण किया, आज हुई बाबा अमरनाथ की पहली पूजा, 3 जुलाई से यात्रा। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से स्नान। बहुत तेज गर्मी की चपेट में यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा, फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी में सबसे ज्यादा असर, फ्रांस के 54 इलाकों में भीषण गर्मी का अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनो।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। वो तीर्थ चमत्कारी है, उसे देवादिदेव महादेव का ठिकाना माना जाता है, जहां मान्यता है कैलाशपति ध्यानमग्न रहते हैं। कहते हैं कि कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पूजनीय नहीं है, बल्कि ये बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी वंदनीय है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कई पड़ावों और मार्गों से होकर गुजरती है। कैलाश के दर्शन करने वाले इसे दिव्य अनुभूति बताते हैं। आज हम आपको कैलाश का पौराणिक महत्व बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों खास है कैलाश पर्वत।

0: कैलाश, जहां बहती है आस्था की गंगा, जहां देव आदि देव महादेव ध्यान मग्न रहते हैं। कैलाश जो हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्मवलंबियों के लिए भी पूजनीय है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए ये बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी, जबकि बौद्ध धर्म मानता है कि कैलाश मानसरोवर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। कैलाश से कुबेर की नगरी, भगवान शिव का निवास, बौद्ध जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है।
1: मानसरोवर शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, मानस यानी कि मन और सरोवर यानी कि झील। इसका अर्थ है मन की झील। पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो स्थान है जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। ये पृथ्वी पर एक ऐसा ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा का सीधा प्रवाह होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव का ध्यान मुद्रा में स्थित स्थान माना गया है। ये पर्वत पूर्ण मौन शांति और ब्रह्मांड की तुलन का प्रतीक है।
0: वैज्ञानिकों के लिए कैलाश रहस्य है तो वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में कई कथाएं समेटे हुए है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,028 फीट ऊंचा है, जिसका शिखर शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। इसके शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि शिवाजी पार्वती अपने दो पुत्र गणेश और कार्तिकी के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: कैलाश पर्वत की पूजनीय यात्रा इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का दिव्य निवास कैलाश पर्वत को माना गया है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती के साथ ध्यान और समाधि में भगवान शिव स्थित रहते हैं। अनेक पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कैलाश का उल्लेख एक पवित्र पर्वत के रूप में मिलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना प्रबल होती है।
0: पौराणिक मान्यताओं में ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे कांगरी नवो कहा जाता है और यहाँ बौद्ध धर्म की अनुयायी ध्यान और साधना के लिए आते हैं। जैन धर्म में यहाँ पर भगवान ऋषभदेव के तप करने की मान्यता है। सिख धर्म में कैलाश पर्वत का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने यहाँ की यात्रा की थी। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी कथा है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्ग लोक गई थी। सनातनियों का विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही मानसरोवर का जलस्तर हमेशा एक समान रहता है और यहाँ आकर 33 कोटि देवी देवता सरोवर में स्नान करते हैं। आस्था कहती है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई ग्रंथों में कैलाश का जिक्र मिलता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच है कैलाश पर्वत। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं, लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा। वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना जरूरी है। अब ये यात्रा दो रूट से हो रही है। ये दोनों रूट कौन से हैं? आपको विस्तार से बताते हैं।
1: कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की जो यात्रा है वो भारत और नेपाल के रास्ते से की जाती है। इसका एक रास्ता उत्तराखंड का है जो कि पारंपरिक मार्ग है, वहीं दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर जाता है और वहीं तीसरा मार्ग जो होता है वो नेपाल मार्ग माना जाता है, जहां पे सड़क या हेलीकॉप्टर के माध्यम से नेपाल तिब्बत सीमा तक पहुंचकर आगे तिब्बत में वाहन से यात्रा की जाती है।
0: यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड से शुरू होता है। ये भारत का पारंपरिक मार्ग है। सबसे पहले पिथौरागढ़ और धारचूला पहुंचते हैं। इसके बाद यात्री लिपुलेख दर्रा पार करके तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यहाँ से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे रवाना होते हैं। यहाँ से यात्रियों का जत्था कैलाश मानसरोवर पहुँच जाता है। अब बात करेंगे भोलेनाथ की इस पवित्र यात्रा के दूसरे मार्ग की, जो सिक्किम से होकर गुजरता है। इस रूट से यात्रा की शुरुआत सिक्किम की राजधानी गंगटोक से शुरू होती है। ये मार्ग लिपुलेख की तुलना में ज्यादा आरामदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग कम होती है और अधिकांश सफर वाहनों से होता है। ये मार्ग सिक्किम से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। यहाँ से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे रवाना होते हैं। यहाँ से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुँच जाते हैं।
2: सूर्य के किरणें पड़ने पर सोना सा दमकने वाला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का वर्णन तो कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। अपनी विशेष परिस्थितियों के चलते इस पर्वत पर

0: बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यश्रृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्री और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है।
1: कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। इसके मुख्य प्रभाव जो हैं, वो होते हैं कर्मों की शुद्धि, शांत और ऊर्जावान आप यहाँ पे महसूस करते हैं और साथ ही आपके अहंकार का विनाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश भगवान शिव का निवास है और ओम को सृष्टि का आदिनाथ तथा शिव का पवित्र प्रतीक माना गया है। इसलिए कई श्रद्धालु पर्वत की बर्फ और चट्टानों की आकृति में ओम का स्वरूप देखते हैं और इसे दिव्य संकेत मानते हैं।
0: कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शिघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहो गणनम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्ट सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा, तब उन्होंने ये बात कही थी। इस तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैष्णवनो राजन गोह्यकः सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकुट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त्याति क्रम्यम शिखरम कैलासमय युधिष्ठिर गति परम सिद्धानम देवर्षिणी प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है, तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि अपने तमाम मन सुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया की सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियाँ अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी है, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं, जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। आगे हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे।
2: अपने आप में कई रहस्य समेटे है शिव का यह अलौकिक धाम। तो चलिए अब आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाकई आस्था के साथ चमत्कारों को अपने अंदर समेटे हुए हैं।

0: कैलाश जो दिव्य अनुभूतियों को समेटे है, जहां सनातन धर्म का अटूट विश्वास है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। साथ ही कैलाश पर्वत से कई अनसुलझे रहस्य जुड़े हैं, जो कई धर्मों के आस्था के केंद्र में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि आखिर कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। मुश्किल है कैलाश पर चढ़ना। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका।
1: ये कहना सही नहीं होगा कि कैलाश में कोई चढ़ नहीं सकता। अधिक सटीक बात मैं ये बोलूंगी कि कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु इसे देवस्थल मानते हैं, इसी कारण इसकी चोटी पर चढ़ना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध माना जाता है। कई बार ये भी दावा किया गया है कि जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसके साथ बहुत ही अलौकिक घटनाएं हुई हैं या कोई वापस भी नहीं आ पाया है। यही कारण है कि श्रद्धालु जितने भी है वो चोटी पर चढ़ने के बजाय इसकी परिक्रमा को ही सबसे बड़ा धार्मिक कार्य मानते हैं।
0: दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है, जिसकी चारों दिशाओं में सिमेट्रिक फेजेस हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नेचुरल इरोजन और ग्लेशियर की वजह से बना है, लेकिन इसके पीछे परफेक्ट और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री प्रकृति में और कहीं शायद ही देखने को मिलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज जैसी संरचनाओं से जुड़ा हुआ है और प्राचीन एनर्जी ग्रिड का हिस्सा हो सकता है। वही तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे अक्ष मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है।
1: पर्वत का जो आकार है वो पिरामिड जैसा दिखता है, और यहाँ पर आप देखिए कि पर्वत पर ओम और स्वास्तिक जैसे आकृतियाँ लोगों को बर्फ और चट्टानों में दिखती हैं। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे समय बहुत ही तेजी से बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीत गया। और साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही असाधारण ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
0: कैलाश पर्वत के पास दो झीले है, एक है मानसरोवर जो मीठे पानी की झील है। मानसरोवर का जल पवित्र माना जाता है। इसके पास में ही राक्षस ताल है जो खारे पानी की झील है। इसका पानी ना तो पीने लायक है और ना ही यहाँ जीवन पनपता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों झीलें कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन टेक्टोनिक हलचलों के कारण ये अलग हो गई। फिर इन दोनों के पानी में इतना अंतर क्यों है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया।
1: यहाँ पे आप मानसरोवर और राक्षस ताल ये दो प्रसिद्ध ताल देखेंगे, और यहाँ पे इसके पास कुछ प्रसिद्ध झीलें भी हैं। मानसरोवर का जो झील है वो मीठे पानी की झील है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। वहीं जो राक्षस ताल है वो खारे पानी की झील है और उसके साथ भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है।
0: कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास समय की गति बदलने जैसा अनुभव किया। कुछ का कहना है कि यहाँ कुछ घंटों में ही उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ गए, जबकि कुछ को बहुत जल्दी बूढ़ा होने का एहसास होने लगा। दावा किया जाता है कि 1999 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एंसर्ट मुल्दाशेव ने एक रिसर्च के दौरान पाया कि कैलाश के अंदर से आवाजें और पत्थर गिरने की भी आवाजें आती हैं। अपने अस्तित्व में कई रहस्यों को समेटे है शिव का ये संसार, जिससे कई धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आप भी महादेव के इस अलौकिक संसार के साक्षी बनिए। यकीन मानिए, यहाँ आ चुके भक्तों का मानना है कि हिमालय की गोद में बसे इस पावन धाम में आकर आपको शिव की शक्ति का एहसास होगा, एक अलग ही लोक में पहुँचने का अनुभव होने लगेगा।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Stephen.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
14: ओडिशा के मयूरभंज में एक कलाकार की प्रदर्शनी चर्चा में है। देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस कलाकार का नाम जो है कुमार मिसाल है। इनकी खासियत ये है कि ये जिस पेपर पर अपना आर्ट वर्क तैयार करते हैं वो पेपर भी खुद बनाते हैं, वो भी खेती के कचरों से, और इनकी कलाकृतियों में खास तौर पर कृषि जीवन की झलकियां मिलती हैं।
15: अगर आपसे कहा जाए कि यह चित्रकारी वेस्ट टू वंडर का सबसे अनूठा और नायाब उदाहरण है, तो आप शायद यकीन न कर पाए, लेकिन ये सच है और इस सच को जी रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के कलाकार कुमार मिसाल, जो एक खास तरह के चित्रकारी के लिए मशहूर हैं। ये खेती के कचरों से पहले पेपर तैयार करते हैं और फिर उसी पेपर पर चित्रकारी करते हैं। अपनी भावनाओं, सोच और उम्मीद को बड़ी बारीकी से इन्हीं कागजों पर उतार देते हैं।
16: कि मैंने बचपन में देखा है कि वेस्टेज फार्मिंग सोसाइटी में या फिर मेरे घर में कोई चीज़ें होती नहीं थी, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रक्रिया करके नई चीज़ बनाई जाती थी। तो यही चीज़ मेरे काम में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी। मेरे फार्म में जो भी वेस्टेज फाइबर्स है या फिर चीज़ें है उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसके कागज़ बनाना और कागज़ और कलाकृति बनाना मैंने शुरुआत किया।
15: खास बात तो यह है कि ये ना सिर्फ पेपर बनाने में खेती के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं बल्कि कागज पर जो कुछ उकेरते हैं उनमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है।
16: बनाना मैंने शुरुआत किया।
15: खास बात तो यह है कि ये ना सिर्फ पेपर बनाने में खेती के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं बल्कि कागज पर जो कुछ उकेरते हैं उनमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है।
17: खेती में जो कुछ भी यूज होता है, छोटी भी चीज वेस्ट ना हो, वो माइंडसेट को लेके वो कॉर्न हस्क, बनाना फाइबर, राइस हस्क जैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेके उनके साथ उन्होंने मास्टरी बनाई है, एक्सपर्टीज बनाई है पेपर बनाने में और उसके ऊपर वो चित्रकार करते हैं।
15: कुमार की इन कलाकृतियों में कृषक जीवन की चुनौतियां, उनके संघर्ष हैं, उनकी जीवटता है। वुडकट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे किसानों के परिवारों पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज भी करते हैं और उनके प्रवासन और विस्थापन के मुद्दों को उजागर भी करते हैं और इस तरह वो प्राकृतिक कृषि सामग्री और खेती के कचरों से कथाएं रचते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं।
16: वो जो कलाकृति है उसके ऊपर या जो कागज़ है उसके ऊपर जो सोसाइटी में फार्मर के इश्यूज़ है, जो उनका संघर्ष है, वो पेंट करने का काम मैं करता हूँ सर। और मैं जो कागज़ बनाता हूँ और जो फाइबर बनाता हूँ वो एसिड फ्री और अल्कोहल फ्री होता है, तो उसके वजह से होता ये है कि उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि उससे दीमक या कीटक लगने से थोड़ा बचता है वो। तो ये इंस्पिरेशन और ये जो प्रभाव है वो मुझे फार्मर के रूटीन से आया हुआ है।
15: ओडिशा के मयूरभंज में कुमार विशाल के चित्रों की ये प्रदर्शनी न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है बल्कि हैंडमेड इको पेपर क्रिएशन के जरिए ग्रीन आर्ट को बढ़ावा भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: आइए बात करते हैं हरियाणा के एक दादाजी की। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ स्काई डाइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें। ये वीडियो अंकित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम अपने बाबा जी को ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कराने के लिए लाए हैं। पिछली बार 15,000 फीट से करवाई थी, आपकी बार 18,000 फीट से करवा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोगों को हरियाणा के इस बुजुर्ग के जज्बे और दादागिरी के खूब तारीफ वो लगातार कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
18: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
19: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
21: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
22: त्रिभाषा नीति पर सीबीएसई का नया फैसला, इस साल दसवीं के छात्रों को छूट, नए नियम केवल आने वाले बैच के लिए प्रभावी। सुशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवशक्ति विनायक मंदिर में किए दर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, स्वदेशी वापसी से पहले महात्मा गांधी को नमन किया। मंगोलिया में जारी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने दिखाया रणकौशल, ऑपरेशनल तैयारियों के साथ सैन्य अभ्यास में खेल भावना का भी प्रदर्शन। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण। आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से स्नान। भीषण गर्मी की चपेट में यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में दिख रहा सबसे ज्यादा असर, पश्चिमी यूरोप में पारा 44 डिग्री के पार।

0: वाह, स्वागत है आपका ज्येष्ठ पूर्णिमा। स्नान परंपरा की वजह से काफी पावन तिथि ये मानी जाती है, जब आस्था अपने सबसे विराट स्वरूप में नजर आती है। ये स्नान, साधना संपूर्ण और समर्पण और श्रद्धा का अद्भुत संगम इसको कहा जाता है। और इस शुभ अवसर पर्व में जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां आरंभ होती हैं, तो उत्तर में बाबा अमरनाथ की यात्रा का शंखनाद होता है। देश के अलग अलग तीर्थ एक ही दिन करोड़ों श्रद्धालुओं को धर्म, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना के एक सूत्र में बांध देते हैं। और यही वजह है कि आज का दिन सनातन परंपरा के लिए बहुत खास मायने रखता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जारी है, अभिषेक हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 150 साल बाद गजकेसरी योग भी बना है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के संयोग से ये विशेष तिथि बन रही है और इस शुभ अवसर पर जगन्नाथ धाम में देवस्थान का महापर्व मनाया जाता है। तो वहीं आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा भी संपन्न हुई है। इन दोनों ही रीतियों का सनातन संस्कृति में काफी विशेष महत्व है। हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद रहेंगे, जिनसे हम आगे आज के दिन का महत्व समझेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ जगन्नाथ धाम और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तमाम परंपराओं और रीतियों पर भी आज चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति का अद्भुत परंपराओं का उत्सव माना जाता है। एक ओर पुरी में भगवान जगन्नाथ का दिव्य महास्नान होता है, जहां 108 पवित्र कलशों से के जल से महाप्रभु का अभिषेक कर रथ यात्रा की तैयारियों का शुभारंभ होता है। महास्नान के बाद भगवान अंसर में विराजते हैं और फिर नव यौवन दर्शन के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के उत्सव का श्री गणेश होता है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय की गोद में मौजूद पवित्र अमर भगवान अंसर में विराजते हैं और फिर नव यौवन दर्शन के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के उत्सव का श्री गणेश होता है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय की गोद में मौजूद पवित्र अमरनाथ धाम में प्रथम पूजा के साथ ही बाबा बर्फानी की वार्षिक यात्रा का शुभारंभ होता है। मान्यता यह है कि इसी पावन गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था और यही कारण है कि हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु कठिन मार्ग पार करते हुए हिमलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
1: बहुत ही खुशी हो रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे हैं, तो ये भगवान की महिमा है। पर्व आरम्भ होता है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, मतलब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना खुश हैं।
2: मैं हमेशा न्यूज में और चैनल्स में देखती थी उड़ीसा का ये महापर्व, आज पहली बार सौभाग्य मिला है मुझे यहाँ पे आने का। बहुत ही खुशी हो रही है, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग यहाँ पे परसों से ही लाइन लगा रहे हैं, तो ये अलग ही दृश्य है। और अभी हम दर्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं भगवान जी के।
3: हम जगन्नाथ जी के दर्शन को हर साल आते हैं और स्नान यात्रा में हमें आने की हमेशा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको लगता है भगवान साक्षात ही आ गए हैं।
0: तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर उत्सव भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 8 फीट ऊंची और 18 फीट चौड़ी रेत की आकृति बनाई है, जिसमें स्नान पूर्णिमा की पावन रस्म बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई है। अपनी इस कला के जरिए मशहूर सुदर्शन पटनायक ने शांति, भक्ति और श्रद्धा का संदेश दिया, साथ ही भगवान जगन्नाथ से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं का वर्णन किया। और इस मौके पर सुदर्शन पटनायक ने कहा, स्नान पूर्णिमा बहुत आध्यात्मिक महत्व वाला त्योहार है, इस रेत की मूर्ति के जरिए मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ और सभी के लिए शांति, समृद्धि और भलाई का आशीर्वाद मांगता हूँ। तो उधर आज बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा भी की गई है। ये प्रथम पूजा हर साल पवित्र तीर्थ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को की जाती है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के औपचारिक शुभारंभ से पहले की जाने वाली प्रथम पूजा का काफी बड़ा और गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये पवित्र अनुष्ठान बाबा बर्फानी से पूरी यात्रा के निर्विघ्न और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि बताते चले कि औपचारिक रूप से बाबा बर्फानी के दर्शन या फिर कहें कि इस यात्रा के लिए जत्थे रवाना होंगे। हर साल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल होते हैं। प्रथम पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना, ताकि सभी तीर्थयात्रियों बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अनहोनी के इस कठिन मार्ग को पार कर सके और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके।

0: खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। महंत सीताराम दास स्पोक्स पर्सन है, निर्मोही अखाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महंत सीताराम दास जी, देखिए बहुत अहम आज का दिन और इस पूर्णिमा के लिए भी कहा जा रहा है कि 150 साल बाद विशेष योग बन रहे हैं सनातन में, किस तरीके से इसका वर्णन किया गया है महंत जी?
1: हमारे यहाँ कोई ना कोई तिथि उत्सव महोत्सव ऐसे बनाए जाते हैं कि हम लोग ये किन प्रकार भगवान के भजन में आराधना साधना में लगे रहें। आज की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है इसको गज केसरी योग भी आज बनता है, इसलिए आज का विशेष महत्व है भगवान की आराधना साधना के लिए। आज से जगन्नाथ भगवान की पूजा भी विशेष रूप से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आज से भगवान एक भक्त के लिए बीमार होते हैं। एक भक्त थे श्री माधवदास जी महाराज भगवान के, जिनके लिए जिनका प्रारब्ध भगवान ने 15 दिन का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया था भगवान ने, और उनके लिए आज से 15 दिन तक सदा सर्वदा से बीमार होते चले आ रहे हैं, और 15 दिन के बाद में फिर भगवान की रथ यात्रा निकलती है, संपूर्ण भक्तों को भगवान का दर्शन होता है और सब लोग कृतकृत होते हैं। इस प्रकार से हमें ये किन प्रकार भगवान की आराधना साधना में लगे रहना चाहिए, चाहे वो ज्येष्ठ पूर्णिमा हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, आदि आदि जो ये पर्व बनाए गए हैं ये भगवान की आराधना के लिए बनाए गए हैं। हम लोग जो निरंतर खाने सोने भोगने में लगे रहते हैं, कुछ अवसर ऐसे आते हैं इनसे हट करके थोड़ा सा हम भगवान की आराधना साधना में लगे, इसलिए ये उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं और हमें भगवान की आराधना में लगना चाहिए।
0: जी बिल्कुल आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि आज का दिन कितना अहम है और जो 150 साल बाद बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है, शास्त्रों में किस तरह का वर्णन है इसका?
2: देखिए एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद, जीएनटी का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग इतने सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से जीवन में सुंदर सफलताएं मिलती है, जीवन में प्रसन्नता होती है और आत्मिक शुद्धि होती है। इस संसार के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब हम सत्संग की चर्चा करते हैं, भगवान हनुमान जी ने भी सुंदर कांड के अंतर्गत कहा था स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य फुलाय कंग और तूल नता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। इस संसार में अगर परमात्मा की चर्चा कहीं पर हो रही है, धर्म की चर्चा कहीं पर हो रही है, तो जिस घर में वो चर्चा गूंजती है, जिस कानों में वो चर्चा जाती है, वो कान वो शरीर वो घर जो है वो पवित्र हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चैनल पर जब बैठ करके धर्म की चर्चाएं होती हैं और धर्म का दर्शन होता है तो लोगों के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आता है। बातें आज के विषय पर कि आज का जो दिन है वो कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में तीन इंपॉर्टेंट प्लैनेट नवजोत जिनको कहा गया, जिसमें शुक्र को लक्ष्मी कहा गया, बुध को सरस्वती कहा गया और बृहस्पति को जीव कहा गया। शुक्र लक्ष्मी और सरस्वती का समझूंगा, लक्ष्मी सरस्वती और जीव का अगर एक साथ संयोग हो जाए तो इससे सुंदर संयोग और कोई नहीं हो सकता है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज बृहस्पति शुक्र और उसके साथ साथ वो बुध जो है वो तीनों प्लैनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं और गोचर भी कहां कर रहे हैं, उच्चस्थ राशि जो बृहस्पति की कर्क राशि है जिसको काल पुरुष का हृदय कहा जाता है, तो इससे सुंदर और कोई दिवस हो ही नहीं सकता है। साथ में चंद्रमा और बृहस्पति आपस में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा धनु राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति उसी के साथ कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, दोनों का जो अपना जो स्थान का परिवर्तन है, ये मन में इस समय पर यदि कोई धार्मिक दर्शन किया जाए, धार्मिक यात्रा किया जाए, धर्म से संबंधित कोई कार्य किया जाए तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है, परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट करने वाला होता है और भाग्य की वृद्धि कराने वाला अपने आप हो जाता है। तो आज का जो ये संयोग स्पेशली बन रहा है वो संयोग सबसे सुंदर संयोग है, जो तीनों प्लैनेट की परिस्थिति अपने आप में बहुत सुंदर है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि शनि इस टाइम पर कहां गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं, तो इस संसार में जैसा कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब वो कामदेव के समय की चर्चा है कि धरी नकारू धीर सबके मन मनसिज हरे, ते राखे रघुवीर जे उबरे जही काल मह, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल मह। तो इस समय पर जीवन में व्यक्ति ने कितना भी अपने पाप कर्म किया हो, लेकिन इस प्रकार का संयोग यदि प्राप्त हो जाए और श्रद्धा से परमात्मा की आराधना कर ले तो उन पापों से उसको निवृत्ति प्राप्त होती है और भगवान के में उसका मन प्राप्त होता है और साथ में उसके घर में लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये दिन वास्तविकता में नवजोत जी बहुत सुंदर है और एक्चुअल में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि इस दिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी
0: बिल्कुल, और इन्हीं शुभ दिन और शुभ घड़ी पर देखिए दो तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एक तरफ खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे वहां पर अमरनाथ में पूजा करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले अगर हम यहीं से शुरुआत करें, देखिए हजारों हजार या कहें कि लाखों लोगों की आस्था श्रद्धा का केंद्र अमरनाथ, और वहां पर आज शिवलिंग की पूजा हुई और इसी के बाद पवित्र यात्रा की शुरुआत होगी। और पूजा का मकसद सीधे तौर पर यह रहता है कि जो भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां जाए, भगवान इतनी शक्ति दे कि बिना किसी बाधा के वो आपके दर्शन कर पाए। कितना अहम है ये।
3: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग जगन्नाथ भगवान पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं जगन्नाथ शब्द का मतलब है जो समस्त जगत का स्वामी है, जगत का अधीश है, अधिनायक है, वही तो जगन्नाथ भगवान। सबसे अद्भुत दृश्य हमको ये लगता है कि ज्यादातर मंदिरों में कहीं पर भी देखेंगे रुक्मिणी जी के, उनकी बहन सुभद्रा जी साथ में है और बहन भाइयों का एक सामंजस्य जो दिखता है वो अनूठा अपने आप में है, वैसा नहीं दिखाई पड़ता। आपके चैनलों के माध्यम से भी और शास्त्रों में तमाम कभी कभी बातें चलती रहती हैं। श्री जगन्नाथ भगवान का जो नित्य धाम है वो अपनी अलग विलक्षणताओं को लेकर के लोक में एक अलग ही संदेश दे रहा है। चाहे समुद्र की गर्जन की बात हो, चाहे ध्वजा की बात हो, चाहे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद जो बनता है उसकी बात हम लोग कह लें, तो उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा ये होता है कि सबसे पहले नीचे से नहीं, ऊपर पहले पकता है फिर नीचे पकता है। ये सारी उक्ति सब कुछ सामने है। हमको लगता है कि इस समय जगन्नाथ भगवान जितना एक समरसता का संदेश दे रहे हैं हमारे समाज को, उदाहरण दूसरे जगत खाई
0: नहीं। चंद्रांशु जी महाराज बिल्कुल, थोड़ा ऑडियो में कुछ दिक्कत है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा संजय जी आपको इंक्लूड कर लेते हैं, तब तक चंद्रांशु जी महाराज का ऑडियो भी ठीक हो जाएगा। आज के दिन की महिमा के बारे में क्या बताएंगे संजय जी?
4: देखो सबसे बड़ा दिन है आज का दिन, क्योंकि पूर्णमासी का दिन जब होता है तो चंद्रमा जो पूर्ण हो जाता है, कहते संपूर्णता का दिवस है। और जिस पूर्णिमा का दिन है तो आज के दिन जो भी कृत्य दान पुण्य जप तप करते हैं तो उसका बड़ा पुण्य और सौभाग्य मिलता है। और आप देखें कि जगन्नाथ यात्रा का भी प्रारंभ है और आप देखें कि बर्फानी बाबा के भी दर्शन के लिए सब लोग जो है तत्पर है, तो उनकी पूजा भी हो रही है और आज संपूर्णता का दिन है, जिससे कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सब जो है तैयार होकर के बैठे हैं। और कहते हैं कि रथ को जब हाथ लगा लेता है कोई तो उसको लगता है मैंने भगवान के जो है भगवान का कोई दर्शन कर लिए, भगवान का सुख पा लिया, आनंद कर लिया। तो आज के दिन इतने अच्छे योग भी बन रहे हैं क्योंकि तो पूर्णमासी का दिन है, दूसरा आज शुक्ल योग है, ब्रह्म योग है, गजकेशरी योग है, और आज के दिन जो है सम सप्तक योग भी बन रहा है, क्योंकि सम सप्तक योग में जब सात ग्रह अलग अलग स्थानों पर होते हैं तो उस वक्त जो है मन और आत्मा जो है व्यक्ति की पवित्र हो जाती है। और कहा जाता है कि ऐसा जब संयोग बनता है जीवन के अंदर तो व्यक्ति के मन में सुख की आनंद की प्राप्ति होती है। और आज का दिन तो विशेष करके जो है भगवान का ही दिन है और ऐसे में संपूर्णता के लिए आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ और भगवान की पूजा जो है नित्य नियम से करनी चाहिए। और भगवान शंकर का विशेष करके जो है आज के दिन ध्यान करें, क्योंकि बर्फानी बाबा की पूजा भी जो है संपन्न हो रही है, तो उसमें क्या है कि आपको जो है अपने मन में अपने घर के अंदर भी जो है पूजा करनी चाहिए। और जो भी दूध दही शहद गंगाजल पंचामृत जो लेकर के और भगवान को स्नान भी करा सकते हैं, और आज के दिन अभिजीत मुहूर्त भी तो निकल गया है, पर शाम के वक्त भी आप लोग जो है पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और पूर्णमासी का दिन है, शारीरिक मानसिक भौतिक शांति के लिए फुल मून के दर्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मन और आत्मा जो है संतुलित हो, और आत्मा की शुद्धि हो, देह की पुष्टि हो और शरीर जो है निरोगी हो। तो इस प्रकार से जो है आज के दिन विशेष करके इन लोगों में जो पूजा दान किया जाता है, स्नान किया जाता है, तो आत्मा की देह की शुद्धि होगी, देह शुद्ध होगा तो आप पवित्र होंगे और अमृत तुल्य हो जाएंगे। और उस अमृत तुल्य होकर जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको अमृत की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य
0: होगी। बिल्कुल, चलिए वापस चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हैं। देव स्नान के महत्व के बारे में आप बता रहे थे।
5: नजीत जी, हमारी आवाज कहाँ तक पहुंची हमको तो पता भी नहीं चल पाया,
0: आप
5: कहाँ तक स्पष्ट है?
0: नहीं नहीं, आपकी आवाज हम सुन पा रहे थे लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं थी। आप देव स्नान के महत्व के बारे में बता रहे थे कि क्यों इतना महत्व है, इसके पीछे की कथा क्या है, वो बताइए।
5: दो बातों को लेकर के मैं ये सब कह रहा था कि जितनी भी देवालय है, मंदिरें हैं, उनमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। जगन्नाथ भगवान पहले हैं कि अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ में और बलदाव भैया के साथ में विराजमान है। यह अद्भुत दृश्य है। हमारे यहाँ सब लोग आचार्य जनगण बैठे हैं, दर्शक देख रहे हैं, 8 प्रकार की मूर्तियों का विधान है। श्री जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है वो दारुमय काष्ट में मूर्ति विराजमान है। अभी जब इनका निर्माण हो रहा था तो ये अधूरे सर्वांग नहीं बन पाया, उसकी भी लोक मान्यता जग जाहिर है, क्योंकि राजा को कहा था कि देखेगा नहीं कोई मेरे निर्माण के समय में, जिस समय विश्वकर्मा जी बना रहे थे, पर राजा ने खोल दिया दरवाजा, इसलिए अधूरी की अधूरी मूर्ति रह गई और उतने पर ही उनका पूजन होना शुरू हो गया। ऐसा ही मान्यता में भी है, शास्त्र प्रमाण भी है कि द्वारिकाधीश भगवान का जो हृदय है वह उनमें समाहित है, इसीलिए आज भी भगवान के साथ वही औपचारिकताएं होती हैं जो मनुष्य के साथ में होती हैं। भगवान ने जो लीला किया था वह भी स्पष्ट वर्णन है। स्नान में 108 घड़े का स्नान करवाते हैं, तो भगवान जो मर्त्या बता रहे तो मर्त्य शिक्षणम, जो लोक में ऐसी लीला मनुष्यवत लीला करने के लिए आते उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए उनको बुखार आता है और भगवान एकांत में जाते हैं, भक्तों को दर्शन नहीं देते, 56 भोग राजभोग भी नहीं लगता है। और उस समय भगवान को जड़ी बूटी और औषधि वाला काढ़ा इत्यादि पिलाया जाता है ताकि भगवान स्वस्थ हो सके, ठीक हो सके। तो ये जो भी मान्यताएं हैं, पर इन सब से हट करके जो अद्भुत चमत्कार है उन सब के बारे में सब लोगों ने जानते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। वहां पर कभी भी समुद्र की लहरों का गर्जन नहीं सुनाई पड़ता है, कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ करके नहीं जाते हैं, ध्वजा विपरीत दिशा में अपने आप उड़ता है, फहरता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जो प्रसाद बनता है महाप्रसाद, जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, सारा संसार ही हाथ पसार करके जगन्नाथ भगवान का प्रसाद चाहता है। और सबसे बड़ी महाराजाधिराज ब्रह्मांडाधीश है, इसलिए वहां की मान्यता यह है कि चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट जाए और चाहे झाड़ू लगाने वाला कोई व्यक्ति जाए, सब एक ही पंगति में बैठते हैं और किसी प्रकार की खिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर खिन्नता होती है तो यह प्रमाण के रूप में है। जो रीवा राजा है, राजा थे श्री महाराजा रघुराज प्रताप सिंह जी, वो वहां पर गए थे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पाने के लिए, और प्रसाद पाते समय फिर उनके मन में उनके राज्य का रहने वाला कोई कर्मचारी था, वह बगल में बैठ के प्रसाद पा रहा था, उनके मन में खिन्नता आ गई इस बात को लेकर के, तो उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। जब तमाम उस समय दैवज्ञों को दिखाया, ज्योतिषियों को दिखाया, तो उन लोगों ने कहा कि आपसे अपराध हो गया, आप जाकर के पंगत में बैठे थे पर वहां पर आपके यहाँ के मेहतर को देख करके आपने उसके प्रति निकृष्ट भावना रखा, इसलिए कोढ़ हुआ है, अब जाकर के जगन्नाथ भगवान कृपा करेंगे तो भी ठीक हो सकता है। वह जगन्नाथ भगवान के दरवाजे पर गए और 3 दिन तक बैठे रहे, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी पदावलियां हैं। जगन्नाथ भगवान उन पर प्रसन्न होकर के दर्शन दे करके कहा कि अब पुनः भेदभाव ऊंच नीच मत करिएगा, सबको समानता के भाव में रखिएगा, और इसके साथ में कहा पूरे शरीर का ये कुष्ठ रोग तो समाप्त हो जाएगा, पर जो बीच में तिलक लगाने की जगह थी यहाँ थोड़ा सा बना रहेगा ताकि आपको स्मृति बनी रही। तो बाकी जगन्नाथ भगवान के कृपा से सारा कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया था। जहां पर तिलक लगाते हैं महाराजा रघुराज जी के, तो वहां पर बना था, तो वहां पर वो तिलक लगा लिया करते थे। तो जगन्नाथ भगवान समरसता का जो उदाहरण देते हैं, वह कोई कितना बड़ा जाए, कैसे भी जाए, सबको एक पंगत में बैठना है, सबके साथ में बैठ करके पाना है, एकादशी वहां पर बधी पड़ी है, एकादशी की वहां चलती नहीं है, जगन्नाथ भगवान रोज ही वहां प्रसाद पाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो इतना सौभाग्य तो कहीं और है नहीं है, वो जगन्नाथ भगवान के पास ही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग बड़े सौभाग्यशाली।
0: बिल्कुल, पूरा दिन ही अगर देखा जाए तो आज की पूर्णिमा का उत्सव सौभाग्यशाली। मन सीताराम दास जी, आप भी बता रहे थे कि देखिए हमारे सनातन में ऐसे ऐसे पर्व बनाए गए हैं कि ताकि लोग हर दिन किसी ना किसी तरह से अपने प्रभु के, अपने आराध्य के साथ जुड़े रहें। एक तरफ अमरनाथ में देखिए पूजा अर्चना हो रही है, शुभारंभ हो रहा है यात्रा के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए आज की तिथि कितनी अहम है, जिसके बारे में देव स्नान के बारे में बता रहे थे अभी चंद्रांशु जी महाराज भी।
1: नहीं, निश्चय बहुत अच्छी बातें हो रही थी, चंद्रांशु जी पूरा जगन्नाथ भगवान का इतिहास बता रहे थे, बहुत अच्छी कथाएं भी सुना रहे थे। मूल बात जो है यह है कि जो जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक भक्त थे जगन्नाथ भगवान के, संत माधवदास जी महाराज, भगवान के इतने प्यारे भक्त थे कि भगवान स्वयं उनको भोजन कराने जाते थे। उनका जब अंतिम चरण आया तो माधवदास जी महाराज बीमार पड़ गए, इतने बीमार हुए कि बीमार होने पर बार बार दस्त लगने लग गए, और बार बार जाते बार बार आते, नहाते धोते, महात्मा लोग जितने बार जाते उतने बार नहाते, अंत में स्थिति यह हो गई कि वो उठना बैठना मुश्किल हो गया, कपड़े खराब हो जाते, तो स्वयं जगन्नाथ भगवान एक बालक का स्वरूप बना करके गए और उनकी सेवा करने लगे। इस सेवा को आजकल करने में अपने स्वयं के बालक नाक मुंह बनाते हैं, उस सेवा को जगन्नाथ भगवान अपने भक्त की बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करते, उनको स्नान कराते, कपड़े धोते और फिर पुनः नई जगह लिटाते, फिर महाराज गंदे हो जाते तो फिर से स्नान कराते, फिर कपड़े धोते, इस प्रकार से लगातार कई दिन तक सेवा करते रहे। जब माधवदास जी महाराज को होश आया तो माधवदास जी महाराज ने कहा कि इतनी निकृष्ट सेवा मेरी कौन कर सकता है, मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई परिवार का नहीं है, फिर आखिर ये कौन है जो मेरी इतनी निकृष्ट सेवा कर सकता है। तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और पूछा, भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा, बाबा मेरा नाम है गोपाल। तो भैया कहाँ रहते हो? बोले, मैं यही मंदिर में रहता हूँ। बोले, मंदिर तो मैं रोज जाता हूँ, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। बोले, बाबा आपने भले ही मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तो निरंतर आपको ही देखता रहता था। समझ गए माधवदास जी महाराज की निश्चय ही मेरे आराध्य देव भगवान जगन्नाथ हैं। झपट करके हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप सर्व समर्थ परमात्मा हैं, आप चाहें तो मेरे इस रोग को नष्ट कर सकते हैं। भगवान ने कहा, माधवदास जी मेरा नियम है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, हमारे द्वारा किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म जन्म जन्मांतर का जो भी है उसको हमें भोगना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आपका जो थोड़ा सा प्रारब्ध रह गया है उसको भी भोग लो, जिससे आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, इसलिए आप पूरा प्रारब्ध कर लीजिए। लेकिन माधवदास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं आगे कष्ट नहीं सह सकता, इसलिए मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, माधवदास जी यद्यपि आपका भी 15 दिन का प्रारब्ध और रह गया है लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भले ही आप भोगो या मैं भोगूं
0: जी।
1: तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि 15 दिन का जो प्रारब्ध बचा है उसको मैं अपने ऊपर लेता हूं, अपना आपके लिए मैं बीमार रहूंगा। वो तब से लेकर के आज तक भगवान लगातार 15 दिन तक बीमार होते हैं वो माधवदास जी महाराज के लिए, और माधवदास जी को मुक्त कर दिया, सदा के लिए अपने धाम में भेज दिया। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो अत्यंत कृपालु दयालु है और वो निरंतर समस्त जीवों पर कृपा करते हैं। जगन्नाथ भगवान की एक विशेषता कुछ दिनों पूर्व तक विशेष थी, अभी तो व्यवस्थापकों ने वहां गड़बड़ कर दिया, माने छोटा से छोटा व्यक्ति जाकर के जगन्नाथ भगवान का आलिंगन कर सकता था।
0: बिल्कुल,
1: ये अभी 10 वर्ष पूर्व तक ये व्यवस्था थी, अभी कुछ दिनों से वहां पर बंद की गई है। अभी भी कोई विशेष महापुरुष जाते हैं तो उनको आलिंगन करने दिया जाता है। ऐसे भगवान जगन्नाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और ऐसे हम जीवों पर कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आचार्य राजमिश्रा जी आपके पास आती हूँ, इस पर हम भगवान जगन्नाथ की क्या महिमा है, परंपरा है, आज का दिन कितना अहम है, इसके बारे में चंद्रांशु जी महाराज भी बता रहे, साथ ही मन सीताराम भी बता रहे, लेकिन आपसे मैं जो विशेष तौर पर जानना चाहूंगी, एक और तस्वीर है, हम उसका भी जिक्र करते चलते हैं। बहुत शुभ दिन शुभ घड़ी, जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, कितना अहम दिन, क्या महिमा है इसकी?
2: देखिए अगर इसकी श्री रामचरित मानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित थल बिन शिव और आधे, सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार के अंतर्गत हम सब लोग अपनी कामना के अनुसार फल की प्राप्ति करना चाहते हैं और उसके लिए हम अनेक प्रकार का पूजन यज्ञ कुछ भी कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इच्छित फल बिन शिव और आधे और लाही न जोग जग जप साधे, बिना देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की आराधना के आप अपने मन की इच्छा के अनुसार कभी फल प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाबा बर्फानी की जो प्रथम पूजा है यहां से प्रारंभ होती है और ये स्थान इतना पवित्र स्थान है, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। जब भागवत की कथा का प्रारंभ होता है, जब अमर कथा का प्रारंभ होता है, तो यहां पर बैठ करके भगवान शंकर माता पार्वती को सुंदर कथा जो है वो श्रवण कराते हैं और यहीं से जो प्रादुर्भाव होता है भगवान सुखदेव का, जिनके माध्यम से हम सभी लोगों ने भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, जिसके कारण ये वो स्थान है, वो पवित्र स्थान है, वो दिव्य स्थान है, जिसके कारण पूरे संसार के अंतर्गत धर्म के विषय में लोगों ने जाना, भगवान कृष्ण के विषय में लोगों ने जाना, हरि के विषय में जिस स्थान के कारण, यही भगवान शंकर और माता पार्वती की वो चर्चा हुई जिसके कारण पूरे विश्व में भगवान शंकर के माध्यम से भगवान कृष्ण के विषय में जाना गया। तो यहां पर इसकी अगर महिमा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो एक सुंदर शब्द है कि सागर से महेश में आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण करें निरंतर गान, तो इस महिमा का वर्णन तो मुझे लगता है कि माता शारदा भी यदि करें तो बहुत आसान नहीं होगा कि उसका वर्णन कर पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज का जो पूजन है यहाँ पर देवाधिदेव महादेव का पूजन होता है, बाबा बर्फानी का पूजन होता है, भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन होता है, साथ में गदा का पूजन होता है और यहाँ सुंदर रुद्रा अभिषेक इत्यादि प्रॉपर तरीके से करके भगवान रुद्र का अभिषेक इत्यादि करके संसार की भलाई की कामना के लिए उनसे प्रार्थना किया जाता है। और एक और चीज आपने कहा कि कितना बड़ा महत्व है, मुझे मैं दोबारा उसी विषय पर आऊं कि देवाधिदेव महादेव जो वास्तविकता में जिनके हाथ में सृष्टि का संहार है, ये कहा गया कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भाभी उमेक सके त्रिपुरारी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संसार में हमारे किए गए जो पाप कर्म इत्यादि हैं उसके कारण जो हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो हमारे भाग्य में दिक्कतें आती हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस पूजन का महत्व तो जितना भी कहा जाए मुझे लगता है सबसे कम होगा। और दोबारा नवजोत जी मैं एस्ट्रोलॉजिकल उस पर आऊं तो मैं कह सकता हूं जब बृहस्पति उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, दोनों आचार्य यानी शुक्राचार्य शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ जब गोचर कर रहे हों तो फिर उस समय पूजन किए गए पूजन का महत्व शायद वर्णन करना संभव।
0: बिल्कुल, चलिए इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल एक ब्रेक आप रही हमारे साथ।

0: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.

0: 150 साल बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हरिहर उत्सव और ये आज दुर्लभ योग भी बन रहा है जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगी। 108 कलश से प्रभु के स्नान की परंपरा है, क्या विधान इसका रहता है और वो लोग जो आज घर पे बैठे, क्योंकि देखिए बहुत अहम दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भी है, योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं जो घर पे बैठे हैं?
1: जी, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि 108 से ही क्यों होता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत नक्षत्र है और चार चरण होते हैं, उसे मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है। तो 108 की जो संख्या है वो आप माला की भी देखें, कलश की भी देखें, रुद्र की भी देखें, तो इसलिए जो है 108 कलश से या नदियों के जल से जो है स्नान कराया जाता है। और कहते हैं कि जब आप पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं तो आपकी शुद्धि तो होती होती है और भगवान की शुद्धि भी हो जाती है। और कहा जाता है कि शुद्ध स्नान कराने से आपको भी संसार, जो पूरा संसार है वो जलमग्न है, और जल से स्नान कराने से, पवित्र नदियों के स्नान कराने से शुभता आती है। और अभी हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ जी की, कहा जाता है कि उनका जो रथ भी बनता है आप देखें तो नीम की लकड़ी से बनता है। नीम का जो पेड़ होता है उससे किसी भी प्रकार का जो रोग हो जीवन के अंदर, और अभी जैसे कुष्ठ रोग की बात करी तो किसी भी प्रकार के रोग में उस औषधि का प्रयोग जो है किया जाता है, जिस कारण से जो आपकी शारीरिक की जो है शुद्धि हो जाए, आत्मा का पवित्रीकरण हो जाए। और जब आप कहते हैं कि गंगा जल से स्नान करा दें, दूध से स्नान करा दें, पवित्र चीजों से स्नान करा दें, या भगवान को जो है कोड़ा मीठा चढ़ा दें, तो ये क्या है कि सारी जो चीजें हैं भगवान को अर्पित की जाती हैं। और ऐसे में जब शुभ संयोग बने, क्योंकि उस वक्त जो है समुद्र का जल भी जो है ऊपर हो जाता है, नदियों में भी जल की जो लय है वो तेज हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा के मुच्छके होते हैं तो ज्वार भाटा बढ़ जाता है। तो इस कारण से साइंटिफिकली भी जो है आज का दिन विशेष करके बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस स्नान से जो है भगवान की शुद्धि तो होती होती है और भगवान जो है स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। और आप जब स्नान कराते हैं तो आपको भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का आनंद जो है प्राप्त होता है। और आप जब कहते हैं कि जब कोई पूजा करते हैं, कोई भी तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, 108 कलश से जब स्नान कराते हैं तो एक एक कलश में जो मंत्र जब आप बोलते हैं कि भाई, जैसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, इनके चरणों को जो हम लेते हैं तो उस प्रकार से ध्यान करते हैं भगवान का, भी भगवान के सारे स्वरूप है, उन स्वरूपों की आराधना कर करके और भगवान को अर्पित किया जाता है। और हम कहते हैं 33 कोटि, उसमें 8 जो है वस्तु की भी आराधना करते हैं हम, तो उस प्रकार से पूरा ध्यान लगा करके, मेडिटेशन करके और भगवान को जब जल अर्पित कर देते हैं तो भगवान उस जल से जो है तृप्त हो जाते हैं और आपको आपके मनो अनुसार जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार जो आपको फल देते हैं। इस प्रकार से आप अगर पूजन करें, भगवान का ध्यान करें और मंत्रों का उच्चारण करें, खासतौर से यजुर्वेदी मंत्रों का उच्चारण करें, और अभी जैसे भगवान शिव की पूजा होती है तो उसमें ओम नमः शंभवाय चे मयू भवाय चे नमः शंकराय चे महेश कराय चे नमः शिवाय चे शिव कराय चे, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें। यह यजुर्वेद के शिव संकल्प मस्तु वाले मंत्रों का जो है उच्चारण करें। ओम जजाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदुसुपतश्च तथै वैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम। तो जो तन में मन में रमा हुआ है भगवान शिव है, इस प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और सबसे बड़ा जो महामंत्र है महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करें और भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, मन की शुद्धि हो, और भगवान के पास जाकर के जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, मेरे को 2 बार सौभाग्य मिला है, तो जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आप जब रास्ते में ही जाते हैं तो उसी से भगवान का जो है साक्षात्कार होना आपको शुरू हो जाता है, आपकी आत्मा
0: आपके उस अनुभव को मैं चाहूंगी संजय जी आगे हमारे दर्शकों को बताइएगा। लेकिन एक बार मन सीताराम जी और हमारे साथ दोनों खास मेहमान, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन राजमिश्रा जी आपके पास आऊंगी। रथ यात्रा से पहले के अनुष्ठान क्या रहते हैं, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए।
2: रथ यात्रा से पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो ज्येष्ठ पूर्णिमा जो की आज का रहता है उसमें भगवान का स्नान 9 कलश के द्वारा है वो उनका स्नान कराया जाता है, स्नान कहा जाता है। फिर उसके बाद भगवान का एकांतवास कराया जाता है, एकांतवास का नियम है औषधि स्नान वगैरह हो जाता है, फिर एकादश 15 दिन तक भगवान कराया जाता है। फिर उसके बाद रथ निर्माण का नियम है ना, जो जहां पर तीन प्रकार की जो लकड़ियां हैं उनके द्वारा रथ का जो निर्माण कराया जाता है। उसके बाद छेरा पहरा, रथ यात्रा के पहले दिन जो उस जगह के पुरी के राजा होते हैं वो झाड़ू लगाते हुए उसकी सफाई इत्यादि करते हुए उसको जाते हैं, फिर रथ का खींचना, फिर गुडीचा मंदिर में जाकर के पूजन इत्यादि। तो ये एक अलग अलग प्रकार, जैसे स्नान के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो गए, फिर उनको अभी शुरू में चंद्रांशु जी महाराज बता ही रहे थे कि उनको काढ़ा इत्यादि बना करके और उसके साथ उनको औषधि इत्यादि दिया जाता है, वो सारे नियम रहते हैं। फिर उनका वैदिक जो सोरसो उपचार जो एक विधान है, जो 16 प्रकार की अलग अलग चीजें है, उस सोरसो उपचार विधान से रथ यात्रा से पहले पहले पंचोपचार के माध्यम से रथ का पूजन किया जाता है, जिसमें स्पेशली 5 चीजों का, रथ तैयार होने के बाद पंचोपचार पूजन किया जाता है। उसके बाद सोरसोपचार पूजन का जो नियम है वो सोरसोपचार पूजन से भगवान का पूजन किया जाता है। फिर भगवान जो 15 दिन तक जब भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसके साथ 15 दिन तक भगवान का जो चित्र अंकित है वस्त्र पर, वो चित्र उसको कहा जाता है पट चित्र पूजा। तो एक वस्त्र पर जो है वो भगवान के चित्र अंकित होते हैं और उसका पूजन होता है और उसी का दर्शन जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद भगवान की जो मूर्ति है उसको संवारने का काम किया जाता है, भगवान की मूर्ति को नए तरीके से उनको बनाया जाता है, उनको सुंदरता दी जाती है, उनको बेहतर किया जाता है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है लागी और अंगराग करके ऐसा नाम है वहां का, जिसमें उनको किया जाता है, पूरी तरह उनको सुंदर बनाया जाता है उनके नेत्र। फिर उसके बाद नेत्र उत्सव होता है जिसमें भगवान के नेत्रों को सुंदरता देने का या उसको वो करने का प्रयास किया जाता है। फिर नौ यवन दर्शन होता है, जब भगवान पूरी तरीके से वहां पर, जब उनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, तैयारी हो जाती है, तो भगवान का एक दर्शन होता है, उसको नौ यवन दर्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो रथ तैयारी से जो पहले की तैयारियां होती है भगवान के साथ, ये सारे पूजन उसमें विशेष रूप से किया जाता है। फिर भगवान का जो वैदिक मंत्र इत्यादि है, उन वैदिक मंत्रों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है, वैदिक मंत्रों के माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है। फिर उनके जो बाकी पूजन की विशेष प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। फिर जो रथ यात्रा की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। तो ये परिस्थिति रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मान सीताराम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा भगवान के दर्शन करने का, किस तरह का अनुभव आपका रहा है?
3: बहुत नवजोत जी, ठाकुर जी कृपा से मैं बहुत बाल्यावस्था से ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूँ और कई बार दर्शन कर चुका हूँ, लगभग 10 से 12 बार दर्शन कर चुका हूँ। बहुत छोटा था तब दर्शन करने गया और सौभाग्य से वो आज का ही दिन था जब मैं सबसे पहली बार दर्शन करने गया था।

0: जगन्नाथ भगवान के क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहता है। वहां जो महाप्रसाद भगवान का बढ़ता है ना आनंद बाजार में, हाँ कोई के पास पैसा है तो ठीक है, पैसा नहीं है तो महाराज खूब चकाचक दाल भात खाने को मिलती है, कोई भूखा नहीं रहता है। तो निश्चय ही जगन्नाथ भगवान का जो नाम अभी चंद्रांशु जी कह रहे थे कि उनका नाम ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ माने चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जीवों के जो नाथ हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान निश्चय ही सबका कल्याण करते हैं। आज अमरनाथ की भी चर्चा आप कर रहे थे
1: जी,
0: अमरनाथ जो नाम है अमरनाथ, उस गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और वो अमर कथा पार्वती मैया समाधिस्थ हो गई, नहीं सुन पाई। उस अमर कथा को सुखदेव महाराज ने सुन ली, जो एक तोते के रूप में उसी समय उनका जन्म हुआ था। तो वो अमर अमर गुफा है, वहां पर दर्शन करने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं अमृतत्व की ओर जाने का एक मार्ग मिलता है। भगवान का नाम मृत्युंजय भी है, हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, हाँ कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। जिति विष्णुनाम जीवानाम महात्मा प्रेष्ठ एकता कौत्सहे ततंदातुं भिक्षमाणाय विष्णवे, हर व्यक्ति की जीने की बड़ी कामना होती है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि जो मृत्यु से डरते हैं वो लोग भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युंजय अमरनाथ भगवान की उपासना करें, निश्चय ही वो मृत्यु को जीत सकेंगे। और ये शरीर देह की मृत्यु हो सकती है लेकिन हमारे जो आत्मा का अमृतत्व है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जीव अमर हो जाएगा। इसलिए अमरनाथ भगवान की उपासना जीव को जरूर करना चाहिए और अमरनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक बात और, अभी ज्योतिषाचार्य जी राज जी कह रहे थे बार बार,
1: हाँ।
0: भगवान शिव की उपासना से बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है। तो उनका नाम ही है आशुतोष, आशुतोष माने आशु शीघ्रम पुष्यति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए उनका नाम है आशुतोष। माने कितने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, योग कर सकते हो, तो ठीक है, नहीं कर सकते तो केवल एक लोटा जल, हाँ जलधारा शिव प्रिय, केवल एक लोटा जल चढ़ा दो तो जल के चढ़ाए जमलोक सो उबार देत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत, चावल के चढ़ाए से चौदह भुवन देत, दीप दे दिखाए द्वीप सात दे देत है। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान मृत्युंजय अमरनाथ भगवान का जो आज पूजन हुआ है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
1: बिल्कुल चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास आना चाहूंगी। एक तो आपका अनुभव दोनों जगह दर्शन करने का, और दूसरी बात यह है कि देखिए माना जाता है कि जिस किसी को भी सौभाग्य, सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है कि जाके ऐसे तीर्थों पर दर्शन कर पाए। अगर मिल रहा है सौभाग्य वहां जाने का तो किन नियमों का खास पालन करना चाहिए, आज की तारीख में क्या बताएंगे लोगों को?
2: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। शास्त्र में तो अनेक प्रमाण है, विधान है, पर हमको लगता है कि यात्रा काल में या कहीं जाने में, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि राजा भी अगर सूत्रवत आचरण करे तो दोष इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह सब कुछ अपने अनुकूल नहीं होता, तो हो सकता है विषमता रह जाए। पर ये जितनी बातें चल रही हैं नवजोत जी, ये भगवान की जितने भी लीलाएं चलती हैं, हम सब जानते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, और यह भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं तो भोलेनाथ के लिए, उनके लिए सब लोग जग जानते हैं। अभी राज भैया ने भी बहुत सुंदर सुंदर बातों को सब कुछ रामचरितमानस से बताया हुआ है। भगवान भोलेनाथ आशुतोष तुम अवढर दानी है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और सब कुछ देने वाले हैं। इनका परिचय भी इसी तरीके से महर्षि कालिदास जी ने दिया है, वागार्थ संप्रित वागार्थ प्रतिपत्त जगत पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर, जगत माता पिता शंभु भवानी, ये जगत के माता पिता है। तो भगवान भोलेनाथ के पास में जाना है तो कोई त्रुटि भी थोड़ी बहुत हो जाए तो भगवान बुरा नहीं मानते क्योंकि जगत के माता पिता वो भी है, ये जगन्नाथ भगवान है, दोनों ही एक जगत के स्वामी होने के नाते हम सब उनके बालक हैं, उनके अनुगत हैं। भगवान ये लीला क्यों करते हैं तो उसका एक ही मात्र केवल कारण है कि सोई जस गाय भगत भवतरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। भगवान केवल अपने, हम जैसे

0: भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अनेक लीला करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ भगवान के रूप में, बर्फानी दादा के रूप में, रामकृष्ण के रूप में अनेक रूप धारण करते हैं। न्याय सिद्धांत यही कहता, तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, वह एक ही ब्रह्म इन सभी लीलाओं को कर रहा है, तो किस नियम का पालन करें? भगवान ने कहा एक लीला करो, एक चीज पालन करो। भगवान ने कहा कपट मुझको अच्छा नहीं लगता, छल मुझको अच्छा नहीं लगता, हो कुछ और दिखाते कुछ और हो, ये अच्छा नहीं लगता। निर्मल मंजन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छोड़ करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, पत्र पुष्प फल जो है और कुछ नहीं तो सच्चा मन लेकर के हमको समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं इतने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं और सारे मनोकामना को हम पूर्ण कर देते हैं। तो इस बात का पालन करना चाहिए। एक एक मिनट का और बहुत जरूरी बात है, इतने बर्फानी दादा दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तमार में नामदेव जी का चरित्र है, माँ पार्वती जी भोले बाबा जा रहे होते हैं, इतने भगवा धारण देख करके मैया गदगद हो जाती, कितने शुभ भक्त जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा जा तो रहे परीक्षा हो जाए, तो एक गदहा पड़ा हुआ है और उसमें भोले बाबा है, माँ पार्वती बैठे हुए वृद्ध रुग्ण अवस्था में, सभी जा रहे हैं बोलबम तो बोल रहे हैं हर हर महादेव, पर कोई बरते हुए घोड़े को जल देने के लिए तैयार नहीं है। नामदेव जी निकले तो नामदेव जी ने जो जल चढ़ाना था गंगा जी को, अमरनाथ भगवान को, भोले बाबा को, उस जल को उन्होंने उस गधे को पिला दिया, उसमें भोले बाबा दिखाई पड़ रहे थे। तब भोले बाबा ने कहा कि सच्चा भक्त केवल यही है, तो समझ ले नरसेवा नारायण सेवा है। इस तरह से सेवा करें,
1: इसी भाव के साथ जब भी यात्रा करें तो इसी भाव के साथ करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
1: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
2: Keep it on smooth jazz.
3: This is Roots Reggae
4: exclusively on TuneIn.
5: This is classic hip hop
6: exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
7: शिमला के रामपुर बुशहर में नोगली मेले का भव्य समापन हुआ. मेले के आखिरी दिन लोगों ने पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्यों के साथ देवताओं को बधाई दी और उनका आभार जताया. मान्यता यह है कि मेले के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण के नगर भ्रमण से बारिश होती है जो अच्छी फसल का संकेत है.

0: आस्था और परंपरा का अनूठा संगम। देवतागण लौट रहे हैं अच्छी बारिश सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर। बारिश होगी, फसल लहलहाएंगे, मौका खुशी का है, उम्मीद का है। हाथों से हाथ मिले हैं, कदम से कदम, ईश्वर की आराधना में सब मिलकर झूमे हैं। सामूहिक नृत्य संगीत की ये सुंदर तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई है। यहाँ रामपुर बुशहर में नोगली मेले का भव्य समापन हो गया। आखिरी दिन देवताओं को विदाई दी गई, लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। नोगली में 3 दिनों तक चलने वाला यह ऐतिहासिक मेला सदियों पुरानी देव आस्था और प्रकृति से जुड़ा एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। इस मेले का मुख्य आधार कुमसू गांव की एक सदियों पुरानी मान्यता है, जिसके मुताबिक इलाके में सूखा पड़ने पर लोग अपने इष्ट देवता लक्ष्मी नारायण जी को क्षेत्र की परिक्रमा के लिए निकालते हैं और देवता के भ्रमण से क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाता है।
1: यहाँ पे नोगली मेला मनाया जा रहा है। जब देवता साहिब लक्ष्मी नारायण जी मंदिर से निकलते हैं, उसके बाद यहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है और यहाँ पे लोग नाच गान करते हैं, जिससे इस मेले की शोभा बढ़ती है।
2: जब यहाँ सूखा अकाल पड़ता था तो उसके निजात पाने के लिए हमारे देवता साहब को भ्रमण में इलाके में निकाला जाता है। जब हमारे इलाके में करेरी गाँव देवता महाराज जी पहुँचते है, वहाँ पर जब भूख जो है इलाके की ओर होता है, वहाँ से हर वर्ष वर्षा होती होती है, जैसे इस बार भी हुई गत वर्षों की भांति, तो लोग जो है उसमें खुशी मनाते हैं, झूमते हैं कि हमारी वर्षा ऋतु शुरू हो गई है।
0: मेले के आखिरी दिन आसपास के इलाकों के कई देवी देवता अपने पुजारियों के साथ ढोल नगाड़े और करनाल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते हुए मुख्य मेला मैदान पहुँचे। भक्तों में भी उत्साह कम नहीं था। पूरा नोगली मेला मैदान स्थानीय लोक नृत्य महानाची के रंग में रंग गया। क्या पुरुष क्या महिला, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, सब एक ही ताल पर थिरकते दिखे, मस्ती में झूमते, कदम से कदम मिलाते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे

0: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिन्हावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज हम आपको बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा के साथ किस तरीके से अमरनाथ यात्रा से जुड़े तमाम अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ है तस्वीरें दिखाएंगे, और साथ ही साथ 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, उत्साह कितना है इसको लेकर भी आगे बात होगी। साथ ही पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा भी आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आस्था के साथ बातें होगी मनोरंजन की भी। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म अल्फा के प्रमोशन में जुटी हैं, और इसी सिलसिले में आलिया और शर्वरी आज जयपुर पहुंची थी। अल्फा एक एक्शन मूवी है, लिहाजा इसका प्रमोशन भी एक्शन से भरपूर हो रहा है। देखेंगे जयपुर में फिल्म के प्रमोशन का अनोखा अंदाज, साथ ही जानेंगे कि जुलाई के महीने में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का नया फैसला, इस साल 10वीं के छात्रों को छूट, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण। आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू।
3: स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से स्नान। सुशील समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवशक्ति विनायक मंदिर में दर्शन पूजन किए, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, स्वदेश वापसी से पहले महात्मा गांधी को नमन किया। मंगोलिया में जारी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने दिखाया रणकौशल, ऑपरेशनल तैयारियों के साथ सैन्य अभ्यास में खेल भावना का भी प्रदर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नवजोत, आप भी जानते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारियां होती हैं। कपाट वहां खुल गए, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पल पल हर पड़ाव को हमने आपको दिखाया। लेकिन एक और धार्मिक यात्रा जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसमें से एक है अमरनाथ यात्रा, जिसकी शुरुआत आज से 4 दिनों बाद होने वाली है। और इसको लेकर भी आपको पता है कि क्योंकि कई चीजें हैं इसमें, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको लेकर भी तैयारियां करनी है। चढ़ाई बेहद कठिन होती है, उसको लेकर तैयारियां करनी है। लगभग अब जो खबरें आ रही हैं, तैयारियां पूरी हो गई।
3: हाँ, और सबसे बड़ी और खास बात अगर आपको याद हो, हम पिछले कई दिनों से दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी मॉक ड्रिल्स और तमाम जितनी भी एजेंसियां इस यात्रा को सुचारू रूप से कराने में जुटी हुई है, उन हर एजेंसी में तालमेल बिठाने के लिए भी मॉक ड्रिल्स वहां पर हुई हैं, ताकि यात्री सुरक्षित और सुगम यात्रा वहां पर हो सके उनकी। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी और खास बात जो तस्वीरें आई थी, खाने पीने की व्यवस्था और इसी के साथ सुरक्षा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, इन सबको लेकर फिलहाल वहां पर अभी तैयारियां तकरीबन संपन्न हो चुकी हैं। आज प्रथम पूजा हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए।

0: भले ही बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आहूत की गई बाबा की प्रथम पूजा इस तीर्थ यात्रा का शंखनाद है। बाबा बर्फानी के धाम की वार्षिक पावन तीर्थ यात्रा का आज से ठीक चौथे दिन शुभारंभ होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की ये तस्वीरें आस्थावानों को अपार ऊर्जा से भर गईं। हर साल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी शामिल होते रहे हैं। इसी परंपरा को निभाने के लिए ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बाबा के दरबार पहुंचे और उनकी प्रथम पूजा का भागीदार बने।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सबों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की ये प्रथम पूजा हर साल पवित्र तीर्थ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होती है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के औपचारिक शुभारंभ से पहले की जाने वाली प्रथम पूजा का बहुत गहरा और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रहा है। ये पवित्र अनुष्ठान बाबा बर्फानी से पूरी यात्रा के बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित सम्पन्न होने की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी गई है। हालांकि औपचारिक रूप से बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं। बाबा की प्रथम पूजा का मुख्य उद्देश्य ही उनका और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि सभी तीर्थयात्री बिना किसी बाधा या अनहोनी के कठिन मार्ग को पार कर सकें। आज हुई प्रथम पूजा के बाद जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था श्री अमरनाथ धाम के लिए रवाना होने वाला है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए तीर्थयात्रा के लिए तैयार हैं। इन श्रद्धालुओं में इस पवित्र यात्रा को लेकर कितना उत्साह है, बाबा के सामने इनकी क्या अर्जी रहने वाली है, जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर मौजूद तीर्थयात्रियों के उत्साह से इस बात की तस्दीक भी हो रही है।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
3: भरतपुर से आए और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड बीएसएफ में, ये मेरी गुरु माँ है, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
2: बुलावा आ गया,
4: हाथ पकड़ के बुला लिया।
2: भोलेनाथ में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
3: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
2: अभी पहली बार आ रहे हैं
5: कैसे? बोलो बोलो।

0: अमरनाथ यात्रा महज एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक मानी गई है। इसी आस्था के उल्लास के बीच बालटाल बेस कैंप पर महारुद्राभिषेक भी हुआ था। 3 जुलाई से आरंभ हो रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधाएं की गई हैं। फिलहाल तो इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के चलते जम्मू से लेकर कश्मीर तक माहौल शिवमय है। अब इंतजार है 2 जुलाई का, जब बाबा के दर्शन को लेकर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की आराधना की गई, क्योंकि यहां भी हर तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों की रौनक बिखरी हुई। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान की स्नान यात्रा की परंपरा को यहां बड़ी धूमधाम से निभाया गया।
2: आपको बता दें कि इस देव स्नान पूर्णिमा के लिए बड़ी संख्या में भक्त पुरी में जुटे। भगवान जगन्नाथ के भक्त इस स्नान यात्रा को बेहद खास मानते हैं, और क्योंकि इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आइए दिखाते हैं तस्वीरें।
3: भगवान जगन्नाथ की नगरी का कण कण आज आस्था और भक्ति के रस में सराबोर है। हर श्रद्धालु के हृदय में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर है तो जुबां पर जय जगन्नाथ, जिसका उद्घोष पूरी पुरी में गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले आज का दिन बेहद खास है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे जगन्नाथ स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस उत्सव को रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल की तरह इस दिव्य स्नान उत्सव का गवाह बनने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही पुरी पहुँच चुके हैं। भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। तड़के से ही यहां उत्सव और उल्लास का माहौल है। उत्सव की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पहांडी विधि से हुई, जिसमें भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से भव्य जुलूस के साथ बाहर लाकर मंदिर परिसर के खुले स्नान मंडप पर प्रतिष्ठित किया जाता है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे यानी 2 घंटे तक जलाभिषेक की परंपरा निभाई जाएगी। इस परंपरा के तहत स्नान मंडप पर 108 पवित्र और सुगंधित कलशों के जल से महाप्रभु का महाभिषेक किया जाएगा। इसे जललागी रीति कहा जाता है। ये कोई साधारण जल नहीं होता, बल्कि मंदिर परिसर के सुना कुएं यानी कि पवित्र कुएं से निकाला जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक महाप्रभु को गजानन के दिव्य रूप में सजाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपने एक गणेश भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये रूप धारण किया था। साल में सिर्फ आज ही के दिन भक्त भगवान का ये अनोखा रूप देख पाते हैं। देर शाम तक प्रभु अपने भक्तों को इसी हाथी या गजवेश के रूप में दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इस रूप के दर्शन पाकर हर भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के स्नान उत्सव के बाद एक और दिलचस्प परंपरा निभाई जाएगी। 16 जुलाई को शुरू होने जा रही रथ यात्रा से पहले भगवान पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक परंपरा के मुताबिक महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आने की मान्यता है। इस वजह से उन्हें 15 दिनों तक विश्राम के लिए ले जाया जाता है। इस अवधि को अनासर कहा जाता है। 30 जून से 14 जुलाई तक मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान अनासर घर यानी विश्राम कक्ष में एकांतवास करेंगे, जहाँ जड़ी बूटियों और विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से उनका उपचार किया जाएगा। 15 जुलाई को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके अगले दिन भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 16 जुलाई को शुरू होने जा रहे जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां हर स्तर पर मुकम्मल की जा रही हैं। खास करके इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पहली मॉक ड्रिल की है। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान किसी भी इमरजेंसी, भारी भीड़ नियंत्रण और मेडिकल सर्विसेज को परखने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के बीच अभ्यास किया जाता है।
1: बहरहाल इस पहली मॉक ड्रिल के जरिए कई विभागों की तैयारी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी और तालमेल का आकलन किया जाएगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में कमियां हैं और कम समय में ज्यादा कुशलता से सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं। फिलहाल खबरें यह हैं कि रथ यात्रा शुरू होने से 6 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को एक और मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देव स्नान पूर्णिमा का भी खास मौका है और भगवान जगन्नाथ का दिव्य प्राकृतिक दिवस भी है, तो ऐसे विशेष मौके पर ओडिशा के पुरी में अद्भुत सैंड आर्ट बनाई गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक एक बार फिर से अपनी अद्भुत कलाकारी के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए। उन्होंने पुरी के समंदर तट पर आज जय जगन्नाथ संदेश के साथ ये कलाकृति सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों के सहयोग से बनाई।
2: 8 फीट ऊंची और 18 फीट चौड़ी ये सैंड आर्ट पवित्र स्नान पूर्णिमा की रस्म को बखूबी दर्शा रही है। आपको बता दें कि आज देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को 108 घड़े पवित्र जल से स्नान कराए जाने की परंपरा है, जो कि वार्षिक रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। फिलहाल इस कलाकृति के माध्यम से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शांति, भक्ति और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान का संदेश दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। जी हाँ, आपको बता दें कि चार धाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। तीर्थ यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 41 लाख को पार कर चुका है। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है।

0: इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चाहे भगवान बद्री विशाल का धाम हो या फिर बाबा केदारनाथ का दरबार, भक्तों की भारी भीड़ है। यात्रा मार्ग जय बद्री विशाल, जय केदार के जय घोष से गूंज रहे हैं। करीब 2 महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में अब तक 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है। अब तक 13,45,160 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, तो वहीं 13,42,609 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 6,63,778 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं 6,19,210 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,51,687 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं, तो जुलाई का महीना शुरू होने वाला है जिसमें होगा एंटरटेनमेंट का महामुकाबला। और इस महीने बड़े पर्दे पर एक के बाद एक कई बिग बजट फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। लेकिन इस रेस की शुरुआत जिस फिल्म से होने जा रही है उसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं फिल्म अल्फा की, जो 3 जुलाई को रिलीज होनी है।
2: आपको बता दें, इस फिल्म में पहली बार दो लेडी सुपरस्टार्स जबरदस्त एक्शन करती है आपको नजर आएंगी। मूवी के प्रमोशन के लिए आलिया समेत पूरी टीम लगातार एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रही है। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी अपनी मूवी अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची। इस दौरान दोनों दिन भर आयोजित कई प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सिनेमाघर से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक फिल्म की टीम दर्शकों और युवाओं से रूबरू होगी। इससे पहले आलिया और शर्वरी दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने फैंस के साथ खास बातचीत की और मूवी को लेकर फैंस में खास उत्साह देखने के लिए उन्हें मिला।

0: बड़े पर्दे पर एक्शन का सुपर डोज लेकर आने को तैयार हैं आलिया की अल्फा।
1: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो।
0: फिल्म के रिलीज में अब चंद ही दिन बाकी हैं।
2: जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: अल्फा की टीम इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटी है। इसी सिलसिले में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ आज जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर आलिया और शर्वरी की एक झलक पाने को फैंस बेताब नजर आए। जयपुर के प्रमोशनल टूर में आलिया और शर्वरी मिराज सिनेमा पहुंची। एक्शन से भरी इस फिल्म का प्रमोशन भी यहां एक्शन से भरे अंदाज में ही हुआ। आलिया और शर्वरी ने यहां अल्फा बाइकर्स ग्रुप के साथ फोटो शूट कराया। जयपुर में अल्फा की टीम ने JECRC यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात की और अल्फा फिल्म के बारे में कई रोचक बातें शेयर की। आलिया ने दावा किया कि फिल्म में दर्शकों को कई सरप्राइज मिलने वाले हैं।
3: मैं एक्चुअली आपको बता दूं, अगर आपने नोटिस किया, हमने सिर्फ टीजर और ट्रेलर रिवील किया है, तो ऐसे बहुत कुछ है जो आपको अभी पता नहीं है। Not only about Anil sir's character, about my character, about Sharadi's character, about Bobby sir's character, और वो सब intentional है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आके theater में experience करें।
0: शर्वरी ने भी अल्फा से जुड़े अपने कई अनुभव साझा किए, हालांकि अपने किरदार के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं।
4: मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इसीलिए था क्योंकि इन सबके साथ काम करते करते मैंने बहुत सीखा भी है। जो भी मैं इनसे सीखूंगी होपफुली मैं आगे भी यूज कर पाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत गई है ओवर मेनी इयर्स ये दिन देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू टू द ऑडियंसेस कि आप लोगों ने जो भी मैंने किया है उसे इतना प्यार दिया, इतना सराहा है, तो थैंक यू फॉर द फर्स्ट थिंग इज थैंक यू। अब अल्फा की बात करूं तो मैं अपने किरदार के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि एक सरप्राइज है, एक अंडर द रैप्स रखा गया है फॉर अ रीजन। तो अगर मैं रिवील कर दूंगी तो आपका मजा चला जाएगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई प्रॉमिस कि बहुत मस्ती मजा और एंटरटेनिंग कैरेक्टर है।
1: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो।
0: एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा 3 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है और दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: फिल्म के टीजर और ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अल्फा यशराज फिल्म्स की चर्चित स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दो महिला जासूस लीड रोल में हैं। इससे पहले इसी यूनिवर्स में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं, तो वहीं फिल्म में बॉबी देओल विलेन की भूमिका में नजर आएंगे।
2: फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: देखिए, जुलाई आने में अभी एक दिन बाकी है और ये जुलाई मूवी लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि जुलाई में बड़े पर्दे पर एक के बाद एक धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। आलिया भट्ट की अल्फा कॉमेडी का डबल धमाका धमाल 4 और हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे समेत कई बड़ी फिल्में जुलाई को सुपरहिट बनाने के लिए तैयार है।
1: अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करती है और कौन बॉक्स ऑफिस का नया बादशाह बनकर उभरती है। तो अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस जुलाई हर हफ्ते सिनेमाघरों में मनोरंजन का महाधमाका होने वाला है।
2: अपने जंगल का शेर है वो।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
4: खजाने काट रहे, जरा जोर से बोले बे। किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए।
5: ये हो क्या रहा है मुझे?
6: पहचाना मुझे स्पाइडी।
7: हाय बॉयज।
8: अल्फा अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बड़े पर्दे पर जून के जानदार सफर के बाद अब बारी है जुलाई में फिल्मों के मॉनसून की, जिसमें दर्शकों को एक से एक शानदार फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। जुलाई में फिल्मों की बरसात के साथ बड़े सितारों, बड़े बजट के बीच बड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। जुलाई में जहां अल्फा का दमदार एक्शन होगा,
7: एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था,
1: तो वहीं धमाल 4 में कॉमेडी और रोमांच का मजेदार तड़का भी होगा। कहीं रोमांस का रंग तो कहीं नए अंदाज में दिखेगा हॉरर। तो अब सबको इंतजार है जुलाई के धमाल का और बॉक्स ऑफिस की धड़कन 3 जुलाई से होगी तेज। जुलाई को आलिया भट्ट की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा दुनिया भर के सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। यशराज फिल्म की इस फिल्म का दर्शकों को कई दिनों से इंतजार है। जासूसी की दुनिया के रहस्य और रोमांच की चाशनी में लिपटी इस मूवी में सबकी नजरें आलिया के दमदार किरदार पर है। अल्फा इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
1: वही अगर आप बारिश में मस्ती का मजा लेना चाहते हैं तो सिनेमा हॉल में कमाल दिखाने आ रही है फिल्म धमाल। अपने चौथे सीजन में फिल्म पुराने चटकारों के साथ एक नई कहानी के स्वाद का मजा देगी। फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। फिल्म में कुछ नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। हॉलीवुड के दीवानों को भी जुलाई मनोरंजन से भिगोने को तैयार है। स्पाइडरमैन के दीवानों के लिए ये खुशखबरी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जुलाई के अंतिम हफ्ते में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में नई चुनौतियों से जूझते नजर आएंगे पीटर पार्कर।
8: और तुमसे वो छिप नहीं सकता।
1: OTT के दस्तरखान पर भी आपको कॉमेडी और थ्रिलर का तड़का मिलेगा। OTT पर प्रीतम और पेट्रो हॉट स्टार पर 3 जुलाई को रिलीज होंगी। राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों वाला फ्लेवर लेकर अब OTT पर आने वाले हैं। उनकी नई वेब सीरीज प्रीतम और पेट्रो आ रही है, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना डेब्यू करने वाले हैं। वीर के अलावा अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कलाकार शामिल है।
9: ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है।
1: तो अब अभी हो जाइए तैयार जुलाई में फिल्मों का जलवा देखने के लिए। फिल्मों का रोमांच, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और ड्रामा, आपको बड़े पर्दे पर सब कुछ नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: ये हमें बचाएगा।
1: चाय पर चर्चा में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको दिखाएंगे 52 साल बाद अपने आशियाने गैलेक्सी छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं सलमान।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चाय पर चर्चा में, हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर CBSE का नया फैसला, इस साल 10वीं के छात्रों को छूट, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण, आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। स्नान पूर्णिमा पर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाभिषेक, 108 औषधीय और सुगंधित जल कलश से स्नान। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव शक्ति विनायक मंदिर में किए दर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, स्वदेश वापसी से पहले महात्मा गांधी को किया नमन।
4: भाई चाहे श्वेता ईद का मौका हो या फिर बर्थडे का, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ना अच्छी खासी भीड़ रहती थी,
1: हमें तो याद ही इसी से है। हाँ। कोई भी फंक्शन हो यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके सामने भीड़ और सलमान का वो हाथ हिलाता हुआ चेहरा, है ना?
4: एग्जैक्टली। लेकिन अब देखिए, अगर आपको सलमान के दर्शन करने हैं, आप कहें कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो आप अब गैलेक्सी के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सलमान खान वहां से शिफ्ट होने वाले हैं। 52 सालों से सलमान और उनका परिवार गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो इसे छोड़कर बांद्रा में ही समंदर किनारे एक 6 मंजिला आलिशान घर में शिफ्ट होने की तैयारी।
1: हालांकि आपको बता दें, कई लोग उनसे पूछते थे कि इतना पैसा है, इतना बड़ा स्टारडम, आप फ्लैट में क्यों रहते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि उनका पूरा परिवार शुरू से वहां रहा है, इसलिए शायद वो वहां रहना पसंद करते थे। लेकिन अब जैसा कि आपको हमने बताया कि एक आलिशान घर उनका बन रहा है, वो भी सी फेसिंग, तो सी फेसिंग उनका घर बन रहा है, और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, जून महीने में उनके नए आवासीय प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।
5: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का नाम लेते ही जहन में सबसे पहले बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर उभरती है। पिछले 50 सालों से ये अपार्टमेंट सलमान खान की पहचान और उनके करोड़ों फैंस के लिए सुपरस्टार की एक झलक पाने का एक ठिकाना रहा है। हर ईद पर इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से भाईजान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। अपनी बर्थडे के मौके पर सलमान इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर कभी केक कट करते हैं, तो कभी फैंस को हाथ हिलाकर शुक्रिया कहते हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इसी अपार्टमेंट में सालों से रह रहा है। सलमान के भाई अरबाज और सुहेल हों या फिर उनके माता पिता, गैलेक्सी मतलब बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान का घर। लेकिन अब बहुत जल्द भाईजान का पता बदलने वाला है, क्योंकि चर्चा है कि सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने एक नए और आलिशान बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। समंदर किनारे बन रहे इस 6 मंजिला आशियाने में सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। जानकारी के मुताबिक सलमान खान का ये नया घर बांद्रा के ही चिंबई इलाके में बनेगा, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इसके निर्माण के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 16 जून को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो समंदर की लहरों को निहारता ये नया आशियाना सलमान की माँ सलमा खान के नाम वाली जमीन पर आकार लेगा। इस प्लॉट पर 1956 से पहले की एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, जिसे जर्जर हालत के चलते गिरा दिया गया है। अब इसकी जगह पर एक शानदार 6 मंजिला इमारत खड़ी की जाएगी। इस नए घर में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग समेत 6 मंजिले होंगी। हालांकि इस नए आशियाने को लेकर अभी तक सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड के बाजार में चर्चाएं आम हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की वो बालकनी भले ही अब सूनी हो जाए, लेकिन भाईजान का जलवा इस नए 6 मंजिला महल में और भी 2 गुना होने वाला है। घर बदल रहा है, लेकिन सलमान का स्वैग और उनके चाहने वालों का प्यार बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखना ये है कि आने वाली ईद पर फैंस अपने सिकंदर की एक झलक पाने के लिए समंदर किनारे वाले इस नए आशियाने के बाहर कैसे जुटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए, सलमान के घर की बात तो हो गई, लेकिन सलमान का बिग बॉस भी याद होगा। बिग बॉस क्या कहना चाहते हैं?
4: बिग बॉस बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाज सलमान की नहीं होगी, किसी और
1: सलमान की आवाज नहीं होगी। सलमान की बात तो हमने कर ली, बिग बॉस अगर हमने कहा है इसका मतलब खबर उसी से जुड़ी हुई है। और खबर ये है कि बिग बॉस, आपने जैसे देखा होगा, बिग बॉस मराठी में भी आती है, बिग बॉस बांग्ला में भी आता है। तो बांग्ला में अब बिग बॉस को होस्ट करने वाले हैं दादा
4: सौरभ
1: गांगुली। उनको लॉर्ड्स के मैदान में जो चौके छक्के मारते हुए हमने देखा है, वो तो काफी देखा है। मतलब वो तो उनका आई थिंक वो जो टी शर्ट उन्होंने लहराई थी, दैट वाज लाइक वो छप गई सबके दिमाग
4: में, इतनी की गैलरी में खड़े
1: एग्जैक्टली वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। लेकिन आपको बता दें, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रिश्ता चूंकि काफी पुराना रहा है, पहले क्रिकेट फील्ड में अपनी दादागिरी दिखाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली टीवी की दुनिया में दादागिरी करते नजर आएंगे। सौरभ अब एक नए किरदार में आपको नए प्लेटफॉर्म पर वापसी करते दिखेंगे। ये किरदार है बिग बॉस का और प्लेटफॉर्म है स्टार जलशा।
4: जी हाँ, सौरभ गांगुली को बिग बॉस बांग्ला सीजन 3 के होस्ट की कमान अब मिलने वाली है। तो मिड जुलाई से दादा को आप बिग बॉस की पिच पर कंटेस्टेंट्स की क्लास लेते देखेंगे।
5: क्रिकेट के पिच पर छक्के चौकों से हुकूमत करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अब एंटरटेनमेंट की पिच के बिग बॉस बनेंगे। क्रिकेट की दुनिया के दादा का नया अवतार होगा, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड के हीरो सलमान खान का बिग बॉस में होता है। मतलब ये कि जो काम बिग बॉस में सलमान खान करते हैं, ठीक वही काम अब सौरभ गांगुली करेंगे बिग बॉस के बांग्ला वर्जन में। रियलिटी शो बिग बॉस बांग्ला की कमान सौरभ गांगुली को सौंपी गई है और इसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में सौरभ गांगुली को उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर छक्का मारते हुए दिखाया गया है। प्रोमो के आखिर में सौरभ गांगुली कहते हैं कि मैं इसे बेस्ट बनाने के लिए जान लगा दूंगा। करीब 3 हफ्ते पहले बिग बॉस बांग्ला का पहला प्रोमो रिलीज किया गया था, जिसमें प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरभ गांगुली की तुलना टाइगर से की गई थी, जो कि वो कहे भी जाते हैं। टाइगर को दिखाया गया था, उन्हें बैट बॉल खेलते हुए भी दिखाया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। तब सौरभ गांगुली के शो को होस्ट करने को लेकर किसी को तंत्र भी था, तो वो अब बिग बॉस बांग्ला के लेटेस्ट प्रोमो ने दूर कर दिया है। बिग बॉस बांग्ला का ये 3रा सीजन होगा। करीब 10 साल पहले बिग बॉस बांग्ला का 2रा सीजन टेलीकास्ट हुआ था। बिग बॉस बांग्ला का 2रा सीजन 2016 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे बंगाली एक्टर और प्रोड्यूसर जीत ने होस्ट किया था। बिग बॉस बांग्ला का पहला सीजन 2013 में टेलीकास्ट हुआ था। इसे मिथुन चक्रवर्ती ने होस्ट किया था। अब पूरे 10 साल बाद गांगुली के साथ बिग बॉस बांग्ला वापस लौट रहा है। इस शो का प्रसारण स्टार जलसा पर किया जाएगा। तारीख का ऐलान तो भी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के मध्य से इसे ऑन एयर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अगली खबर बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जब नॉर्मली बिग बजट वाली वेडिंग्स की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया का ही नाम आता है ना?
1: Exactly, इंडिया का। अगर इंडिया की बात करें तो, और वो भी बिग बजट, तो मुझे तो अंबानी इसके अलावा और कोई दूसरा नाम आता नहीं है।
4: Exactly, हमारे यहाँ ही, क्योंकि यहाँ हमारे पंजाब में बिग फैट पंजाबी वेडिंग्स बड़ी चलती, बहुत दिन तक फंक्शंस होते रहते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अंबानी का मुकाबला तो कोई नहीं है। अभी तक कहा यही जा रहा था कि शायद सबसे महंगी शादी,
1: सबसे महंगी शादी, और वो तो मतलब सबसे महंगी और सबसे लंबी
4: लंबी
1: महीनों चली है वो शादी।
4: लेकिन अब एक और शादी होने वाली है जो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
1: अच्छा,
4: और वो इंडिया में नहीं है, मुझे लगता है वो काफी हद तक इंडियन इंप्रेस हो गए शायद।
1: बिल्कुल,
4: बात अमेरिका की कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जगत और म्यूजिक की सबसे चर्चित जोड़ी है पॉप क्वीन टेलर स्विफ्ट और एनएफएल के स्टार ट्रेविस केल्सी। एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार हैं और दूसरे स्पोर्ट्स की दुनिया के बड़े सितारे हैं।
1: भाई आपको बता दें कि इनके चाहने वाले इंडिया में भी बहुत हैं, तो इनकी शादी को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं। जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी, आई थिंक तब भी खबरें आई थी, जब इन्होंने इंगेजमेंट किया था इंस्टाग्राम पे, इन्होंने टेलर स्विफ्ट ने तस्वीरें भी शेयर की थी, तो वो भी लोगों ने पसंद किया था। अब शादी का इंतजार है ये इन दोनों की। दरअसल जो लव स्टोरी है लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब 4 जुलाई को शादी की बात कही जा रही है। लेकिन ये शादी किसी रॉयल वेडिंग से कम नहीं मानी जा रही। बताया जा रहा है कि इस शादी पर लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है।
4: Thank you.
5: जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उतरती हैं तो शायद टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी जैसी दिखती हैं। पिछले कुछ समय से दोनों स्टार्स की लव स्टोरी की चर्चा हर तरफ हो रही थी। कभी टेलर ट्रेविस के मैच में उन्हें चीयर करती नजर आती तो कभी ट्रेविस टेलर के कॉन्सर्ट में नजर आते। दोनों स्टार्स की इस खूबसूरत लव स्टोरी को एक परफेक्ट फेरी टेल जैसा माना जाने लगा, लेकिन अब चर्चाएं दोनों की शादी की हो रही हैं, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि द बिग फैट वेडिंग, यानी एक ऐसी शाही शादी जिसकी चर्चा इन दोनों हर तरफ है। हॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा ये है कि ये सुपर हिट जोड़ी 3 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो छुप जाए वो इश्क ही कैसा। शादी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, कोई इसे रॉयल वेडिंग बता रहा है तो कोई इसके बेहद भव्य होने का दावा कर रहा है। ऐसा ही एक अपडेट शादी के वेन्यू को लेकर सामने आया है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि शादी के लिए न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन को चुना गया है, जिसका एक दिन का किराया लगभग 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा और डेकोरेशन में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेडिसन स्क्वायर में करीब 1200 मेहमानों के जुटने की उम्मीद है। हालांकि इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है और स्टाफ से कड़े एग्रीमेंट साइन करवाए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मेडिसन स्क्वायर के आसपास की कुछ सड़कों को 2 जुलाई से 4 जुलाई तक बंद किया जा सकता है। इसके लिए इजाजत भी मांगी गई है, हालांकि एप्लीकेशन में शादी का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ 4 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की टीम की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। वैसे चर्चाओं की माने तो जब शादी इतनी ग्रैंड है तो उस पर होने वाले खर्च भी अच्छे खासे होंगे। खबरों के मुताबिक टेलर और ट्रेविस की इस रॉयल वेडिंग का बजट करीब $20 मिलियन है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 170 करोड़ के आसपास, जिसमें पॉप क्वीन टेलर स्विफ्ट की अलग अलग वेडिंग ड्रेसेस शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अपनी शाही शादी को यादगार बनाने के लिए टेलर एक दो नहीं बल्कि कई अलग अलग लग्जरी ड्रेसेस पहनने वाली हैं। इसके लिए मशहूर डिजाइनर स्टेला मैकार्टनी उनके एक खास लुक को तैयार कर रही हैं। इसके अलावा डिजाइनर लॉरा किम और ग्रेशिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। चर्चा वैसे ये भी है कि टेलर का मेन ब्राइडल गाउन हॉलीवुड लेजेंड एलिजाबेथ टेलर के क्लासिक विंटेज लुक से इंस्पायर्ड होगा। फिलहाल 3 जुलाई को होने वाले इस खास वीकेंड इवेंट के लिए लोगों को इनविटेशन भेज दिए गए हैं, जिसमें लगभग 100 मेहमान शामिल हो सकते हैं। वैसे चर्चा ये भी है कि इस इवेंट के दौरान ये पावर कपल अपनी शादी का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चलिए यहां हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मचाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं। एक तरफ पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के कई इलाके अब भी तेज गर्मी और लू की चपेट में है। मानसून की देरी से दिल्ली NCR में भी भीषण गर्मी पड़ रही है।
4: बिल्कुल, और इंतजार हम यही कर रहे हैं कि कब बरसेंगे बादल, कब मेहरबान होंगे दिल्ली और NCR पर। फिलहाल तो तेज धूप और धीमी हवाएं, उमस भरे दिन, रात में जीना मुहाल है। जाहिर सी बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट रात का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग ने राहत की खबर सुनाई है, कहा है कि दिल्ली NCR में इस हफ्ते कम से कम हो सकता है, उम्मीद जताई है कि शायद मानसून दस्तक दे दे। 4 जुलाई से मानसून के आने की संभावना है।

0: रविवार शाम को आसमान में घने काले बादल छाए तो लगा भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं भी चली। तेज हवाओं से धूल और आंधी का माहौल रहा, लेकिन जिस बारिश का दिल्ली वासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी, शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, यानी गर्मी और उमस से आज भी राहत की उम्मीद नहीं है।
1: दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीटवेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडवाइनिंग एरिया बिहार का नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले एक से दो दिनों के दौरान जो है हीटवेव कंडीशंस देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीटवेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी।
0: सामान्य तौर पर मॉनसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मौसम की मौजूदा परिस्थितियां बनी रहीं, तो राजधानी दिल्ली में जल्द मॉनसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मॉनसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम की परिस्थितियां अगर इसी तरह अनुकूल रहीं, तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। 30 जून से 1 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकेगी। 2 से 4 जुलाई के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हवा की गति तेज होने का अनुमान है। साथ ही मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के टकराव के कारण मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई है। इसी वजह से तापमान और उमस तो बढ़ी, लेकिन अच्छी तरह बारिश नहीं हो सकी। अब बारिश क्यों नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली के ऊपर शुष्क और नम हवाओं के मिलने से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो पा रही। बादल दोपहर में तब बनते हैं जब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है, इसलिए वास्तविक और फील्ड्स लाइक तापमान दोनों असामान्य रूप से ऊंचे बने हुए हैं। तो मॉनसून की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बेशक कुछ दिनों की देरी से हो रही है, लेकिन 4 जुलाई से मॉनसून के आने की पूरी संभावना है और उससे पहले 1 जुलाई से कमोबेश हर रोज दिल्ली में न केवल बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, बल्कि तेज हवाओं या धूल भरी आंधी के साथ बारिश के भी पूरे आसार हैं। यानी मॉनसून से पहले प्री मॉनसून की बारिश राहत का पैगाम ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ऐसे मॉनसून वाली गुड न्यूज पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के विदर्भ में, जहां भीषण गर्मी के बाद अब राहत के बादल बरसे हैं और किसानों के चेहरे खिल गए हैं।
3: आपको बता दें, मॉनसून की बारिश के बाद अब यहां पर खुशहाली की खेती की बारी है, जिसके लिए विदर्भ में किसान जी जान से जुट गए हैं।

0: आसमान में बादलों की आवाजाही ने इन सूने पड़े खेतों में रौनक ला दी है। मानसून मेहरबान हुआ तो इन खेतों में हल चलने लगे, बैलों के गले की घंटियां बजने लगी और किसानों में उत्साह बढ़ गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की हैं। यहाँ अकोला जिले के हर गांव में इन दिनों ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है।
1: महाराष्ट्र और विदर्भ में खासकर देर से आई मानसून, लेकिन मानसून की बारिश इतनी आई कि अब किसानों के चेहरे खिले। कई नदी नाले जो है कल उफान पे भी बहने लगे थे और अब किसान के चेहरे खिले। तो किसान को सबसे अहम बात होती है कि अपने खेत में बीजों की बुआई करना। अब ये किसान जो है, कल की बारिश ने उनको राहत दी है और देर से क्यों ना हो, लेकिन बुआई का काम जो है अब अकोला के इस डोंगरगांव इलाके में हो रहा है।
0: विदर्भ इलाके में किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। कुछ दिनों पहले तक जहां खेत सूखे पड़े थे, वहां पहली अच्छी बारिश के बाद उम्मीदों के बीज बोए जा रहे हैं। बारिश होते ही अकोला जिले में हरी बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। पर्याप्त नमी मिलने से किसानों में अच्छे पैदावार की उम्मीद भी जगी है। कृषि विभाग भी बुआई के सीजन में किसानों की मदद कर रहा है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी सलाह भी दी जा रही है।
2: इस साल बुआई कर रहे हमको इतनी आशा है कि इस साल में अच्छी बारिश हो और हमारी पैदावार अच्छे से आए।
0: इसी भरोसे के साथ किसान खेतों में जुताई और बुआई के काम में जुट गए हैं। बारिश के बाद इलाके में खेती के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। मानसूनी बारिश से किसानों को भी उम्मीद है कि खेतों में उनकी मेहनत चंद महीनों बाद हरियाली और खुशहाली बनकर लहराएगी।
1: किसान हर साल यही आशा करता है कि उसकी जो फसल है और उसके जो खेत में बीज बीज है वो अच्छी तरीके से उगे और उसके घर में जो है वो खुशहाली भरे इस फसल के दाम अच्छे मिले, यही अपेक्षाएं अब किसान यहां पर करते नजर आ रहे हैं। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला।
3: एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भूकंप पीड़ित देश वेनेजुएला में मिशन जिंदगी की भावुक तस्वीरें।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
6: Swing and a foul out of play off to the left.
5: Big 12 Radio.
7: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
5: Talk Sport.
8: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
5: And more. Search sports to find the stations covering your teams.

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है.
4: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है.
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आपको एक ऐसी भावुक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर जारी होते खूब वायरल हुई। कुछ दिन पहले वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप आए थे और उसके बाद भारत समेत दुनिया भर के देशों की तरफ से वेनेजुएला में राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान तबाही के इस मंजर में सांस बाकी रहने की मजबूत उम्मीद भी दिखी, तो वहीं मौजूद राहत बचाव कर्मी भी इमोशनल हो गए।
2: आपको बता दें, यहां भूकंप पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने, मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी है और इसी दौरान एक 9 महीने का बेबी और उसकी मां को मलबे से निकालने वाली तस्वीरें भी जारी की गई जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई हैं। ये तस्वीरें बेशक इंसानी हौसले और उम्मीद की जीत की कहानी है।
3: ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला में आए भूकंप और घने अंधेरे के बीच रोशनी की कहानी की। ये तस्वीर है हाथ से हाथ को मिलाकर जिंदगी बचाने की। भूकंप के बाद मलबे के नीचे दबी जिंदगी हर गुजरते पल के साथ उम्मीद भी दम तोड़ रही थी, पर हौसले बुलंद थे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। मलबे से एक 9 महीने के मासूम और उसकी मां को जिंदा बाहर निकाला गया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि इंसानी हौसले और उम्मीद की जीत की कहानी है। रेस्क्यू के दृश्य हर किसी को भावुक करने वाले थे। मलबे से बाहर आते ही मासूम को सावधानी के साथ रेस्क्यू टीम ने बाहों में भर लिया और मेडिकल टीम के हवाले किया। रेस्क्यू मिशन में राहत की बात ये रही कि मां और बच्चे दोनों को मामूली चोटें ही आईं। इस पल का गवाह बने हर रेस्क्यू कर्मी की आंखें नम थी। आपदा के बीच घिरे वेनेजुएला से आ रही ये ऐसी तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। तबाही के इस मंजर में इस बात का सबूत है कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन इनमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी आपको दिखाते हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल

0: पेश की है।
1: लेकिन जरा ठहरी, युवती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई एमएनसी ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनको हुनर की सही कीमत मिली।
2: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी दे वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत पे यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो आज की चाय में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मिलेंगे चाय पर चर्चा में।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
1: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
0: फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का नया फैसला, साल 10वीं के छात्रों को मिलेगी छूट, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया, आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवशक्ति विनायक मंदिर में किया दर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, स्वदेश वापसी से पहले महात्मा गांधी को किया नमन। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आस्था के उत्सव की, जिसे आज जगन्नाथ पुरी समेत कई शहरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जब जगत के नाथ दिव्य स्नान करते हैं। रथ यात्रा की तरह ही पुरी में भगवान की भव्य स्नान यात्रा का आयोजन बाकायदा किया जाता है। मान्यता यह है कि स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और अगले 14 दिनों तक वो किसी को दर्शन नहीं देते। 14 दिनों के उपचार के बाद ठीक होने के बाद सज धज कर पूरे ठाट बाट के साथ रथ यात्रा करके मौसी के घर जाते हैं। आखिर में जगत के पालनहार स्वयं बीमार कैसे पड़ जाते हैं, फिर 14 दिन तक भगवान का उपचार कौन करता है और इस दौरान कहां रहते हैं भगवान, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में।

0: आकाश में पूर्णिमा का चांद धरती पर आस्था की किरणें बरसा रहा है और सागर तट पर इसी चंद्र प्रभा में स्नान कर रहे हैं जगत के नाथ। तभी तो पुरी में आज उत्सव का दिन है, भगवान के स्नान का पर्व है। सो जगन्नाथ की नगरी श्रद्धा के महोत्सव में मगन है। यूं तो दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ही पुरी धाम की पहचान है, लेकिन हर साल रथ यात्रा से ठीक 16 दिन पहले जगन्नाथ पुरी में साल का पहला महोत्सव होता है। ये उत्सव होता है भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को पुरी में स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन भगवान जगन्नाथ को मंदिर में ही बने सोने के कुएं के पानी से नहलाया जाता है, इसलिए इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं।
1: स्नान का महत्व है इस धरा पृष्ठ जो गरम से वैशाख चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मास से जो उष्मता अत्याधिक हुआ था वो धरित्री को शांत करने के लिए जीव जगत को शांत करने के लिए सभी देवता को शांत करने के लिए वो उभा प्रभु रत्न सिंहासन छोड़कर आ सकता है स्नान मंडप पर।
0: भगवान के स्नान के लिए मंदिर में मौजूद सुवर्ण कुएं के जल का उपयोग किया जाता है। सोने के कुएं के पानी से भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन को सोने के 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा की सुबह श्री मंदिर परिसर में मौजूद स्वर्ण कुआं निगरानी करने वाले सेवादार की मौजूदगी में खोला जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ स्नान की विधि शुरू होती है। ये कुआं जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही देवी शीतला और उनके वाहन सिंह की मूर्ति की ठीक बीच में बना है। ये 4 से 5 फीट चौड़ाई वाला वर्गाकार कुआं है। बताया जाता है कि इस कुएं में नीचे की तरफ दीवारों पर पांडे राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की ईंटें लगवाई थी। जब भी कुआं खोलते हैं इसमें स्वर्ण ईंटें नजर आ जाती है। ढक्कन में एक छेद है जिससे श्रद्धालु सोने की वस्तुएं इसमें डाल देते हैं। कुएं का ऊपरी भाग और ढक्कन सीमेंट और लोहे से बना है। इसका ढक्कन करीब 1.5 से 2 टन वजनी है जिसे 12 से 15 सेवक मिलकर हटाते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। स्नान यात्रा के लिए भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। मंदिर प्रांगण में मंच तैयार होता है जिसे स्नान मंडप कहते हैं। इसी मंडप में भगवान को विराजित किया जाता है। स्नान के लिए सोने के 108 घड़ों में पानी भरा जाता है। इसमें कस्तूरी केसर चंदन और कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती है। स्नान मंडप में 3 बड़ी चौकियों पर भगवान अपने भाई और बहन के साथ विराजते हैं। भगवान पर कई तरह के सूती कपड़े लपेटते हैं ताकि उनकी काष्ट काया पानी से बची रहे। फिर भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र जी को 33 और सुभद्रा जी को 22 घड़ों से नहलाया जाता है। बचे हुए 18 घड़े सुदर्शन चक्र पर चढ़ाए जाते हैं। स्नान के बाद भगवान गज वेश में दर्शन देते हैं।
1: कुप था और कुप 1 साल तक खुला नहीं हुआ। आज सुबह सुबह वो कुप खोल सकता है। इसी को इसका सेवक जो गोराबड़ू सेवक है वो जो जिसी को गराबड़ू सेवक कहलाता है, वो गराबड़ू सेवक वो कुप का जल लेकर एक सत अष्ट गरा का जल लेकर इसको अभिमंत्रण करती है पुरुष सुक्त में और स्त्री सुक्त में और देव सुक्त में। पुरुष सुक्त में जो अभिमंत्रित हुआ था वो महाप्रभु जगन्नाथ जीव जीव का जीव के लिए, जो श्री सुक्त में हुआ था वो बलभद्र जी का जी के लिए, जो देव सुक्त में हुआ था वो सुभद्रा मैया के लिए और सुदर्शन महाराज के लिए। वो तीन सुक्त में गराबड़ू सेवक सेवक सेवक का मंत्र से वो अभिमंत्रित तो होकर स्नान करता था।
0: यूं तो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान को रोज स्नान कराया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें भगवान की मूर्ति के सामने बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं, फिर उन शीशों में जो भगवान की तस्वीर दिखती है उस पर धीरे धीरे पानी डालते हैं। इस तरह स्नान करवाने की दो वजह है। पहली, भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है और उस पर पवित्र रंगों से आकृति उकेरी गई है। इस पर रोज पानी लगेगा तो प्रतिमा बिगड़ सकती है। तो वही दूसरी वजह के पीछे मान्यता है कि भगवान बहुत कोमल है और उन्हें हर दिन नहलाने से वो बीमार पड़ सकते हैं, और स्नान पूर्णिमा वाले दिन ठीक यही होता है। परंपरा के मुताबिक देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो किसी को दर्शन नहीं देते। यानी आज स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 14 जुलाई तक किसी को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देंगे। बीमार होने पर भगवान को मुख्य सिंहासन पर ना बैठाकर मंदिर में ही बांस की लकड़ी से बने कक्ष में विराजित किया जाएगा, जिसे अनासार घर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती। इन 14 दिनों में दैतापति सेवक तीनों देवी देवताओं की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल की जाती है। 14 दिनों तक 56 भोग की जगह औषधियों से युक्त सामग्री, दूध और शहद जैसी चीजों का भोग लगता है। इसे भगवान का अनवसर काल कहा जाता है। इस काल को भगवान का विश्राम काल भी माना जाता है, जब वो सांसारिक गतिविधियों से विराम लेकर आत्मिक ऊर्जा संचय करते हैं। जब 14 दिन तक तीनों देवी देवता अपने भक्तों को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देते, उस दौरान उन्हें पुरी के श्री मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर अलारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध मंदिर पुरी जिले के ब्रह्मगिरी में मौजूद है, जिसे अलारनाथ मंदिर कहा जाता है।
2: जगन्नाथ जी, जो बुखार होते हैं, बुखार होने के बाद जैसे क्वारंटाइन हमको अभी चल रहा है, मतलब क्वारंटाइन चल रहा है, जो कोविड चल रहा है, जो बोलता है किसी किसी को स्पर्श नहीं करेगा, सब अपना अपना घर में रहेगा, किसी किसी का पास नहीं जाएगा क्योंकि बुखार ढेर उसके पास चला जाता है, तो इसीलिए भगवान जी का ये क्वारंटाइन पहले से चल रहा है, हजार हजार साल से चल रहा है। तो जगन्नाथ जी यहाँ पर 15 दिन में गुप्त रूप में रहते हैं। वो
3: कब से कब से?
2: वो तो जो जब तक जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर अभी जो है उसी दिन से ही भगवान जी यहाँ पर आते थे। वो स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जो 108 कलश में भगवान जी स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भगवान को देर से बुखार लग जाता है, तभी वो उनका दरवाजा बंद हो जाता है, तो जगन्नाथ जी यहाँ चले आते हैं।
0: हरियाली और नारियल के पेड़ों से घिरे इस शांत स्थान पर भगवान अलारनाथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। मान्यता है भक्तों को जगन्नाथ मंदिर में साल के बाकी 350 दिन दर्शन करने पर जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य इस मंदिर में केवल 15 दिन के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है।
2: आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान जी को 350 दिन आप दर्शन करेंगे भगवान जी को सेवा करेंगे, जो पुण्य आपको मिलेगा ये एक बार अलानाथ जी के अनवसर समय में आप एक दिन दर्शन करेंगे, वो वर्ष का सामान्य पुण्य प्राप्ति होता है, उसका उदाहरण है, उसका प्रमाण है।
3: वही 15 दिन के अंदर
2: जी उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 5 साल पे 1510 ख्रीष्टाब्द में आए थे, उनको जगन्नाथ जी स्वयं उनको दर्शन पुरी में नहीं देते, उनको बुखार हुआ था, तो वो जान देने के चले गए समुद्र में। जगन्नाथ जी उनको बुला लिए थे, मैं अलानाथ के रूप में हूँ, तो महाप्रभु पूछे थे मेरे को यहाँ आने का फल क्या है, महिमा क्या है। स्वयं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को बताए थे ये लीला के बारे में कि मुझको 350 रत्न सिंहासन में दर्शन करोगे जितना फल मिलेगा, एक बार अनुभव के समय एक बार मेरे को ये शिला ब्रह्म के रूप में दर्शन करोगे वर्षा का सामान्य पुण्य मिलेगा।
0: बता दें कि अगले 14 दिन तक भगवान जब भक्तों को अलारनाथ मंदिर में दर्शन देंगे और उस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत उपचार चलेगा। भगवान के उपचार की प्रक्रियाओं को अनवसर अनुष्ठान कहा जाता है। अनवसर अनुष्ठान के तहत सबसे पहले 5 जुलाई को अनवसर पंचमी का दिन अहम होगा। इस दिन भगवान के अंगों पर विशेष आयुर्वेदिक तेल की मालिश होगी, उसे फुलूरी तेल कहते हैं। माना जाता है कि ये तेल लगाने के बाद भगवान को धीरे धीरे बुखार से राहत मिलने लगती है। फिर 10 जुलाई को अनवसर दशमी रहेगी, इस दिन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 11 जुलाई को भगवान के शरीर पर विशेष औषधियां लगेंगी, उसको खली लागी कहते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को भगवान का नेत्रोत्सव होगा और भगवान का नव यौवन श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन भगवान नए रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि इसी दिन रथ यात्रा के लिए भगवान से आज्ञा ली जाती है। इसके बाद 16 जुलाई की सुबह भगवान जगन्नाथ बेहद धूमधाम से लाखों भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद ही पुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। पुरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: देखिए पुरी के साथ साथ देश के कई शहरों में मौजूद जगन्नाथ धामों में भी स्नान पूर्णिमा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, पवित्र नदियों के जल से भगवान को स्नान करवाया जा रहा है। वाराणसी से लेकर अहमदाबाद तक मंदिरों में स्नान पर्व की रौनक तमाम देखने को मिल रही है।

0: स्नान पूर्णिमा के अवसर पर जहां पूरी धाम आस्था के उत्सव में डूबा है, तो वहीं भगवान जगन्नाथ की भक्ति की ये लहरें देश के कई शहरों तक पहुंच रही हैं। स्नान पूर्णिमा पर भगवान की जलयात्रा वाली ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान के रथ की अगुवाई खुद गजराज करते नजर आए। अहमदाबाद में महिलाओं की कलश यात्रा के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर 108 कलश लेकर निकली। सजे धजे हाथी, घोड़े और बैल, नाचते गाते सैकड़ों कलाकार और हजारों भक्तों की मौजूदगी में ये भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा साबरमती नदी की तरफ रवाना हुई।
1: जल यात्रा का महोत्सव है। रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जैसे मौसाल जाते हैं उसके मामा के घर, उससे पहले उस दिन सुबह गंगा पूजन होता है। गंगा पूजन के अंदर 108 कलश के अंदर पानी के अंदर हम वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा दरेक तीर्थों के जल लाते हैं, जलों का आवाहन करते हैं और वही जल लेके भगवान श्री जगन्नाथ जी का ज्येष्ठा अभिषेक होता है।
0: धूमधाम से शोभा यात्रा साबरमती नदी तट पर पहुंची। इसके बाद जल यात्रा का अगला चरण क्रूज के जरिए पूरा किया गया। अहमदाबाद के आम और खास भक्त क्रूज पर सवार होकर भगवान के स्नान के लिए साबरमती नदी का पवित्र जल लेने गए।
2: जमालपुर के अंदर स्थित जगन्नाथ मंदिर से किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जब भी रथ यात्रा प्रस्थान करती है उसके 15 दिन पहले विशेष जल यात्रा का आयोजन होता है। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से सुबह जल यात्रा का आयोजन हुआ, जो कि मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित साबरमती नदी के किनारे पहुंची है और यहां पे जल यात्रा का आयोजन हुआ है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मंदिर के पुजारी महंत के साथ अहमदाबाद के विधायकों की मौजूदगी में जल यात्रा यहाँ पे आयोजित हुई है।
0: इसके बाद कलश में साबरमती का पवित्र जल भरकर यात्रा वापस भगवान जगन्नाथ मंदिर की ओर निकल पड़ी। भगवान के स्नान के लिए कलश में अलग अलग तीर्थ स्थलों के जल के साथ चंदन, गुलाब, घी और दही का मिश्रण कर जल तैयार किया गया। फिर हजारों भक्तों की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ की स्नान विधि सम्पन्न की गयी। जल और दूध से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया।
3: महत्व इतना है कि जल से सब अभिषेक होता है तो हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हम घर में भी कभी हमारे कृष्ण परमात्मा है या कोई ठाकुर जी की मूर्ति है तो उससे पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं या अभिषेक करते हैं तो आज फल मिलता है। और आज के दिन हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, और 8 बजे के बाद चंद्र नारायण की पूजा करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।
0: हर साल अहमदाबाद में इसी तरह स्नान पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया जाता है। जल यात्रा और भगवान के शुभ स्नान से पहले सारा शहर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनता है। उधर गुजरात से मीलों दूर भोलेनाथ की काशी में भी जगन्नाथ की भक्ति का रंग नजर आया। स्नान पूर्णिमा पर काशी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का भक्तों ने जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ और भगवान जगन्नाथ दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। काशी के विश्वेश्वर खंड में विराजमान पुराधिपति विश्वनाथ का प्रतिदिन जलाभिषेक होता है, लेकिन काशी के ही केदार खंड में आसन जमाए भगवान जगन्नाथ का अभिषेक वर्ष में एक ही बार यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को होता है। आज भी भक्तों ने मिट्टी के घड़ों में गंगा जल भरकर भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद भगवान नयनाभिराम श्रृंगार हुआ, फिर सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल हुए।
4: भक्तों को यह सुविधा नहीं कि वो आकर के प्रतिदिन भगवान को स्नान करा सके। आज के दिन विशेष रूप से यह पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भक्त आते हैं, स्नान कराते हैं और सब भक्तों से के पूजन स्वरूप भगवान स्नान स्वीकार करते हैं।
5: ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान करते हैं, गर्मी से इतना तप जाते हैं कि आज स्नान करते हैं और भक्तों के स्नान से इतना ज़्यादा वो ठंडा जाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन उनको काढ़े का भोग लगता है और वो विश्राम करते हैं, फिर 15 दिन बाद यात्रा पर निकलते हैं नगर देखने के लिए अपना।
0: देव स्नान पूर्णिमा का उत्साह एमपी के नर्मदापुरम में भी दिखा। नर्मदापुरम में 21 पवित्र विधियों से भगवान का महास्नान संपन्न करवाया गया। खास बात यह है कि नर्मदापुरम में भी भगवान के दिव्य स्नान के बाद उनके बीमार होने और फिर उनके उपचार की सारी परंपराएं पूरी की तरह ही बेहद श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। 15 दिनों तक यहां भगवान जगन्नाथ विश्राम करते हैं। इस दौरान उनके मुकुट की पूजा होती है। इन दिनों भगवान के उपचार में चढ़े काढ़े का भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है। 15 दिनों के बाद ठीक होने पर भगवान शहर भ्रमण पर निकलते हैं। हर साल देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का उत्सव होता है। इसके साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर कोलकाता, काशी, दिल्ली, अहमदाबाद और नर्मदापुरम समेत देश के कई शहरों में रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ भी हो जाता है। फिलहाल शहर शहर जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं और अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री के साथ इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलेगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वाराणसी से रोशन जायसवाल और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर लगातार बढ़ रही है। तीर्थ यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 41 लाख को पार कर चुका है। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है।

0: इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चाहे भगवान बद्री विशाल का धाम हो या फिर बाबा केदारनाथ का दरबार, भक्तों की भारी भीड़ है। यात्रा मार्ग जय बद्री विशाल, जय केदार के जय घोष से गूंज रहे हैं। करीब दो महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में अब तक 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 50 लाख को पार कर चुका है। अब तक 13,45,160 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, तो वहीं 13,42,609 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 6,63,778 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं 6,19,210 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,51,687 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर CBSE का नया फैसला, साल 10वीं के छात्रों को मिलेगी छूट, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण, आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से बलभद्र बहन सुभद्रा और भगवान को कराया गया स्नान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवशक्ति विनायक मंदिर में किए दर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, स्वदेश वापसी से पहले महात्मा गांधी को नमन। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा का उत्सव, भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा का महाभिषेक। एक 108 कलशों के पवित्र जल से करा गया पवित्र स्नान, स्नान पूर्णिमा पर गजानन भीष्मी श्रृंगार हुआ। स्नान के बाद 15 दिनों तक भगवान एकांतवास पर रहेंगे, एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए जुटे लाखों भक्त, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लगाए जयकारे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी 108 कलशों के पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का महास्नान, दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, संबित पात्रा भी मौजूद रहे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टीका मत्था, भगवान का आशीर्वाद। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के पुरी तट पर भी उत्सव के रंग, रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृति। अमरनाथ यात्रा से पहले तभी तट पर भूमि पूजन, संत समाज ने की यात्रा की सफलता और श्रद्धालुओं के मंगल की कामना। तवी रिवर फ्रंट पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ संपन्न हुई पूजा, बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हुई, एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा भोलेनाथ की पूजा की।
8: उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, आत्मनियम जलम समर्पयामि।
7: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने मॉक ड्रिल की, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास। अभ्यास में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलाबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अभ्यास। अमरनाथ बेस स्टेशन के पास सीआरपीएफ तैनात, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर जवानों के कई जगहों पर चलाया वाहन जांच अभियान, यात्रा मार्ग पर पुलिस कर रही है गश्त। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने NH-44 पर सड़क खोलने का ऑपरेशन तेज किया। अमरनाथ यात्रा के काफिले पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे क्रॉसिंग उधमपुर पर ड्राई रन चलाया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ी पहल, दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने जा रही ईवी पॉलिसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है, पॉलिसी के तहत अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान। ईवी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग है, 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही ईवी पॉलिसी 30 मार्च 2030 से लागू रहेगी। ईवी सेक्टर में निजी निवेश और नई परियोजनाओं को मिलेगी गति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ईवी के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण हो जाएगा कम, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत मिलेगी। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया रण कौशल, ऑपरेशन तैयारियों के साथ खेल भावना का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना के जवानों ने काउंटर आईडी ऑपरेशन, टैक्टिकल कॉम्बैट, कैजुअल्टी केयर समेत तमाम ऑपरेशंस दिखाए। शांति सैनिकों को मुश्किल मिशन वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करना एक्सरसाइज का मकसद। यूएन के चैप्टर 7 फ्रेमवर्क के तहत कई देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज, आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूती देना लक्ष्य। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर वज्रे में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से झरने के पास 6 युवक फंस गए थे, वन विभाग और दमकल विभाग ने बचाया। भारतीय सेना की एक और बड़ी उपलब्धि, मेडिकल टास्क फोर्स ने पूरी तरह से काम करने वाला फील्ड हॉस्पिटल बनाया। फील्ड हॉस्पिटल अभी 20 बिस्तरों की सुविधा से लैस है, बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसकी क्षमता 50 बिस्तरों तक पहुंचाई जा सकती है। सीबीएसई ने 3 भाषा नीति पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, क्लास 10वीं के मौजूदा छात्रों पर नई भाषा नीति लागू नहीं होगी। क्लास 10वीं के मौजूदा छात्रों को तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। उत्तर प्रदेश पीलीभीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात दी, 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूजा पाठ के बाद पटना में अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश कर लिया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश भी पहुंच रहे हैं। पंजाब में गुरदासपुर के रावी नदी में अचानक पानी छोड़ जाने की वजह से मकोड़ा पतंगा पर बना पंतूल टूट गया। पटना के कई इलाकों में आज हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में जल्द खत्म हो सकता है मॉनसून का इंतजार, 2 जुलाई से राजस्थान में मॉनसून एक्टिव होने का अनुमान। 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार, कोटा और उदयपुर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोनल में निकाली गई माता शूलिनी की डोली, लोगों ने स्वागत किया। शूलिनी मेला में दिखी आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम, लोगों ने फूल से वर्षा की। धार्मिक परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल के शिमला में सांसद अनुराग ठाकुर ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। सांसद अनुराग ठाकुर के एक पेड़ मां के नाम के तहत किया उन्होंने पौधारोपण, लोगों से पौधा लगाने की अपील की। उज्जैन में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक के बाद भांग चंदन और रजत आभूषणों से किया गया दिव्य श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्थागढ़ जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमृतसर में राज्य स्तरीय एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल शामिल हुए। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर शानदार समारोह किया गया, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने मुख्य अतिथि। सेशल्स के रॉश कैमन स्थित स्टेड लेनेटे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विक्टोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवशक्ति विनायगर मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। विक्टोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, बापू को नमन किया। हरदोई में बीजेपी नेता के उन्होंने पिता बनकर निभाया फर्ज, बिजली मिस्त्री की बिटिया का कन्यादान किया, कुछ दिन पहले पिता की हादसे में मौत हुई थी। मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर रुक कर रहे लगातार सैलानी, बड़ी संख्या में कठुआ पहुंच रहे हैं पर्यटक। सरथल में सैलानियों की प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों का आनंद ले रहे हैं सैलानी। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, शिकारा का ले रहे हैं लुत्फ। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल। कोटा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण किया, लोगों से अपील की। जम्मू में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई, मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भुवनेश्वर में राज्य पुरातत्व विभाग ने आधुनिकीकरण, दस्तावेजीकरण और विकास योजना के लिए लिंगराज मंदिर सहित 40 अन्य मंदिरों का सर्वेक्षण किया। श्रीनगर में पहली पीटीएफ इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के निर्देश। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो शिविर का आयोजन किया गया, डीएम ने बच्चों को पिलाया पोलियो ड्रॉप। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुंबई में बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, यातायात प्रभावित। मुंबई के अंधेरी में भी हुई जबरदस्त बारिश, अंधेरी सबवे में पानी भर गया। मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरने से सबवे को किया गया बंद, रूट को डायवर्ट किया गया। मुंबई के वाशी इलाके में भी भर गया बारिश का पानी, कई इलाकों में जलजमाव। पंजाब के युवाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार की बड़ी सौगात, राज्यभर में एक साथ 500 आधुनिक जिम का उद्घाटन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान कर दिया, राज्य में जिमों की संख्या 3000 तक करेगी सरकार। महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक और एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने पालघर में प्रस्तावित एयरपोर्ट की साइट का जायजा लिया। असम में कृषि मंत्री पीयूष हजारिका का खेतों में किसानों के बीच दिखा अनोखा अंदाज, धान रोपाई में शामिल होकर किसानों को आधुनिक खेती की पद्धति के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में शारदा नदी घाट बाईपास का निरीक्षण किया। अयोध्या में सुबह बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते असम के

0: पोर्टिन सड़क फिर से बंद। जोरहाट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मुस्तैदी से जुटी। धेमाजी में बाढ़ के तहत बहाव में बहा लोहे का पुल, जोनाई से टूट गया संपर्क। पुल बहने से कई वाहन फंस गए, यात्रियों की बड़ी परेशानी। वाशु में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, में फसलों को भारी नुकसान। कटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने शारदा नदी घाट पर निरीक्षण किया, आपदा को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर हो गया जारी, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 3 दिनों में 65 करोड़ का आंकड़ा पार। तीन जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया भट्ट शर्वरी नजर आएंगे। थिएटर में फिल्म देखने पहुंची शर्वरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट। जैकी श्रॉफ खाने के लिए पान के पत्ते पर कत्था लगाते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
1: कलकत्ता पान है मगर गाना बना रही है
2: और पैना साउथ
1: और आगे गुजराती बाबा।
0: फीफा वर्ल्ड कप जोश से चीन में स्ट्रेस रिलीफ सॉकर वॉल्स की मांग में खूब इजाफा, जिनजियांग के यीवू बाजार में फुटबॉल थीम पर प्रोडक्ट्स की बढ़ी डिमांड। राष्ट्रीय झंडे वाले रंगीन स्ट्रेस रिलीफ बॉल्स खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तमाम लोग। बारावंशा कोणों को संरचना से तैयार किया जाता है, परफेक्ट गोलाकार डिजाइन। मियामी में असली फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची भीड़, भीषण गर्मी के बावजूद घंटों का इंतजार। 18 कैरेट सोने से ट्रॉफी, आम लोगों के लिए खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए लोग। न्यूयॉर्क सिटी प्राइड परेड का आयोजन किया गया, LGBTQ समुदाय के लोगों ने दिखाई एकजुटता। सिटी प्राइड परेड में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, इंद्रधनुष के झंडों के साथ नजर आए समर्थक। स्टोन वॉल दंगे की याद में हर साल न्यूयॉर्क सिटी में निकाली जाती है प्राइड परेड। पेरिस फैशन वीक शो, लुई वेतों की ओर से बनाया गया कृत्रिम झरना। फैशन वीक के आयोजकों ने झरने को बताया इको फ्रेंडली, क्लोज्ड लूप सिस्टम से पानी को वापस रिस्टोर किया जा गया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: तो आ रहा
5: है। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, महाप्रभु की स्नान यात्रा, छोटी उम्र में बड़ा रिकॉर्ड, आज कुछ तूफानी करते हैं। देखिए 7 बजे 7 गुड न्यूज श्वेता झा के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: देखिए सलमान खान अब नए मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक सलमान गैलेक्सी से बाहर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पिछले 52 सालों से सलमान और उनका परिवार गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो इसे छोड़कर बांद्रा में ही समंदर किनारे एक नए 6 मंजिला आलिशान घर में शिफ्ट होने की तैयारी में है। इसके लिए महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण यानी MCZME ने इसे जून महीने में उनके नए आवासीय प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
5: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का नाम लेते ही जहन में सबसे पहले बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर उभरती है। पिछले 50 सालों से ये अपार्टमेंट सलमान खान की पहचान और उनके करोड़ों फैंस के लिए सुपरस्टार की एक झलक पाने का एक ठिकाना रहा है। हर ईद पर इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से भाईजान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। अपनी बर्थडे के मौके पर सलमान इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर कभी केक कट करते हैं तो कभी फैंस को हाथ हिलाकर शुक्रिया कहते हैं। सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इसी अपार्टमेंट में सालों से रह रहा है। सलमान के भाई अरबाज और सुहेल हों या फिर उनके माता पिता, गैलेक्सी मतलब बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान का घर। लेकिन अब बहुत जल्द भाईजान का पता बदलने वाला है, क्योंकि चर्चा है कि सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने एक नए और आलीशान बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। समंदर किनारे बन रहे इस 6 मंजिला आशियाने में सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। जानकारी के मुताबिक सलमान खान का ये नया घर बांद्रा के ही चिम्बई इलाके में बनेगा, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इसके निर्माण के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 16 जून को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो समंदर की लहरों को निहारता ये नया आशियाना सलमान की माँ सलमा खान के नाम वाली जमीन पर आकार लेगा। इस प्लॉट पर 1956 से पहले की एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी, जिसे जर्जर हालत के चलते गिरा दिया गया है। अब इसकी जगह पर एक शानदार 6 मंजिला इमारत खड़ी की जाएगी। इस नए घर में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग समेत 6 मंजिले होंगी। हालांकि इस नए आशियाने को लेकर अभी तक सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड के बाजार में चर्चाएं आम हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की वो बालकनी भले ही अब सूनी हो जाए, लेकिन भाईजान का जलवा इस नए 6 मंजिला महल में और भी 2 गुना होने वाला है। घर बदल रहा है लेकिन सलमान का स्वैग और उनके चाहने वालों का प्यार बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखना ये है कि आने वाली ईद पर फैंस अपने सिकंदर की एक झलक पाने के लिए समंदर किनारे वाले इस नए आशियाने के बाहर कैसे जुटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है क्या? हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण। आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। ओडिशा के पूरी सहित दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान को कराया गया स्नान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का नया फैसला, इस साल 10वीं के छात्रों को मिलेगी छूट, आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी के मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाके में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, जो आई है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से, जहां आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। इस मौके पर उन्होंने बाबा बर्फानी के से देशवासियों से सुख शांति समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की और लोगों से बढ़ चढ़कर इस यात्रा में आने के लिए अपील भी की। आज की इस प्रथम पूजा के साथ ही यात्रा का शुभारंभ भी हो गया है, इसलिए आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। प्रथम पूजा से शुरुआत, चलो श्री अमरनाथ। हालांकि तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 3 दिन बाद यानी कि 3 जुलाई की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया जाएगा। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देश भर से तीर्थयात्रियों के जम्मू पहुंचने का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ तेज हो गया है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र दोस्त और रिश्तेदारों परिवार दोस्त और रिश्तेदारों के साथ जम्मू पहुंच रहे हैं, जिनमें इस पवित्र यात्रा को लेकर जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है।

हर तरफ हो रही जय जयकार, बाबा बर्फानी गुफा में गूंजे मंत्रोच्चार। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें उसी पल की है जब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की।

0: इस खास मौके पर उन्होंने बाबा बर्फानी से देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए कामना की। साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने का आह्वान भी किया।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: प्रथम पूजा से यात्रा का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 3 जुलाई की सुबह जम्मू बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके लिए देश भर से तीर्थ यात्रियों के जम्मू पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। इनमें कोई परिवार संग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आया है, तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ दौड़ा चला आया है। इस पवित्र यात्रा को लेकर इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है।
2: बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहां जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है।
3: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए,
4: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
3: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
0: हर साल की तरह इस साल भी देश भर से आने वाले इन अमरनाथ यात्रियों के आने जाने, ठहरने, मेडिकल और सुरक्षा को लेकर प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न पेश आए। वहीं यात्रा शुरू होने में अब चंद रोज ही बाकी हैं, जिसे देखते हुए यात्रा वाले रूट पर जगह जगह खाने पीने के लंगर लगने शुरू हो गए हैं, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध सात्विक भोजन और ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है।
5: जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: इस यात्रा से पहले आज एक रिहर्सल भी की गई, जिसमें पूरी तरह से तैयार काफिला कड़ी सुरक्षा के साथ जम्मू से रवाना हुआ और फिर ये रामबन जिले में चंद्रकूट यात्रा लंगर साइट और लंगर ग्राउंड बनिहाल लंगर साइट पर कुछ देर के लिए रुका, जहां तीर्थ यात्रियों के लिए इंतजामों और सुविधाओं का जायजा लिया गया। थोड़ी देर रुकने के बाद ये काफिला आगे श्रीनगर की ओर बढ़ गया।
6: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है, उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया, जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू, आईजीपी सीआरपीएफ, आईजीपी ट्रैफिक और आईजीपी सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके बनिहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफिले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, बनिहाल लांबर ग्राउंड भी देखा गया।
0: इस रिहर्सल का मकसद रास्ते के इंतजामों, सुरक्षा तैयारियों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अलग अलग विभागों के बीच तालमेल को परखना था, ताकि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। श्रीनगर से अश्रवानी, रामबान से राशिद रसूल और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अगली खबर महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शंखनाद हो गया है। यात्रा से पहले आज का दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। इस पावन अवसर पर पुरी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। परंपरा के अनुसार आज देव स्नान पूर्णिमा या जगन्नाथ स्नान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से महाभिषेक किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी न्यूज है वो है महाप्रभु की स्नान यात्रा। आपको बता दें कि पुरी में मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिव्य स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते और इसके बाद भगवान नवयौवन स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर भव्य रथ यात्रा के साथ अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और यही वजह है कि देव स्नान पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये दिन आस्था, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है।

0: भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तों से पटा है। हर कोना जगन्नाथ के भक्तों से गुलजार है। कोई देश के किसी कोने से आया है तो कई विदेश से देव स्नान उत्सव में शामिल होने आए हैं।
1: आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है, तो आज भगवान को पहली मतलब साल में एक बार मंदिर से बाहर लाके स्नान कराते हैं, तो सबको दर्शन का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको लगता है भगवान साक्षात ही आ गए हैं। बहुत खुशी मिलती है। आज से 15 दिन बाद अभी भगवान जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी नहाने के बाद, तो वो जाएंगे और उसके बाद 15 दिन बाद वो आके फिर से रथ में बैठेंगे। अभी उनका दर्शन यहाँ पे नहीं होगा, कहीं पे होगा मामा?
2: अलारनाथ
1: जी पे दर्शन मिलेगा। भगवान का आज लास्ट दर्शन है, कल से अलारनाथ जी पे दर्शन करेंगे हम।
0: ये भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ही है कि तपती धूप हो या उमस भरी गर्मी, भक्त घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और ये लाखों श्रद्धालु घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान के एक दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है।
3: जो भगवान का स्नान यात्रा है, ये देखने का सौभाग्य हमें मिला है, बहुत ही खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे हैं, तो ये भगवान की महिमा है।
4: ये यहाँ तक आना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर कोई यहाँ तक नहीं आ पाता है। ये कोई कहते हैं ना, भगवान का बुलावा, भगवान का चमत्कार जब होता है तभी आप आ पाते हैं। तो उसके लिए मैं सौभाग्य मानती हूँ अपने आप को कि हम इस धरती पे हैं आज। और उसके बाद तो क्या होता है वो आप देखिए, इतनी भीड़ है कि मतलब ऐसे सपना सा लग रहा है सब।
0: ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का दिव्य स्नान महोत्सव होते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ देव स्नान होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।
5: कल देव स्नान पूर्णिमा है, आज महाप्रभु के कैसे दर्शन हुए आप?
6: दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बहुत भीड़ थी, है ना। लेकिन
5: कब से आप जो लाइन लगी हुई है, कब से खड़े थे?
6: हम लोग तो सुबह यहाँ आ गए थे, फिर प्रशासन द्वारा बताया गया कि 11 बजे से चालू होगा लाइन लगना, तो 12 बजे से लाइन चालू हुआ। और
5: ये पहली बार था या इससे पहले?
6: जी पहली बार था हमारा, ये पहली बार।
0: महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। रंग बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों और पुष्पों से सजे भगवान स्नान पूर्णिमा पर गजवेश धारण करते हैं, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इतना ही नहीं, दिव्य स्नान उत्सव के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत अनूठी परंपरा की भी शुरुआत होती है। अब भगवान अगले 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। मान्यता है कि 16 जुलाई को निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले भगवान एकांतवास में चले जाते हैं, और इसी दौरान श्री मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 108 कलशों के पवित्र जल से महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है, इसलिए उन्हें विश्राम के लिए विशेष कक्ष में लाया जाता है। इस दिन 15 दिवसीय अवधि को अनासर या अनवासर काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान अनासर घर में एकांतवास करेंगे, जहां परंपरागत विधि से उनका उपचार किया जाएगा। मान्यता है कि इसी उपचार के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। और अगले दिन यानी 15 जुलाई को भगवान पहली बार अपने नव यौवन स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके ठीक अगले दिन यानी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। यही वो ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के रथों को खींचने का सौभाग्य हासिल करने के लिए उमड़ते हैं।
7: पवित्र स्नान पूर्णिमा उत्सव है, इस अवसर पर हमको आज सौभाग्य प्राप्त हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। और उड़ीसा का कैसे कल्याण हो, सारा जगत का कैसे कल्याण हो, इसी आधार पर हमने हमारा उड़ीसा लोगों के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना मैंने किए हैं।
0: जहाँ भगवान के दरबार में आस्था की बयार बह रही है, वहाँ पुरी में समुन्दर किनारे भगवान जगन्नाथ की भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा की मनमोहक कलाकृति उकेर कर देव स्नान पूर्णिमा का संदेश दिया। अपनी आकर्षक सैंड आर्ट के जरिए उन्होंने श्रद्धालुओं को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी।
8: सारा विश्व से, हर कोने से
2: भक्त जो है वो पूरी जगन्नाथ धाम में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को समर्पण करके हम लोगों ने ये रेत के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी और माँ सुभद्रा बड़े भाई भगवान बलभद्र जी का ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं।
0: जाहिर है देव स्नान पूर्णिमा के साथ अब भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पूरा पूरी धाम एक बार फिर भक्ति उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासागर में डूबा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: कहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कमी ना हो तो छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। गुजरात की महज 8 साल की तक्ष्वी वागानी ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है छोटी उम्र में बड़ा रिकॉर्ड। आपको बता दें कि तक्ष्वी ने लिम्बो स्केटिंग में ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने महज 16 सेंटीमीटर ऊंची बार के नीचे 10 मीटर तक लगातार स्केटिंग करते हुए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और यही नहीं, इतनी छोटी उम्र में तक्ष्वी अब तक 5 बार विश्व रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

0: उम्र 68 साल, लेकिन हौसले और हुनर इतने बड़े कि अब नाम सीधे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और ये कोई पहली बार नहीं, पांचवी बार है जब गुजरात की तक्षवी बाघानी का नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। इस नन्ही स्केटर ने निम्बो स्केटिंग में महज 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई के नीचे 10 मीटर तक स्केटिंग कर दुनिया को हैरान कर दिया। इस बार स्केटर तक्षवी ने जमीन से सिर्फ 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगी बाधा के नीचे लगभग 10 मीटर तक बिना किसी रुकावट के स्केटिंग की। इस दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखना और बहुत कम ऊंचाई में फिसलते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे इस नन्ही खिलाड़ी ने शानदार ढंग से पूरा किया।
1: मैंने लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 16 सेंटीमीटर के नीचे से निकली हूँ मैं। 4 ईयर्स की थी तब से स्केटिंग कर रही हूँ। मैं सुबह जाती हूँ 2 घंटे और रात को करती थी 2 घंटे।
0: लिम्बो स्केटिंग को स्केटिंग की सबसे कठिन विधाओं में गिना जाता है। इसमें खिलाड़ी को पीछे की ओर झुकते हुए बहुत कम ऊंचाई के नीचे से गुजरना होता है। इसके लिए वर्षों की कड़ी मेहनत, लचीलापन, संतुलन और एकाग्रता की जरूरत होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तक्षवी ने महज 4 साल की उम्र में स्केटिंग सीखना शुरू किया और तब से लेकर आज तक वो रोजाना करीब 4 घंटे अभ्यास करती है। यही निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण उन्हें एक के बाद एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है।
2: हमने सोचा आफ्टर कोविड की चलो अभी उसको कोई एकेडमी में एनरोल करते हैं, तो हमने सर्च किया तो सब कोचिज ना ही बोल रहे थे कि ये अंडर एज है, वो बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करेगा, वो गिरेगी, रोएगी, तो हम नहीं ले सकते। फिर हमने बोला कि आप एक बार ट्राई तो करो, तो वो अग्री हो गए कि चलो मैं डेमो क्लास करवाता हूँ। फिर वो तो उनको लगा कि ये कहीं गई है, इतनी छोटी है, फिर भी आपने उसको कहीं रखा था, तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो 2-3 महीने में करते हैं वो तो उसको आज ही आ रहा है।
0: सबसे खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में तक्षवी अब तक 5 बार विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। हर नए रिकॉर्ड के साथ उन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है बल्कि भारत का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। और बेटी की इस कामयाबी पर उनके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
3: तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ये स्केटिंग की स्किल दोनों को कॉम्बाइन करके एक अलग कुछ टास्क करता है। तो लिम्बो स्केटिंग का हमने एक सजेशन दिया, वो उसको आगे बढ़ के फिर हमने ट्रेनिंग शुरू किया। तो उसमें उसका जो प्रोग्रेस था वो काफी कम समय में उसने वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के कारण और उसका जो स्किल था वो अच्छा बेहतरीन होता गया। और फिर हमने उसको एक एक रिकॉर्ड धीरे धीरे टारगेट किया और एक एक करके रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और आज उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है।
0: तक्षवी वाघानी सिर्फ एक स्केटर नहीं बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं। उनका ये नया विश्व रिकॉर्ड हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने कई तरह के फेस्टिवल्स देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे फेस्टिवल में लिए चलते हैं जो चल रहा है राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जहां चल रहा त्रिपुरा ग्लोबल पाइन एप्पल फेस्टिवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पाइन एप्पल फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा का GI टैग प्राप्त क्वीन पाइन एप्पल है, जो कि अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है फेस्टिवल में क्वीन पाइन एप्पल की मिठास। ये क्वीन वेराइटी अपनी जबरदस्त खुशबू और सुनहरे रंग के लिए जानी जाती है, जो बाजारों में मिलने वाले दूसरे अनानास से कहीं ज्यादा मीठा होता है। फेस्टिवल में बने खास टेस्टिंग जोन्स में इसके ताजे स्लाइस का स्वाद लिया जा सकता है। इस फेस्टिवल में 25 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं, जो न केवल त्रिपुरा के इस खास फल की खूबियां बताते हैं बल्कि वहां की खेती और परंपराओं की झलक भी दिखाते हैं। इस फेस्टिवल में 5 उत्कृष्ट अनानास किसानों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में हर साल लगभग 1.78 लाख से 1.87 लाख मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है, जिसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन GI टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है।
5: मौजूद है त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये चल रहा है और आपको यहाँ पर हम इस वक्त जो पाइनएप्पल दिखा रहे हैं, ये पाइनएप्पल की बहुत रेयर कैटेगरी में आता है, इसे क्वीन पाइनएप्पल कहते हैं। त्रिपुरा में इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और पूरे देश में भी ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ त्रिपुरा में ही इसकी खेती हो सकती है। और इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 4 दिन की होती है, मतलब त्रिपुरा से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में भी कई बार ये नहीं पहुंच पाता, ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत रेयर कैटेगरी है। लेकिन कैसे इसे देश के अलग अलग हिस्सों में आसानी से पहुंचाया जाए, कैसे इसे दुनिया के तमाम लोगों की ज़ुबान तक पहुंचाया जाए, इसका स्वाद चखाया जाए, इसकी कोशिश भी इस फेस्टिवल से की जा रही है। देखने में तो आप देखिए बहुत छोटा पाइनएप्पल है ये, इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। दिल्ली NCR में आप जिस तरह का पाइनएप्पल खाते हैं उससे ये साइज़ में काफ़ी छोटा है। साइज़ एक बात है, और कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर है ये?
6: रेयर इसलिए है कि ये वाला जो क्वीन वैरायटी है ये GI एक प्राप्त है 2015 को, ये हम लोग का ऑनरेबल प्रेसिडेंट तब का वो इसको लॉन्च किया था। इसका यूनिक ये है कि ये एक किस्म का पाइनएप्पल है जो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में ही उगाया जाता है और वहाँ पाया जाता है। इसका जो मीठा से ये दूसरा वेराइटी जो अनानास है उससे बेहतर है, और उस इसका जो महक है ये भी बहुत खुशबूदार है।
5: हम यहाँ पर खड़े हैं, एक इसका ये पिरामिड बना हुआ है और खुशबू चारों तरफ इस पाइनएप्पल की फैली हुई है। आपने कहा कि सिर्फ त्रिपुरा में ही होता है, कैसे, ऐसा क्यों, ऐसी जगह क्यों नहीं?
6: ऐसे इसलिए क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, जो मिट्टी है, जो पानी है, वो इसके लिए फेवरेबल है।
5: दिल्ली NCR में आप आए, कैसा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने पसंद किया?
6: बहुत सारा पसंद हुआ और बहुत सारा डिमांड में आया है।
5: बहुत सारा डिमांड में आया, लोग पसंद कर रहे हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन की इसकी लाइफ होती है, ऐसे में त्रिपुरा से चलकर पूरे देश में पहुंचने बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर इसी बात की खोजबीन और रिसर्च भी की जा रही है कि ना सिर्फ भारत में, ना सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों तक ये क्वीन पाइनएप्पल आखिर उसके मूल स्वाद के साथ पहुँचाया कैसे जाए।
4: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इस बार लीची की ऐसी बहार आई है जिसने बागवानी के पेशे से जुड़े किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। लीची की रिकॉर्ड पैदावार ने न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाई है बल्कि कठुआ को देश के प्रमुख लीची उत्पादक क्षेत्रों में नई पहचान भी दिलाई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है लीची की बंपर पैदावार, किसान हुए खुशहाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इस साल लीची की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। दरअसल अनुकूल मौसम और आधुनिक बागवानी की तकनीक इस साल किसानों के लिए खुशखबरी लेकर के आई है और दोनों की मदद से ऐसा कमाल हुआ है कि बागों में हर डाल फल से लदी नजर आ रही है।
7: लीची जो है इस बार हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बम्पर क्रॉप निकली है और आप जानते ही हैं लीची जो है हाई वैल्यू क्रॉप है, काफी अच्छा इससे मुनाफा होता है और सबसे ज्यादा कंपेयर करें बाकी क्रॉप से तो लीची में सबसे कम मेहनत की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मुनाफा है और हर साल इसमें प्रोडक्शन आती है। आप देखते हैं इस साल हमारी जो प्रोडक्शन है, आप लीची की मार्केट में देखो तो 200 से भी ज़्यादा मतलब इसमें पर केजी जो फ्रूट इस समय आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले हम पंजाब पर या दूसरी बाहर स्टेट्स पर निर्भर से करते थे, लेकिन अब जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है लीची में नंबर 1 चल रहा है।
8: बहुत पुराने पौधे भी हैं और नए पौधे भी हैं और ये लीची जो मैंने पकड़ी ये कलकत्ती है और इससे पहले वो तैयार हुई थी क्या कहते हैं देहरादून, और ये तो अच्छी बनी है। पीछे मौसम शोसम से थोड़ा फर्क पड़ा।
9: नहीं, मैं करनाल से हूँ, हरियाणा 05 से, और हमने लीची का बगीचा लिया है यहाँ पे राजबाग। कम से कम 40-50 बंदे काम करते हैं हर साल।
10: तो क्या देखते हैं इस बार कौन सा माल निकला है आपके हाथ में, कौन कौन सा माल?
9: ये मेरे हाथ में कलकत्ती है, पहले देहरादून थी वो मुका दी थी, अब कलकत्ती है, अच्छा रंग बनाया, देखो
10: मार्केट में अच्छी डिमांड निकली।
9: मार्केट में अच्छी डिमांड है।
10: क्या रेट जा रहा है
9: मार्केट में? कम से कम 1300-1400 का डब्बा जा रहा है।
10: तो क्या देखते हैं कितना माल हर साल जहाँ से तोड़वाई करते हैं, कितना माल बिकता है?
9: हर साल कम से कम 2-3 हजार डब्बों का काम करते हैं।
4: ओडिशा के मयूर भंज में कलाकार की प्रदर्शनी चर्चा में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस कलाकार का नाम कुमार मिसाल है। इनकी खासियत ये है कि ये जिस पेपर पर अपना आर्टवर्क तैयार करते हैं वो पेपर भी वो खुद ही बनाते हैं और वो भी खेती के कचरों से। आज हमारी अगली यानी कि जो 6वीं गुड न्यूज है वो है चित्रकार की वेस्ट वंडर वाली कलाकारी। आपको बता दें कि कुमार मिसाल का जन्म महाराष्ट्र के किसान परिवार में हुआ था। वो कोल्हापुर के कुंभीज गांव के रहने वाले हैं। गांव की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने के चलते वो अपनी कला के माध्यम से देश के किसानों के संघर्षों और ग्रामीण जीवन के यथार्थ को दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें किसानों की कहानियों का सूत्रधार भी माना जाता है।
11: अगर आपसे कहा जाए कि ये चित्रकारी वेस्ट टू वंडर का सबसे अनूठा और नायाब उदाहरण है तो आप शायद यकीन न कर पाए, लेकिन ये सच है और इस सच को जी रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के कलाकार कुमार मिसाल, जो एक खास तरह के चित्रकारी के लिए मशहूर हैं। ये खेती के कचरों से पहले पेपर तैयार करते हैं और फिर उसी पेपर पर चित्रकारी करते हैं। अपनी भावनाओं, सोच और उम्मीद को बड़ी बारीकी से इन्हीं कागजों पर उतार देते हैं।
12: जैसे कि मैंने बचपन में देखा है कि वेस्टेज फार्मिंग सोसाइटी में या फिर मेरे घर में कोई चीज़ें होती नहीं थी, यानी जो भी चीज़ें है उसके ऊपर प्रक्रिया करके नई चीज़ बनाई जाती थी। तो यही चीज़ मेरे काम में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी। मेरे फार्म में जो भी वेस्टेज फाइबर्स है या फिर चीज़ें है उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसके कागज़ बनाना और कागज़ और कलाकृति बनाना मैंने शुरुआत किया।
11: खास बात तो यह है कि ये न सिर्फ पेपर बनाने में खेती के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कागज पर जो कुछ उकेरते हैं उनमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है।
13: खेती में जो कुछ भी यूज होता है, छोटी भी चीज वेस्ट ना हो, वो माइंडसेट को लेके वो कॉर्न हस्क, बनाना फाइबर, राइस हस्क जैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेके उनके साथ उन्होंने मास्टरी बनाई है, एक्सपर्टीज बनाई है पेपर बनाने में, और उसके ऊपर वो चित्रकार करते हैं।
11: कुमार की इन कलाकृतियों में कृषक जीवन की चुनौतियां, उनके संघर्ष हैं, उनकी जीवटता है। वुडकट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे किसानों के परिवारों पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज भी करते हैं और उनके प्रवासन और विस्थापन के मुद्दों को उजागर भी करते हैं, और इस तरह वो प्राकृतिक कृषि सामग्री और खेती के कचरों से कथाएं रचते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं।
12: वो जो कलाकृति है उसके ऊपर या जो कागज है उसके ऊपर जो सोसाइटी में फार्मर के इश्यूज है, जो उनका संघर्ष है, वो पेंट करने का काम मैं करता हूँ सर। और मैं जो कागज बनाता हूँ और जो फाइबर बनाता हूँ वो एसिड फ्री और अल्कोहल फ्री होते हैं, तो उसके वजह से होता ये है कि उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि उससे दीमक या कीटक लगने से थोड़ा बचता है वो। तो ये इंस्पिरेशन और ये जो प्रभाव है वो मुझे फार्मर के रूटीन से आया हुआ है।
11: ओडिशा के मयूरभंज में कुमार मिसाल के चित्रों की ये प्रदर्शनी न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है बल्कि हैंडमेड इको पेपर क्रिएशन के जरिए ग्रीन आर्ट को बढ़ावा भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इस कहावत को सच कर दिखाने वाले एक बुजुर्ग के बारे में बताते हैं जिनके स्काई डाइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो 18,000 फीट से स्काई डाइविंग करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बुजुर्ग के चेहरे पर डर और घबराहट आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। आज की हमारी जो अगली यानी कि सातवीं गुड न्यूज है वो है आज कुछ तूफानी करते हैं। जी हाँ, देखिए दरअसल वायरल वीडियो को अंकित नाम के एक युवक ने शेयर किया है। वीडियो में वो अपने दादाजी को ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कराने ले जाते हैं। अंकित बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके दादाजी 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर चुके हैं, मगर इस बार उन्होंने रोमांच का स्तर बढ़ाते हुए 18,000 फीट से छलांग लगाने का फैसला किया, जिसमें वो पूरी तरह सफल हुए। बड़ी बात यह है कि दादाजी ने न सिर्फ बिना डरे स्काई डाइविंग की बल्कि हवा में उड़ते हुए पूरे जोश के साथ जय हिंद और जय भारत के नारे भी लगाए। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से भी पॉलिसी 2026 होगी लागू। प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया। आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा का शुभारंभ। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ का महाअभिषेक, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान को कराया गया स्नान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का ये वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का ये वीडियो है महाराष्ट्र का। क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
12: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
5: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या, आप भी जानिए।
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर ये वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का आप बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
13: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चा साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
12: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर दो गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौ रक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गोरक्षक बजरंग दल विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर दो गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला, जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए, इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं, लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है, लेकिन शीशा टूटने की बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening. Come on.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के बीच

0: इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: Meditative state. This one is like a transformation that India made for me.
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब्बा
3: हाँ उठा जाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो
2: आ जाओ।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादा जी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब
3: उठा जाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा। वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं। इस वायरल वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

0: स्पेन का एक पारंपरिक खेल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहाँ की खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहाँ की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी को एक बड़ी लकड़ी के सहारे हवा में उछालते हैं और फिर उसे जोर से मारकर आगे की तरफ भेजते हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है, जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
2: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
11: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। जगन्नाथ धाम में महाप्रभु का महास्नान, अगले 15 दिन एकांतवास में रहेंगे जगत के पालनहार। बाबा बर्फानी के दरबार में गूंजी पहली आरती। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में सरकारी कार्यक्रम की तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी विश्राम स्थलों का किया निरीक्षण। आज हुई बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, 3 जुलाई से यात्रा शुरू। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान को कराया गया स्नान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इनोनामी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

सुनेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में आज भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा को पूरे विधि विधान के साथ महास्नान कराया गया। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले इस पवित्र महास्नान का साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया भर से भारी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ धाम पहुंचे। मान्यता यह है कि इस महास्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक स्वास्थ्य लाभ के लिए दर्शन नहीं देते हैं। भगवान के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

0: देश के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को महास्नान कराया गया। इस देव दुर्लभ अलौकिक अवसर पर भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और परंपरागत महास्नान का अवलोकन कर अपना जीवन धन्य किया और साथ ही अपने सूबे के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना भी भगवान जगन्नाथ से की।
1: आज पवित्र स्नान पूर्णिमा उत्सव है। इस अवसर पर हमको

0: देश के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज की नगरी पुरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और परंपरागत महास्नान का अवलोकन कर अपना जीवन धन्य किया और साथ ही अपने सूबे के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना भी भगवान जगन्नाथ से की।
1: आज पवित्र स्नान पूर्णिमा उत्सव है। इस अवसर पर हमको आज सौभाग्य प्राप्त हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। और ओडिशा का किसे कल्याण हो, सारा जगत का किसे कल्याण हो, इसी आधार पर हमने हमारा उड़ीसा लोगों के लिए भलाई के लिए प्रार्थना मैंने किए हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा को समृद्ध उड़ीसा बनाने के लिए जो संकल्प लेते हुए हमारा सरकार आगे बढ़ रहे हैं। उड़ीसा का जनता का सेवा और विकास अच्छा ढंग से हो तो निश्चित रूप से समृद्ध उड़ीसा होगा और जगत का भी कल्याण होगा। इसी आधार पर हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना की।
0: ज्येष्ठ पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर महाप्रभु के महास्नान की पावन परंपरा अपने आप में अनूठी है। पुरी का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम दुनिया का अकेला ऐसा धार्मिक केंद्र है जहां स्नान के बाद भगवान सर्दी लगने से अस्वस्थ हो जाते हैं और उपचार के लिए 15 दिन तक एकांतिक जीवन जीते हैं। इस परंपरा का विधान भी अद्भुत है। काबिले गौर है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी महास्नान कराया जाता है। यह परंपरा कहती है कि हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के जागृत विग्रह को गर्भगृह से निकालकर मंदिर परिसर में मौजूद आंगन में लाया जाता है और फिर विधि विधान के साथ उन्हें स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि जेठ की गर्मी से राहत दिलाने के लिए ही भगवान ठंडे जल से स्नान करते हैं। इस दिन तीनों को 108 कलश से भरे सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। परंपरा के अनुसार 35 कलश के जल से भगवान जगन्नाथ को, 33 कलश के जल से बलभद्र जी को और 22 कलश के जल से देवी सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। इन तीनों को स्नान कराने से पहले 18 कलश के जल से सुदर्शन चक्र, गरुड़ आदि को स्नान कराया जाता है। महास्नान से पहले कई तरह के विधि विधान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न होते हैं। इस अलौकिक परंपरा का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पूरी पहुंचते हैं।
2: You can see that lakhs of devotees have come, but from the administration side, from the Sri Jagannath Temple administration, the police administration, the district administration and various arms of government, elaborate arrangements have been made and the devotees are going in queues. They are having a very disciplined darshan. Special darshan arrangements have been made for all the devotees.
0: जैसे कि परंपरा है कि महास्नान के बाद आषाढ़ कृष्ण प्रथमा से भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज और बहन के साथ एकांतवास में चले जाएंगे और मंदिर परिसर में एक आध्यात्मिक शांति छा जाएगी। मान्यता है कि शाही स्नान समारोह से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को ज्वर आ जाता है और 15 दिन तक वो आम लोगों के लिए दर्शन से दूर हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में इस अवधि को अनावसार काल कहा जाता है। अनावसार काल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के पट्ट चित्रों की ही पूजा उपासना होती है। 15 दिन के उपचार के बाद भगवान नव यौवन रूप में दर्शन देते हैं।
3: नान वेदी से भगवान जगन्नाथ को पाने के लिए ऋषि जो मनु हैं, मनु ऋषि तपस्या किए थे, यज्ञ किए थे और यज्ञ में भगवान को आखिर आज यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा जो होता है, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ उनको मिले थे। और ये कहावत है कि भगवान मिलने के बाद पहली बार मनु ने भगवान को नहाए थे और इसके बाद कई सालों से भगवान का ये रिचुअल, ये जो विधि तब से ही है। और भगवान जो आज नहाते हैं 108 घड़े पानी में नहाते हैं।
0: 15 दिन के लिए भगवान जब बीमार हो जाते हैं तो अनावसार काल में भगवान के रत्न जड़ित वस्त्र और आभूषण उतार दिए जाते हैं। भगवान को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल पाए इसलिए उन्हें सफेद सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दौरान भगवान को गरिष्ठ नहीं बल्कि हल्का और आसानी से पचने लायक भोग अर्पित किया जाता है। दूध फलों का रस भोग के रूप में अर्पित होता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधीय काढ़ा भी भगवान को दिया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। इतना ही नहीं, शोरगुल से भगवान को परेशानी ना हो इसके लिए मंदिर परिसर में घंटे भी बजाए नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान मंदिर में कोई निर्माण कार्य भी नहीं होता। जगन्नाथपुरी की ये परंपरा देश भर के जगन्नाथ मंदिरों में पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाई जाती है। काशी के केदारखंड में विराजमान भगवान जगन्नाथ का अभिषेक भी जगन्नाथपुरी की परंपरा के अनुसार किया गया।
4: परंपरा अनुसार भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी को स्नान कराया जाता है। देख सकते हैं कि पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, सवारा गया है और आज तड़के सुबह से ही देर रात्रि तक स्नान चलेगा और भगवान जगन्नाथ अतिरेक प्रेम से विभोर होकर बीमार पड़ जाते हैं। क्या क्या होता है, फिर किस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत होती है, बताने के लिए हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। गुरु जी, क्या किस तरह की ये परंपरा चली आ रही है?
5: अब जब से मंदिर की स्थापना पुजारी जी तेजो निधि ब्रह्मचारी जी ने जब से स्थापित किया है तभी से यह परंपरा उड़ीसा के पुरी के मंदिर से वही परंपरा यहाँ भी चली आ रही है।
0: पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है। एक दिन पहले नवयौवन दर्शन के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों दिव्य रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जिसका दर्शन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और पुरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं जिसकी शुरुआत 3 दिन बाद होने वाली है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पवित्र गुफा में जाकर इस साल बाबा बर्फानी की पहली पूजा अर्चना की। बाबा बर्फानी की पहली पूजा के बाद मनोज सिन्हा ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा दिया। इधर जम्मू के बेस कैंप में भी तीर्थयात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और पूरे 57 दिन तक चलेगी।

0: विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा सोमवार को पूरी आस्था और विधि विधान के साथ संपन्न हुई।
1: जग पालन करता यो मार हर हर हर महादेव।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने स्वयं अमरनाथ गुफा में जाकर बाबा बर्फानी की पूजा आराधना की। बाबा बर्फानी की पूजा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा का भरोसा दिया।
2: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सबों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके।
0: आपको बता दें कि इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जो कुल 57 दिनों तक चलेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी, लेकिन इससे पहले 15 अप्रैल से ही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था 2 जुलाई को कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा, लेकिन उसके 3 दिन पहले ही बहुत सारे तीर्थयात्री बेस कैंप पहुंच चुके हैं और पूरे उत्साह और उमंग में हैं।
3: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिये श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
4: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ। मेरे हस्बैंड बीएसएफ में, ये मेरी गुरु माँ है, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
3: बुलावा आ गया,
5: हाथ पकड़ के बुला लिया।
3: बोले ना हमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति।
4: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
3: कभी पहली बार आ रहे।
6: ऐसे
7: बोलो अमरनाथ बाबा की जय, और बर्फानी बाबा।
3: अभी भरतपुर से ही मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में, क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
6: कुछ नहीं चाहिए,
4: दर्शन हो जाए,
8: कल्याण करना है।
6: हर साल दोबारा आए,
4: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
5: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी।
4: कुछ नहीं,
5: इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
6: बाबा की मंदिर में हर साल आए,
9: हम दोबारा आए हुए,
4: सबकी मनोकामना
9: दोबारा बुलाया है।
3: कहाँ से?
9: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
6: 2023 में आए थे
9: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे हैं।
3: जय घोष कर दीजिए सभी।
0: पिछले साल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को देखते हुए इस साल जम्मू के यात्री निवास भवन परिसर से लेकर यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
3: फिलहाल अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है इसको सील कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में है वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं।
0: साफ है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा में हिला हवाला की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मॉक ड्रिल के लिए आम यातायात को सोमवार को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने का विधिवत अभ्यास किया गया, यहां तक कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने की भी मॉक ड्रिल की गई। इससे पहले रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षक बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का निर्देश दिया।
2: उसकी समीक्षा की गई है। मैं अपने सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष होगी।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्रणिति सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2-3 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति सेवा का भाव ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत, अपनी जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
8: श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ राजस्थान का भंडारा पवित्र स्थान बालटाल पर पहुंच चुका है और सभी सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे। और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव।
0: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सवाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। आपको बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल मार्ग से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहाँ आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पीना और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
10: जो अपने सूरतगढ़ का भंडारा है 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, गर्म पानी से 5 पकवान तक पहुँच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा पानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं। मैं 11 साल से इस भंडारे से जुड़ा हूँ, मैं हर साल दर्शन को आता हूँ और यही रुकता हूँ। बाबा के दर्शन अच्छे होते हैं और इनकी हेल्पिंग नेचर इतनी अच्छी है कि इच्छा नहीं होती है कि यहाँ से घर जाएं वापस, यहीं रुके।
0: 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। जैसा कि तय है कि इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा के अनुसार पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: और अब विकास की राह पर चल निकले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ ये पूरा इलाका बढ़ चुका है। अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे मानवी हिडमा का गांव पुवर्ती भी है, जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा भी नहीं सकता था, लेकिन आज वही नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं माओवादी कमांडर मांडवी हिंडवा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी। 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया। पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।
12: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे।
13: बहुत ध्यान देते
12: हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे। तो सब इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है। आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं।
11: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया।
14: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग या यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पे पहुंच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो, अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, उस समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है। आज मैं जिस रोड से आई उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है ये आप लोगों को पता है। अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है।
11: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1,00,000 या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
15: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं, अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000-1,000 भी ऐसे ले लेते।
14: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
16: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं।
15: कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
16: जुड़े
15: जी।
11: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
17: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
11: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आपके हाथों की रेखाओं से चंद्रमा के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 3:00 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहां होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है। व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है, या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है। ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर, चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। काम बहुत रहेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए, नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से

परेशानी हो रही हो तो क्या उपाय करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद आप भगवान को नमस्कार करके तब दिन की शुरुआत करिएगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। खास तौर से नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल डालकर नहाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में गमले में या जमीन में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में आपके समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में, करियर में कोई संकट आने वाला है तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में या जहां बहुत सोचना होता है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी,
तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो

0: जाएगी, लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है, और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज्यादा करेंगे। चंद्रमा पर कोई चिन्ह ना हो, चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा हो, बहुत ज्यादा लकीरें ना हो, तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक ताकत काफी ज्यादा है। अगर आपका मन उदास हो या बहुत ज्यादा आपके मन में तनाव हो, तो उदास मन से या टेंशन वाले मन से खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि मन बैठे बैठे एकदम से अशांत हो जाता है, अचानक से मन में कोई बात आ गई, मन एकदम अशांत हो गया, क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, मन का बड़ा गहरा संबंध आपके सांसों से है, ब्रीदिंग से है, तो आप इत्मीनान से बैठकर गहरी गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस थोड़े एक मिनट दो मिनट लीजिएगा, इसके बाद एक गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन ही मन में शिव शिव शिव शिव शिव नाम एक मिनट दो मिनट तक बोलिएगा, चिंताएं एकदम से छूमंतर हो जाएंगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। उड़ीसा के पुरी सहित दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से बलभद्र बहन सुभद्रा का किया गया स्नान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाके में घायलों और मरीजों का हो रहा इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पवित्र गुफा में अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा की भी है।
12: ध्यान करें, ओम वंदे देवम।
13: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पवित्र गुफा में प्रथम पूजा करने के साथ ही अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। इस विशेष अवसर पर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेते हुए देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रार्थना की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को दिल से निमंत्रण दिया और उन्हें बड़ी संख्या में पवित्र यात्रा में शामिल होकर आध्यात्मिक अनुभव लेने का आह्वान किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में प्रथम पूजा के बाद 3 जुलाई से 57 दिनों की तीर्थ यात्रा औपचारिक तौर पर शुरू होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। जम्मू के यात्री निवास से लेकर बालटाल बेस कैंप तक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेकर अनंतनाग और कुलगाम तक में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर हर जगह सुरक्षा बलों के जवान मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा इंतजामों को परखा गया, जहां ज्वाइंट मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह सुरक्षा को लेकर कड़ी मुस्तैदी दिखी। ओडिशा के पुरी में देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य स्नान यात्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। इस स्नान यात्रा को दुनिया भर में प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पवित्र त्यौहार वर्ष का पहला मौका होता है जब भक्त रथ यात्रा से पहले गर्भगृह के बाहर भाई बहन देवताओं की एक झलक पाते हैं। इस विशेष अवसर के लिए सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए गए ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना करना नहीं पड़े। इस वर्ष भव्य जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी, जिसकी सबसे अहम रस्म पूरी कर ली गई है। पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में तैयारियों को परखने के लिए पुरी में मॉक ड्रिल भी हुई। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने स्नान पूर्णिमा के अवसर पर रेत पर शानदार कलाकृति बनाई, जिसमें जय जगन्नाथ और स्नान पूर्णिमा का संदेश दिया गया। 8 फीट ऊंची और 18 फीट चौड़ी बारीकी से बनाई गई इस रेत की कलाकृति में पवित्र स्नान पूर्णिमा की रस्म को बखूबी बयां किया गया। स्नान पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रकट होने के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर जगन्नाथ मंदिर के अंदर पवित्र स्नान मंडप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को पवित्र जल के 108 घड़ों से रस्म के साथ स्नान कराया जाता है और इसी के साथ सालाना रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं। यहाँ के सासाराम इलाके में स्थित तारा चंडी देवी स्थान पर इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल पर आद्रा नक्षत्र में विशेष पूजा अर्चना होती है। विशेषकर जिस जोड़े की हाल में शादी हुई है वो यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि आद्रा नक्षत्र में नवविवाहित जोड़े के यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। आद्रा नक्षत्र को लेकर ये भी माना जाता है कि इसके शुरू होते ही वर्षा काल शुरू हो जाता है, जो कृषि के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
10: और अब बात करते हैं मॉनसून की। दिल्ली एनसीआर में आज शाम हुई बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से उमस और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी, जिससे कि दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। वहीं देश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में अभी भी मानसून का बेसब्री से इंतजार है।

0: मौसम की मनमर्जियों से इस समय मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मुंबई, कोलकाता और शिमला जैसे शहरों में मौसम मेहरबान है, तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों यानी दिल्ली NCR, यूपी और हरियाणा में लोग भीषण गर्मी और उमस से बेहाल है। मुंबई के कई इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली। मुंबई में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन चुकी है, जिससे अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा और कई जगह यातायात प्रभावित रहा, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
1: मुंबई में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यातायात कहीं ना कहीं ठप हुआ, लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि बारिश रुक गई है और देखिए किस तरीके से सड़क पूरी तरह से सूख गई है। लोग अपनी मंजिलों की तरफ निकल चुके हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीती रात जिस तरीके से एक तेज रफ्तार से मुंबई में बारिश हुई, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। देखिए मैं इस समय जहां मौजूद हूं, ये अंधेरी का सबवे है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इस वजह से, क्योंकि वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन को जोड़ने वाला एकमात्र यही सबवे है। हालांकि थोड़ा भी पानी तेजी से बरसता है तो ये सबवे पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाता है और यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को रोक जाता है। कल रात जिस तरीके से तेज रफ्तार से बारिश हुई, इस सबवे को रात 2 बजे तक बंद कर दिया गया था और उसके बाद खोला गया है। अब बड़े ही आसानी तरीके से लोग यहाँ पर यातायात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 13 दिन बाद मुंबई में बारिश हुई है और भीषण गर्मी से मुंबईकरों को राहत मिली है, मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है।
0: शिमला में सुहावने मौसम और रुक रुक कर हो रही बारिश ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्री मॉनसून बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और पहाड़ों की खूबसूरती और भी निखर गई है। पर्यटकों का कहना है कि यहां की ठंडी हवा, हरियाली और स्वच्छ वातावरण उन्हें गर्मी से राहत दे रहा है।
2: मौसम बहुत अच्छा है इधर का, बारिश बहुत अच्छा, व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा है। इधर हम कल आया इधर रात को, इधर पंजाब से मौसम बहुत अच्छा है, पंजाब में गर्मी है इसलिए इधर आया। इधर व्यू बहुत अच्छा आता है और वेदर अच्छा है इधर का, इधर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जी।
3: अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे तो ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे बारिश का मौसम है, ठंड हो रही है, मजा आ रहा है काफी घूमने में, अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है,
4: ठंड लग रही है,
3: ठंड तो ठीक है, यहाँ पे अच्छा मौसम है, ठंड के लिए आए यहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है इसीलिए आए हैं, धूप पड़ती है वहाँ पे।
5: यहाँ मौसम तो काफी बार अच्छा हुआ है, पर बारिश आई है तो अब और ज्यादा अच्छा हो गया।
0: कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही हाल है, यहाँ बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, बारिश की फुहार से सड़कें भीगी हुई है और यातायात लगातार जारी है। मौसम सुहाना होने से लोग घरों से बाहर निकल पड़े हैं और ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की है, यहाँ अकोला जिले के हर गांव में इन दिनों ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। विदर्भ इलाके में किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। कुछ दिनों पहले तक यहाँ खेत सूखे पड़े थे, वहाँ पहली अच्छी बारिश के बाद उम्मीदों के बीज बोए जा रहे हैं। बारिश होते ही अकोला जिले में खरीफ बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है।
6: महाराष्ट्र और विदर्भ में खासकर देर से आई मानसून, लेकिन मानसून की बारिश इतनी आई कि अब किसानों के चेहरे खिले, कई नदी नाले जो है कल उफान पे भी बहने लगे थे और अब किसान के चेहरे खिले, तो किसान को सबसे अहम बात होती है कि अपने खेत में बीजों की बुआई करना। अब ये किसान जो है, कल की बारिश ने उनको राहत दी है और देर से क्यों ना हो, लेकिन बुआई का काम जो है अब अकोला के इस डोंगरगांव इलाके में हो रहा है।
0: वहीं दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचने के लिए जगह जगह पानी के मटकों का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
7: दो दिन की उमस और तेज गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर वाले जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो बारिश फिलहाल दिल्ली में होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही साफ किया था कि दो दिन तक हीट वेव कंडीशंस रहेंगी, लू चलेगी और तेज गर्मी होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत दिल्ली एनसीआर वालों को मिल सकती है। वो राहत इस बारिश के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, वो हवाएं भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि इनकी स्पीड थोड़ी सी कम फिलहाल दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये ज़रूर राहत लेकर आई है। जिस तरह की गर्मी का सामना दो दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे, 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे और वो बारिश फिलहाल यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मॉनसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है।
8: देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: राजस्थान में मॉनसून की दस्तक का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। वहीं 2 जुलाई से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के दूसरे जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जबकि कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
9: राजस्थान में मौसम का मिजाज अभी कुछ इस कदर है कि कोई समझ नहीं पाएगा कि मॉनसून आना चाह रहा है या फिर गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक ओर जहां राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर इस वक्त 40 पार है, वहीं दूसरी ओर हाईएस्ट रेन 94 mm दर्ज की जा चुकी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो रही है, जिनमें से एक है प्रतापगढ़, जहां सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है, 94 mm बारिश वहां दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर अभी हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान में श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया है, जो कि 44.4 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर अलवर में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि मॉनसून जल्द ही राजस्थान में आए।
0: मॉनसून ने 24 जून तक देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 30 जून से 5 जुलाई तक उत्तर प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को कवर कर सकता है। अब केरलम, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में मॉनसून पहुँच चुका है।
8: जहाँ तक मॉनसून की बात है तो मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी। हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र को कवर कर सकते हैं।
0: मॉनसून की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बेशक कुछ दिनों की देरी से हो रही है, लेकिन 4 जुलाई से मॉनसून के आने की पूरी संभावना है और उससे पहले 1 जुलाई से कमोबेश हर रोज दिल्ली में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी है। अकोला से धनंजय साबले, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जयपुर से रितम जैन के साथ दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
10: QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 के मुताबिक भारत फ्यूचर जॉब्स के लिए वर्कफोर्स तैयार करने में जापान और स्वीडन से आगे। आइए आपको सीधे लिए चले न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी और देश भर से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: भारत में वर्कफोर्स को लेकर अच्छी खबर आई है। देश का वर्कफोर्स भविष्य के नौकरियों के लिए तैयार है। QS World Future Skills Index 2027 के मुताबिक भविष्य की नौकरियों के लिए अपने वर्कफोर्स को तैयार करने में भारत दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। 89.4 के कुल स्कोर के साथ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए अपने लेबर मार्केट को तैयार करने में काफी आगे है। इस लिस्ट में भारत दुनिया भर में 13वें स्थान पर है, जो स्वीडन और जापान से आगे है। हालांकि स्किल्स के मामले में भारत का स्कोर पीछे है। यह एम्प्लॉयर्स को अभी भी सही स्किल्स वाले ग्रेजुएट्स खोजने में मुश्किल होती है। सीबीएसई ने अपनी 3 language पॉलिसी पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन छात्रों को तनाव से बचाने के लिए तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ये नियम इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए प्रभावी हो गया है। मौजूदा 10वीं के छात्रों पर ये नीति लागू नहीं होगी। वो पुरानी 2 भाषा प्रणाली के मुताबिक ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। वहीं दिव्यांग छात्रों, विदेश स्थित सीबीएसई स्कूलों और भारत में पढ़ रहे कुछ विदेशी छात्रों को इस 3 भाषा नीति से विशेष छूट दी गई है। दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू होने के निर्देश दिए हैं। इस पॉलिसी के तहत अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। साथ ही ईवी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग की गई है। 1 जुलाई से लागू ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इससे ईवी सेक्टर में निजी निवेश और नई परियोजनाओं को गति मिलेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही ईवी के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का मकसद भी पूरा होगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पाइनएप्पल फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा का GI टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल है, जो अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस फेस्टिवल में 25 स्टॉल लगाए गए हैं, जो न केवल त्रिपुरा के इस खास फल की खूबियां बताते हैं, बल्कि वहां की खेती और परंपराओं की झलक भी दिखाते हैं। इस फेस्टिवल में 5 उत्कृष्ट अनानास किसानों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। ओडिशा के मयूरभंज में एक कलाकार की प्रदर्शनी चर्चा में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कुमार मिसाल नाम के ये कलाकार जिस पेपर पर अपना आर्टवर्क तैयार करते हैं, वो पेपर भी खुद बनाते हैं, वो भी खेती के कचरों से। एग्रो वेस्ट से बने पेपर पर ये जो कुछ उकेरते हैं, उसमें भी कृषि जीवन की झलक मिलती है। और न्यूज वक्त में अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के देव परंपरा और लोक आस्था की। रामपुर बुशहर में इसी परंपरा के तहत नोगली मेले का आयोजन हुआ। इस 3 दिवसीय मेले में देवों के अलौकिक नृत्य के साथ ही पहाड़ी परंपरा और उत्सव के कई रंग बिखरे। इसमें नाटी का आयोजन भी बेहद आकर्षण रहा, तो लोगों ने झूले से लेकर खान पान का भी खूब लुत्फ उठाया। मेले के 3रे और अंतिम दिन देवी देवताओं को पूरे विधि विधान और पारंपरिक रूप से विदाई दी गई।

0: ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर के नोगली मेले की हैं। यहाँ आस्था और श्रद्धा के ऐसे रंग बिखरे जिसमें लोग सराबोर नजर आए। तीन दिवसीय जिला स्तरीय इस ऐतिहासिक मेले में तीनों दिन भक्ति के साथ उल्लास का माहौल छाया रहा। मेले के आखिरी दिन शलाटी घोड़ी के मुख्य अधिष्ठाता देवता साहिब नरेशर लक्ष्मी नारायण कुमसू समेत बाकी दूसरे देवी देवताओं ने मेला मैदान में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेले के तीसरे और आखिरी दिन मुख्य आकर्षण देवी देवताओं का अलौकिक नृत्य और देव मिलन रहा। इस दिन सभी देवी देवता अपने अस्थायी ठहराव स्थलों से देवलुओं यानी देव पुजारियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल नगाड़े और करनाल की धुनों पर नाचते गाते मुख्य मेला मैदान पहुंचे। यहां देवताओं के भव्य नृत्य को देखने के लिए रामपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सबने यहां पर देवताओं के आकर्षक नृत्य का पूरे भक्तिभाव से आनंद लिया। यहाँ महानाटी लोक नृत्य के रंग में पूरा मेला मैदान रंगा रहा जिसमें लोगों के साथ ही देवलू भी देर शाम तक जमकर झूमते नजर आए।
1: यहाँ पे नोगली मेला इसी तरह मनाया जाता है और हर साल हर जगह से मेला मंडल के सदस्य बुलाए जाते हैं और यहाँ पे नृत्य होता है और सारे देवी देवता भी यहाँ पे आए होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, देवी देवता बाहर निकलते हैं, यहाँ पे पानी सूखा एरिया भी कम हो जाता है और जैसे बारिश इसी टाइम आती है उसके बाद बरसात भी कम हो ज्यादा हो जाती है।
2: यहाँ पे नोगली मेला मनाया जा रहा है जब देवता साहिब लक्ष्मी नारायण जी मंदिर से निकलते हैं उसके बाद यहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है और यहाँ पे लोग नाच गान करते हैं जिससे इस मेले की शोभा बढ़ती है।
0: मेले के बाकी दो दिनों की तरह ही तीसरे दिन भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर देवलुओं के साथ ग्रामीणों ने नाटी डाली। यही इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। इस मेले के आयोजन का मकसद भीषण गर्मी और सूखे के समय बारिश की कामना करना है। मान्यता है कि जब इलाके में सूखा पड़ता है तो कुमसू गांव के लोग अपने इष्ट देवता लक्ष्मी नारायण को क्षेत्र के भ्रमण पर निकालते हैं और जैसे ही देवता भ्रमण के बाद नोगली लौटते हैं आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है।
3: जब इलाके में चाहे वो स्थान लगती पंचायतें हो, जब यहाँ सूखा अकाल पड़ता था तो उसके निजात पाने के लिए हमारे देवता साहब को भ्रमण में इलाके में निकाला जाता है। जब हमारे इलाके में करेरी गांव देवता महाराज जी पहुंचते हैं, वहां पर जब मुख जो है इलाके की ओर होता है, वहां से हर वर्ष वर्षा होती है, जैसे इस बार भी हुई गत वर्षों की भांति, तो लोग जो है उसमें खुशी मनाते हैं, झूमते हैं कि हमारी वर्षा ऋतु शुरू हो गई है देवता साहब की अध्यक्षता में।
0: ये मेला सांस्कृतिक और धार्मिक रंगों के अलावा व्यापारिक लिहाज से भी बेहद खुशनुमा रहा। मेले में सजी अलग अलग दुकानों पर लोग खूब खरीदारी करते दिखे। लोगों ने झूलों के साथ ही खाने पीने का भी पूरा आनंद लिया। देवी देवताओं को पहाड़ी संस्कृति और पारंपरिक विधि विधान के साथ विदाई दी गई। देव विदाई के साथ ही इस मेले का समापन हुआ। हिमाचल के रामपुर बुशहर में आस्था और परंपरा का प्रतीक नोगली मेला है और ये अच्छे मानसून के लिए प्रार्थनाओं का प्रतीक है, तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आस्था को भी दर्शाता आया है। इसमें आस्था और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और रीति रिवाजों को सहेजना है, लिहाजा हर साल आस्था, संस्कृति और उत्सव के रंग के साथ इस मेले का आयोजन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
5: आज शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 372.10 अंक गिरकर 76,728.37 पर बंद हुआ और निफ्टी 109.75 अंक गिरकर 23,946.25 पर बंद हुआ। जानकारों की राय में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने और तेल की कीमतें बढ़ने से निवेशक घबरा गए। वहीं कुछ खास शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग और आईटी, ऑटो और ऑयल शेयरों में बिकवाली के दबाव ने भी इंडेक्स को नीचे खींच लिया। राजधानी में आज सोने चांदी की कीमतों का अलग अलग रुख दिखा। आज सोने की कीमतों में तीन दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत 1,300 रुपए से बढ़कर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में लगातार चौथे सेशन में गिरावट आई और ये 2,000 रुपए गिरकर 2,24,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जानकारों का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद बार्गेन बाइंग के चलते सोने की कीमतों में सुधार हुआ, जबकि चांदी की कीमतों पर विदेशी बाजारों में कमजोरी का असर जारी रहा। वहीं आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती बढ़त गवाकर 9 पैसे की गिरावट के साथ 94.54 पर बंद हुआ। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को।
6: उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।
0: इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज हुआ। विशेष फिल्म्स के आधिकारिक रूप से जारी इस टीजर में इमरान हाशमी जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें दिशा पाटनी की भी खास झलक देखने को मिल रही है। टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है।
6: बहुत भी अजीब है, उससे मुझे छुआ पर अपनाया नहीं।
0: टीजर में शबाना आजमी की झलक भी दिखती है। आवारापन 2 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी शिवम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी जयपुर पहुंची। जवाहर सर्किल से बड़ी संख्या में महिला बाइकर्स ने दोनों का स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला मिराज सिनेमा पहुंचा, जहां दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने फैंस और दर्शकों से बातें की। यहां उन्होंने JECRC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बात की और फिल्म को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। आलिया और शर्वरी ने महिला बाइकर्स के साथ यहां सेल्फी भी ली। थिएटर के अंदर फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया। फिल्म अल्फा 3 जुलाई को रिलीज होगी और इस फिल्म के प्रमोशन सिटी टूर की शुरुआत जयपुर से हुई है।
7: अपने घर
8: इसको टच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
9: अरे वो पुरानी चावल है।
10: मैं किस लिए फिल्म में?
9: ग्लैमर क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
0: एडवांस बुकिंग ही नहीं बल्कि स्पॉट बुकिंग ही असल में गेम चेंजर होती है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल की ओपनिंग वीकेंड परफॉर्मेंस यही साबित कर रही है। स्लो एडवांस बुकिंग के बावजूद ओपनिंग डे पर शुक्रवार को इस फिल्म ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए का दमदार कलेक्शन किया। शनिवार को 30% से ज्यादा जंप के साथ कलेक्शन 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और रविवार को फिल्म ने फिर से करीब 24% जंप के साथ 24 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। पेड प्रीव्यू के कलेक्शन के साथ रविवार तक रिलीज के 3 दिनों में फिल्म वेलकम टू द जंगल का टोटल नेट कलेक्शन 63 करोड़ 75 लाख रुपए हो गया, जो इस साल अब तक बॉलीवुड फिल्मों का तीसरा सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन है।
4: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
14: फुटबॉल फीवर
5: के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है। शायद बहुत कम सास हैं जो ये कहती पाई जाती हैं कि मेरी बहू सी कोई नहीं, या बहू हो तो मेरी जैसी। लेकिन इन तस्वीरों को देख सास और बहू दोनों की सोच बदल सकती है। इस बहू की सास की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले उनकी ब्रज परिक्रमा हो जाए। बहू ने न सिर्फ सास की इच्छा को सिर माथे पर लगाया, बल्कि सास को ही माथे पर उठाकर निकल गई ब्रज परिक्रमा करने और अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी कर दी। अब यूजर्स इस बहू की तारीफ खूब कर रहे हैं और बुजुर्ग से खूब दुआएं दे रहे हैं। चीन की पारंपरिक बोट रेस को यूं ही ड्रैगन बोट रेस नहीं कहा जाता। इस रेस में हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए दमखम, सूझबूझ, संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। इन तस्वीरों को देख ये बात आप समझ जाएंगे। देखिए, इस ड्रैगन बोट रेस के दौरान ये प्रतिभागी रफ्तार से आते हुए जब मुड़ते हैं तो कैसे एक बैरियर पर लटक कर बोट को मोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस के दौरान प्रतिभागी किस तरह तेजी से मुड़ते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये दो बच्चे साइकिल पर उल्टा होकर ऐसा गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाएं। ये करतब केवल ताकत का नहीं बल्कि लंबे अभ्यास, आत्मविश्वास और बेहतरीन संतुलन का नतीजा है। और अब इन दोनों की ये करामात देख यूजर्स भी हैरान है।
13: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना क्या टीम इंडिया को महंगा पड़ा। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम को 0-2 से हार झेलनी पड़ी। आयरलैंड के खिलाफ दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया, जो हार की सबसे बड़ी वजह रही। भारत की करारी हार के बीच टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इन दोनों मैचों में ही बेंच पर बैठना पड़ा, जिसके चलते उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार बढ़ गया है। वहीं सोशल मीडिया पर टीम को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यूजर्स ने कहा कि वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करना महंगा साबित हुआ। यही नहीं, अब भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 मैचों में वैभव को मिला जो मौका नहीं मिला, उसके बाद गावस्कर ने कहा कि अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि वो पिछले एक महीने से लगातार ये बात कह रहे थे कि आयरलैंड जैसे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए था। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में जगह नहीं दिए जाने के बाद फैंस काफी भड़के हुए हैं। उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में भी मौका नहीं दिया गया तो। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी जहांगीर आलम ने बिहार के समस्तीपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते या नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। ये जरूरी नहीं कि वैभव सूर्यवंशी होता तो मैच जिता देता, क्या पता कि शायद वो भी 8-10-15 रन करके आउट हो जाता। पर अगर आपको युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना था तो ये दो मैचेस आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका था ट्राई करने के लिए। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाए, बस बिल्कुल। या तो ओपन करके जो आपके ओपनर्स है वहां आप उनको एक दो पे खिलाइए, नंबर तीन पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, पर आपको वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में खिलाना होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को है।
10: सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसमें नहीं खिलाने के कारण जो करारी हार मिली है उसको लेकर जो समस्तीपुर में प्रशंसक हैं वैभव सूर्यवंशी के हमारे साथ हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या मंतव्य है कि वैभव को जो नहीं खिलाया गया और मैच जो दो हारे हैं, क्या लग रहा है?
14: ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सही नहीं किया। वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते हुए सितारे को इस आयरलैंड वाले मैच में मौका मिलना चाहिए था और हम उम्मीद करते थे कि अगर वैभव सूर्यवंशी खेलता तो इंडिया मैच जरूर जीतता। इंडिया आयरलैंड से 2-0 से शिकस्त पाने के बाद अब इंग्लैंड से जो मैच है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि कहीं वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना ही चाहिए।
10: क्या लग रहा है क्या हो सकता है अगर वैभव खेलता तो मैच नहीं
14: हारता? हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत ख़राब हो जाती है और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता। जो 2-0 से इंडिया आज हारी है, हो सकता था 2-0 से इंडिया मैच जीत सकती थी।
10: आगे क्या कहें इंग्लैंड से?
14: आगे हम वैभव सूर्यवंशी को शुभकामना देते हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से उम्मीद रखते हैं कि इस उभरते हुए सितारे को मौका मिले।
15: वैभव सूर्यवंशी को जो नहीं खिलाया गया वो क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा धब्बा है, इसलिए कि उभरता हुआ खिलाड़ी एक 15 वर्षीय खिलाड़ी को इतना विस्फोटक बल्लेबाजी करता है कि अगले कोई भी टीम कोई भी देश का जो बॉलर होता है उसको देख करके खौफ खाते हैं। इसलिए मैं गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है और उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड का जो दौरा है इसमें जो हुआ क्रिकेट है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन उम्मीद था हम लोग को कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ खेलता तो टीम जीतती, वो क्रिकेट जगत में अच्छा नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड दौरा पर वैभव सूर्यवंशी को किसी भी हाल में खिलाया जाए।
16: वो नहीं खेल पाए, सबसे पहले तो हम लोगों के तरफ से और हमारे शहर के तरफ से हमारे लाडले वैभव सूर्यवंशी के ऊपर हम लोगों को गर्व है और दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा टैलेंट है और हम लोग जैसे करोड़ों प्रशंसकों का दिल टूटा जरूर है कि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया गया, लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका आने वाला समय में ज़रूर मिलेगा, ज़रूर दिया जाएगा।
10: क्या लग रहा था कि पहला मैच में नहीं खिलाया गया, दूसरा में?
16: हाँ, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि हम लोग के ये छोटे से बच्चे, नन्हे बच्चे ज़रूर खेलेंगे और हम लोग बहुत उत्सुक थे, टीवी पे ऑलरेडी बैठे हुए थे, पूरे शहर के लोग उत्सुक से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चलिए आने वाले समय में।
13: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात हम करेंगे लाल लाल और स्वादिष्ट लीची की, नहीं मुजफ्फरपुर की नहीं, कश्मीर के कठुआ की। यहाँ पर लीची उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ लीची क्रांति ने किसानों की किस्मत बदल दी। पहले लीची की कटाई और दूसरे कामों के लिए पंजाब और दूसरे राज्यों के मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं, इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
17: लीची कहो या अंग्रेजी में लाइची, एक रसीला गूदेदार और ट्रॉपिकल फल जिसे बॉटनिस्ट जरूर लीची चाइनासिस कहते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये स्वादिष्ट लीची ही है। भारत में
5: अगर लीची का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर लोगों को मुजफ्फरपुर की शानदार शाही लीची ही याद आती है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर की लीची को जम्मू कश्मीर के कठुआ के लीची से टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इस बार कठुआ में हुई है लीची क्रांति। इस बार जम्मू कश्मीर के कठुआ में लीची का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। यहाँ के हर बाग में लीची की बहार है। यहाँ करीब 300 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ है।
18: इस समय जो प्रोडक्शन एस्टिमेटेड कोई 300 मीट्रिक टन तक हमारी निकली है, काफी अच्छी क्रॉप निकली है, बम्पर क्रॉप है। और इसको देखते मैंने शुरू में कह रहा था कि हमारी जो ऑनगोइंग स्कीम्स है कि HADP है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, अभी हमने कोई लीची के अंदर कोई जो फार्मर्स हैं कोई 10 के करीब फार्मर्स अभी हमने जिनकी प्लांटेशन समय चल रही है, और पिछले साल भी हमने कोई 30-35 जो है हमारे फार्मर्स जो हैं इन्होंने लीची की प्लांटेशन की है, और हर बार ये नंबर जो है बढ़ता जा रहा है।
5: हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने वाले रिकॉर्ड लीची उत्पादन से यहां के किसानों को भरपूर फायदा मिला है। लीची की बम्पर फसल से किसानों में खुशी है। बाजार में लीची की कीमत 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा होने के चलते किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। बरनोटी ब्लॉक के रखोशियारी गांव के एक प्रगतिशाली किसान ने तो लगभग 16 एकड़ में खेती करके इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है।
19: बाग वो लगा सकता है जिसके पास पानी है, क्योंकि गर्मी में इसको पानी बहुत चाहिए। अगर तो नहर का पानी रेगुलर है तो तब भी ठीक है, नहीं है तो ट्यूबवेल का पानी चाहिए, और क्योंकि यहाँ हमारे वाटर टेबल काफ़ी गहरा है तो यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा पड़ती है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, वो तो रिजुवेनेशन वास्ते भी दे रहे हैं, पुराने वाचर को ठीक करने के लिए भी खर्चा दे रहे हैं, और कोई भी हमें यहाँ मशीनरी या इक्विपमेंट चाहिए उसका हमें वो हेल्प है।
5: लीची बड़े मुनाफे वाली फसल है जो दूसरी कई पारंपरिक फसलों की तुलना में ज्यादा लाभ देती है। कम मेहनत और बेहतर बाजार मूल्य के चलते किसान तेजी से इस फसल की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं।
18: लीची जो है हाई वैल्यू क्रॉप है, काफी अच्छा से मुनाफा होता है, और सबसे ज्यादा कंपेयर करें बाकी क्रॉप से तो लीची में सबसे कम मेहनत की जरूरत है और सबसे ज्यादा मुनाफा है, और हर साल इसमें प्रोडक्शन आती है। आप देखते हैं इस साल हमारी जो प्रोडक्शन है, आप लीची की मार्केट में देखो तो 200 से भी ज़्यादा मतलब इसमें पर केजी जो फ्रूट इस समय आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि पहले हम पंजाब पर या दूसरी बार स्टेट्स पर निर्भर थे करते थे, लेकिन अब जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है लीची में नंबर वन चल रहा है।
5: इलाके में बम्पर पैदावार से और भी कई लाभ देखने को मिल रहे हैं। मजदूरों को भी लीची तोड़ने छांटने के अच्छे पैसे मिल रहे हैं।
20: मार्केट में कम से कम 1300-1400 का डब्बा जा रहा है।
21: क्या देखते हैं कितना माल हर साल जहाँ से तोड़वाई करते हैं, कितना माल बिकता है?
20: हर साल कम से कम 2-3 हज़ार डब्बों का काम करते हैं।
21: अच्छा।
20: रोज का कम से कम 150-200 डब्बा जाता है मंडी। हाँ जी, ये लीची कम से कम कोलकाता तक मशहूर है, राजबाग की लीची।
5: लीची का रिकॉर्ड उत्पादन करके बागवानी के क्षेत्र में यहाँ एक नया इतिहास रचा गया है। बागवानी विभाग ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी कि HDP तकनीक को बढ़ावा दिया है, साथ ही किसानों को मशीनीकरण, पैक्ड हाउस और स्प्रे टैंकर जैसी मदद दी है, जिससे ये लीची क्रांति हुई है। कठुआ की लीची क्रांति ने महिलाओं को भी रोजगार दिया है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। स्थानीय मंडियों में ही अच्छी कीमत मिलने से यहाँ के किसानों की पंजाब पर निर्भरता कम हो रही है। लीची की खेती अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा लाभदायक है। इस फसल में कम मेहनत और कम लागत लगती है और इससे अच्छा लाभ मिलता है। सरकार की नई योजनाओं के चलते किसानों में लीची की खेती के प्रति रुचि बढ़ रही है। कम रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग होने की वजह से लीची को ऑर्गेनिक फल माना जाता है। कठुआ में रिकॉर्ड उत्पादन की इस लीची क्रांति ने यहां किसानों की किस्मत बदल दी है और किसान इसे खुशी खुशी अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: टेक्नोलॉजी बुजुर्गों की नई ढाल बनी है। गर्मी में स्मार्ट ब्रेसलेट से हो रही है बुजुर्गों की निगरानी। और सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
17: अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में प्राइड परेड का आयोजन किया गया, जिसमें LGBTQ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुटे। सिटी प्राइड परेड में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। परेड में इंद्रधनुषी झंडों के साथ सड़क पर उतरे ये समर्थक स्टोन वॉल दंगे की याद में हर साल सड़क पर उतरते हैं। प्राइड परेड में LGBTQ समुदाय के लोगों के अधिकारों को लेकर संदेश दिया जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग को सबसे ऊंचा फेरस व्हील मिला है। यहाँ करीब 99 मीटर

0: चीन के नेंजिंग में मौजूद साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में एआई लाइट शो से ग्रेजुएट्स को शानदार फेयरवेल दी गई। ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के इस अनोखे विदाई समारोह में ये ब्राइटेस्ट स्टार शो आकर्षण का केंद्र रहा। एआई प्रोजेक्शन से यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस जगमग हो गया। इस शो में इमारतों को डिजिटल कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया गया। इटली में हीट वेव से बचने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। रोम में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट ब्रेसलेट बनाए गए हैं, जिसमें हीट वेव के बीच करीब 700 बुजुर्गों की डिजिटल निगरानी की जा रही है। ब्रेसलेट से हार्ट रेट और नींद पर नजर रखी जा रही है। ब्रेसलेट में एक इमरजेंसी बटन है, जिसे दबाने से तुरंत मदद मिलती है। यहाँ इससे 85 साल की डीना गजेला को मिला एक तरह का सुरक्षा कवच। ये स्मार्ट ब्रेसलेट अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक कारगर पहल है। व्यक्ति के गिरने पर ये तत्काल सेंसर से अलर्ट भेजता है। गर्मी में ये स्मार्ट ब्रेसलेट बेहद उपयोगी है, जो व्हीलचेयर से गिरने पर भी अलर्ट करता है। दूर बैठे रिश्तेदारों को मोबाइल ऐप पर ये अलर्ट मिलने से बुजुर्गों को मदद मिल जाती है। पेरिस फैशन वीक शो में लुई विटॉन की ओर से कृत्रिम झरना बनाया गया। फैशन वीक के आयोजकों ने इस आर्टिफिशियल झरने को इको फ्रेंडली बनाया। इसमें अनोखी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें क्लोज लूप सिस्टम से पानी को वापस सीवर नेटवर्क में भेजा गया है। इस अनोखे प्रयोग के दर्शकों ने फैशन वीक में जमकर तारीफ की।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports and more. All in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
4: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
3: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कटाया लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 का टिकट। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये पहली बार होगा जब महिला टीम ओलंपिक में क्रिकेट इवेंट का हिस्सा बनेगी। आईसीसी के तय नियमों के मुताबिक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से एक एक टीम को सीधे प्रवेश दिया जाना था। इस आधार पर एशिया से भारत, यूरोप से ग्रेट ब्रिटेन, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में महिला क्रिकेट स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली चार टीम बन गई है। दीप्ति शर्मा ने रचा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में नया इतिहास। झूलन गोस्वामी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके तीनों फॉर्मेट मिलाकर 356 इंटरनेशनल विकेट हो गए हैं, जबकि झूलन गोस्वामी ने अपने करियर में 355 विकेट लिए थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है कनाडा की टीम। उसने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। कनाडा ने पहली बार इस टूर्नामेंट का कोई नॉकआउट मैच जीता है। अहमदाबाद की महज 8 साल की बच्ची ने लिम्बो स्केटिंग में कायम किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तक्ष्वी वघानी नाम की इस बच्ची ने सबसे कम ऊंचाई पर स्केटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तक्ष्वी ने सिर्फ 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 मीटर की लंबाई में लिम्बो स्केटिंग करके ये उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
0: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे की परंपरा है इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम हैं, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूतगढ़ का भंडारा है, 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है। गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्दी ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवाधार भी।
4: सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान, पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माँ हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
9: बुलावा आ गया,
10: हाथ पकड़ के बुला लिया।
9: भोलेनाथ
8: में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे
11: हैं। अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
11: ठीक।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
11: कुछ नहीं चाहिए,
9: दर्शन हो जाए, मेरे बाबा कल्याण करना है,
11: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
10: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
9: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
11: बाबा की
12: मंदिर में हर साल आए।
13: सबकी मनोकामना पूर्ण।
14: दोबारा बुलाया है।
15: कहाँ से?
14: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
12: 2023 में आए थे
14: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे।
15: जयघोष कर दीजिए सभी।

0: देख सकते हैं यहाँ पर जयघोष हो रहा है। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी है। और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसे देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
3: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज मैं लोगों की समीक्षा की गई है, मैं सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों में से भी अच्छी यात्रा है।
2: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है जहां यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
4: सर, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, जोनल अफसर सर, आप मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आते हैं पे संभाले, सब साथ में।
2: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नज़र पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी, एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
5: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं यहाँ। इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है, तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकती है।
2: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की है, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
6: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लांबर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सब की उनमें पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करें।
2: यात्री कैंप में सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त हैं, पानी बिजली शौचालय और इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी हर एक चीज की तसल्ली कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू, IGP CRPF, IGP ट्रैफिक और IGP सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके पानीहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, पानीहाल लांबर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
8: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़े प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग. दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत. राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश. मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा. ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव. छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त. वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल. भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज. 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें.
8: दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ का महास्नान, बदले और देवी सुभद्रा संघ भक्तों ने पारंपरिक स्नान कराया. महाभिषेक और पुष्पाभिषेक के मौके पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु भजन कीर्तन पर झूमते हुए नजर आए. अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ मंदिर से इस साल 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी. जल यात्रा 108 कलश के साथ जगन्नाथ मंदिर से निकलकर साबरमती नदी के किनारे पहुंची और कलश में जल भरकर यात्रा मंदिर लौटी. भगवान जगन्नाथ का गंगा जल से किया गया महास्नान, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा का उत्सव, भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा का किया गया महाभिषेक। 108 कलशों की पवित्र जल से कराया गया पवित्र स्नान, स्नान पूर्णिमा पर गजनन विशेष श्रृंगार। स्नान के बाद 15 दिनों तक भगवान एकांतवास में रहेंगे, एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए जुटे लाखों भक्त, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लगाए गए जयकारे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी 108 कलशों से पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम को कराया गया महास्नान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, संबित पात्रा भी मौजूद रहे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टेका मत्था, भगवान का आशीर्वाद लिया। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर उड़ीसा के पुरी तट पर भी उत्सव के रंग, रेत से बनाई गई भगवान की खूबसूरत कलाकृति। अमरनाथ यात्रा से पहले तवी तट पर भूमि पूजन, संत समाज ने की यात्रा की सफलता और श्रद्धालुओं के मंगल की कामना। तवी रिवर फ्रंट पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ संपन्न हुई पूजा पाठ, बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की हुई प्रथम पूजा, एलजी मनु सिन्हा ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा।
9: ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा।
8: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारे। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने मॉक ड्रिल की, यात्रियों की सुरक्षा को परखा। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलाबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अमृत कुंड के नीचे दिखा शिवलिंग। मंदिर परिसर में ऐतिहासिक अमृत कुंड से भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, अमृत कुंड के नीचे मौजूद है शिवलिंग जैसा पत्थर। रखरखाव और मरम्मत के लिए एसआई ने अमृत कुंड से सारा पानी निकाल लिया और तालाब को साफ कराया। मध्य प्रदेश के बन्ना में एक बार फिर से चमकी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा। करीब 2 महीने की मेहनत के बाद 11.19 कैरेट का बेश कीमती जीम्स क्वालिटी का हीरा मिला। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। मौसम विभाग का अनुमान 30 जून या 1 जुलाई को दिल्ली में मानसून की हो सकती है एंट्री। दिल्ली से सटे नोएडा में भी राहत की बौछार, लोगों को गर्मी से राहत। महाराष्ट्र में जालना के ढोकसाल तांडा में मूसलाधार बारिश हुई, नदी नालों में भर गया पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में झमाझम बारिश से मोहनी नदी उफान पर। मई में देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 5.1% हो गई, अप्रैल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.9% थी। अब बिना रोक टोक मिलेगा पेट्रोल डीजल, 1 जुलाई से हटेंगी सारी पाबंदियां। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा असर, ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में सुधार होने के बाद पाबंदियां हटी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पहली बार महिला टीम ओलंपिक में क्रिकेट इवेंट का हिस्सा बनेंगी। आईसीसी ने तय कराया नियमों के मुताबिक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशन एक एक टीम को सीधे प्रवेश दिया जाना था। हरिद्वार में अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ शहरी विकास मंत्री ने बैठक की, अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह दिव्य और भव्य बनाने पर चर्चा हुई। वडोदरा में 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का शुभारंभ हुआ। पटना में दरियापुर भट्टी के लोगों को सौगात मिली। नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी UPHC का स्वास्थ्य मंत्री ने शुभारंभ किया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पंजाब के DGP लॉ एंड ऑर्डर पठानकोट पहुंचे। पंजाब के DGP लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली को EV कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ी पहल। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने जा रही है नई EV पॉलिसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा आज दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है। पॉलिसी के तहत अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। EV खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी भी दी जाएगी। 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी EV पॉलिसी। EV सेक्टर में निजी निवेश और नई परियोजनाओं को मिलेगी प्रगति। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विस्तार। EV के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण हो जाएगा कम। स्वच्छ परिवहन व्यवस्थाओं को मजबूत करना मकसद। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया रण कौशल। ऑपरेशनल तैयारियों के साथ खेल भावना का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना के जवानों ने काउंटर IED ऑपरेशन टैक्टिकल कॉम्बैट कैजुअल्टी केयर काफिले की सुरक्षा की ड्रिल की। शांति सैनिकों को मुश्किल मिशन वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक्सरसाइज का मकसद है। UN के चैप्टर 7 फ्रेमवर्क के तहत कई देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूत करना लक्ष्य। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर वज्रे में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से झरने के पास 6 युवक फंस गए थे। दमकल विभाग ने बचाया। भारतीय सेना की एक और बड़ी उपलब्धि। मेडिकल टास्क फोर्स ने पूरी तरीके से काम करने वाला फील्ड हॉस्पिटल बनाया। फील्ड हॉस्पिटल अभी 20 बिस्तरों के साथ सुविधा उपलब्ध कराने में माहिर है। बढ़ती जरूरतों के हिसाब से इसकी क्षमता 50 बिस्तरों तक पहुंचाई जा सकती है। CBSE ने 3 भाषा नीति पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्लास 10वीं के मौजूदा छात्रों पर नई भाषा नीति लागू नहीं होगी। क्लास 10वीं की मौजूदा छात्रों को तीसरी भाषा पर परीक्षा नहीं देनी होगी। आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे नए नियम। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात दी। 569 करोड़ रुपए की लागत से 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूजा पाठ के बाद पटना में अपने नए सरकारी आवास में किया गृह प्रवेश। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश मौजूद रहे। पंजाब में गुरदासपुर के रावी नदी में अचानक पानी छोड़े जाने के कारण 7 गांवों से संपर्क टूट गया। पटना में कई इलाकों में आज हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में जल्द खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार। 2 जुलाई से राजस्थान में मानसून के एक्टिव होने का अनुमान। 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की आशंका। कोटा उदयपुर के कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर हुआ रिलीज। 28 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर शानदार जलवा। 3 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है अल्फा। फिल्में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर नजर आएंगे। थिएटर में फिल्म देखने के लिए पहुंची शर्वरी और वेदांग रैना। मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट। एक्टर जैकी श्रॉफ खाने के लिए पान के पत्ते पर कत्था लगाते हुए नजर आए। चीन में रेनी नाइट ड्रैगन बोट का आनंद। ग्वांग डोंग में ड्रैगन बोट का क्रेज चरम पर। पानी पर उतरी संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय टीमें। चीन, हांगकांग, मकाओ, ताइवान की टीमें 7 नजर आई। डीएस जियाओ बना ड्रैगन बोट का हॉटस्पॉट। प्रतिभागियों में देखा जबरदस्त जोश। बारिश ने बढ़ाया बोट रेस का रोमांच। जलमार्गों पर देखा उत्सव जैसा माहौल, ट्रेनिंग रन में भी दिखी कड़ी प्रतिस्पर्धा। दक्षिण चीन में ड्रैगन बोट बना ग्लोबल आकर्षण, संस्कृति और खेल कानों का संगम, पारंपरिक ढोल नगाड़ों से गूंजा माहौल। अल्बानिया की राजधानी तिराना बन रही है पर्यटकों की पहली पसंद।

0: की राजधानी ज़ग्रेब का शानदार हवाई नजारा, मध्य यूरोप और भूमध्य सागरीय संस्कृति का दिखानों का संगम। रोमन काल से आधुनिक यूरोपीय राजधानी तक का सफर देखने को मिला। चीनी एस्ट्रोनॉट्स का तियांगयोंग स्पेस स्टेशन में एक महीना हो गया पूरा। शेनझू 23 क्रू मेंबर्स ने ऑर्बिट में कद्दू का लिया स्वाद। स्पेस अवन में तैयार हुआ ताजा बेक कद्दू, अंतरिक्ष में घर जैसा खाना। चीन के किंगझोउ कार्गो स्पेसक्राफ्ट से दूसरा वैज्ञानिक डेटा जारी हुआ। अंतरिक्ष में सटीक माप तकनीक में बड़ी प्रगति। स्पेस फ्लाइट की लागत घटाने की दिशा में अहम उपलब्धि। भविष्य के स्पेस हॉस्पिटल की तकनीक पर करेगा तेज काम। चीन में ZhuQ-3Y2 रॉकेट ने स्टैटिक फायर टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। हंगरी में भीषण हीट वेव, राजधानी बुडापेस्ट में 38 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। राहत के लिए कूलिंग मिस्ट लगाए गए। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल, अस्थाई पानी के स्रोत बने लोगों का सहारा। गीले तौलिए और ठंडी पानी से बचाव कर रहे हैं लोग। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। यूक्रेन में गर्मी का असर, राजधानी कीव में तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। फव्वारों में खेलकर लोग पा रहे हैं ठंडक। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पार्कों में उमड़ी भीड़, सार्वजनिक नलों से पानी भरने के लिए नजर आए लोग। पोलैंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हीट वेव का असर। सोपोट बीच पर सुबह से उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, बिना छत वाले टावर पर 11 घंटे ड्यूटी। लाइफगार्ड ने टोपी और हाइड्रेशन से खुद को रखा सुरक्षित। इमरजेंसी टीम क्वाड बाइक और जेट स्की पर नजर आए। हरापात स्थिति से निपटने के लिए टीम अलर्ट है। अंदरूनी इलाकों में पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। जर्मनी में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड तापमान दर्ज। ब्रैंडेनबर्ग में पारा 42 डिग्री के पार। गर्मी से ट्राम सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ट्रैक के सीलेंट के फैलने से बाधित हुई रेल व्यवस्था। फीफा वर्ल्ड कप जोश से चीन में स्ट्रेस रिलीफ, सॉकर बॉल्स की मांग खूब। राष्ट्रीय झंडों वाले रंगीन स्ट्रेस रिलीफ बॉल्स खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तमाम लोग। बारह पंचकोणों की संरचना से तैयार हुआ परफेक्ट गोलाकार डिजाइन, वर्ल्ड कप थीम जोड़कर कारोबारियों ने लॉन्च किया नया वर्जन। मायामी में असली फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। भीषण गर्मी के बावजूद पहुंचे। हारा कैरेट सोने की ट्रॉफी, आम लोगों के लिए खास प्रदर्शनी आयोजित की गई। ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए तमाम फैंस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Tune in has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
2: It was to live sports action.
4: To the near side corner, to wrap around, he scores!
2: And your favorite music.
5: You and I start guessing.
2: Tune in has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play Tune In.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य

0: दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक किया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बलभद्रा देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का पारंपरिक स्नान यात्रा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। और देखिए इस दौरान भगवान का पवित्र नदियों से जल, सुगंधित द्रव्य और दिव्य जल से महाभिषेक किया गया। आयोजन से पहले भगवान को भोग भी लगाया गया। समारोह के दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere.
9: From breaking news.
10: After multiple assassination attempts, they can't even get.
11: They're reliable.
12: Always when I need them.
9: To live sports action.
13: One hand jam by LeBron on the break.
14: That's another three, Steph Curry.
9: And your favorite music.
15: Well, the dawn begins to crack. It's
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश मध्य प्रदेश के बन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक दर्शन के लिए उमड़े भक्त वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज पंडित जी से हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी से हम चर्चा करने वाले हैं कि हाथों की लकीरों को देखकर किस तरह से पता चल सकता है कि चंद्रमा अशुभ है या फिर शुभ है। पंडित जी विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और अगर आपकी हाथों की लकीरों को देखकर ये जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा अशुभ है, अशुभ प्रभाव आपके जीवन में दे रहा है, तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे, आपके सवाल भी लेंगे आगे जाकर। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपका मन उदास हो या बहुत ज्यादा आपके मन में तनाव हो तो उदास मन से या टेंशन वाले मन से खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 30 जून 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको हमने बताया कि हाथों की लकीरों को देखकर चंद्रमा की स्थिति क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या है, सबसे पहले तो पंडित जी आपसे यही जानेंगे।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है। आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं।
0: चलिए, बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछने हैं, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अब आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। पहली तीन राशियां हैं मेष, वृष और मिथुन।
1: मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि हथेलियों के चंद्रमा से मानसिक स्थिति को कैसे जान सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि मानसिक स्थिति आपकी इसकी वजह से प्रभावित हो रही है।
1: किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है, व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है, व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है, ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है, ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए।
0: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। पंडित जी आपको बताएंगे कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: लोग हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम बहुत रहेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन अब बारी आती है आप दर्शकों के सवाल लेने के। और सबसे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, उससे पहले आपको एक बार फिर से सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में पूछना चाहते हैं, पंडित जी के पास अपनी क्वेरी भेजना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल आप इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है, और अनामिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1994। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। और साथ में इन्होंने एक लड़के का विवरण भी भेजा है, और ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा इनके साथ विवाह करना उचित होगा, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अनामिका जी, जो आपकी कुंडली और इस बालक की कुंडली है, उसकी कंपैटिबिलिटी आपस में ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह कर सकती हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका फायर वाला पार्ट ज़्यादा है, मंगल वाला पार्ट ज़्यादा है, तो थोड़ा क्रोध पर और एग्रेशन पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आपको विवाह चलाने के लिए थोड़े धैर्य और शांति की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा अगर मैच मेकिंग देखें तो मैच मेकिंग कुल मिला जुला के ठीक है। आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता इस विवाह के लिए नहीं है, अपने मन के लिए, अपने स्वभाव के लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की, और पंडित जी ही हमें जानकारी देंगे कि कौन से दर्शक का है अगला सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न कृष्ण दयाल जी ने हमें लिखा है, और कृष्ण दयाल जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1965। जन्म का समय रात में 11:00। जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। कृष्ण दयाल जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ गई हैं अचानक से, कुछ पैसों का नुकसान हो गया है, तो क्या भविष्य में मैं इस नुकसान से बाहर निकल पाऊंगा। और क्या भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी? कृष्ण दयाल जी, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए, अक्टूबर 2026 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर हैं और यहां से आप आर्थिक रूप से लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। 2027 के मध्य के बाद से आपका जीवन लगातार बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा कर पहनिए, लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ और आज का विषय जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, अगला प्रश्न इसी से जोड़ते हुए पंडित जी से पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि चंद्रमा के पर्वत से पंडित जी ये बताइए कि करियर और विवाह के बारे में जानकारी भी मिल सकती है क्या?
0: देखिए, चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए, नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आए तो विवाह के बाद बड़ी उन्नति होती है, भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत समझदार और बहुत सपोर्टिव यानी सहायक होता है। चंद्र पर्वत अगर मजबूत है तो अभिनय के क्षेत्र में, जल में जैसे नेवी के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में करियर बनाने पर बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी अगर रेखाएं हों तो वो बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे और जीवन में लव रिलेशंस, प्रेम संबंध रहेंगे। बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी तब तो टेंशन की बात है, ये तनाव देंगी, लेकिन थोड़ी रेखाएं हों, छोटी छोटी, तो ये यात्राएं करवाएंगी और आपके जीवन में लव रिलेशंस डेवलप करेंगी। चंद्रमा के पर्वत से अगर सीधी रेखा निकले और भाग्य रेखा में जुड़ जाए या जीवन रेखा में जुड़ जाए तो ऐसे लोग लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। और अगर शनि का पर्वत भी अच्छा है तो इनका सेटलमेंट विदेश में होता है, यानी चंद्रमा का पर्वत ये भी बताता है कि आपके विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है विस्तार से आपको पंडित जी जानकारी देंगे।
0: तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, वो ये कि अगर हाथ की रेखाओं में चंद्रमा समस्या दिखा रहा है, किसी प्रकार की कोई जीवन में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कौन से अचूक उपाय हैं जो आप बताएंगे?
0: अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत अच्छा ना हो, चंद्रमा पर खराब चिन्ह बने हुए हों, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद आप भगवान को नमस्कार करके तब दिन की शुरुआत करिएगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए, खास तौर से नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल डालकर नहाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में गमले में या जमीन में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए, तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है अंतिम तीन राशियों का हाल भी जान लेने की पंडित जी से। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मकर राशि, परिवार में आपके समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है अगले दर्शक का। पंडित जी,
0: जी। अगला प्रश्न ऋचा जी ने हमें लिखा है और ऋचा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 2002। जन्म का समय दोपहर के 1:15। जन्म स्थान है लखनऊ। ऋचा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ऋचा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की तैयारी करें, तो प्रशासनिक क्षेत्र में आपको राजकीय नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अपनी तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए। बार बार करियर में बदलाव के बारे में मत सोचिए और एकाग्रता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक पीला पुखराज, वजन में 6-8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि अंतिम प्रश्न यानी कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल आज के शो के लिए।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी हमें बिहार पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1982। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म का स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मैं एक विद्यालय में अभी एडहॉक पर नौकरी कर रही हूं, संविदा पर। नौकरी परमानेंट होने की बात चल रही है, क्या मेरी नौकरी परमानेंट हो पाएगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी परमानेंट होने का समय बिल्कुल सही है और अगले 4-5 महीनों में आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, नौकरी स्थायी हो जाएगी। आने वाले समय में आपका करियर बेहतर दिखाई दे रहा है और काम की स्थिति भी आने वाले समय में आपकी कुंडली में बढ़िया है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय एक बार जल चढ़ाने के बाद सूर्यास्त का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: विषय से जुड़ा हुआ एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए कि हाथ की लकीरों को देखकर क्या करियर में कोई दिक्कत आ रही है या करियर आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है?
0: जी देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में करियर में कोई संकट आने वाला है, तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में या जहां बहुत सोचना होता है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो जाएगी। लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है। और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज्यादा करेंगे।

0: मानसिक ताकत काफी ज्यादा है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 जून को जिन तमाम लोगों का हैप्पी बर्थडे है, आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 30 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। विवाह और संतान के मामलों में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूर्वजों की, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी पूजा पाठ, कभी भी दान कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो पितृ पक्ष में पितरों के लिए पूजा पाठ और दान करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप उनके लिए पूजा पाठ करना चाहें, दान करना चाहें, तो अमावस्या तिथि को पितरों की आत्मा की शांति के लिए काम कर सकते हैं, पूजा पाठ और दान किया जा सकता है।
1: और चलिए पंडित जी से जानकारी लेते हैं 30 जून 2026 मंगलवार के शुभ के बारे में।
0: दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा और करियर की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों की विशेषता क्या है। आज की गुडलक राशि है मिथुन, जेमिनाई। इनको एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके कंफ्यूज होने के, गड़बड़ होने के चांस बहुत होते हैं। निर्णयों में हमेशा सावधानी बनाए रखनी चाहिए।
1: चलिए आज के शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की, यानी खास उपाय के बारे में आपको ज्ञान देने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, अक्सर ऐसा होता है कि मन बैठे बैठे एकदम से अशांत हो जाता, अचानक से मन में कोई बात आ गई, मन एकदम अशांत हो गया। क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, मन का बड़ा गहरा संबंध आपके सांसों से है, ब्रीदिंग से है, तो आप इत्मीनान से बैठकर गहरी गहरी सांस लीजिए। लंबी सांस थोड़े 1-2 मिनट लीजिएगा। इसके बाद 1 गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन ही मन में शिव शिव शिव शिव शिव नाम 1-2 मिनट तक बोलिएगा। चिंताएं एकदम से छूमंतर हो जाएंगी।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: अमरनाथ यात्रा में अब 3 दिन का समय शेष रह गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पवित्र गुफा में जाकर इस साल बाबा बर्फानी की पहली पूजा अर्चना की, और बाबा बर्फानी की पहली पूजा के बाद मनोज सिन्हा ने सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा भी जताया। इधर देखिए, जम्मू के बेस कैंप में तीर्थयात्रियों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और पूरे 57 दिन तक चलेगी।

0: विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा सोमवार को पूरी आस्था और विधि विधान के साथ संपन्न हुई।
1: जग पालन करता यो हर हर हर हर महादेव।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने स्वयं अमरनाथ गुफा में जाकर बाबा बर्फानी की पूजा आराधना की। बाबा बर्फानी की पूजा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा का भरोसा दिया।
2: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके।
0: आपको बता दें कि इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जो कुल 57 दिनों तक चलेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी, लेकिन इससे पहले 15 अप्रैल से ही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था 2 जुलाई को कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा, लेकिन उसके 3 दिन पहले ही बहुत सारे तीर्थयात्री बेस कैंप पहुंच चुके हैं और पूरे उत्साह और उमंग में हैं।
3: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिये श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
4: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड बीएसएफ में, ये मेरी गुरु माँ हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
3: बुलावा आ गया,
5: हाथ पकड़ के बुला लिया।
3: भोलेनाथ में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
4: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
3: अभी पहली बार आ रहे हैं
6: कैसे
3: बोलो
7: अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा।
3: अभी भरतपुर से ही मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में, क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
6: कुछ नहीं चाहिए,
4: दर्शन हो जाए, कल्याण करना है,
6: हर साल दोबारा आए,
4: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
5: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
4: कुछ नहीं,
5: इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
6: बाबा की मंदिर में हर साल आए,
8: हम दोबारा आए हुए,
4: सबकी मनोकामना
8: पूर्ण, दोबारा बुलाया है।
3: कहाँ से?
8: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
6: 2023 में आए थे
8: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे हैं।
3: जय घोष कर दीजिए सभी।
0: पिछले साल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को देखते हुए इस साल जम्मू के यात्री निवास भवन परिसर से लेकर यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
3: फिलहाल अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है इसको सील कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में है वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं।
0: साफ है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा में हिला हवाला की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी

0: शासन जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज की समीक्षा की गई है। मैं सभी अधिकारियों और विशेष रूप से रक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चौवन इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष।
1: हर हर महादेव।
2: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्रणीति सेवादार भी कमर कस के तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से करीब 2-3 हफ्ते पहले से ही मानवता के सेवादार देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा मार्ग के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर मुफ्त भंडारा वगैरह की तैयारियों में जुट जाते हैं, ताकि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। ये सेवादार धन कुबेर नहीं होते, लेकिन मानव सेवा और भगवान भोले के प्रति सेवा का भाव ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत अपनी जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
3: श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ राजस्थान का भंडारा पवित्र स्थान बालटाल पर पहुंच चुका है और सभी सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे। और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव।
2: दरअसल जो पुण्य और आनंद 40 से 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग कर बाबा बर्फानी का दर्शन करने में मिलता है, उससे कम सवाब महादेव के भक्तों की सेवा करने वाले सेवादारों को नहीं मिलता। आपको बता दें कि पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए करीब 40 से 45 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि बालटाल मार्ग से 14 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तीर्थ यात्री तो यात्रा शुरू होने पर ही यहां आते हैं और दर्शन करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, जबकि सेवादार तो 3 हफ्ते पहले से ही व्यवस्था में शिद्दत से जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाना पीना और विश्राम की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की तबीयत नासाज होने पर उन्हें दवा वगैरह उपलब्ध कराना और इसके अलावा श्रद्धालुओं की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखने में इन्हें आनंद की अनुभूति होती है।
4: जो अपने सूरतगढ़ का भंडारा है 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, गर्म पानी से 5 पकवान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे पावर पानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं। मैं 11 साल से इस भंडारे से जुड़ा हूँ। मैं हर साल दर्शन को आता हूँ और यही रुकता हूँ। बाबा के दर्शन अच्छे होते हैं और इनकी हेल्पिंग नेचर इतनी अच्छी है कि इच्छा नहीं होती है कि यहाँ से घर जाएं वापस, यही रुके।
2: 57 दिनों की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू से कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल गई है। जैसा कि तय है कि इस साल श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। परंपरा के अनुसार पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है। जी हां, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वहीं नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है।
6: ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं

0: सकते थे। अब वहाँ बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पुवर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। माओवादी कमांडर माडवी हिंडवा का गांव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी। 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया। पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गांव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।
1: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे।
2: बहुत ध्यान देते हैं।
1: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे। तो सब इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है। आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं।
0: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया।
3: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग या यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पे पहुँच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो। अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, वो समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है। आज मैं जिस रोड से आई, उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है, ये आप लोगों को पता है। अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है।
0: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1,00,000 या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
4: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं। अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसे ले लेते हैं।
5: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
3: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं।
4: कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
3: जुड़े
4: जी।
0: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
8: हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है, हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है, हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है, हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध,

0: अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
5: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
4: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
6: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
12: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे की परंपरा है इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम हैं, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूर्य का भंडारा है 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, गर्म पानी से 5 पकवान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्द ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवादार भी।
4: सेवादारों द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहां पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहां पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहां पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान, पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहां जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहां पर देखिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माए, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
10: हाथ पकड़ के बुला लिया।
8: भोलेनाथ में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे
11: ऐसे
12: बोलो बाबा की जय, अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
11: ठीक।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
11: कुछ नहीं चाहिए,
9: नहीं दर्शन हो जाए,
11: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
10: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
9: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
11: बाबा की
8: मंदिर में हर साल आए,
9: सबकी मनोकामना
13: पूर्ण। दोबारा बुलाया है।
8: कहाँ से?
13: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
8: 2023 में आए थे
13: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे हैं।
8: जय घोष कर दीजिए सभी। देख सकते हैं यहाँ पर जय घोष हो रहा है, श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्यामनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू की यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
7: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 CCTV कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि CRPF और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
0: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और CRPF के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसे देखते हुए पुलिस और CRPF ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
14: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज उनकी समीक्षा की गई है। मैं अपने सभी अधिकारियों और विशेष रूप से रक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने जांच शोभन इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष।
0: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है जहां यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
15: सर, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है जोनल अफसर सर, आप मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आते हैं संभाले सब साथ में।
0: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नज़र पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
16: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं यहाँ। इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकती है।
0: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की हैं, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
17: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लांबर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सब की उनमें पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करें।
0: यात्री कैंप में सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त हैं, पानी बिजली शौचालय और इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी हर एक चीज की तसल्ली कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू, IGP CRPF, IGP ट्रैफिक और IGP सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके बानिहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया जिसमें काफले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, बानिहाल लांबर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है। जी हां, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वही नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है।
2: ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। माओवादी कमांडर माड़वी हिंडवा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी। 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया। पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।
3: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे,
4: बहुत ध्यान देते हैं।
3: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे, तो सब इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है। आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं।
2: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया।
5: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पर पहुँच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो, अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, उस समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है। आज मैं जिस रोड से आई उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है ये आप लोगों को पता है। अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है।
2: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1,00,000 या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
6: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं, अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसी ले लेते।
7: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
5: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं
6: जी। कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी जुड़े
5: अभी जुड़े जी।
2: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
4: छू जाती है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं, तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का यह वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो है महाराष्ट्र का। क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
8: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या आप भी जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर ये वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का आप बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
9: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चा साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
7: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर 2 गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौ रक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गौ रक्षक बजरंग दल, विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर 2 गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर, यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला, जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए, इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं, लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है, लेकिन शीशा टूटने के बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को संभावित आई जनरेटेड बताया। AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी ओले गिरने के वायरल वीडियो में मौजूद दृश्यों को 99% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। एक और AI इमेज डिटेक्शन वेबसाइट इजिट AI ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में विशालकाय ओले गिरने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असली घटना का नहीं, बल्कि AI जनरेटेड है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है।

0: फीफा वर्ल्ड कप के बीच इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
2: डरते को नहीं हमें।
1: अच्छा
2: हरियाणा क्या हमें?
1: अच्छा अब्बा
2: हां उठा बताओ।
1: अच्छा
2: हां दूध भी कह रहे हैं दूध।
1: चलो बाबा चला
2: चलो
1: आ जाओ।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादा जी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
1: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
2: डरते को नहीं हमें।
1: अच्छा
2: हरियाणा क्या हमें?
1: अच्छा
0: बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
1: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
2: डरते को नहीं हमें।
1: अच्छा
2: हरियाणा क्या हमें?
1: अच्छा
2: बाबा उठा बताओ।
1: अच्छा
2: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
1: चलो बाबा चला
2: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच गर्दन पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा। वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं। इस वायरल वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

स्पेन का एक पारंपरिक खेल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहां की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी को एक बड़ी लकड़ी के सहारे हवा में उछालते हैं और फिर उसे जोर से मारकर आगे की तरफ भेजते हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है, जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है। जी हाँ, जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनका हुनर जो है सही कीमत पा रहा है।
5: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुवेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
6: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक। भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे कि परंपरा है, इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम है, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए, परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए, इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हमसे उन्होंने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूर्य का भंडारा है 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे पावर पानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्दी ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवादार भी।
4: सेवादारों द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान। पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहां जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहां पर देखिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माए, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
9: हाथ पकड़ के बुला लिया।
8: भोलेनाथ में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे हैं
10: कैसे?
11: बोलो बाबा की जय, अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
10: हैं।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
10: कुछ नहीं चाहिए,
9: दर्शन हो जाए,
10: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए। किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी, नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
10: बाबा की
8: मंदिर में हर साल आए,
9: सबकी मनोकामना
12: दोबारा बुलाया है।
8: कहाँ से?
12: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
8: 2023 में आए थे
12: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे हैं।
8: जयघोष कर दीजिए सभी।

0: आप देख सकते हैं यहाँ पर जयघोष हो रहा है। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी है। और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में है वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं, मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसे देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
3: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज उसकी समीक्षा की गई है। मैं सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष।
2: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है, जहां यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
4: आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है जोनल अफसर सर, आप मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आते हैं यहां पे संभाले सब साथ में।
2: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नजर पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी, एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
5: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं यहाँ। इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है, तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
2: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की हैं, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
6: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में, वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लाम्बर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सबकी उन्होंने पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करेंगे।
2: यात्री कैंप में सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त हैं, पानी बिजली शौचालय और इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी हर एक चीज की तसल्ली कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया, जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू, IGP CRPF, IGP ट्रैफिक और IGP सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके बानिहाल लाम्बर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफिले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, बानिहाल लाम्बर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

राजमणियं जलं समर्पयामि ऋतुफलानि ताम्बूलं समर्पयामि ॐ नमः आयुराय नाददाय विष्णवे उमाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव दन्ते

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है, और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वहीं नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है।
3: ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। माओवादी कमांडर माड़वी हिंडवा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी। 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया। पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।
4: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे।
5: बहुत ध्यान देते हैं।
4: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे। तो सब तो इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है। आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं, आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं।
3: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया।
6: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग या यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पे पहुंच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो, अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, उस समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है। आज मैं जिस रोड से आई, उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है, ये आप लोगों को पता है। अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है।
3: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1 लाख या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
5: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं। अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसी ले लेते हैं।
7: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
8: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं।
5: कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
8: जुड़े
5: जी।
3: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के बन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं, तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन 2 खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का यह वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो है महाराष्ट्र का, क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
9: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
7: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या आप भी जानिए।
9: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर यह वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का अब बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
10: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चा साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
9: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर 2 गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौ रक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गौरक्षक बजरंग दल, विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर दो गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
9: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। धारण के तौर पर यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला, जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए, इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं, लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है, लेकिन शीशा टूटने की बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को संभावित आई जनरेटेड बताया। AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी ओले गिरने के वायरल वीडियो में मौजूद दृश्यों को 99% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। एक और AI इमेज डिटेक्शन वेबसाइट IZIT AI ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में विशालकाय ओले गिरने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है।
7: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली
11: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
7: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
9: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

0: वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के बीच इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: In a meditative state. This one is like a transformation that India made for me.
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब्बा
3: हाँ उठा बुझाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो
2: आ जाओ।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादाजी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब
3: उठा बुझाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

0: स्पेन का एक पारंपरिक खेल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहां की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी को एक बड़ी लकड़ी के सहारे हवा में उछालते हैं और फिर उसे जोर से मारकर आगे की तरफ भेजते हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है, जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: You hear it once and remember everything.
3: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
2: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to

0: Start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है। जी हाँ, जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनका हुनर जो है सही कीमत पा रहा है।
3: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत पे यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है। हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है। हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: अरे तो कुंभ व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन ये मांगा सहयोग। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से EV पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे कि परंपरा है, इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम हैं, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए, परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए, इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूतगढ़ का भंडारा है, 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है। गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्द ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवादार भी।
4: सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्दकोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान, पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माँ हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
9: बुलावा आ गया,
10: हाथ पकड़ के बुला लिया।
9: भोलेनाथ
8: में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे
11: हैं। अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
11: हैं।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
11: कुछ नहीं चाहिए,
9: दर्शन हो जाए, मेरे बाबा कल्याण करना है,
11: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
10: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
9: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
11: बाबा की
12: मंदिर में हर साल आए।
13: सबकी मनोकामना पूर्ण।
14: दोबारा बुलाया है।
15: कहाँ से?
14: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
12: 2023 में आए थे
14: हम। दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए। अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे।
15: जयघोष कर दीजिए सभी।

0: आप देख सकते हैं यहाँ पर जय घोष हो रहा है। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में है वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसे देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
3: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज उनकी समीक्षा की गई है। मैं अपने सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष।
2: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है जहां यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
4: आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है जोनल अफसर सर, आप मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आते हैं यहां पे संभाले सब साथ में।
2: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नजर पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी, एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
5: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं यहाँ। इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है, तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
2: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की हैं, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
6: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लाम्बर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सबकी उन्होंने पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करेंगे।
2: यात्री कैंप में सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त हैं, पानी बिजली शौचालय और इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी हर एक चीज की तसल्ली कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया, जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू, IGP CRPF, IGP ट्रैफिक और IGP सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके बानिहाल लाम्बर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफिले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, बानिहाल लाम्बर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

0: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है, और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वहीं नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है।
3: ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। माओवादी कमांडर माड़वी हिंडवा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी। 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया। पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।
4: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे।
5: बहुत ध्यान देते हैं।
4: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे। तो सब इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है। आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं, आप लोगों की चिंता कर रहे हैं। आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं।
3: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है। जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया।
6: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग या यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पर पहुंच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो, अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, उस समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है। आज मैं जिस रोड से आई, उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है, ये आप लोगों को पता है। अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है।
3: कमी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1 लाख या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
5: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं। अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसी ले लेते हैं।
7: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
8: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं।
5: कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
8: जुड़े हैं।
3: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का यह वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो है महाराष्ट्र का। क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
11: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या, आप भी जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर ये वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का आप बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
12: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चे साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
7: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर दो गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौरक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गौरक्षक बजरंग दल विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर दो गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। धारण के तौर पर यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हुई, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: सोशल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है लेकिन शीशा टूटने के बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को संभावित आई जनरेटेड बताया। AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी ओले गिरने के वायरल वीडियो में मौजूद दृश्यों को 99% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। एक और AI इमेज डिटेक्शन वेबसाइट इजिट AI ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में विशालकाय ओले गिरने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है।
13: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
13: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
7: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

0: वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के बीच इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: In a meditative state, this one is like a transformation that India made for me.
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब्बा
3: कल नहीं उठा पुटाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चल फिर बाबा चला
3: चलो
2: आजा।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादा जी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं। आप खुद उन्हें देख लीजिए।
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा
3: कल नहीं उठा पुटाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत, धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा। वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं। इस वायरल वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं।

दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

0: तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहां की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी को एक बड़ी लकड़ी के सहारे हवा में उछालते हैं और फिर उसे जोर से मारकर आगे की तरफ भेजते हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, वीडियो में आगे दिखता है जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बाकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो उसे आगे बढ़ाने की

0: पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है, लेकिन ज़रा ठहरिए। ये युवती कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है, जी हाँ, जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनका हुनर जो है सही कीमत पा रहा है।
1: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है, लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुँच गयी। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
3: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नब्ज़
4: हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है। हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है। हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन, सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से EV पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे की परंपरा है इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम है, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूरतगढ़ का भंडारा है, 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है। गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्द ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवादार भी।
4: सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहाँ पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहाँ पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहाँ पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान, पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माँ हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
9: बुलावा आ गया,
10: हाथ पकड़ के बुला लिया।
9: भोलेनाथ
8: में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे
11: कैसे?
12: अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
11: हैं।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
11: कुछ नहीं चाहिए,
9: दर्शन हो जाए, कल्याण करना है,
11: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
10: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
9: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
11: बाबा की
13: मंदिर में हर साल आए।
14: सबकी मनोकामना पूर्ण।
15: दोबारा बुलाया है।
16: कहाँ से?
15: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
13: 2023 में आए थे
15: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे।
16: जयघोष कर दीजिए सभी।

0: आप देख सकते हैं यहाँ पर जयघोष हो रहा है। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी है। और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के लकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसे देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
3: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज मैं लोगों की समीक्षा की गई है, मैं सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों में से भी अच्छी यात्रा है।
2: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है जहां यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
4: सर, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, जोनल अफसर सर, आप तो मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आते हैं आपसे संभाले, सब साथ में।
2: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नज़र पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी, एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
5: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं। यहाँ इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है, तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकती है।
2: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की है, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
6: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लांबर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सब की उनमें पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करें।
2: यात्री कैंप में सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त हैं, पानी बिजली शौचालय और इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी हर एक चीज की तसल्ली कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IGP जम्मू, IGP CRPF, IGP ट्रैफिक और IGP सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके पानीहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, पानीहाल लांबर ग्राउंड में भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: Good news today. अच्छी खबर.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
3: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है. जी हाँ, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है, और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वहीं नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है. नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है.
4: तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं. माओवादी कमांडर माड़वी हिंडवा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी. 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया. उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया. पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है. अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं. इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया.
5: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे.
6: बहुत ध्यान देते हैं.
5: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे. तो सब इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है. आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं, आप लोगों की चिंता कर रहे हैं. आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं.
4: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है. जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है. इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया.
7: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पर पहुंच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है, ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो, अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, वो समय सब समाप्त हो गया. ले अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है. आज मैं जिस रोड से आई उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है ये आप लोगों को पता है. अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है.
4: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1 लाख या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
6: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं। अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसे ले लेते।
8: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
9: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं
6: जी। कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
9: जुड़े
6: जी।
4: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
11: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
10: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं, तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन 2 खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का यह वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो है महाराष्ट्र का। क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
13: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
8: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या, आप भी जानिए।
13: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर यह वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का आप बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
14: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चा साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
13: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर दो गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौरक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गौरक्षक बजरंग दल विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर दो गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। धारण के तौर पर यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला, जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए, इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं, लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है, लेकिन शीशा टूटने के बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को संभावित आई जनरेटेड बताया। AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी ओले गिरने के वायरल वीडियो में मौजूद दृश्यों को 99% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। एक और AI इमेज डिटेक्शन वेबसाइट IZIT AI ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में विशालकाय ओले गिरने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

0: वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप के बीच इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: In a meditative state. This one is like a transformation that India made for me.
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा अब्बा
3: हाँ उठा बुझाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चल फिर बाबा चला
3: चलो
2: आ जाओ।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादाजी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरते को नहीं हमें।
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा
3: हाँ उठा बुझाओ।
2: अच्छा
3: हाँ दूध भी कह रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चला
3: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच गर्दन पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा। वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं। इस वायरल वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

स्पेन का एक पारंपरिक खेल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेला जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहाँ की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा

0: है जैसे भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बाकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है जिसे देख नेटिजेंस दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: यू हियर इट वंस एंड रिमेंबर एवरीथिंग। टू सेक्सी फॉर योर पार्टी, टू सेक्सी फॉर योर पार्टी। वन हिट वंडर्स ब्रिंग्स बैक द सॉन्ग्स दैट हिट फास्ट बट स्टेड फॉरएवर। They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है। जी हाँ, जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनका हुनर जो है सही कीमत पा रहा है।

0: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी दे वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी और न ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है, लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई और जैसे की परंपरा है इसके बाद यात्रा का जो है शुभारंभ होने वाला है। 3 जुलाई से शिव भक्तों का जत्था निकलने वाला है। आज आपको पवित्र गुफा से लेकर बेस कैंप तक की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मिलेंगे सेवादारों से जो शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रास्तों में पड़ने वाले ट्रांजिट कैंप की भी तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। और इसके बाद चलेंगे जम्मू के यात्री निवास, जिसके बाहर जो है अभी से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां तमाम हैं, न सिर्फ रेलवे स्टेशन और हाईवे बल्कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा से। देखिए परंपरा के मुताबिक यात्रा से ठीक पहले आज पवित्र गुफा पर बाबा बर्फानी की विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए। इस पूजा का उद्देश्य जो है महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और देखिए इस बीच बालटाल बेस कैंप पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंगर लगाने वाले सेवादार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा, यात्रा से पहले बाबा का दर्शन, पूजा के बाद यात्रा का शुभारंभ। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र दिन और प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की। इस शुभ दिन पर पूजा की परंपरा अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अधिकारियों के साथ इस पूजा में शामिल हुए।

0: मंत्रों के साथ बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई और यात्रा से पहले सभी ने बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। दिव्य, भव्य और पावन महादेव के धाम की ये तस्वीर शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। इसे करीब से देखने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों का जत्था तैयार है और बाबा बर्फानी के धाम को भी उनका इंतजार है।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है।
0: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा पवित्र यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है, जिसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रथम पूजा का उद्देश्य बाबा बर्फानी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना है, ताकि यात्रा बगैर किसी रुकावट और सुरक्षित संपन्न हो। इस पारंपरिक पूजा के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और बाबा के दर्शन के लिए जत्थे इसके बाद ही रवाना होते हैं।
2: ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा के साथ ही जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचेगा, जिसके लिए हफ्तों से क्या महीनों से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में व्यापक सुरक्षा और बाकी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में अमरनाथ यात्रियों की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच अब की बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मजदूरों, घोड़े वालों और दुकानदारों को पहचान ऐप से जोड़ दिया गया है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरास भी अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ साथ सभी रास्तों पर लगाए गए हैं। जम्मू से ही सुरक्षा के घेरे में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, जिन्हें अलग अलग अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में रोका जाएगा और उनके लिए हर तरह की सुविधा इन बेस कैंप्स में बनाई गई है, ताकि बिना किसी खलल के और बिना किसी रुकावट के अमरनाथ यात्री इस साल की अमरनाथ यात्रा कर सके।
0: पवित्र गुफा से लेकर बालटाल के बेस कैंप तक पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वादी गूंज उठी। लंगर की सेवा देने वाले सेवादार यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल पहुंच चुके हैं। रुद्राभिषेक करके महादेव की पूजा अर्चना की गई। शिव तांडव और डमरू की आवाज से माहौल शिवमय हो गया। शिव भक्त अभी बेस कैंप पर पहुंचे नहीं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी पूरी है। खाने पीने की चीजें लगातार लाई जा रही हैं, ताकि हजारों हजार की तादाद में जब श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न हो।
3: जो अपने सूरतगढ़ का भंडारा है, 16 साल से निरंतर सेवा दे रहा है। गर्म पानी से 5 दुकान तक पहुंच चुका है। यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से निरंतर 16 सालों से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे बाबा बर्फानी की सेवा में ये निस्वार्थ अपने कार्य को सदा बढ़ाते रहते हैं।
0: बेस कैंप के रास्ते पर ये जो चहल पहल है, जल्द ही उत्सव में तब्दील होने वाली है। शिव भक्तों के लिए हर जरूरी चीज का इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा है और सेवादार भी।
4: सेवा द्वारा बहुत निष्ठापूर्ण काम किया गया और ये जो आप देख रहे हैं भवन, जहां पर हमारा जो सामान है जो हम यात्रियों को सेवा में लगाते हैं, वो यहां पे स्थापित हो चुका है और सभी लोग अपने तन मन धन से बहुत ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारे भंडारे में जो मुख्य विशेषता है, हम जो हमारा लंगर लगता है ऊपर दर्द कोट में, वहां पे यात्रियों के लिए निःशुल्क गर्म पानी की स्नान के लिए व्यवस्था देते हैं, साथ ही पीने के लिए भी दिन भर जो है गर्म जल की सेवा चलती रहती है, ग्लूकोज का पानी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारे भंडारे पे जो आदमी आता है वो आत्मा से बहुत ही प्रसन्न होता है और ये कहता है कि भगवान आपको खूब दे, और इस प्रकार से जो है संस्था में नित्य नए जो लोग हैं भगत जुड़ते जा रहे हैं और भंडारा जो है निधि उच्च आयाम को स्थापित कर रहा है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्से से सेवादार लंगर या भंडारे की तैयारी में जुटे हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले कई सालों से यात्रा के दौरान लंगर लगाते रहे हैं। ये खाने पीने के साथ ठहरने तक की सुविधा मुहैया कराते हैं।
5: ये जम्मू से लेकर के बाबा बर्फानी की गुफा तक टोटल 130 लंगर के आसपास प्रोवाइड करते हैं जी। जो सभी लंगर मिलकर के पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर डे कम से कम 5-6 हजार यात्रियों को खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक।
0: कहते हैं जो पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन से मिलता है वही उनके भक्तों की सेवा से भी प्राप्त होता है। इसीलिए सेवादार यात्रा से 2-3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जुट जाते हैं। पवित्र गुफा के लिए रास्ते में जगह जगह खाने और पीने और साथ ही विश्राम की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल सुविधा देने में इनको असीम आनंद आता है। लंगर सजकर तैयार है। सोने या आराम करने के लिए बड़े हॉल है। चादर कंबल, कुर्सी टेबल यानी हर जरूरी साजो सामान, पहले से ही खाने पीने की चीजें बनाई जा रही हैं और सलीके से रखी भी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुलगाम इलाके में 4 बेस कैंप बनकर तैयार है। 100 से ज्यादा ट्रांजिट कैंप्स भी तैयार हो चुके हैं जहां मेडिकल सुविधा भी है।
6: यात्रा के दौरान जब कट ऑफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद यात्रियों को इस कैंप में जो है रहने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है ताकि वे अच्छी तरह से अपनी जो है यात्रा को संपन्न कर सकें। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने सभी सुरक्षा इंतजाम किए हैं और रहने की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की जो रहने की सुविधाएं हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस कैंप में तकरीबन 2,500 से 3,000 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने के लिए 3 लंगर लगाए गए हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा।
0: पवित्र यात्रा का शुभारंभ बस होने ही वाला है और जम्मू से बेस कैंप तक सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस इंतजार बाबा बर्फानी के भक्तों का है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शिव भक्तों के लिए अमरनाथ पवित्र गुफा पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। बेस कैंपों पर जहां से यात्रा शुरू होगी सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और इधर जम्मू में जहां से शिव भक्त जत्थों में निकलेंगे गजब का जोश है। हालांकि अभी यात्री निवास नहीं खुले लेकिन उसके आसपास लोगों का हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं को 3 जुलाई की सुबह का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट।
8: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, यानी कि शुक्रवार को ये यात्रा शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना कर दिया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहाँ से आए?
9: भरतपुर से आए हैं और देखो हमारी किस्मत, 3 साल से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मंदिर में अमरनाथ, मेरे हस्बैंड BSF में, ये मेरी गुरु माँ हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाती और आज हमारे मन में इतनी खुशी है।
8: बुलावा आ गया,
9: बुलावा आ गया,
10: हाथ पकड़ के बुला लिया।
9: भोलेनाथ
8: में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति,
9: बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, कह नहीं सकते।
8: अभी पहली बार आ रहे
11: हैं। अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
8: सभी भरतपुर से ही
11: हैं।
8: मुझे बताइए कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे पवित्र गुफा में क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
11: कुछ नहीं चाहिए,
9: नहीं दर्शन हो जाए, कल्याण करना है,
11: हर साल दोबारा आए,
9: बिन मांगे बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए।
10: किस्मत खुल जाएगी, बाबा के दर्शन हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी,
9: नहीं इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
11: बाबा की
12: मंदिर में हर साल आए,
13: सबकी मनोकामना पूर्ण।
14: दोबारा बुलाया है,
15: कहाँ से?
14: मैं भरतपुर से हूँ, राजस्थान भरतपुर से।
12: 2023 में आए थे
14: हम, दोबारा बाबा ने आए 2023 में आए, अब 2026 में बाबा ने हमको बुलाया और बहुत गदगद 3 दिन से रास्ता हम काट रहे बाबा के लिए आ रहे।
15: जयघोष कर दीजिए सभी।

0: देख सकते हैं यहाँ पर जय घोष हो रहा है। श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। शुक्रवार को ये यात्रा शुरू होगी, श्यामनाथ जी की यात्रा। यात्रियों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को यहाँ जम्मू की यात्री निवास भवन से ही रवाना किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। सुरक्षा भी कड़ी है, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ये यहाँ पर जो है यात्री निवास भवन है, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिलहाल सील कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है और जिनका नाम जो है पहले जत्थे में है वही आ सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ व्यवस्था की गई है कतारों की। यहाँ यात्री निवास भवन में अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार की कतारें बनाई गई है, टीन शेड्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो श्रद्धालु हैं इन्हीं कतारों में एक एक करके आते हैं और यात्री निवास भवन में प्रवेश करते हैं। फिलहाल आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे, इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों शिव भक्त आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी दोनों मार्गों से लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए जुटेंगे, इसलिए जम्मू से लेकर गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे और रेलवे स्टेशन पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजरें भी रखी जा रही हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और कई एजेंसियां तालमेल के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: दो आतंकी, एक धमाका और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें हकीकत नहीं मगर अमरनाथ यात्रा के दौरान असलियत में अगर ऐसा हो तो हालात से निपटना कैसा है, ये उसी की तैयारी है। धमाके की आवाज सुनते ही जवान तुरंत एक्शन में आ गए, ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। चाक चौबंद, हथियार बंद। सबसे पहली जिम्मेदारी जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने की, लिहाजा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। हमला ना हो इसलिए पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से कवर कर लिया और घायल हुए शख्स को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इधर कमांडोज ने आसपास जंगल में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन पूरे रास्ते पर उनकी हिफाजत में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के यात्री निवास से निकलने वाला है, इसीलिए मॉक ड्रिल के तहत जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ही गाड़ियों का काफिला निकला। इस रास्ते पर जो चुनौतियां आ सकती हैं उसे देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी तैयारियों को जांचा परखा। बालटाल बेस कैंप और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रविवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए।
3: अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज उसकी समीक्षा की गई है। मैं अपने सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष में भी अच्छी यात्रा।
2: सुरक्षा बलों के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी फोकस है जहां यात्रा के दौरान भीड़भाड़ रहेगी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना न हो और हालात पर तुरंत काबू पाया जा सके, इसके लिए कुलगाम पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपनी तैयारियों को परखा। इस मॉक ड्रिल में जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ कई एजेंसियों को शामिल किया गया ताकि मुश्किल हालात से निपटने में तालमेल बना रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की।
4: आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है जोनल अफसर सर, आप मौके पे पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम आके यहां पे संभाले, सब साथ में मिलकर।
2: यात्रा के दौरान मुमकिन है कि लोग ज्यादा व्यवधान डालने की कोशिश करें, ऐसी सूरत में देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस की नजर पूरे इलाके पर है और जैसे ही भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी, एक्शन शुरू हो गया। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बल प्रयोग से भीड़ को खदेड़ दिया। यात्रा शुरू होने के चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो गया है। पूरे रूट पर और संवेदनशील जगहों पर करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और एक्सपर्ट्स की नजर इन कैमरों पर है। अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो इस सेंटर के जरिए तुरंत सूचना सुरक्षा बलों और पुलिस तक पहुंचाई जाएगी और पलक झपकते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
5: इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज जो थर्ड आई है वो आईटी बेस्ड थर्ड आई को यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने आप देख रहे हैं सर्विलेंस हो रही है, हमारे 600 प्लस कैमरास लगे हुए हैं जिनके थ्रू हम सर्विलेंस करते हैं और कोई भी अगर सिचुएशन हो तो उसको कैटर करने के लिए टीम्स हैं यहाँ। इट्स अराउंड 610 कैमरास हैं जिसके अंदर ANPR है, जिसके अंदर RFID है और उसके बाद एंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमराज है जो कि 200x जूम तक काम करते हैं। हमारी अपनी तरफ से तो 100% की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के लिए हम पूरा ध्यान रखें। हमारी टीमें हर वक्त यहाँ पे बैठी हैं ऑल द टाइम, कोई भी अगर परेशानी हो या किसी को कोई किसी जगह पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कहीं से रूट क्लियरेंस कराना है, तो यहाँ से टीम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
2: ये तस्वीरें यात्रा से पहले उसके ड्राई रन की हैं, यानी यात्रा जम्मू से जब शुरू होगी तो हर एक पड़ाव पर उसके लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे बड़े अधिकारियों ने देखा भी और समझा भी।
6: 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से, यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई, आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में, वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लाम्बर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई है, जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का पीने का सैनिटेशन का यहाँ पर रुकने का RFID सेंटर का कहा जाए मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए सबकी उनमें पूर्णतः बंदोबस्त किए गए, यात्रियों को पूर्णतः स्वागत करेंगे।

0: రమణీయం జలం సమర్పయామి, రితుఫలాని తాంబూలం సమర్పయామి. ఓం నమః ఆయుధాయ నాదాయ విఘ్న.
1: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
4: बात करेंगे विकास की राह पर चल पड़े छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर कभी पहचान रखने वाले सुकमा अब विकास की तरफ बढ़ चुका है. जी हाँ, अप्रैल महीने में नक्सलवाद से मुक्त घोषित सुकमा में दुर्दांत नक्सली कमांडर रहे माड़वी हिडमा का गांव पुवर्ती है, और जहां पर कभी उसकी इजाजत के बिना कोई जा नहीं सकता था, आज वहीं नक्सली प्रभाव का प्रतीक रहे इस गांव के अलावा पूरे इलाके में विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है. नक्सल मुक्त हो चुके सुकमा जिले से आई इतनी सुखद तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है.
5: ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बदलाव देखकर पूरा देश खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जहां पहले सरकारी नुमाइंदे पैर भी नहीं रखते थे, अब वहां बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. पूर्ववर्ती नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं. माओवादी कमांडर माड़वी हिंडमा का गाँव है, जो दहशत का दूसरा नाम था, जिसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार और दुर्दांत नक्सली कमांडरों में होती थी. 1,80,00,000 के इनामी नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने पिछले साल एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया. उसके बाद लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा सुकमा नक्सलवाद के चंगुल से आजाद हो पाया. पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के बाद सुकमा के पुवर्ती गाँव में विकास, विश्वास और जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जाने लगी है. अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं. इसी कड़ी में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया.
6: काफी शिक्षित है तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने देंगे.
7: बहुत ध्यान देते हैं.
6: हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे. तो सब तो इनके साथ जुड़ के रहिए, सरकार के साथ जुड़ के रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए, सब आपके लिए है. आज हम इतने बड़े दायित्व में हैं, अपने लिए नहीं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं. आज ये बस्तर संभाग, आज हम सुकमा जिले में आए हैं.
5: समाज कल्याण की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से होती है. जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जिससे एक मजबूत और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ती है. इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आगमन सुकमा के नक्सल मुक्त का प्रतीक बन गया.
8: लोगों के बीच में जाना और ऐसे स्थान पे जाना, मुझे तो स्वयं पता नहीं, लेकिन जो आप लोग या यहाँ के लोग जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पहली ऐसी मंत्री है जो जगरगुंडा जैसे स्थान पे पहुँच रही है, तो वो बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब वो स्थान नहीं रह गया है ये जगरगुंडा या बस्तर क्षेत्र जहाँ नक्सल हो. अब नक्सल समाप्त की ओर हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026, उस समय सब समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ विकास चाहिए और विकास धीरे धीरे करके मेन प्राथमिकता के रूप में किया जा रहा है. आज मैं जिस रोड से आई, उस रोड की स्थिति पहले क्या रही होगी और अब क्या है, ये आप लोगों को पता है. अब हम जिस स्पीड के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी स्पीड में हम दौड़ पाते हैं या हमारी गाड़ी चल पाती है.
5: कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे इलाकों में भी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना लखपति दीदी अभियान चल रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कौशल प्रशिक्षण के अलावा आर्थिक सहयोग के जरिए उनके परिवार की सालाना आय को 1 लाख या फिर उससे अधिक करना है। इस अभियान का फायदा सुकमा जिले की महिलाओं को भी हो रहा है।
7: इनको हम लोग फर्स्ट राशि आरएफ दिलाते हैं जो 15,000 होता है, इसको 5 दीदी भी उठा सकते हैं। अगर जिसको जरूरत रहता है हम लोग उनको दे देते हैं, अगर सभी को चाहिए तो 1,000 भी ऐसी ले लेते हैं।
9: ये समूह कब से जुड़ा हुआ है?
10: 2019 से, तब से सभी महिलाएं सक्रिय हैं।
7: कुछ लोग पहले जुड़े हैं मैम, कुछ लोग अभी
10: जुड़े
7: जी।
5: पिछले कुछ वर्षों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। मुख्यधारा में ऐसे नक्सलियों की वापसी के साथ ही सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, ताकि सुकमा में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का एक नया वातावरण बन सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
11: हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर महामंथन सभी 13 अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैणा ने की बैठक, भव्य दिव्य आयोजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 होगी लागू, प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से चमकी आदिवासी किसान की किस्मत, खदान से निकला 30 लाख रुपए का हीरा, 2 साल पहले भी किसान को मिल चुका है 93 लाख का हीरा। ओडिशा के पुरी सहित दुनिया भर में मनाया गया स्नान उत्सव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का महाभिषेक, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की मेडिकल टास्क फोर्स ने बनाया फील्ड हॉस्पिटल, भूकंप प्रभावित इलाकों में घायलों और मरीजों का हो रहा है इलाज, 20 बेड वाले अस्पताल में आधुनिक उपकरण मौजूद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावे के साथ बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यहीं से अफवाहों की आंधी भी शुरू होती है। फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, क्योंकि हम करते हैं